मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की छठवीं तिथि, तदनुसार 27 मई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:55 और 48 सेकंड हुए हैं। अब आरंभ हो रही है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। श्रोताओं नमस्कार, मैं हूँ आपकी अपनी रेडियो सखी श्रद्धा और इस सुनहरी मनोरम सुबह में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। साथियों, नई सुबह अपने साथ लेकर आती है नई उमंग, नए विचार और ढेर सारी बातें। नमस्कार, लखनऊ के इस खूबसूरत सफर में हम हैं आपके साथ, आज के सफर को और भी खूबसूरत बनाने के लिए। तो चलिए करते हैं शुरुआत, देश और दुनिया में क्या हुआ है जान लेते हैं समाचारों के माध्यम से। चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ 17वें विदेश मंत्रियों के द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया की स्थिति, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। भारत और रोमानिया ने कल नई दिल्ली में रक्षा सहयोग पर संयुक्त समिति की दूसरी बैठक की। इसमें दोनों देशों के बीच जारी रक्षा सहयोग की समीक्षा की गई और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के बारे में बातचीत की गई। दोनों पक्षों ने साइबर सुरक्षा, सैन्य चिकित्सा सहयोग, संयुक्त प्रशिक्षण, क्षमता विकास और रक्षा औद्योगिक सहयोग पर आपसी रक्षा सहयोग योजना को अंतिम रूप दिया। भारत ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में चीन और पाकिस्तान के अवांछित संदर्भों को सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी

0: है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अविभाज्य अंग हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक के लिए अगले 6 महीने में ड्रोन रोधी प्रणाली स्थापित करेगी। राजस्थान में बीकानेर की साचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने कल ये घोषणा की।
1: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: सरकार ने प्याज का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये वृद्धि राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें कल से लागू हो गई। अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है। अमेरिका की वर्ष 2028 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अमरीकियों को चंद्रमा पर उतारने की योजना है। चीन की भी वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर मानव उतारने की योजना है। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन आधारित 10 कोच वाली DEMU रेलगाड़ी के संचालन को मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। रेल डीजल या बिजली की जगह हाइड्रोजन फ्यूल सेल के जरिए ऊर्जा उत्पन्न करेगी। इसकी कुल क्षमता 1200 किलोवाट होगी। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकीय बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव होंगे। पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों को सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। नमस्कार, लखनऊ में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि चर्चा। आज सुनिए डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी से जायद में ढीचा उत्पादन विषय पर जानकारी।
1: शुभ प्रभात। जैसे जैसे हमारी खेती आधुनिक हो रही है, वैसे वैसे कुछ नई समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं। मसलन फसल उत्पादन में धान गेहूं आधारित फसल चक्र बहुतायत से लोग अपनाते हैं और अपनाते रहे हैं। रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग इसमें जितनी बड़ी मात्रा में शुरू हो गया है अब पहले की अपेक्षा, उसका मूल कारण यह है कि पहले जो सूक्ष्म पोषक तत्व या जीवाश्म जीवांश हमारी मिट्टी में हुआ करते थे, वह धीरे धीरे इन रसायनों के प्रयोग के कारण खत्म होते चले जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में आवश्यकता वही पुरानी बनती है कि खाद की आपूर्ति के लिए हमें गोबर की खाद या फिर हरी खाद का प्रयोग करने की स्थिति उत्पन्न करनी होगी। ढांचा हरी खाद के रूप में बहुत पहले से उगाया जा रहा है और आज और ज्यादा प्रासंगिक हो गया है। कारण यह है कि जो भी रसायन हम प्रयोग कर रहे हैं उनके कुप्रभाव को समाप्त करने, फसल को सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से ही नहीं बल्कि आगे आने वाली फसल के लिए भूमि की दशा को सुधार करने में यह बहुत बड़ा सहयोग देता है। इसलिए ढांचा की

हरी खाद जरूर आप अपनाएं। प्रति हेक्टेयर 60 से 80 किलोग्राम नाइट्रोजन यह उपलब्ध करा देता है। ढांचे के हरे पौधे में लगभग लगभग आप मान के चलिए कि आधा प्रतिशत से लेकर 0.8% तक नाइट्रोजन, 0.8% फास्फोरस और 0.6% के आसपास पोटाश पाया जाता है। भूमि की भौतिक, रासायनिक, जैविक स्थिति में तो सुधार होता ही होता है। ढांचा में कैल्शियम की मात्रा अधिक होने से सोडियम लवण हटाकर भूमि की क्षारीयता कम करती है। सूक्ष्म जीवों की सक्रियता बढ़ जाएगी और भूमि संरक्षण में इससे सहायता मिलेगी। भूमि ओम भूमि की तैयारी करनी होगी इसके उत्पादन के लिए, कोई खास बात नहीं होती है, लेकिन एक सामान्य तरीका यही है कि ढांचा की खेती विविध जलवायु दशाओं में लगभग सभी भूमियों में चिकनी, बालू, रेतीली, कम या अधिक पीएच वाली भूमि में आसानी से की जा सकती है। लेकिन बढ़वार की दृष्टि से बलुई दोमट से दोमट भूमि

वंदना कार्यक्रम आप आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से सुन रहे हैं, और सबसे पहले हमने आपको सुनवाया अनुराधा पौडवाल और साथियों की आवाजों में ये गणपति भजन। आइए अब हम श्री श्याम को याद करते हैं, उनकी लीलाओं को याद करते हैं।

मन्ना डे और साथियों की आवाज़ें थीं इस भक्ति रचना में जो श्री श्याम को समर्पित थी। भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना इस समय आप आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से सुन रहे हैं और परंपरा अनुसार हम सभी को भारत देश में सिखाया जाता है कि हम सभी धर्मों का सम्मान करें, उनका आदर करें। और अब हम इसी क्रम में आपको सुनवाते हैं ये शब्द।

कुंज बिहारी हम सब पर अपनी दया करें, इसी एक शॉर्ट नोट के साथ भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान से आज का संगीतमय ये प्रसंग।

सभी सुख प्राप्त होंगे, क्योंकि तुम्हारे साथ पिता माता सरीखे श्री राम और सीता का निवास होगा। तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र वन में किसी प्रकार का क्लेश न पावे, यही मेरा उपदेश है। श्री राम, लक्ष्मण तथा सीता वहां पहुंचे जहां राजा दशरथ मूर्छित प्राय अवस्था में पड़े थे। श्री राम पधारे हैं इस मधुर वचन के साथ मंत्री सुमंत्र ने राजा को उठाकर बिठाया। दो दो पुत्रों के साथ सीता को वन जाने के लिए तैयार देखकर वो अत्यंत व्याकुल हो गए। अकुलाहट तथा स्नेहवश वे बार बार पुत्रों को हृदय से लगाते हैं। उनकी वाणी मौन है क्योंकि मर्मस्थल पर आघात लगने का दुख दारुण है। श्री राम बोले, हे तात, प्रेम के कारण कर्तव्य में चूक जाने से यश जाता रहेगा। मुझे आशीर्वाद और विदा दीजिए। राजा दशरथ ने ये सुनकर बांह पकड़ श्री राम को अपने पास बिठा लिया। बोले, हे तात, मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं। वेद वाणी है कि कर्मों के अनुसार ईश्वर विचार कर फल देता है, किंतु आज तो ठीक इसके विपरीत हो रहा है। अपराध कोई करे और उसका दंड किसी और को भुगतना पड़े, भगवान, ये तेरी कैसी लीला है।

0: अभी आप श्री रामचरित मानस गान से आज का संगीतमय ये प्रसंग सुन रहे थे। कलाकार थे ए हरिहरन और वाणी जयराम। इस रचना के संगीतकार थे सतीश भाटिया। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है आज का चिंतन।
1: हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि जीवन के साथ साथ संस्कृति बदलती रहती है। जीवन स्थिर और जड़ नहीं है, इसीलिए संस्कृति भी जड़ और स्थिर नहीं है। समाज के आर्थिक और सामाजिक जीवन में परिवर्तन होते रहते हैं और साथ ही साथ सांस्कृतिक जीवन भी बदलता रहता है। प्राचीन काल में जब धर्म मजहब समस्त जीवन को व्याप्त और प्रभावित करता था, तब संस्कृति के बनाने में उसका भी हाथ था। किंतु धर्म के अतिरिक्त अन्य भी कारण सांस्कृतिक निर्माण में सहायक होते हैं। राष्ट्रीयता की भावना तो मजहबों और धर्मों से ऊपर है। यदि ऐसा न होता तो एक देश में रहने वाले विविध धर्मों के अनुयायी उसे कैसे अपनाते? और जहां इसके प्रति भ्रम है, उसका कारण हमारी अज्ञानता और हमारी संकीर्णता है। हमें जितना जागरूक होना चाहिए, हम उतने नहीं हो पाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हम ऐसे युग में रह रहे हैं जब क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहे हैं। समाज का पुराना सामंजस्य विनष्ट हो गया। अब हम नए सामंजस्य, नए समन्वय की तलाश में हैं। परिवर्तन का ये अर्थ कदापि नहीं है कि अतीत की सर्वथा उपेक्षा की जाए। ऐसा हो भी नहीं सकता। अतीत के वे क्षण, वो अंश जो उत्कृष्ट हैं, जीवनप्रद हैं, उनकी तो रक्षा करनी ही है। किंतु नए मूल्यों का हमको स्वागत करना होगा, तथा वो आचार विचार जो युग के लिए प्रासंगिक नहीं है, अनुपयुक्त हैं, हानिकारक हैं, उसका भी हमें सर्वथा परित्याग करना होगा। आज सारे संसार को एक सूत्र में बांधने के भौतिक साधन विपुल हैं। विज्ञान ने इन्हें सुलभ किया है। किंतु जब तक मानव अपनी संकीर्णता का परित्याग नहीं करता, अपनी छोटी गतियों और सीमाओं का अतिक्रमण नहीं करता, तब तक वो इन साधनों का समुचित उपयोग नहीं कर सकता है। मनुष्य ने विज्ञान द्वारा यंत्र को अनुप्राणित किया, यानी उसे क्रियाशील कर सक्रिय बनाया। किंतु भौतिक संसाधनों की विपुलता हमारे मस्तिष्क को दबाने न पाए, और यदि कहीं दुर्भाग्यवश ऐसा होता ही चला जाए, तो ये माने कि संस्कृति निश्चित रूप से संकट में है। किंतु मानव हृदय और मस्तिष्क इस संकट को जूझने को तत्पर है, तो इसका अंत भी होगा। एक व्यापक तथा उदार बुद्धि से काम लेने से तथा कानून और आर्थिक पद्धति की समानता से धीरे धीरे विभिन्नताएं दूर हो जाएंगी और इस देश में रहने वाले हम सभी लोग समान रूप से इस देश की उन्नति में लगेंगे।
0: ये था हमारा आज का चिंतन। और 6:45 हो रहे हैं। काव्यधारा में लीजिए सुनिए प्रतिभा गौड़ का ये काव्य पाठ।
2: कविता का शीर्षक है चूरन चटनी गटागट की गोलियां। अब नहीं मिलती नुक्कड़ चौराहों की दुकानों पर वो अनगिनत स्वाद और चटकारों से भरी चूरन चटनी गटागट इमली और संतरे की रंग बिरंगी गोलियां, जो बचपन को भर देती थी लुभावने रंग बिरंगे सपनों से। इनका जाना पहचाना स्वाद पल भर में मूड बना देता था। रूठे हुए चंपू गुड्डू रानी गुड़िया सबको मना लेता था। कभी कभी खाते खाते इसे पच जाती थी गंभीर से गंभीर बात, जब अक्सर डांट सुनकर हाजमा बिगड़ जाया करता था। दादी नानी को रिश्वत की तरह खिलाकर ये गोलियां कहानियों का पुलिंदा खुलवा लिया करती थी। प्यार जताने, मनाने और बहुत कुछ सिखाने का जरिया रही ये गोलियां। आज रसोई से विलुप्त हो रही चॉकलेट और कैंडी से प्रतिस्पर्धा में हारी हुई सी यदा कदा हकीम अचार वालों या प्रदर्शनी में लगी स्टालों पर नजर आ जाती हैं। बचपन को पुनः जीने के लिए जो लोग खोज

देते हैं, आज भी इनका स्वाद टप टप संतुष्टि की मुस्कान बिखर जाती है। वो चूरन चटनी की गोलियां अपना अस्तित्व पा जाती हैं, वो चूरन चटनी की गोलियां अपना अस्तित्व पा जाती हैं। दूसरी कविता का शीर्षक है क्षण। व्यतीत हो रहा है, व्यतीत हो रहा है शीघ्रता से, एक चुटकी में हर क्षण। प्रातः सूरज के निकलने से लेकर अस्त होने तक बना रहे हैं हम हर क्षण का उपयोग और सार्थक विनियोग करने की योजनाएं। भविष्य के अनदेखे अविवादित कल्पों को साधने और संपूर्ण नियंत्रण पाने के लिए ढो रहे हैं असफलताएं, पी रहे हैं कड़वा घूंट अपेक्षाओं का, ढूंढ रहे हैं भविष्य में जाने क्या क्या, खो रहे हैं संयम, नहीं ले पा रहे आज का, अभी का, इस क्षण का आनंद, क्योंकि क्षण भंगुर है। मेरी तीसरी कविता का शीर्षक है नियति। एक कुम्हार मिट्टी को हाथों में पालता है, एक कुम्हार मिट्टी को हाथों में पालता है, उसी ने उसे जन्म दिया घड़े के रूप में, उसी ने उसे जन्म दिया घड़े के रूप में। ये स्वार्थ नहीं था उसका, ये स्वार्थ नहीं था उसका, आवश्यकता थी। घड़ा पका कर बेचा उसने घड़े को, घड़े की नियति पर छोड़कर। घड़ा पका कर बेचा उसने घड़े को, घड़े की नियति पर छोड़कर। कोई प्यास बुझाए अपनी या खुश हो जाए तोड़कर, कोई प्यास बुझाए अपनी या खुश हो जाए तोड़कर। नियति को कर्म पर छोड़ना तो संभव है, नियति को कर्म पर छोड़ना तो संभव है, नहीं रख सकते कर्म को नियति पर छोड़कर, नहीं रख सकते कर्म को नियति पर छोड़कर। अगली कविता तुकांत है ना।

0: विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है। इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
1: ऑस्ट्रेलिया देशस्य विदेश मंत्रिणा पेनी वोंगह इत्येषा ह्यः नवदिल्ल्यां प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह मिलितवती। श्रीमोदी रक्षा व्यापार प्रौद्योगिकीत्यादिषु क्षेत्रेषु वर्धमानस्य भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक सामरिक सहभागित्वस्य विषयेपि आपूर्ति श्रृंखलायाः स्थितिस्थापकतायाः विषये च चर्चितवान्। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् भारत ऑस्ट्रेलिया देशौ स्वतन्त्रं मुक्तं सुरक्षितं समृद्धं च हिन्द प्रशान्त क्षेत्रस्य कृते निरन्तरं कार्यं करिष्यतः। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः सुश्री वोंग इत्यनया सह सप्तदशतमस्य विदेशमन्त्रिणां फ्रेमवर्क संवादेत्यस्य सह अध्यक्षतां कृतवान्। सामाजिकान्तर्जालीये पटले डॉ जयशंकरः अवदत् यत् ते हिन्द प्रशान्त प्रदेशे पश्चिम एशियायाः स्थितिम् अन्येषु क्षेत्रीय वैश्विक बहुपक्षीय विषयेषु च मतानाम् आदान प्रदानं कृतवन्तः। भाजपेति दलाध्यक्षः नितिन नवीनः ह्यः नवदिल्ल्याः दलस्य मुख्यालये नो बीजेपी इति उपक्रमस्य अन्तर्गतं द्वादश देशानाम् अभियान प्रमुखैः सह वार्तालापम् अकरोत्। श्रीनवीनः ब्राजील, जर्मनी, इण्डोनेशिया, मलेशिया, मॉरिसस, न्यूजीलैंड, सेशेल्स, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, थाईलैंड, वियतनाम इत्यादीनां देशानां प्रतिनिधीनां स्वागतम् अकरोत्, तथा च भाजपेति दलस्य यात्रायाः विचारधारायाः संघटनात्मक शक्तेः लोकसेवायाः प्रतिबद्धतायाः च विषये अवधानं प्रदत्तवान्। केन्द्रीय वाणिज्योद्योग मन्त्री पीयूष गोयलः दृढविश्वासं प्रकटितवान् यत् भारत कनाडा आर्थिक सहभागित्वस्य अग्रिमः अध्यायः विश्वासेन प्रेरितः भविष्यति, येन द्वयोः राष्ट्रयोः संयुक्त समृद्धिः भविष्यति। गतरात्रौ कनाडा देशस्य टोरेण्टो नगरे राजनैतिक पुनरुत्थापनात् वाणिज्यिक वितरण पर्यन्तम् इति मन्त्रिस्तरीय पूर्ण सम्मेलनस्य उद्घाटन सत्रं सम्बोधितवान्। इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्र, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले से जनसांख्यिकी परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी।
3: मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूँ। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
2: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ विदेश मंत्रियों की 17वें द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया की स्थिति, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा भी की। भारत और रोमानिया ने कल नई दिल्ली में रक्षा सहयोग पर संयुक्त समिति की दूसरी बैठक की। इसमें दोनों देशों के बीच जारी रक्षा सहयोग की समीक्षा की गई और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने के बारे में बातचीत की गई।

0: पक्षों ने साइबर सुरक्षा, सैन्य चिकित्सा सहयोग, संयुक्त प्रशिक्षण, क्षमता विकास और रक्षा औद्योगिक सहयोग पर आपसी रक्षा सहयोग योजना को अंतिम रूप दिया। भारत ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में चीन और पाकिस्तान के अवांछित संदर्भों को सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अविभाज्य अंग हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। CBSE ने कहा कि वास्तविक मूल्यांकन कार्य के लिए उपयोग किए जा रहे पोर्टल पर कोई सुरक्षा उल्लंघन सामने नहीं आया है। बोर्ड ने कहा कि ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली शिकायतों के निवारण के साथ साथ मूल्यांकन में पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए लागू की गई है। बोर्ड ने संबंधित पक्षों को आश्वस्त किया कि मूल्यांकन प्लेटफॉर्म की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े और ठोस उपाय किए गए हैं। अमरीका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है। अमरीका की वर्ष 2028 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अमरीकियों को चंद्रमा पर उतारने की योजना है। चीन की भी वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर मानव उतारने की योजना है। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन आधारित 10 कोच वाली DEMU रेलगाड़ी के संचालन को अपनी मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। रेल डीजल या बिजली की जगह हाइड्रोजन फ्यूल सेल के जरिए ऊर्जा उत्पन्न करेगी और इसकी कुल क्षमता 1200 किलोवाट होगी। IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कल पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से मोहाली के न्यू चंडीगढ़ में शुरू होगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर सवेरे के 7:05 हो रहे हैं। स्वास्थ्य चर्चा में हमारा आज का विषय है, मानसिक रोगों का इलाज संभव है।
2: देखिए, हमारे शरीर के बहुत सारे अंग हैं, आंखें हैं, कान हैं, जो हमारा हड्डियों का पूरा पार्ट है, मसल्स का पार्ट है, दिल है, गुर्दा है, लीवर है और दिमाग है। तो दिमाग हमारे शरीर का एक अंग है। जब हमें पता है कि हमारे शरीर के किसी भी अंग को कुछ बीमारी हो सकती है तो दिमाग को भी कुछ ना कुछ बीमारी हो सकती है। तो जैसे बाकी चीजों का इलाज संभव है, हमारे दिल का रोग का इलाज संभव है, आंखों का इलाज संभव है, तो हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि दिमाग का यानी मानसिक रोग का इलाज नहीं है? इतना तो हमारा विज्ञान तरक्की कर चुका है कि हम अच्छे से इस पे अध्ययन करके इलाज को निकाल सके और हमारे पास अभी लगभग हर मानसिक रोग के अच्छे इलाज हैं। जो भी हमारे मानसिक रोग हैं, डिप्रेशन है, स्किजोफ्रेनी है या नशे की बीमारी है, सभी बीमारियों के अच्छे इलाज हैं। और ये सोचना कि मानसिक रोग का इलाज नहीं है एकदम गलत है। हमारा दिमाग क्या काम करता है? पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। उसके अलावा सोचना, कुछ भी जो हम सोचते हैं, हमारा मन, हम आज कैसा महसूस कर रहे हैं, हम खुश महसूस कर रहे हैं, नहीं कर रहे, हम बहुत चिड़चिड़ा महसूस कर रहे हैं, वो भी हमारा दिमाग कंट्रोल करता है। उसके अलावा हम सुनते हैं, वो भी हमारा दिमाग कंट्रोल करता है। और भी बहुत चीजें हमारा दिमाग कंट्रोल करता है। अगर हमें लगता है कि ये सब चीजें ठीक नहीं जा रही हैं, जैसे नींद ठीक नहीं आ रही है, हमें भूख ठीक नहीं लग रही है, हमारा मन बहुत दिनों से अच्छा नहीं रह रहा है, बहुत चिड़चिड़ा रह रहा है, या फिर कुछ और मानसिक असंतुलन हो गया है, तो वो भी एक मानसिक रोग है जिसका इलाज जरूरी है और जिसका इलाज किया जा सकता है। देखिए, डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन जो टर्म है, जो मतलब शब्द है, वो इटसेल्फ बताता है कि मन खराब है। तो हमारे दिमाग में एक पार्ट होता है, दिमाग का एक हिस्सा होता है जिसको बोलते हैं लिम्बिक सिस्टम। वो उसका काम क्या है? वो हमारे मन को कंट्रोल करता है सिचुएशन के हिसाब से, हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर के हिसाब से कि हमारा मन कैसा रहेगा। अगर हम कोई ऐसा हुआ है जिसे हमें दुखी रहना है, तो वहां पे ऐसे रसायनों में बदलाव होगा कि हमारा मन थोड़ा खराब हो जाएगा। अगर हमारे लिए कुछ खुशी की बात है, तो वहां पे रसायनों में ऐसा बदलाव होगा।

0: लिम्बिक सिस्टम जो दिमाग का एक हिस्सा है, कि हमारा मन अच्छा हो जाएगा। तो वो सब ये दिमाग के हिस्से पे डिपेंड करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये रसायन जो दिमाग के उस हिस्से में है कम या ज्यादा हो सकते हैं, तो बिना किसी कारण के भी हमारा मन बहुत लंबे समय के लिए खराब रह सकता है, तो उसे ही डिप्रेशन बोला जाता है। तो इसका कारण क्या हुआ कि उस हिस्से में लिम्बिक सिस्टम में रसायनों का बदलाव होना। तो उसका इलाज हम दवाइयों से कर सकते हैं, दवाइयों से उन रसायनों को ठीक लेवल पे वापस नॉर्मल लेवल पे लाया जा सकता है, लेकिन इसमें दवाइयां थोड़ा लंबे समय चलेंगी ताकि वो रसायन नॉर्मल लेवल पे रहें। और उसके अलावा हम साइकोथेरेपी भी करते हैं। साइकोथेरेपी पे क्या होता है कि हम बात करके उन कारणों का पता लगाने की कोशिश करते हैं जिससे वो डिप्रेशन में चला गया वो इंसान। तो अगर ऐसे लंबे समय तक ऐसे बात करके उन स्ट्रेसर्स को बाहर निकाला जाए, तो भी देखा गया है कि रसायनों का बदलाव वापस से ठीक हो जाता है और डिप्रेशन चला जाता है। तो इलाज मेडिसिंस भी है और साइकोथेरेपी भी है। स्किज़ोफ्रेनिया, जिसको वहम की बीमारी कहा जाता है या कुछ लोग पागलपन भी कहते हैं, तो इसमें भी दिमाग के कुछ हिस्सों में रसायनों का बदलाव भी होता है, जो इसका मेन कारण है। इसमें भी रसायन कम या ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन ये हिस्सा दिमाग का दूसरा हिस्सा है जो डिप्रेशन में है वो नहीं है। तो उसमें भी दवाइयां देकर ही उसको ठीक किया जा सकता है, लेकिन इसमें जितना जल्दी इलाज हो उतना ही ठीक होने के चांस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि बीमारी थोड़ा सीरियस बीमारी है, शायद सबसे सीरियस एक साइकेटिक डिसऑर्डर है यहाँ पे। तो इसमें भी लॉन्ग टर्म मेडिसिन देके उन रसायनों को नॉर्मल लेवल पर लाया जा सकता है और फिर ठीक किया जा सकता है। इसके लक्षण होंगे कि लोगों को कुछ कानों में आवाजें आने लग जाएंगी, डर लगने लग जाएगा, वहम हो जाएगा कि कोई उनको नुकसान पहुंचाना चाहता है, कोई कुछ कहना चाहता है, या फिर ऐसे भाव मन में आ सकते हैं कि उनको कोई कंट्रोल कर रहा है, कोई और चला रहा है, कोई उनके ऊपर काला जादू कर रहा है। तो ये सब अगर लक्षण आते हैं तो ये स्किज़ोफ्रेनिया यानी कि एक मानसिक रोग है जो होने के चांस रहते हैं, जिसको इमिडिएटली जल्दी से जल्दी ट्रीट करना चाहिए। और अगर हम बहुत सारा टाइम इस रोग में, जैसे हमने देखा गया कि बहुत सारा टाइम लोग झाड़ फूंक पे या तांत्रिक ट्रीटमेंट पे लगा देते हैं, तो दवाइयों का असर होने के चांस कम हो जाते हैं, क्योंकि बहुत टाइम तक ये रसायन का बदलाव है वो परमानेंट हो जाता है। तो इसीलिए अर्ली ट्रीटमेंट जिसे कहते हैं वो बहुत जरूरी है। हम नशे को एक रोग नहीं समझते हैं, लेकिन बहुत अध्ययन के बाद देखा गया है कि कुछ लोग, देखिए नशा बहुत लोग करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो नशे के एडिक्ट होने के लिए बहुत चांस है कि वो लोग नशे के एडिक्ट हो सकते हैं। उसका कारण क्या है कि हमारे दिमाग में एक पार्ट होता है जिसे न्यूक्लियस एकम्बन, वो नशा करके उन रसायनों को नॉर्मल लेवल पे ला रहे होते हैं, लेकिन इससे वो एडिक्ट हो जाते हैं और फिर उनको नशे से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर जो लोग बहुत समय से नशा करते रहते हैं उनके दिमाग में ऐसे बदलाव हो जाते हैं, ऐसे चेंजेस हो जाते हैं जिससे उनको और नशे की जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए भी अभी ऐसे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल। इसके अलावा नशे की बीमारी में फैमिली का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। हमने बहुत बार देखा है कि हमेशा जो लोग नशा कर रहे होते हैं उनके फैमिली में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं, कुछ स्ट्रेसेस रहते हैं, कुछ फैमिली डिस्प्यूट्स रहते हैं, तो उसको भी एक एक करके सॉर्ट आउट करना बहुत जरूरी होता है। वो भी नशे की बीमारी का एक इलाज ही है।
1: आप सुन रहे थे स्वास्थ्य चर्चा, और इसमें हमारा आज का विषय था आपके लिए मानसिक रोगों का इलाज संभव है। तो बिल्कुल भी आप चिंता ना करें, और कहीं भी थोड़ी बहुत भी दिक्कत कहीं आप महसूस कर रहे हैं या आपका परिवार का या सगा संबंधी कोई महसूस कर रहा है, तो उसकी आप हिम्मत बंधाएं और उसको डॉक्टर के पास लेके जाएं। मानसिक रोगों का इलाज संभव है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं और 7:10 हो रहे हैं खेती की बातें में। हमारा आज का विषय है गर्मियों में मौन वंशों की देखभाल।
2: किसान भाइयों राम राम। खेती की बातें कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, खेती की बातें कार्यक्रम में आज हम आपसे चर्चा कर रहे हैं गर्मियों में मौन वंशों की देखभाल के बारे में। किसान भाइयों, गर्मियों का मौसम है और जिस तरीके से अपना गर्मियों से बचाव करते हैं और साथ ही अपने पशुओं का बचाव करते हैं, उसी तरीके से जो हमारे मौन वंश हैं, जो मधुमक्खियां हमने पाल रखी हैं, तो उनका भी हमें बचाव करना है और गर्मी के इस मौसम में हमें उनकी अच्छे तरीके से देखभाल करनी है जिससे कि हम उनसे शहद उत्पादन ले सकें। किसान भाइयों, हम देखते हैं कि गर्मियों में मधुमक्खियों के छत्ते मौन ग्रह का तापमान 34 डिग्री सेंटीग्रेड से 38 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रखना जरूरी होता है। चिलचिलाती धूप और लू से बचाने के लिए बक्सों को छायादार स्थानों पर रखें। छत्ते के ऊपर टाट बोरे डालकर उन्हें पानी से गीला रखें। पर्याप्त तो पानी की व्यवस्था करें और भोजन की कमी होने पर चीनी का घोल दें। भीषण गर्मी के इस मौसम में जो हमारे मधुमक्खियाँ हैं, जो हमारे मौन बक्से हैं, उनकी देखभाल करना बहुत ही जरूरी है और तापमान नियंत्रण करना बहुत ही जरूरी है। तो इसके लिए जो हमारे मौन बक्से हैं उन्हें छायादार जगहों पर रखें। बक्सों को सीधी धूप और गर्म हवा लू से बचाना सबसे महत्वपूर्ण है। इन्हें किसी छायादार स्थान या घने पेड़ की छाया में रखें। अगर प्राकृतिक छाया हमारे आसपास

0: उपलब्ध नहीं है, तो बक्सों के ऊपर पुआल या छप्पर बना दें और उसे समय समय पर पानी से गीला करते रहें। बक्सों के ढक्कन पर टाट के बोरे रखकर उन्हें दिन में 2-3 बार पानी से गीला करें, जिससे अंदर का तापमान नियंत्रित होता रहे। जिस तरीके से गर्मी के मौसम में हमें पानी की प्यास लगती है और हम बार बार पानी पीते हैं, उसी तरीके से हमें अपनी मौन वंशों को भी पानी उपलब्ध करवाना है, पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करनी है। गर्मियों के मौसम में छत्ते का तापमान कम करने के लिए इन्हें 1 से 4 लीटर तक पानी की आवश्यकता हो सकती है। बक्सों के पास मिट्टी के उथले बर्तन में पानी भरकर रखें। मधुमक्खियां पानी में डूबे नहीं, इसके लिए बर्तन में कुछ कंकड़ या पत्थर डाल दें, जिससे कि इन पत्थरों या कंकड़ों पर मधुमक्खियां बैठकर आराम से पानी पी सकें। किसान भाइयों, हम देखते हैं कि गर्मियों के इस मौसम में फूलों की कमी हो जाती है और फूलों की कमी होने के कारण मधुमक्खियों को भोजन ढूंढने में संघर्ष करना पड़ता है, भोजन बनाने में संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए हमारी जो मधुमक्खियां हैं उनका जीवन चक्र चलता रहे, वो अपना भोजन तैयार करती रहें, इसलिए कृत्रिम भोजन की व्यवस्था हमें करनी है। और कृत्रिम भोजन के रूप में 1 किलो चीनी और 1 लीटर पानी का घोल बनाकर शाम के समय बक्सों में रखें। ध्यान रहे कि घोल बाहर ना गिरे, अन्यथा अन्य मक्खियां उस पर हमला कर सकती हैं। तो इस तरीके से किसान भाइयों, हमें चीनी का घोल ये तैयार करना है, जिससे कि जो हमारे मौन वंश हैं, जो मधुमक्खियां हैं, वो भोजन अपना ले सकें। हम देखते हैं किसान भाइयों कि जो हमारे मधुमक्खियां होती है, जो हमारे मौन बक्से होते हैं, उस पर कुछ कीटों का भी प्रकोप होता है। माइट ये एक घातक परजीवी है, इसकी रोकथाम के लिए हमें उचित दवाओं जैसे कि फार्मिक एसिड का प्रयोग करना है और माइट कीट से अपनी मधुमक्खियों को बचाना है। इसके साथ ही मोमी पतंगा भी काफी नुकसान पहुंचाता है। बारिश और उमस के मौसम में मोमी पतंगा छत्ते को नष्ट कर देता है, इसलिए समय समय पर बक्सों की साफ सफाई करते रहें और मोमी पतंगे से हम अपने मौन बक्सों को बचा सकते हैं। चींटियों से भी अपने मौन बक्सों को बचाना बहुत ही आवश्यक है। चींटियों से बचाने के लिए बॉक्स के स्टैंड के नीचे पानी की कटोरी रखें, जिससे कि चींटियां ऊपर न चढ़ सकें और बक्से में प्रवेश न कर सकें। गर्मियों के मौसम में मधुमक्खी के बक्से की स्थिति, पानी की व्यवस्था और उचित तापमान बनाए रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर हम ये सब काम करते हैं तो गर्मी के इस मौसम में हम अपनी मधुमक्खियों को इस गर्मी के मौसम से बचा सकते हैं। और जब हमारी मधुमक्खियां जीवित रहेंगी, वो अपना जीवन चक्र पूरा करेंगी, तो फूलों का मौसम जैसे ही आता है हमें शहद का उत्पादन मिलना शुरू हो जाएगा, शहद उत्पादन हमारा होना शुरू हो जाएगा। तो किसान भाइयों, गर्मी के इस मौसम में हमें मधुमक्खियों की देखभाल करना बहुत ही जरूरी है, मौन बक्सों की देखभाल करना बहुत ही जरूरी है, और इसके लिए जो हम तापमान है तो तापमान को नियंत्रित करना बहुत ही जरूरी है। इसलिए जो हमारे मौन बक्से हैं उन्हें छायादार स्थानों पर रखना है, जैसे हमारे आम के बाग होते हैं या कुछ पेड़ होते हैं, तो इनकी छाया में हम रख सकते हैं। पेड़ या बाग हमारे आसपास में उपलब्ध नहीं है तो छायादार स्थानों पर हम रख सकते हैं। और साथ ही बक्से का तापमान नियंत्रित रहे, इसके लिए टाट या बोरी से हम बक्से को ढक सकते हैं और उसे गीला करके हम बक्से का तापमान इस गर्मी के मौसम में नियंत्रित कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का खेती की बातें कार्यक्रम संपन्न होता है। कल आपके लिए हम कुछ और जानकारियों के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सब बहन भाइयों को हमारी राम राम।
1: आप सुन रहे थे खेती की बातें और इसमें हमारा आज का विषय था गर्मियों में मौन वंशों की देखभाल कैसे करें। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। तो सबसे पहले आपको बता दें, चर्चा का विषय है आज रात 9:30 पर हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। बात करें लखनऊ से प्रसारित होने वाले यानी रिले होने वाले कार्यक्रमों की, तो जिले की हलचल सवेरे 9:15 पर और कानून की बात आज शाम 7:30 पर। ये दोनों कार्यक्रम हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। और हमारे आकाशवाणी नजीबाबाद के अपने कार्यक्रम जो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, एक से एक खूबसूरत, जरा उन पर भी नजर डाल लेते हैं। तो आज रात 10:30 पर, जी हाँ, जरा समय सुन लीजिएगा, 10:30 पर मुझे याद है जरा जरा क्रम में, बिल्कुल आपका पसंदीदा क्रम है ये, इसमें जो बात कराएंगे ना आज हम, जो जुड़ी यादें हैं, तो फिर हम बता दें आपको, आकाशवाणी के वरिष्ठ उद्घोषक श्री प्रेम कुमार सडाना की आकाशवाणी से जुड़ी यादें प्रसारित की जाएंगी और इन यादों में प्रस्तुति सहयोग होगा यशोधर डबराल का और प्रस्तुत करता होंगे शोभित शर्मा, तो सुनना ना भूलिएगा।

0: आज का ये क्रम जिसका नाम है मुझे याद है जरा जरा, और बात हम कर रहे हैं आकाशवाणी के वरिष्ठ उद्घोषक श्री प्रेम कुमार सडाना की आकाशवाणी से जुड़ी यादों की। समय 10:30 आज रात। इसके अलावा दिल ने फिर याद किया, ये कार्यक्रम व्हाट्सएप मैसेजेस और पर आधारित होता है, तो इसको भी सुनना ना भूलिएगा आप। इसके अलावा अगर हम बात करें सुगम संगीत में, तो आज शाम 7:45 पर, जी हाँ, हम आपको सुनवाएंगे सुरेंद्र कौर की आवाज में कुछ शब्द। और युववाणी में शाम 5:15 पर हमारे क्रम रहेंगे बूझो तो जाने कुछ खास है आज, यूथ कनेक्ट लव स्टोरी रहस्य सीरीज सीजन 2 का प्रसारण, जिसमें खामोश घाटी प्रसारित की जाएगी। आलेख और प्रस्तुति सहयोग मोहम्मद आदिल सैफी का होगा, तो सुनना ना भूलिएगा आज के ये कार्यक्रम। अभी आप हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, थोड़ी ही देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। एपीजे अब्दुल कलाम।
2: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
3: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
4: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, श्वास लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति असाना। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकी परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए किया उच्च स्तरीय समिति का गठन। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे समिति की अध्यक्षता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे हुए केंद्र सरकार के 12 वर्ष। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, सेवा, सुशासन और लोक कल्याण को समर्पित है ये दौर। मुख्यमंत्री ने प्रयागराज और लखनऊ में महापौर के कार्यकाल के 3 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रमों में लिया हिस्सा। लखनऊ में नगर निगम की 413 करोड़ रुपए की 342 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। और प्रदेश में तेज धूप, भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी, कल से आंधी तूफान के साथ बारिश की संभावना। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकीय बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्र, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि यह समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। एक रिपोर्ट।
1: ये उच्च स्तरीय समिति अवैध अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की थी।
2: मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूँ। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
1: समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वहीं आवश्यकता पड़ने पर समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने पद पर 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वर्ष 2014 में कल ही के दिन श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल नरेंद्र मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर इसे सेवा, सुशासन और लोक कल्याण को समर्पित गौरवशाली 12 वर्ष बताया।
3: मुख्यमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि इन वर्षों में गरीब कल्याण शासन की प्राथमिकता बना, अंत्योदय आत्मनिर्भरता की शक्ति में बदला और जन भागीदारी ने विकास को जन आंदोलन का रूप दिया। उन्होंने कहा कि डिजिटल, डेमोग्राफी और डेमोक्रेसी की त्रिवेणी विकसित भारत 2047 की दिशा को नई गति दे रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का एक बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश के प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। समाचार कक्ष से ओम अवस्थी।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की पेमेंट गेटवे प्रणाली में सुधार के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के 4 प्रमुख बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करके विस्तृत चर्चा की। इस दौरान श्री प्रधान ने विद्यार्थियों को असुविधा से बचाने के लिए निर्बाध और सुरक्षित भुगतान प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया। इस बीच CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। CBSE ने कहा कि वास्तविक मूल्यांकन कार्य के लिए उपयोग किए जा रहे पोर्टल पर कोई सुरक्षा उल्लंघन सामने नहीं आया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल प्रयागराज दौरे पर पहुंचे। वहां उन्होंने नगर निगम में आयोजित मेयर के 3 साल बेमिसाल कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने नगर निगम के नए सदन हॉल का लोकार्पण किया, साथ ही नगर निगम के नए लोगों का अनावरण और पिछले 3 वर्षों में हुए विकास कार्यों पर आधारित विशेष पुस्तिका का विमोचन भी किया। इस अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने यूनेस्को द्वारा प्रयागराज महाकुंभ को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में स्थान दिए जाने की उपलब्धि के बारे में चर्चा की।
4: जब 19 में हमारी सरकार को पहली बार प्रयागराज कुंभ के आयोजन को करने का अवसर प्राप्त हुआ था, तब प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से और उनके प्रयास से प्रयागराज के कुंभ को यूनेस्को ने मानवता के अमूर्त धरोहर के रूप में मान्यता देकर के हमारी पूर्वजों की इस परंपरा को, हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा के इस आयोजन को वैश्विक मान्यता देने का काम किया था।
0: मुख्यमंत्री ने गंगा दशहरा के अवसर पर कल प्रयागराज में संगम तट पर मां गंगा का दर्शन पूजन किया और आरती में भी शामिल हुए। उन्होंने प्रयागराज के लेटे हनुमान मंदिर में भी पूजा अर्चना की। इससे पहले मुख्यमंत्री ने लखनऊ में नगर निगम की 413 करोड़ रुपए की 342 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। श्री योगी ने नगर निगम में महापौर के कार्यकाल के 3 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जनता का पैसा जनहित में ही खर्च होगा, यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है, प्रेरणा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छता रैंकिंग में लखनऊ नगर निगम को देश में 3रा स्थान मिला है, हमें इसे पहले स्थान पर लाना है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने 25 करोड़ प्रदेशवासियों और नगर निगम ने पूरे क्षेत्र को अपना परिवार माना।
4: 25 करोड़ की आबादी ही हमारा परिवार है और नगर निगम लखनऊ ने कहा कि पूरा नगर निगम ही हमारा परिवार है, इसलिए बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाना है। आज उसका लाभ मिल रहा है, हर स्तर पर मिल रहा है। जब अच्छा करते हैं लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, अच्छी सुविधाएं मिलती हैं, विकास का लाभ हर स्तर पर चलता हुआ दिखाई देता है और आज हम सबको ये सारी चीजें देखने को मिलती है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि सरकारी अस्पतालों में इलाज, जांच, दवाओं और आपात सेवाओं की गुणवत्ता लगातार बेहतर होनी चाहिए। एक रिपोर्ट।
5: मुख्यमंत्री ने कहा कि चिकित्सा शिक्षा का उद्देश्य केवल संस्थान बढ़ाना नहीं बल्कि प्रदेश को प्रशिक्षित चिकित्सक, विशेषज्ञ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य कर्मी उपलब्ध कराना है। उन्होंने मेडिकल संस्थानों में आधुनिक उपकरणों, विशेषज्ञ फैकल्टी और रिसर्च गतिविधियों को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना में आयुष पद्धतियों को भी शामिल करने के निर्देश दिए। उन्होंने मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में और कमी लाने के लिए संस्थागत और सुरक्षित प्रसव व्यवस्था को मजबूत बनाने पर जोर दिया। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
0: अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्रथम तल पर स्थापित श्री राम परिवार की स्थापना की पहली वर्षगांठ पर कल विशेष अनुष्ठान किए गए। इस अवसर पर भगवान श्री राम के संपूर्ण परिवार को नए वस्त्र धारण कराकर विशेष श्रृंगार करने के साथ 56 भोग लगाए गए। हमारे अयोध्या प्रतिनिधि ने बताया कि वहां दिनभर विशेष पूजा अर्चना, भजन कीर्तन और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रदेश में कल भी दिनभर तेज धूप, भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी रहा। इस बीच मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के चलते कल से आंधी तूफान के साथ बारिश की संभावना जताई है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकीय परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए किया उच्च स्तरीय समिति का गठन। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे समिति की अध्यक्षता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे हुए केंद्र सरकार के 12 वर्ष। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, सेवा, सुशासन और लोक कल्याण को समर्पित है ये दौर। मुख्यमंत्री ने प्रयागराज और लखनऊ में महापौर के कार्यकाल के 3 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रमों में लिया हिस्सा। लखनऊ में नगर निगम की 413 करोड़ रुपए की 342 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। और प्रदेश में तेज धूप और भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी। कल से आंधी तूफान के साथ बारिश की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
6: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
7: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
8: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। प्रस्तुत है दैनिक कार्यक्रम सूरज के साथ साथ।

कार्यक्रम सूरज के साथ साथ सुनने वाले हमारे सभी सुधीर श्रोताओं को मनोज वर्मा का नमस्कार। सभी श्रोताओं का स्वागत है आज के इस अंक में, और सभी श्रोताओं के लिए हम ईश्वर से कामना करते हैं कि वो सुखी स्वस्थ और समृद्ध रहें। भाई, गर्मी का मौसम तो हम सब महसूस कर ही रहे हैं कि कितनी गर्मी होने लगी है अब, है ना। कहीं कहीं लू चल रही हैं, सभी जगह चल रही हैं लू की बात अगर हम करें तो, है ना। और दोपहर में तो निकलना मुश्किल हो जाता है। तो ज़रा सा भाई यही कहेंगे कि थोड़ा सा आप अपना पहले तो ख्याल करें इस सीज़न में, है ना। भले ही अभी समाचारों में अगर आपने सुना हो तो भाई कहीं कहीं जो है ना ये आंधी भी आएगी और कहीं कहीं बारिश छींटाकशी हो सकती है। भाई संभावना होती है मौसम की, है ना। कहा जाता है कि किसी भी टाइम मौसम तब्दील हो जाता है। तो भाई थोड़ा सा आप अलर्ट पे रहें, ये तो मैं बात कहूँगा। क्या क्या रहेगा आज के इस अंक में, जरा उस पर हम नजर डाल लेते हैं, यानी हम क्या क्या बात आपसे करेंगे। तो एक तो हम बात करेंगे आपसे एसी कमरे से सीधा धूप में जाने वाले हो जाएं सावधान। यानी कि जो एसी रूम होते हैं ना, हम लोग लगवाते हैं एसी अपने कमरों में और उसमें घंटों घंटों बैठे रहते हैं, फिर एकदम बाहर निकलते हैं, तो वो सावधानी हमें क्या क्या लेनी है और उससे क्या नुकसान हमें हो सकते हैं, इस पे बात करें। इसके अलावा फूड सेफ्टी कनेक्ट मोबाइल ऐप है और इसमें टोल फ्री नंबर होता है 1800180553, ये इसका टोल फ्री नंबर होता है। यानी इसके बारे में अगर कोई जानकारी आप पता करना चाहते हैं, इस पे आप मालूम कर सकते हैं। इस पे बात करेंगे। मिलावट खोरी सामाजिक अपराध है, ये इसके अंदर जुड़ा रहेगा। और अगर कहीं आपको ये नजर आता है तो आप इस पे फुल फोन कर सकते हैं, जो नंबर हमने बताया। बात करेंगे पूरी आपसे, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा एक भूमिका बना दें कि भाई थोड़ा सा आप भी तैयार हो जाएं कि हाँ यार ये रहेगा इसके अंदर। चलिए खैर आगे चलते हैं। एक विषय और रहेगा कि समर वैकेशन में बच्चों को क्रिएटिव तरीके से रखें व्यस्त। अब कैसे व्यस्त रखा जा सकता है, इस पर भी हम नजर डालेंगे। और गीत संगीत तो होता ही होता है, ये तो आप जानते ही हैं, वो तो डोज है बिल्कुल। तो शुरुआत कर देते हैं। तो जैसे ही श्रोताओं गर्मी का मौसम आता है, एक काम इस मौसम में हमें बहुत प्यारा लगने लगता है यार, वो है एसी की ठंडी हवा। लेकिन क्या भाई आपने सोचा है कि एसी इस कमरे से निकलते ही सीधे अगर हम तेज धूप में चले जाते हैं, यानी भाई घर से बाहर तो निकलना पड़ेगा और कोई इमरजेंसी होगी तब भी निकलना पड़ेगा, तो क्या क्या परेशानी हमें उस दरमियान हो सकती हैं, जरा कभी सोचा है? अब भाई छोटी छोटी परेशानी आप महसूस करते हैं, हम भी महसूस करते हैं, चक्कर आ जाते हैं, सिर में दर्द हो जाता है, घबराहट होती है, कमजोरी या अचानक तबीयत बिगड़ जाती है किसी भी रूप में, है ना, कहीं भी हम गिर सकते हैं, ये वाली। तो इसका खास चर्चा का विषय हमारा ये ही है भाई। और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि जो समसामायिक विषय होते हैं ना, जैसे ये समय चल रहा है, तो इसके बारे में हम आपको ताज़ा जानकारी दें और आपको ताज़ा रखने की पूरी कोशिश करें, है ना। यानी कि कोशिश तो करेंगे लेकिन वो सफल होगी। तो श्रोताओं धूप में जाने वाले सावधान हो जाएं जरा, अगर एसी में बैठे हैं तो। अब क्यों सावधान हो जाएं? जब हम लंबे समय तक एसी में रहते हैं तो शरीर ठंडे माहौल का आदी हो जाता है, और जैसे ही अचानक तेज धूप या गर्म हवा में निकलते हैं, शरीर को झटका लगता है ना, टेम्परेचर में चेंज ऑफ द टेम्परेचर, तो वो बदलाव आता है इसके अंदर। और आसान भाषा में कहें तो इसको हम टेम्परेचर शॉक, झटका होता है ना, तापमान का झटका लग गया भाई, कहीं कहीं बिजली का झटका भी होता है, तो ऐसे ही एक तापमान का झटका होता है। यानी बॉडी तो हमारी ठंडी है लेकिन बाहर हम निकले तो भाई वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तुरंत उस पर फर्क पड़ा और वो उसमें गर्माहट महसूस हुई, बस वो झटका कई बार सहन नहीं पाती शरीर हमारा। तो इससे बचे कैसे? तो इससे बचने के लिए अगर आप एसी कमरे में हैं तो बाहर निकलने से पहले 2 या 3 मिनट सामान्य तापमान में रुकें, यानी या तो आप एसी को बंद कर दें थोड़ा सा, तब वहां बैठें, उसके बाद निकलें और डायरेक्ट धूप में अब बाहर ना जाएं। इसके बाद की बात अगर हम करें तो पानी तो आपको लगातार पीना है गर्मी के मौसम में। आप ये सोच लीजिए कि भाई हर घंटे हम 1 गिलास पानी पियेंगे, ये डॉक्टर लाइन भी बोलती है हमारी, तो ये काम आप करते रहें। और इसके अलावा जो नींबू पानी होता है ना, तो नींबू में विटामिन सी होता है, तो
वो जो है बहुत इम्यूनिटी हमारी बूस्ट करता है आजकल इन दिनों। और आप देख भी रहे होंगे बहुत नींबू बिक रहे हैं और लोग खरीदारी कर रहे हैं, तो इसका आप सेवन करें, किसी ना किसी रूप में आप सेवन करें, और कोशिश करें कि लिक्विड यानी पानी के साथ इसको मिक्स करके पिएं आप, तो बेहतर आपके लिए रहेगा। और ज़्यादा मतलब जो तापमान होता है हम कई बार उसको लेवल डाउन कर देते हैं, तो थोड़ा सा हमें परेशान करने लगता है एसी, तो इसकी इससे भी बचें। और कोशिश करें कि जो एक औसत तापमान होता है रूम का, वो आप अपने जो एसी के जो कारीगर होते हैं या जो ठीक करते हैं उसको मालूम कर लें कि भाई हमारे हिसाब से, हमारे कमरे के हिसाब से इतना हमारे कमरे का आयतन है, कितना हमें टेम्परेचर रखना है, तो ये सारी बातें इसके अंदर छोटी छोटी हैं मगर बहुत काम की हैं, इस पे आप काम करें। और बाहर अगर आप निकलते हैं तो तुरंत धूप तो बहुत तेज है, छाते लें, अपने टोपी लें, गमछे का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि अगर हम सबकी सेहत ठीक होगी ना इस मौसम में, तो हमारा मन लगेगा कहीं बाहर जाने के लिए भी, हमारी कोशिश हो सकती है, बच्चे कई बार जिद करने लगते हैं बाहर चलें, तो ज़रा सा देखिएगा कि निकलने का मौसम है कि नहीं, बच्चों को घुमाने का मौसम है कि नहीं। और अगर आप निकल रहे हैं तो फिर वही बात आ जाती है कि सावधानी तो आपको लेनी ही होगी, तो ज़रा इस पे आप नज़र रखें और इस पे आप अलर्ट। फिलहाल गर्मी तो बहुत ही है और गर्मी का गीत भी है, तो सुनवा देते हैं हम आपको।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
4: तो इंतजार किस बात का,
3: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
4: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
3: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
4: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
3: और हमारा ईमेल आईडी है
4: akashwaninajibabad@gmail.com।
3: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
5: कार्यक्रम सूरज के साथ साथ आप आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से सुन रहे हैं। और श्रोताओं, जैसा कि हमने आपसे बताया था कि हम इन विषयों पर बात करेंगे, तो उसी क्रम में आगे चलते हैं। महत्वपूर्ण विषय है, बहुत ही है, फूड सेफ्टी कनेक्ट मोबाइल ऐप और खाद्य सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर 1800180553। यानी कि हिंदी में अगर बोल दें तो 1800180553 ये हमारा नंबर जो है ना फूड सेफ्टी वाला है, हेल्पलाइन नंबर है ना। तो जरा सा इसको नोट कर लिया होगा हमने, इतने आराम से बताया आपको। तो श्रोताओं, जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल बाजार में मिलावटखोरी एक बड़ी समस्या बन चुकी है। कई बार हम अनजाने में मिलावटी खाद्य पदार्थ खरीद लेते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। ऐसे में सरकार ने आम जनता की सुविधा के लिए फूड सेफ्टी कनेक्ट मोबाइल ऐप टोल नंबर शुरू किया है। श्रोताओं, अगर आपको किसी खाद्य पदार्थ में मिलावट, खराब गुणवत्ता, एक्सपायरी डेट या गंदगी जैसी समस्या दिखाई देती है तो आप तुरंत शिकायत कर सकते हैं। और इसके लिए करेंगे क्या, इसके लिए ये करना है कि मोबाइल फोन में, भाई आजकल सभी के पास स्मार्टफोन है, फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर से, और इस ऐप के माध्यम से आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं, फोटो खींच सकते हैं, उसका अपलोड कर सकते हैं और अपनी शिकायत का स्टेटस भी देख लेते हैं, यानी शिकायत की स्थिति भी आप देख सकते हैं। और स्मार्टफोन कई बार सभी के पास नहीं होता, वैसे अधिकतर लोगों के पास स्मार्टफोन ही है, और अगर नहीं है तो जरा उनके बारे में भी बात करें, और वो भी लोग जागरूक हो जाएं जिनके पास स्मार्टफोन है, क्योंकि नंबर भी तो चाहिए ना। कई बार दिक्कतें आ जाती हैं, नेट नहीं है, पुअर नेट है, तो हमारे हम कनेक्ट नहीं हो पाते एक दूसरे से, तो वो नंबर भी जरा नोट डाउन कर लीजिए। तो सीधे टोल फ्री नंबर है भाई, पैसे नहीं लगेंगे इसके अंदर, 1800180553। इस पे कॉल करके आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, और पूरी तरह की से ये जो तरीका है ना इसका बिल्कुल निशुल्क है, तो कोई पैसा आपका इसमें नहीं लगाएगा, और इससे विभाग तक समस्या पहुंचाई जाएगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। श्रोताओं, बता दें आपको कि मिलावटखोरी केवल कानून अपराध ही नहीं है बल्कि एक सामाजिक अपराध भी है। तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम जागरूक बने, सचेत बने, और या तो फूड सेफ्टी कनेक्ट मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लें, या फिर हम डायरेक्ट, अगर हमें बात करनी है भाई, अपनी बात हम कहना चाहते हैं, जैसे हम आपस में बात करते हैं, तो उसके लिए नंबर एक बार फिर हम बता दें, नोट डाउन कर लीजिएगा, 1800180553। अगर इस तरीके से हम बोलें भाई, बिल्कुल ऐसी भाषा में बात करना चाह रहे हैं हम आपसे कि बिल्कुल हमारी बात कहीं भी एक बिल्कुल सरल तरीके से आप तक पहुंच जाए, यानी 1800180553 ये नंबर टोल फ्री है। तो ये बात हुई भाई फूड सेफ्टी कनेक्ट मोबाइल ऐप या टोल फ्री नंबर 1800180553 की, और ये हमने आपको बता ही दिया कि मिलावटखोरी सामाजिक अपराध की श्रेणी में आता है और इसमें कानूनन
6: कार्रवाई
5: की जाती है। और रही बात भाई, आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि एक सबसे पहले तो आप अपने घर का जो है ना खाना जो संतुलित होता है, पौष्टिक होता है और उसमें मेहनत लगी रहती है भाई, जो घर में हमारी महिलाएं होती हैं ना, हमारी बहन होती हैं, हमारे कोई भी रिश्ते का हो उसमें मेहनत लगी होती है, तो भाई उसको सम्मान आप दर्जा भी दीजिए जो काम करने वाले हैं। इतनी गर्मी में वो खाना बनाने का काम करते हैं, है ना, कितना पसीना आता है ये हम सब महसूस करते हैं और आप भी महसूस कर रहे होंगे इस वक्त, है ना, हमारे न जाने कितने नाश्ते तैयार हो रहे होंगे कहीं कहीं, इन सारी बातों को आप समझ रहे होंगे और महसूस भी कर रहे होंगे, तो ज़रा सा उनका ख्याल भी करिएगा और कोशिश करिएगा कि उनके ही हाथ का बना हुआ ताज़ा और सुपाच्य भोजन खाएं आप, है ना, सलाद हो गया, दाल रोटी चावल हो गया और बस मस्त हो जाएं जैसे इस गीत में मस्त हैं।
7: ये समझो और समझो।

0: दिखाओ, भूले को राह दिखाओ, दाल रोटी खाओ।
1: भाई खा कुछ भी लीजिए, अब जो मजा घर की बनी बनाई रोटी में होता है ना, दाल चावल में और सब्जी में जो बनाई जाती है, वह मजा कहीं और मिलता नहीं है भाई। हमारी तो सोच ही ये है ना, और आप भी महसूस कर रहे हो इस बात को। चलिए संदेश सुनवाते हैं, उसके बाद आगे जुड़ेंगे।
2: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
4: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
5: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
4: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: एक बार फिर अपने सभी श्रोताओं का स्वागत है और नजर डाल लेते हैं समर वेकेशन में क्यों क्रिएटिव तरीके से रखें बच्चों को व्यस्त, इस पर नजर डालते हैं। तो श्रोताओं, गर्मियों की छुट्टियां शुरू होते ही बच्चों की खुशी सातवें आसमान पर पहुंच जाती है। ना स्कूल की टेंशन, ना होमवर्क का दबाव, लेकिन कई बार पेरेंट्स की भी एक नई परेशानी शुरू हो जाती है। अब बच्चों को पूरे दिन बिजी कैसे रखें भाई, कैसे व्यस्त रखें? क्योंकि अगर सही तरीके से बच्चों को आप एंगेज यानी बिजी नहीं रखेंगे तो पूरा दिन पता क्या काम करते हैं, वो मोबाइल, टीवी, वीडियो गेम में निकाल देते हैं। और व्हाट्सएप की चैटिंग हो गई, और न जाने कितने तरीके की चैटिंग है भाई आजकल, तो वो सब में हम देखा कि भाई एंगेज रहते हैं बच्चे आजकल। और ये वही समय होता है जब हम बच्चों को क्रिएटिविटी, कॉन्फिडेंस और टैलेंट को और बेहतर बना सकते हैं, यानी छुट्टी की बात हम कर रहे हैं अगर छुट्टी है तो इसी बात की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आसान और मज़ेदार तरीका है आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटीज़, यानी पुराने अखबार, रंगीन पेपर, खाली बोटल्स या कबर्ड से बच्चे बहुत कुछ बना सकते हैं, जैसे ग्रीटिंग्स कार्ड, पेन स्टैंड, वॉल हैंगिंग या छोटी छोटी और भी बहुत सारी सजावट की चीज़ें। इससे बच्चों का इमेजिनेशन बढ़ती है ना, सोचने की क्षमता बढ़ती है और स्क्रीन टाइम भी कम होता है। यानी स्क्रीन टाइम उसको कहते हैं हम जो हम टीवी पर रहते हैं या हम मोबाइल की दुनिया में खोए रहते हैं, तो वो कम हो जाएगा। इसके अलावा भाई, अगर किसी को सिंगिंग पसंद है, किसी को बजाना पसंद है, गाना पसंद है, तो भाई वो भी ये काम कर सकता है। बहुत ही अच्छा शौक है गाने का और बजाने का, ज़रा डेवलप करिएगा तो फिर देखिएगा कि छुट्टी में बच्चों को कितना खूबसूरत एक नया टैलेंट मिलेगा और कितने अच्छी तरीके से वो व्यस्त रहेंगे। तो ये बात हमने बात की इस समर वैकेशन में अपने बच्चों को क्रिएटिव तरीके से रखें व्यस्त, यानी हम इस पर क्या क्या काम कर सकते हैं। और चलते चलते ये गीत। भाई गीत भी हल्का हल्का चलता रहेगा और नजर भी डाल लेते हैं हम कुछ सुर्खियों पर। तो अमर उजाला की अगर बात करें तो लू के थपेड़ों के बाद जो है ना, जो लू हम महसूस कर रहे हैं, कल से प्रदेश में आंधी बारिश की संभावना है। भाई देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि पड़ेगी, मौसम का मिजाज होता है, यह है ना, कब बदल जाए कोई कह नहीं सकता, तो संभावना है। लेकिन इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार सभी नगर निगमों में वन डे गवर्नेंस सेंटर शुरू करने की तैयारी कर रही है, जिससे लोगों को जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जैसे तमाम जरूरी दस्तावेज जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए पीजी, पीजी डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में दाखिले की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक अभ्यर्थी 15 जून JNU.ac.in पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। पहली संभावित मेरिट सूची 23 जून को जारी होगी। इसके अलावा केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 का लोगो, ट्रॉफी, आधिकारिक जर्सी और वीर नामक शुभंकर का अनावरण किया। ये चैंपियनशिप 4 से 8 जून तक अहमदाबाद के एरीना में होगी। इसमें युगांडा, जापान, नेपाल, श्रीलंका, ओमान, मॉरिशस

और इसी गीत के साथ आज का कार्यक्रम सूरज के साथ साथ संपन्न करने की मुझे यानी मनोज वर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। गर्मी के इस मौसम में आप अपना विशेष ख्याल रखें, अपनों के साथ साथ अपनों का भी ख्याल तो आपको रखना ही है। इसके अलावा हमारे घरों में बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनका भी आप बेहतर ख्याल रखें।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम सूरज के साथ साथ। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 8 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से जनसंख्या आंकड़ों में परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फैसला सुनाएगा। सीबीएसई ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही उन अफवाहों को खारिज किया जिनमें उसके ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के उल्लंघन की बात कही गई थी। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया। नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नवलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्र, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉक्टर शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले से जनसांख्यिकी परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी।
4: मैं आज देश के साथ

0: हमने एक चिंता एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठी मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
1: इस समिति के कार्यों के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
2: ये उच्च स्तरीय समिति अवैध अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वहीं आवश्यकता पड़ने पर समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ 17वें विदेश मंत्रियों के द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया की स्थिति, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा भी की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत कनाडा आर्थिक साझेदारी का अगला अध्याय विश्वास पर आधारित होगा, जिससे दोनों देशों की साझा समृद्धि सुनिश्चित होगी। कनाडा में आयोजित मंत्री स्तरीय सत्र को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बढ़ते विश्वास से व्यापक आर्थिक साझेदारी के अंतर्गत नए व्यापार और निवेश के अवसरों पर कार्य हो रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था की गतिशीलता पर श्री गोयल ने कहा कि भारत अगले 3 दशकों तक विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय निर्वाचन आयोग के मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज निर्णय सुनाएगा। ये याचिकाएं बिहार में पिछले साल जून में SIR प्रक्रिया शुरू करने के निर्वाचन आयोग के फैसले के बाद दायर की गई थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था। एक रिपोर्ट।
3: याचिकाओं में SIR प्रक्रिया की वैधता को चुनौती दी गई थी। इसमें कहा गया था कि SIR प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 326, जन प्रतिनिधित्व कानून 1950 और इनके अंतर्गत बनाए गए नियमों में निर्वाचन आयोग को दी गई शक्तियों के दायरे से बाहर थी। याचिकाकर्ताओं की ये भी दलील थी कि SIR प्रक्रिया ने बड़ी संख्या में गरीब और विस्थापित लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया। सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR प्रक्रिया से प्रभावित मतदाताओं के बीच पारदर्शिता को बढ़ावा देने और कठिनाई को कम करने के लिए अंतरिम निर्देश जारी किए थे। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने 1983 में बिहार में 5 लोगों की हत्या के मामले में कई दोषियों की सजा बरकरार रखते हुए कहा है कि इस घटना की क्रूरता न्यायिक अंतरात्मा को झकझोर देती है। न्यायमूर्ति संजय करोल और एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कल कहा कि निचली अदालत और पटना उच्च न्यायालय दोनों ने सही कहा है कि इस मामले में किसी भी तरह की सहानुभूति या नरमी की गुंजाइश नहीं है। न्यायालय ने कहा कि घटना मार्च 1983 में मुजफ्फरपुर जिले के एक गांव में हुई थी, जहां कम से कम 58 लोगों की भीड़ ने चंद्रशेखर चौधरी के घर में आग लगा दी, जिसके बाद 5 लोगों की बेरहमी से हत्या की गई और कई लोग घायल हो गए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने सोशल मीडिया पर किए गए इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। बोर्ड ने कहा कि उत्तर पुस्तिकाओं के वास्तविक मूल्यांकन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पोर्टल पूरी तरह से एक अलग URL पर काम करता है। एक रिपोर्ट।
4: CBSE बोर्ड ने कहा है कि CBSE.onmarks.co.in केवल एक टेस्टिंग साइट है, जिसमें सैंपल डाटा होता है, जिसका इस्तेमाल पूरी तरह से आंध्र

0: टेस्टिंग और समीक्षा के उद्देश्यों के लिए किया जाता है और इसमें परीक्षा से संबंधित कोई भी वास्तविक जानकारी नहीं होती है। बोर्ड ने कहा है कि ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली शिकायतों के निवारण के साथ साथ मूल्यांकन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लागू की गई है। बोर्ड ने संबंधित पक्षों को आश्वस्त किया कि मूल्यांकन प्लेटफॉर्म की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े और ठोस उपाय किए गए हैं। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है। एक रिपोर्ट।
0: अमेरिका की वर्ष 2028 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अमरीकियों को चंद्रमा पर उतारने की योजना है। चीन की भी वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर मानव उतारने की योजना है। मार्च में नासा ने वर्ष 2032 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर परमाणु और सौर ऊर्जा से संचालित एक स्थायी अड्डा बनाने के लिए $20 अरब के कार्यक्रम की घोषणा की थी। जेफ बेजोस की अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन को इन मशीनों का निर्माण करने के लिए चुना गया है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: कोलकाता की एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हुए हमले के मामले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की हिरासत में भेज दिया है। इन आरोपियों को केंद्रीय एजेंसी द्वारा सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया था। भारतीय वायुसेना ने अधिकारी काडर के तकनीकी शाखा में भर्ती के लिए अभियांत्रिकी स्नातक अभिक्षमता परीक्षा GATE के अंकों के आधार पर चयन करने की योजना बनाई है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि GATE के अंकों के आधार पर उम्मीदवारों को वायुसेना चयन बोर्ड में परीक्षा के लिए सीधे चयनित किया जाएगा। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली 10 डब्बों वाली DEMU रेलगाड़ी को चलाने की स्वीकृति दे दी है। यह निर्णय रेलवे क्षेत्र में हरित और टिकाऊ परिवहन को प्रोत्साहन देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हाइड्रोजन रेलगाड़ी के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी कृष्णकांत शर्मा।
2: यह रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेगी। इसमें 2 ड्राइवर पावर कार और 8 पैसेंजर कोच शामिल हैं, जिनकी कुल क्षमता 2500 यात्रियों की है। इसकी कुल विद्युत क्षमता 1200 किलोवाट है। यह ट्रेन शून्य कार्बन उत्सर्जन करती है। इसकी परिचालन गति 110 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसमें यात्रियों के लिए आधुनिक डिजिटल डिस्प्ले, ऑटोमेटिक दरवाजे और एयर कंडीशनिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सिक्किम की यात्रा के दूसरे दिन आज नाथुला दर्रे का दौरा करेंगी। राष्ट्रपति नाथुला में तैनात सैनिकों से बातचीत करेंगी। वरिष्ठ सैन्य अधिकारी उन्हें क्षेत्र में जारी विभिन्न गतिविधियों की जानकारी देंगे। राष्ट्रपति बाबा हरभजन मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगी। अमरीकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमरीका और ईरान के बीच मध्यस्थता के लिए पाकिस्तान की भूमिका की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि इजराइल के प्रति पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे विरोध के कारण उसे तटस्थ नहीं माना जा सकता। श्री ग्राहम ने दावा किया कि ईरानी सैन्य विमान पाकिस्तानी हवाई अड्डे का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इजराइल के बारे में पाकिस्तानी नेताओं की टिप्पणियां चिंताजनक हैं। ये टिप्पणियां पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में अब्राहम समझौते में पाकिस्तान के शामिल होने से इनकार के बाद आई है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया है और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है और अगले 2 से 3 दिनों तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी भीषण गर्मी की आशंका व्यक्त की है। वहीं केरलम में मॉनसून 1 या 2 दिन की देरी से आ सकता है। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कल पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। 255 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस 162 रन पर सिमट गई। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल राजस्थान के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं।

0: और लीजिए अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
1: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों ने क्वाड समूह की एकजुटता और सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ रोकने के लिए सख्ती को सुर्खियों में जगह दी है। साथ ही कई स्थानीय मुद्दे भी मुख्य पृष्ठ पर प्रमुखता से प्रकाशित किए गए हैं। वीर अर्जुन की सुर्खी है, क्वाड हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ाएगा निगरानी। पत्र ने भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्रियों की तस्वीरों को भी समाचार के साथ प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने घुसपैठ से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन संबंधी अमित शाह के ऐलान को सुर्खी बनाया है। पंजाब केसरी ने अपने संपादकीय को शीर्षक दिया है, धर्मशाला नहीं है भारत। पत्र लिखता है, जनसांख्यिकी संरचना बदल जाने से स्थानीय समुदायों में ये भावना बढ़ रही है कि घुसपैठिए सरकारी योजनाओं और राजनीतिक संरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, जिससे भाषा और भूमि को लेकर तनाव बढ़ रहा है। जनसत्ता ने दिल्ली में सीएनजी के दाम 2 रुपए प्रति किलोग्राम और बढ़ाए जाने को पहली खबर बनाया है। अमर उजाला ने भी इस खबर को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर जगह दी है, जबकि दैनिक ट्रिब्यून ने दिल्ली रेस क्लब को राहत न मिलने और जिमखाना पर सरकार के कुछ नर्म रुख को पहली खबर बनाया है।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से जनसंख्या आंकड़ों में परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय SIR को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फैसला सुनाएगा। CBSE ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन अफवाहों को खारिज किया है जिनमें उसके ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के उल्लंघन की बात कही गई है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया। महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी। और IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बनाई। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am VC Pramod, the headlines. Center forms high-level committee to study demographic change caused by infiltration and other reasons. Supreme Court to deliver its verdict today on petitions challenging special intensive revision of electoral rules. CBSE rejects claims circulating on social media about breach of its on-screen marking system, saying it was only testing site and not actual platform. IMD issues red alert for severe heat wave conditions in Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Vidarbha today. NASA releases details of robotic landers, hopping drones and vehicles it aims to send to Moon as part of its plan to build lunar base. And in IPL cricket, Royal Challengers Bengaluru storm into final beating Gujarat Titans by 92 runs in qualifier 1 at Dharamshala. The center has constituted a high-level committee to address the challenges of demographic changes caused by infiltration and other reasons. In a social media post, Union Home Minister Amit Shah said that the committee will be chaired by former Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Navlekar. Census Commissioner along with former IAS Officer Durga Shankar Mishra, former IPS Officer Balaji Srivastava and economist Dr. Shamika Ravi have been appointed as members of the committee. The Joint Secretary, Foreigners 1 in Home Ministry, will serve as the Member Secretary in the committee. Mr. Shah said infiltration and other reasons are causing unnatural demographic change, which poses a very significant challenge to the present and future of any nation. He said demographic change is a serious issue linked not only to the sovereignty, but also to national security, law and order, profound changes in social structure, and the preservation of tribal society. A report.
2: The high-level committee will conduct a comprehensive assessment of demographic changes occurring across India due to illegal immigration and other unnatural causes. It will also analyze patterns of abnormal population shift at the levels of religious and social communities and will present a planned and time-bound solution for the same. Prime Minister Narendra Modi, in his Independence Day speech from Redford last year, had announced about the high-level committee on demographic change.
3: Main aaj desh ke samne ek chinta, ek chunauti ke sambandh mein aagah karna

0: देने की सम्त एक अहम कदम है। ये रेलगाड़ी बिजली पैदा करने के लिए हाइड्रोजन ईंधन सेल्स का इस्तेमाल करते हुए जींद और सोनीपत के दरमियान चलेगी, जिसकी ज्यादा से ज्यादा रफ्तार 75 किलोमीटर फी घंटा होगी। मस्कुरा रेलगाड़ी में 1200 किलोवाट की मजमुई पावर सलाहियत होगी। इस ट्रेन में पावर निजाम सिर्फ एक रेल इंजन तक महदूद नहीं होगा, बल्कि ये ट्रेन के सभी रेल डिब्बों तक फैला होगा। कल पंजाब में हुए आम बल्दियाती इंतखाबात में तकरीबन 64% वोटिंग दर्ज की गई। 8 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, 75 म्यूनिसिपल काउंसिल्स और 19 नगर पंचायत समेत 102 बल्दियाती इदारों के नुमाइंदों को मुंतखब करने के लिए इंतखाब कराए गए थे। मुखालिफ पार्टियों के हामियों के दरमियान कुछ झड़पें भी हुईं, लेकिन रियासती इंतखाबी कमीशन ने इस बात की तस्दीक की है कि इंतखाबी अमल ज्यादातर पुरमन रहे। वोटों की गिनती 29 मई को होगी। इस बीच गुरदासपुर के दीनानगर, कादियान और शाम 84 के म्यूनिसिपल काउंसिल हलकों में 13 जून को इंतखाबात कराए जाने का ऐलान किया गया है। कल रात धर्मशाला में खेले गए क्वालिफायर वन मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर आईपीएल 2026 के फाइनल में पहुंच गई है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की जानिब से दिए गए 255 रन के बड़े निशाने का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस की टीम 3 गेंद रहते 162 रन ही बना सकी और ऑल आउट हो गई। आज न्यू चंडीगढ़ में एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम राजस्थान रॉयल्स के मध्य मुकाबले होगी। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं असगर अली।
1: शुक्रिया नीतिका। राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने नई दिल्ली में होने वाली क्वाड वज़राए खारजा की मीटिंग को अहमियत के साथ शाया किया है। हिंदुस्तान एक्सप्रेस की सुर्खी है कि क्वाड वज़राए खारजा के इजलास में अहम समझौते। रोजनामा प्रताप ने इसे अपनी पहली खबर बनाते हुए लिखा है कि हिंद बहरुल काहिल खत्ते में बहरी सलामती में क्वाड रोल निभाएगा। हज के सबसे अहम रुकन वकूफ अरफात की अदायगी के मौके पर दुनिया भर से लाखों हुजाज इकराम के मैदान अरफात में जमा होने की खबर को भी बेशतर उर्दू अखबार ने पहले सफ़े पर जगह दी है। नरेंद्र मोदी हुकूमत के 12 साल मुकम्मल होने पर उनको मुबारकबाद दिए जाने और नेक ख्वाहिशात के इजहार को भी अखबार ने अहमियत के साथ शाया करते हुए इन 12 सालों को कौमी खिदमत, अच्छी हुक्मरानी, खुद इन्हेजारी, गरीबों की फलाह बहबूद और हिंदुस्तान की आलमी साख को नई बुलंदियों तक पहुंचाने का दौर करार दिया है। रोजनामा प्रताप ने वजीर दाखिला अमित शाह के बैन अलावामी सरहदों को नाकाबिले तस्खीर बनाने के बयान को दूसरी सबसे अहम खबर बनाई है।
0: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। मरकजी सरकार ने दरअंदाजी और दीगर वजूहात से आबादी के तनासुब में होने वाली तब्दीली का जायजा लेने के लिए आला सतह की कमेटी बनाई है। सुप्रीम कोर्ट आज उन दरखास्तों पर अपना फैसला सुनाएगी जिनमें वोटर फहरिस्तों पर खसूसी जामे नजरसानी को चैलेंज किया गया है। CBSE ने अपने ऑन स्क्रीन मार्किंग निजाम की खिलाफ वर्जी के बारे में सोशल मीडिया पर किए जाने वाले दावों को ये कहते हुए मुस्तरद कर दिया है कि ये सिर्फ टेस्टिंग साइट है, कोई हकीकी प्लेटफॉर्म नहीं। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में इंतहाई शदीद गर्मी के इम्कान के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया है। और IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम फाइनल में पहुंच गई है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। 8:45 हो रहे हैं, समय है गोल्डन हिट्स का। तो गोल्डन हिट्स के हमारे सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार, सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं आज के इस कार्यक्रम में। शुरुआत करेंगे इस गीत के साथ।

0: मोहम्मद रफ़ी और अभिनेत्री नंदा की आवाज़ों में आपने सुना जब जब फूल खिले फिल्म का गीत। आनंद बख्श ने इस गीत को लिखा था और धुन तैयार की थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

0: वर्मा मलिक के बोलों को अपनी आवाज़ों से सजाया था लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर ने। फिल्म का नाम था नागिन और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इसकी धुन तैयार की थी। गोल्डन हिट्स आप आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से सुन रहे हैं। आइए पहले सुनते हैं ये संदेश।
1: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में आपने सुना दिल एक मंदिर फिल्म का गीत। हसरत जयपुरी ने इसकी लिखा था इसको गीत को, और शंकर जयकिशन ने इसकी धुन तैयार की थी।

0: इस गीत से पहले आपने सुना था फकीरा फिल्म का गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में, और ये गीत जो आप सुन रहे हैं ये गीत है फिल्म प्रोफेसर का लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। और इस गीत के साथ ही आज का गोल्डन हिट्स कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। थोड़ी ही देर में आप जिले की हलचल सुनेंगे।
1: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए उन्नाव और भदोही जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं उन्नाव जिले की हलचल, आलेख और स्वर है विकास शुक्ला का।
2: जनपद उन्नाव में भीषण गर्मी से तापमान लगातार 43 डिग्री सेल्सियस से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है, जिससे लू हीट वेव का प्रकोप जारी है। चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं के कारण जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। जहां भीषण गर्मी और तापमान से जिला अस्पताल में डिहाइड्रेशन, उल्टी, दस्त और हीट स्ट्रोक के मरीजों की संख्या में भारी उछाल आया है, वहीं ओपीडी में रोज लगभग 1200 से ज्यादा मरीज आ रहे हैं। वहीं गर्मी के मौसम में विद्युत आपूर्ति को सुचारू रखने के लिए विभाग ने जिले के सरैया, शुक्लागंज और गंगाघाट टाउन सब स्टेशनों पर लगे बड़े ट्रांसफार्मरों को ठंडा रखने के लिए जंबो कूलर लगाए गए हैं। वहीं हीट वेव से बचाव के दृष्टि जिला प्रशासन ने जनपद वासियों से अपील की है कि अत्यधिक तेज धूप में बाहर न निकलें। विशेषकर दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच बाहर निकलते समय सिर एवं शरीर को ढके टोपी, गमछा, दुपट्टा या छाते का प्रयोग अवश्य करें। पर्याप्त मात्रा में पानी एवं तरल पदार्थ का सेवन करें। शरीर को हाइड्रेट रखने हेतु दिन भर पानी पीते रहें। ORS, शिकंजी, आमपना, नींबू पानी आदि का सेवन लाभकारी है। वहीं प्रशासन ने खेतों में कार्य करने वाले कृषकों को दोपहर में कार्य न करने की सलाह दी है। वह पशुओं को छायादार स्थान पर बांधने तथा उन्हें पर्याप्त पानी पिलाते रहें। घरों की छतों पर पक्षियों के लिए भी पानी की व्यवस्था करें तथा किसी भी प्रकार की आपात सहायता है तो कलेक्ट्रेट मुख्यालय पर संचालित कंट्रोल रूम के टोल फ्री नंबर 1077 पर संपर्क करें। जिले में सड़क संपर्क व्यवस्था को सुदृढ़ मजबूत करने के लिए बिलग्राम उन्नाव प्रयागराज मार्ग के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण कार्य का शिलान्यास किया गया। सांसद साक्षी महाराज ने इस परियोजना का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि एवं स्थानीय लोग मौजूद रहे। वहीं इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य सड़क को सुरक्षित, सुगम और आधुनिक बनाना है, जिससे क्षेत्रीय जनता को बेहतर यातायात सुविधा मिल सके। शिलान्यास कार्यक्रम में सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार सड़क तथा आधारभूत ढांचे के विकास पर लगातार ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि बेहतर सड़कें किसी भी क्षेत्र के विकास की आधारशिला होती है। सड़क के चौड़ीकरण से आवागमन में आसानी होगी और व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। वहीं यह परियोजना क्षेत्र के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने कहा कि इस मार्ग के चौड़ीकरण की मांग लंबे समय से की जा रही थी, जिसकी स्वीकृति मिलने से जनता में खुशी है। उन्होंने कहा कि बेहतर सड़क से ग्रामीण क्षेत्रों की जिला मुख्यालय और अन्य शहरों से जुड़ने की सुविधा मिलेगी, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापारिक गतियों में तेजी आएगी। वहीं स्थानीय लोगों ने भी सड़क निर्माण परियोजना पर प्रसन्नता व्यक्त की। उनका कहना है कि मार्ग के चौड़ीकरण से आए दिन लगने वाले जाम और दुर्घटनाओं में कमी आएगी। इससे भारी वाहनों और यात्रियों को भी बेहतर सुविधा मिलेगी। जिले के निराला प्रेक्षागृह में शिक्षा में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिलाधिकारी घनश्याम मीणा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि, शिक्षकगण और बड़ी संख्या में शिक्षा मित्र मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए बताया कि जिले में लगभग 1300 शिक्षा मित्र कार्यरत हैं, जिन्हें इस अवसर पर सम्मानित किया गया है। उन्होंने कहा कि
3: जनपद में लगभग 1300 के आसपास शिक्षा मित्र हैं, उनको यहाँ पे सम्मानित किया गया और जो उनका मानदेय राज्य सरकार द्वारा बढ़ाया गया है उसी क्रम में ये प्रोग्राम किया गया था। कुछ जो हमारे शिक्षा मित्र हैं उनको हम लोग ने मंच पे भी उनको सम्मानित किया और इससे एक अच्छा मैसेज आएगा और साथ ही जो हमारी शिक्षा का जो स्तर है उसको और हम लोग सुदृढ़ करने का प्रयास करेंगे।
2: यह कार्यक्रम राज्य सरकार द्वारा शिक्षा मित्रों के मानदेय में की गई वृद्धि के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि ऐसे आयोजनों से शिक्षा मित्रों का मनोबल बढ़ता है और उन्हें कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस कार्यक्रम से सकारात्मक संदेश जाएगा और जिले की शिक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने में मदद मिलेगी। जिले के कृषि विज्ञान केंद्र हौरा में आम क्रेता विक्रेता सम्मेलन एवं संतुलित उर्वरक उपयोग पर एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य विकास अधिकारी कृतिराज ने की। इस अवसर पर कृषि एवं उद्यान विभाग के अधिकारी, वैज्ञानिक, आम उत्पादक, व्यापारिक और विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आम उत्पादकों, व्यापारियों और संबंधित संस्थाओं को एक साझा मंच प्रदान करना था। इसका लक्ष्य आम उत्पादक, भंडारण और विपणन जैसी जुड़ी समस्याओं पर विचार विमर्श कर उनके समाधान खोजना था। प्रतिभागियों ने आम की गुणवत्ता सुधारने, बेहतर विपणन व्यवस्था स्थापित करने और उत्पादकों को लाभकारी मूल्य दिलाने जैसे मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी कृतिराज ने कहा कि प्रशासन किसानों और आम उत्पादकों के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
1: उन्नाव जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं भदोही जिले की हलचल। आलेख और स्वर है संजय कुमार श्रीवास्तव का।
4: हीट वेव के प्रकोप से भदोही समेत पूर्वांचल के कई जिले तप रहे हैं। जिले में तापमान लगभग 45 डिग्री तक पहुँच गया है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण लोगों को घरों से निकलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दोपहर के समय सड़कें सूनी नजर आ रही हैं और गर्मी से राहत पाने के लिए लोग तमाम उपाय अपनाने पर मजबूर हैं। इसी बीच जिला प्रशासन ने हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी करते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने बताया कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग से प्राप्त जानकारी और चेतावनी के अनुसार भदोही उन जनपदों में शामिल है जहां भीषण ग्रीष्म लहर की चेतावनी जारी की गई है। उन्होंने कहा कि जिला आपदा प्रबंधन विभाग और जिला अधिकारी कार्यालय आपदा मित्रों के माध्यम से गांव और शहर स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। डीएम ने कहा, गर्मी अपने चरम पे है, लोग 12 से 4 बजे के बीच बाहर से निकलने से बचें, अधिक से अधिक पानी पीकर शरीर को हाइड्रेट रखें और चेहरे और शरीर को ढककर ही बाहर आएं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य केंद्रों पर हीट वेव वार्ड और ORS काउंटर संचालित किया जाए, जबकि पब्लिक एड्रेस सिस्टम और वाटर स्प्रे के जरिए भी राहत और जागरूकता का प्रयास किया जा रहा है। जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने बताया,
5: इस समय जो है गर्मी अपने चरम पर है और इस समय बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जब भी आप घर से बाहर निकलें तो कोशिश ये करें कि दोपहर में 12 से 4 अपने कार्य जो आउटसाइड के हैं उनको न करें, उसके पहले अथवा उसके बाद में ही जो है इस तरह के कार्य करें। दूसरे आवश्यक यह है कि अपना हाइड्रेशन बना करके रखने की आवश्यकता है, अधिक से अधिक पानी पिएं, चेहरे को शरीर को पूरी तरीके से ढक करके ही अगर अवश्यंभावी स्थिति है तभी निकला जाए।
4: भदोही के युवा क्रिकेटर हर्ष दुबे का चयन भारतीय क्रिकेट टीम में हो गया है। अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली वनडे श्रृंखला के लिए उन्हें टीम में 15वें खिलाड़ी के रूप में शामिल किया गया है। हर्ष गोपीगंज नगर के समीप तिलंगा गांव के निवासी हैं। उनके चयन की खबर मिलते ही परिवार और क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई। हर्ष ने क्रिकेट में अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर यह मुकाम हासिल किया है। वे विदर्भ की ओर से अंडर 13, अंडर 16, अंडर 19 रणजी ट्रॉफी खेल चुके हैं। रणजी ट्रॉफी में एक सीजन में उन्होंने 69 विकेट लेकर रिकॉर्ड बनाया था। इसके बाद उनका चयन इंडिया टीम ए में हुआ। वर्तमान में वे IPL के सनराइज हैदराबाद की ओर से खेल रहे हैं। उनके पिता सुरेंद्र भी पहले CISF में तैनात थे, अब परिवार नागपुर में रहता है। हर्ष की सफलता से भदोही जिले के युवाओं को प्रेरणा मिली है। शिक्षा के क्षेत्र में भी जिले को नई उपलब्धि मिली है। काशी नरेश राज की विश्वविद्यालय की प्रथम कुलपति प्रोफेसर उमा श्रीवास्तव ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। उन्होंने विश्वविद्यालय में शोध और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराया जाएगा तथा अनुशासन और शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। विश्वविद्यालय को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नई पहचान दिलाने के लिए प्रयास किया जाएगा। कुलपति प्रोफेसर उमा श्रीवास्तव ने बताया कि
6: ये बहुत पुराना कॉलेज है, आजादी के बाद का पहला, और अब ये यूनिवर्सिटी में तब्दील हो गया है। तो इसमें हाई क्वालिटी रिसर्च हो, स्टूडेंट्स रिसर्च ओरिएंटेड हो, कैंपस का माहौल बहुत अच्छा हो, इसमें मेरा प्रयास रहेगा।
4: भदोही जिले में विकास कार्यों को गति मिल रही है। सीता समाहित स्थल सीतामढ़ी को सिमरनाथ धाम से जोड़ने वाली सड़क का चौड़ीकरण और सुंदरीकरण किया जाएगा। इस परियोजना पर लगभग 21.66 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सड़क निर्माण की स्वीकृति मिलने के बाद निविदा की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और जल्द ही

0: शुरू होगा। सड़क चौड़ी होने से लगभग 20 गांव के लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। इससे पर्यटन और स्थानीय व्यापार को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। भदोही जिले की सहकारी समितियों की जीर्णोद्धार की योजना शुरू की गई है। शासन ने 11 समितियों के नवीनीकरण के लिए 1.3 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है। प्रत्येक समिति पर लगभग 9,40,000 रुपए खर्च किए जाएंगे। जिले में कुल 52 सहकारी समितियां हैं, जिनमें से अधिकांश भवन काफी पुराने और जर्जर हो चुके हैं। इन समितियों के माध्यम से किसान को खाद, बीज और ऋण जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। धान और गेहूं खरीद का कार्य भी इन्हीं केंद्रों पर होता है। भवन जर्जर होने के कारण किसानों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अब इनके नवीनीकरण से ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाएं बेहतर होंगी। साथ ही समितियों के कंप्यूटरीकरण का कार्य भी किया जा रहा है, ताकि किसानों को आधुनिक सुविधाओं का लाभ मिल सके। उद्योग क्षेत्र में राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के कारण एमएसएमई सेक्टर प्रभावित हुआ है। इसे ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने रिलीफ योजना नामक विशेष सहायता योजना शुरू की है। इस योजना के तहत 497 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इससे छोटे और मध्यम उद्योगों को राहत मिलने की उम्मीद है। भदोही का कालीन उद्योग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है और बड़ी संख्या में लोग इससे जुड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में सरकारी सहायता से उद्योग को मजबूती मिलने की संभावना है। इससे भदोही के कालीन निर्यातकों को राहत मिलेगी।
1: यह था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।

हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 9:25 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम धरती गाती है। तो श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे सोनल टोंक के गाए कुछ रुहेलखंडी लोकगीत। पहले सुनते हैं सोनल टोंक की आवाज में ये रुहेलखंडी लोकगीत।

0: सोनल टोंक की आवाज में आपने सुना ये रुहेल खंडी लोकगीत।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
0: धरती गाती है कार्यक्रम आप आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से सुन रहे हैं और इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं सोनल टोंक के गाए कुछ रुहेल खंडी लोकगीत।

0: से जन कल्याण।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: पेश है धरती गाती है कार्यक्रम का अगला गीत सोनल टॉक की आवाज में।

धरती गाती है कार्यक्रम आप आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से सुन रहे हैं और इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं सोनल टोंक के गाए कुछ रुहेलखंडी लोकगीत।

0: सोनल टोंक के गाए इस रोहिलखंडी लोकगीत के साथ आज का धरती गाती है कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। 9:50 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम बात आसपास की।
1: नमस्कार, आकाशवाणी नजीबाबाद के कार्यक्रम बात आसपास की में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अंकुर चौधरी। शिक्षा किसी भी समाज और राष्ट्र की प्रगति का आधार होती है। बदलते समय के साथ शिक्षा के स्वरूप और उसकी आवश्यकताओं में भी निरंतर परिवर्तन होता रहा है। आज जब देश नई संभावनाओं, तकनीक और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है, तब शिक्षा व्यवस्था में भी एक नई सोच और नई दिशा दिखाई दे रही है। इसी सोच का महत्वपूर्ण आधार है नई शिक्षा नीति 2020, जिसने स्कूल शिक्षा के साथ साथ उच्च शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में भी बदलाव की नई राह खोलने का प्रयास किया है। नई शिक्षा नीति केवल डिग्री प्राप्त करने तक सीमित नहीं, बल्कि यह विद्यार्थियों में ज्ञान, कौशल, नवाचार, सोच क्षमता और जीवन मूल्यों के विकास पर बल देती है। विषयों के चयन की स्वतंत्रता, स्किल आधारित शिक्षा, डिजिटल लर्निंग, रिसर्च और रोजगार परक अध्ययन जैसे अनेक पहलू आज शिक्षा व्यवस्था की नई पहचान बनते दिखाई दे रहे हैं। सर, आपका नाम?
2: मेरा नाम प्रोफेसर रविंदर सिंह, मैं यहाँ भूगोल विभाग में अध्यक्ष भी हूँ और आज मैं यहाँ पर जो है आज के दिवस पे कार्यवाहक प्राचार्य का प्रभार भी देख रहा हूँ।
1: सर, नई शिक्षा नीति 2020 को आप भारत की शिक्षा व्यवस्था में कितना बड़ा परिवर्तन मानते हैं?
2: नई शिक्षा नीति 2020 आज से करीबन 6 साल पहले लागू की गई। ये एक क्रांतिकारी नीति है। इस नीति के अंतर्गत हमारी शिक्षा व्यवस्था को रिफॉर्म किया गया है। इसके तहत UGPG में समूचे प्रदेश में जो है सेमेस्टर प्रणाली लागू हुई है। इससे पूर्व में UGPG में वार्षिक सिस्टम था, तो सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत यदि आप UG कर रहे हैं तो 3 साल का कोर्स है प्लस 1, यदि आप PG कर रहे हैं तो 2 साल का कोर्स है और दोनों में जो है 6 सेमेस्टर और उधर 4 सेमेस्टर का प्रावधान है। इनके माध्यम से पिछले 6 वर्षों से विद्यार्थीगण लाभ पा रहे हैं और इसके द्वारा जो है विद्यार्थियों को शिक्षा के अतिरिक्त कुछ और एरिया भी हैं जहां उन्हें लाभ हो रहा है। नंबर एक, जैसे सेमिनार के माध्यम से कॉन्फ्रेंस है, असाइनमेंट है और सरप्राइज टेस्ट भी हैं। इनके माध्यम से शिक्षक हमारे जो है बच्चों का मूल्यांकन करते हैं और सर्वांगीण विकास की तरफ एक ये अच्छी शुरुआत है।
1: सर, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट विद्यार्थियों के लिए कितना लाभकारी साबित हो रहा है?
2: ये एक जमा पूंजी है, विद्यार्थी की जो कारगुजारी है एक सेमेस्टर में उससे संबंधित है। मान लीजिए यदि विद्यार्थी ने फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिया उसने और फर्स्ट सेमेस्टर उसने पास कर लिया मान लो, तो उस सेमेस्टर में जो भी उसकी परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस उसकी सिक्योर रहेगी, सेफ रहेगी विश्वविद्यालय के पास और यहाँ महाविद्यालय के पास। और यदि बच्चा चाहे किसी कारणवश या उसको जॉब लग गई है, मान लीजिए कोई NDA में चला गया है या फोर्सेस में चला गया है, तो वापिस आकर वो वही उसी पॉइंट से आरंभ कर सकता है।
1: सर, सावजन कॉलेज महाविद्यालय में किस तरीके से बच्चे एडमिशन लेने की प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते हैं?
2: मित्रों, 11 मई से जो है गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद की ये प्रथम सेमेस्टर BA BSc BCom की प्रक्रिया आरंभ हो गई है और इसके 2 स्टेज हैं। विद्यार्थी को अपना पंजीकरण कराना है यूनिवर्सिटी साइट पर, जिसकी शुल्क 150 रुपए है। उस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद उसे महाविद्यालय का जो प्रोस्पेक्टस है वो ओपन होगा तो उसे भरेगा बच्चा। तत्पश्चात ही उस विद्यार्थी का जो फॉर्म यहाँ हार्ड कॉपी के रूप में जमा होगा।
1: अब हमने बात की विद्यालय के शिक्षकों से। सर, आपका नाम?
3: मेरा नाम डॉक्टर उमेश कुमार है।
1: एक शिक्षक के रूप में आप नई शिक्षा नीति 2020 को किस दृष्टि से देखते हैं?
3: जब मेरी ज्वाइनिंग हुई उस वक्त नई शिक्षा नीति लागू हो चुकी थी और मैंने देखा वो बच्चे भी कॉलेज में पढ़ रहे थे जो पुरानी शिक्षा नीति के तहत पढ़ रहे थे और नई शिक्षा नीति के बच्चे भी कॉलेज में सेम वक्त पे पढ़ रहे थे। फर्स्ट ईयर नई शिक्षा नीति का था और सिलेबस में बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला। उनका को करिकुलर एक्टिविटीज, उनका सेमेस्टर सिस्टम, उनका सिलेबस का टाइमिंग, जो लेक्चर लेने की टाइमिंग होती है, प्रैक्टिकल फाइल्स एंड फील्ड सर्वे जैसी चीजें ईयर सिस्टम में उस स्ट्रक्चर में पॉसिबल नहीं थी। तो नई शिक्षा नीति स्टूडेंट्स को नए मौके देती है।
1: नई शिक्षा नीति में क्रिटिकल थिंकिंग और प्रैक्टिकल लर्निंग को बढ़ावा देने की बात कही गई है, इसे आप कैसे देखते हैं?
3: क्रिटिकल थिंकिंग व्यक्ति में होना बहुत जरूरी है। कोई भी घटना या किसी भी प्रकार का ज्ञान आपके समक्ष जब आता है और आप उसे प्रोसेस न कर पाओ, उसके ऊपर विचार न कर पाओ कि वो सही है गलत है, उसके ऊपर आप सुझाव न दे पाओ कि बेहतर कैसे होगा, तो उस ज्ञान का कोई फायदा नहीं है। इसलिए क्रिटिकल थिंकिंग अब डेवलप होनी ही चाहिए और नई शिक्षा नीति में प्रैक्टिकल और सर्वे जो कि पूर्ण रूप से स्टूडेंट को ही करना है। टीचर गाइड के रूप में कार्य कर सकता है लेकिन अगर बच्चे का मन है वो किस टॉपिक पे, किस गांव में, किस सब्जेक्ट पे काम करना चाहता है, किस लैब में जाके किस विषय के वो एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, ये सब विद्यार्थी के ऊपर है। जब वो एक प्रयोग करेगा, प्रयोग के नतीजे आएंगे, हो सकता है जो उसने सोचा था नतीजे उससे विपरीत आए, यहीं से क्रिटिकल थिंकिंग की शुरुआत हो जाती है।
1: मैम आपका नाम?
4: मेरा नाम डॉक्टर भावना है।
1: मैम डिजिटल एजुकेशन और ऑनलाइन लर्निंग के बढ़ते दौर में शिक्षकों की भूमिका किस प्रकार बदल रही है?
4: सर मुझे लगता है डिजिटल एजुकेशन के इस दौर में शिक्षक केवल किताबों तक सीमित रहे हैं, बल्कि वो एक गाइड मेंटर की भूमिका निभा रहे हैं, जिसमें शिक्षक तकनीकी मदद से विद्यार्थियों को इंटरेक्टिव और प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ा पा रहे हैं, जिसमें कि उनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, स्मार्ट क्लासेस और डिजिटल टूल्स ने शिक्षा को अधिक समान और प्रभावी बनाया है।
1: रिसर्च आधारित शिक्षा भारत को वैश्विक स्तर पर कितना मजबूत बना सकती है?
4: सर मुझे लगता है रिसर्च आधारित शिक्षा भारत को वैश्विक स्तर पर किसी भी देश की प्रगति का आधार होती है। यदि विद्यार्थी शुरुआत से ही रिसर्च और इनोवेशन की ओर प्रेरित होंगे तो भारत विज्ञान, तकनीक और शिक्षा के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर मजबूत बनेगा। इससे नए आविष्कार और स्टार्टअप और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। सर
1: नई शिक्षा नीति में परीक्षा प्रणाली को लेकर क्या महत्वपूर्ण बदलाव किए गए और जो इसमें सेमेस्टर प्रणाली है उससे बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
4: सर उसमें जैसे कि बदलाव की बात करें, इसमें कोई भी स्टूडेंट है, कोई भी विद्यार्थी अपनी अगर एजुकेशन स्टार्ट करता है उसमें ABCD स्टार्ट करा गया है, जिसमें एकेडमिक बैंक क्रेडिट्स कोई विद्यार्थी किसी कारणवश अपनी शिक्षा को बीच में छोड़ सकता है
1: जी।
4: या कारण छूट गई उसकी, तो उसको रिस्टार्ट करने के लिए विद्यार्थी के मतलब विफल नहीं होंगे इसके परिश्रम। उसमें उस विद्यार्थी को जिस ड्यूरेशन के अंदर उसने करा है मतलब स्टडी अपनी, या तो उसे डिप्लोमा सर्टिफिकेट या जो भी उसने जिसने कोर्स अंतराल में करा उसको उसका बेनिफिट मिलेगा। और ABC एक स्टूडेंट का डिजिटल स्टोर हाउस है, उसमें उसके क्रेडिट स्कोर शामिल होते हैं
1: जी,
4: जिनको विद्यार्थी अपना भविष्य में उनका उपयोग कर सकता है, वो सुरक्षित होता है उनका रिकॉर्ड।
1: अब हमने बात की एक मेडिकल कॉलेज में उपस्थित शिक्षिका से। मैम आपका नाम?
5: मेरा नाम डॉक्टर खुशी है।
1: मैम क्या न्यू एजुकेशन पॉलिसी में मेडिकल शिक्षा अब पहले से अधिक प्रैक्टिकल हो रही है?
5: हाँ बल्कि प्रैक्टिकल के साथ साथ हुआ ये है कि पहले बच्चे जो स्टूडेंट पढ़ाई करते थे वो सिर्फ डिग्री पाने के लिए करते थे, और NEP की वजह से ये हुआ है कि बच्चे अब सिर्फ डिग्री पाने के लिए पढ़ाई नहीं करते हैं, उनके अंदर स्किल का विकास हो गया है, वो काफी प्रैक्टिकल हो गए हैं और अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे ज्यादा ध्यान देने लगे हैं, तो काफी फायदा हुआ है।
1: न्यू एजुकेशन पॉलिसी में स्किल और क्लिनिकल ट्रेनिंग को कितना महत्व मिल रहा है?
5: क्लिनिकल ट्रेनिंग और स्किल ट्रेनिंग को बहुत ज्यादा महत्व मिलने लगा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हम दे सकते हैं डिजिटल शिक्षा को। जैसे पहले क्लिनिकल और आपका जो स्किल ट्रेनिंग था, हम उसको पढ़ते थे, स्किल इतने अच्छे नहीं हुआ करते थे, किताबी नॉलेज हुआ करती थी बट स्किल नहीं होता था। अब NEP के वजह से क्या हुआ है कि जो डिजिटल वर्ल्ड हमारा आ गया है उसकी वजह से हमें मौके ज्यादा मिलने लगे हैं, हमें अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलने लगी है, इसलिए बच्चों में काफी अच्छे स्किल्स और क्लिनिकल नॉलेज देखने को मिलती है।
1: मेडिकल छात्रों में आत्मविश्वास बढ़ाने में नई नीति कितनी सहायक साबित हो रही है?
5: बहुत ज्यादा सहायक हुई है नीति। आजकल जो स्टूडेंट है ना, पहले ऐसे होता था कि स्टूडेंट जहाँ पढ़ रहे हैं वो वहीं पढ़ते थे, वहीं से ही अपनी मार्कशीट डिग्री लेके निकल जाते थे और आगे जाके काफी सफर करते थे क्योंकि उनके इतने कॉन्टेक्ट नहीं होते थे। अभी ऐसा होने लगा है कि बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ने के दौरान ही काफी आउटसाइड पोस्टिंग्स पे जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो उससे उनका

0: उसको जो भी इलाज दे रहे हैं वो उसको महत्व देता है। पहले ऐसे था कि हम इलाज करते थे, दवाइयां बताते थे, एक्सरसाइज बताते थे, एज अ फिजियोथेरेपिस्ट हम एक्सरसाइज बताते थे, तो पेशेंट सुन के चला जाता था, फिर इतना ध्यान नहीं देता था। बट अब इन सब चीजों की इसकी वजह से एक मरीज भी अपने खुद के ऊपर बहुत ध्यान देने लगा है कि एक डॉक्टर जो उसको बता रहा है, क्या वो उसके लिए सही है गलत है, और डॉक्टर जो बता रहा है वो कितना महत्व रखता है।
1: तो नई शिक्षा नीति 2020 केवल पाठ्यक्रम में बदलाव नहीं, बल्कि शिक्षा को समानुकूल, रोजगार परक और ज्ञान आधारित बनाने का एक व्यापक प्रयास है। उच्च शिक्षा हो या मेडिकल शिक्षा, उद्देश्य यही है कि युवा केवल डिग्रीधारी न बने, बल्कि आत्मविश्वासी, कुशल और जिम्मेदार नागरिक बनकर देश के विकास में अपनी भूमिका निभाए। इसी संदेश के साथ बात आसपास के कार्यक्रम से मुझे अंकुर चौधरी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
2: आप सुन रहे थे कार्यक्रम बात आसपास की। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर 10 बज रहे हैं। प्रस्तुत है भारत में रेडियो प्रसारण के 90 साल के उपलक्ष्य में सुहाना सफर।

0: कार्यक्रम सुहाना सफर सुनने वाले सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ रिमझिम,
1: और मैं हूं रिमझिम के साथ मनोज वर्मा। तो आप सभी यानी हमारे सभी सुधीर श्रोताओं को हम दोनों की तरफ से प्यार भरा
0: नमस्कार।
1: रिमझिम सुहाना सफर कार्यक्रम है रेडियो के 90 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में
0: जी। और आज कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं साल 2021 की।
1: बिल्कुल, रेडियो ने सच्चा साथी बनकर श्रोताओं का साथ निभाया है और इस सफर को 90 साल पूरे हो गए हैं
0: जी। और रेडियो ने दूरदराज के क्षेत्रों में जानकारी, मनोरंजन, समाचार और बहुत सी जानकारियां पहुंचाकर जन जागरूकता का बहुत बड़ा काम भी किया है।
1: रिमझिम, गांव हो या शहर, रेडियो ने अपनी वाणी से सभी को फायदे पहुंचाए हैं।
0: और रेडियो की सबसे बड़ी खासियत क्या है आपको पता
1: भाई? बताओ आप।
0: इसकी खूबी यह है कि हम किसी भी काम को करते समय रेडियो सुन सकते हैं, हमारे काम पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता।
1: बिल्कुल, मुझे तो ये लगता है कि रेडियो सुनते सुनते अगर हम काम करते हैं तो वो काम जल्दी हो जाता है।
0: जी जी बिल्कुल, और काम करते हुए समय की जानकारी भी मिलती रहती है। मिलती है ना?
1: बिल्कुल मिलती है।
0: तो श्रोताओं को क्यों ना सुनवा दें एक प्यारा सा गीत।
1: हाँ बिल्कुल, गीत की बारी है तो अपने श्रोताओं को सुनवा देते हैं हम 2021 में आई इस फिल्म का गीत।

0: सनक फिल्म का गीत था श्रेया घोषाल की आवाज में, और अपने सभी श्रोताओं का इस गीत के बाद हम दोनों यानी मैं मनोज वर्मा और मेरे साथ मेरी साथी रिमझिम बलूनी एक बार फिर से स्वागत करते हैं। और रिमझिम, अब आपकी बारी।
1: जी जी बिल्कुल। साल 2021 की हम बात कर रहे हैं, तो इस साल जो है ये साल हमारे लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से काफी चुनौती भरा रहा, और COVID-19 ने हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपना विनाशकारी प्रभाव डाला था,
0: इसकी शुरुआत,
1: जिसकी शुरुआत जी जी
0: हाँ
1: दूसरी लहर के रूप में
0: बिल्कुल, जो
1: बिल्कुल
0: दूसरी लहर थी ना, तो लहर डेल्टा वेरिएंट से हुई थी, है ना। ये डेल्टा वेरिएंट था उस दौर में,
1: जी
0: इसके कारण देश भर में लाखों लोगों की दुखद मौतें हुई, उनकी आजीविका नहीं रही, जिसमें बेरोजगारी का भी बहुत से लोगों को सामना
1: करना
0: करना पड़ा।
1: पड़ा जी। और साल 2021 में संक्रमण को रोकने के लिए कई राज्यों में पूरे तो कहीं आंशिक लॉकडाउन भी लगाने पड़े थे, जिसके कारण हमारे देश में व्यापार में हो चाहे परिवहन में हो ये सब चीजों में बहुत प्रभाव पड़ा था।
0: बिल्कुल, बच्चों की शिक्षा पर इसका असर देखा गया, लेकिन
1: जी।
0: कैसे खड़ा हुआ जाता है ये हमारे देश ने कर दिखाया। शिक्षा बच्चों को ऑनलाइन दी जाने लगी, लगभग लगभग हर क्षेत्र में COVID-19 का असर देखा गया।
1: जी बिल्कुल। लेकिन रेडियो ने अपना काम करना नहीं छोड़ा, है ना। रेडियो ने समाचार के माध्यम से लगातार दुनिया देश की जानकारी लोगों तक पहुंचाई।
0: साथ ही लोगों को इससे बचने के लिए जानकारी दी और कोविड से कैसे सावधानी रखी जाए, कैसे बचा जा सकता है, इस बारे में भी पूरी बात की।
1: जी। और
0: और
1: रेडियो रेडियो ने जैसे कई संदेश ऐसे प्रसारित किए गए जिसके माध्यम से लोगों ने लाभ उठाया। जो भी गाइडलाइन रेडियो में बताई गई है ना, उन्हें लोगों ने अपने जीवन में उतारा और इसका सभी ने पालन भी किया।
0: बिल्कुल, इस कठिन समय में रेडियो बने जन प्रहरी, और बहुत बड़ी इसमें इन्होंने भूमिका
1: जी
0: निभाई थी
1: बिल्कुल
0: रेडियो ने,
1: बिल्कुल
0: और अब निभाई, हमें भी तो अपनी भूमिका निभानी है रिमझिम।
1: जी जी
0: और भूमिका क्या है कि एक गीत और सुनवाते हैं अपने श्रोताओं को हम, तो चलिए अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं हम ये गीत।
2: कैसे कोई हट गया मन से लिपट अनजाना, वो नील अंग सा रूप रंग ले।

0: ये गीत जो हमने अपने अभी श्रोताओं को सुनवाया, तेरे रंगारंग, आवाजें थीं इस गीत में अरिचरण शेषाद्रि और श्रेया घोषाल की, और फिल्म का नाम था अतरंगी रे।
1: जी
0: और इस वक्त हमारे श्रोता सुन रहे हैं भारत में रेडियो प्रसारण के 90 साल के उपलक्ष्य में सुहाना सफर। और रिमझिम
1: जी
0: इस अंक में आज हम बात कर रहे हैं 2021 की। तो
1: जी
0: रिमझिम, हमने माना कि ये साल काफी चुनौतीपूर्ण रहा, लेकिन 2021 में हमने चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की थी।
1: हाँ, भारत सरकार ने 2021 में मिशन कोविड सुरक्षा के तहत स्वदेशी वैक्सीन के निर्माण को भी गति दी, जो व्यापक स्तर पर टीकाकरण अभियान शुरू किया गया था, जो हमारे लिए काफी गर्व की बात भी है।
0: बिल्कुल, अपने ही देश में नहीं बल्कि और देशों में भी भारत ने कोविड से बचने के लिए ये वैक्सीन उपलब्ध कराई और इसकी जानकारी भी रेडियो ने प्रसारित की। लोगों को भी टीकाकरण के लिए जागरूक किया गया था।
1: जी, और इसी साल हमारा देश राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष भी बना। भारत ने 1 अगस्त साल 2021 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी की मासिक अध्यक्षता संभाली थी। इस दौरान भारत समुद्री सुरक्षा, शांति स्थापना और आतंकवाद विरोधी अभियान पर लगातार अपने विचार रखता रहा, और भारत ने इसे निपटने के मामले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को रास्ता भी दिखाया, और इस गौरवान्वित करने वाली खबर को रेडियो ने प्रसारित किया।
0: बिल्कुल, और रिमझिम सारी खबरें सारी बातें उस दौर की रेडियो
1: जी
0: प्रसारित तो
1: जी
0: कर ही रहा था, लेकिन उस दौर में भी जो फिल्म बनी थी उनके गीतों को प्रसारित करके वो अपने श्रोताओं का मनोरंजन कर रहा था,
1: जी
0: जैसे
1: बिल्कुल
0: कि अब हम करने वाले
1: जी
0: हैं। चलिए सुनिएगा।

0: जुबिन नौटियाल और असीस कौर की आवाज में ये गीत आप सुन रहे थे शेरशाह फिल्म से।
1: जी
0: और रिमझिम, अब जो बात करेंगे ना हम
1: जी
0: दोनों मिलकर
1: हाँ
0: अपने श्रोताओं से, वो बात होगी खेल जगत की।
1: बिल्कुल
0: तो साल 2021 में भारतीय खेलों की ऐतिहासिक शुरुआत हुई कोविड-19 महामारी के कारण। टोक्यो 2020 ओलंपिक और पैरालंपिक की एक साल की देरी ने इस साल होने वाले इन दो मेगा इवेंट को लेकर सभी का उत्साह बढ़ा दिया था।
1: जी, सबसे बड़े खेल मेले टोक्यो ओलंपिक में भारत ने नया इतिहास रचते हुए पहली बार 7 पदक जीते।
0: इस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर दूर भाला फेंक कर ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता था। ये एथलेटिक्स में भारत का पहला और ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्पर्धा का दूसरा स्वर्ण पदक था।
1: और इसी ओलंपिक में मीराबाई चानू ने महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। रवि कुमार दहिया ने कुश्ती में रजत पदक जीतकर देश का मान बढ़ाया। और पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में कांस्य पदक जीता। वो लगातार 2 ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी बनी।
0: बिल्कुल, इन्हीं खेलों में लवलीना ने मुक्केबाजी में और बजरंग पुनिया कुश्ती में कांस्य पदक जीत कर लाए थे।
1: जी
0: टोक्यो पैरालंपिक में भी भारतीय पैरा एथलीटों ने साल 2021 में इतिहास रचते हुए रिकॉर्ड दर्ज किए।
1: जी
0: इन खेलों में भारत ने अब तक का अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हुए कुल 19 पदक जीते थे। भारत ने इन खेलों में 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक हासिल किए।
1: जी बिल्कुल, बहुत गर्व की बात हमारे देश के लिए ये रही है।
0: बिल्कुल, और
1: इन सभी जानकारियों को रेडियो ने उस समय प्रसारित कर जन-जन तक पहुंचाया था।
0: बिल्कुल, और घर बैठे श्रोताओं ने लाभ उठाया था इस बात का। पूरा
1: जी
0: पूरा खेलों का पूरा मनोरंजन उन्होंने घर बैठकर ही किया था। जरा एक मनोरंजन की बारी और आ रही है, तो
1: जी
0: सुनवा देते हैं अगला गीत
1: जी
0: अपने
1: बिल्कुल
0: श्रोताओं को।

0: अरिजीत सिंह और साथियों की आवाज़ों में ये फिल्म का नाम जो हम बता रहे हैं उसका गीत आपने सुना था, फिल्म का नाम था 83। और रिमझिम
1: जी,
0: आपकी बारी है, जरा क्या कहना चाहते हो आप अपने श्रोताओं से?
1: जी, हम बात कर रहे हैं साल 2021 की। तो इस साल सरकार ने COVID-19 के दौरान गरीबों की मदद के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चलाई थी, जिसके तहत लगभग 80 करोड़ से अधिक राशन कार्ड धारकों को उनके सामान्य कोटे के अलावा भी मुफ्त अनाज हर महीने दिया गया था। और इस योजना के बारे में लोगों को संदेशों के माध्यम से रेडियो ने जानकारी भी दी।
0: इसके अलावा रिमझिम, अपने श्रोताओं को हम भी बता दें, साल 2021 में नए कृषि विधेयकों के विरोध में 20 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली होती है ना, वो निकाली गई थी। लगभग 380 दिनों तक चले इस संघर्ष के दौरान किसान दिल्ली सीमाओं पर डटे रहे और बाद में सरकार ने इन कृषि कानूनों को वापस ले लिया। इस खबर को समाचार के जरिए से रेडियो ने प्रसारित किया था
1: जी। और इसी साल 2021 में इसराइल में आयोजित 70वें मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का खिताब जीतकर हरनाज संधू ने भारत का नाम रोशन भी किया। और 21 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद ये खिताब भारत लाने वाली ये तीसरी भारतीय महिला हैं। इनसे पहले हमारे देश की सुष्मिता सेन ने साल 1994 में और साल 2000 में लारा दत्ता ने ये खिताब जीता था।
0: बिल्कुल। और जरा साहब, अपने श्रोताओं को एक गीत और है हमारे पास, उसको सुनवा देते हैं।
1: बिल्कुल।

0: और इसी गीत के साथ भारत में रेडियो प्रसारण के 90 साल के उपलक्ष्य में सुहाना सफर संपन्न करने की मुझे यानी मनोज वर्मा और मेरे साथी
1: रिमझिम बलूनी को
0: दीजिए अनुमति।
1: नमस्कार।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुहाना सफर। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। 10:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत तुम्हारे। तो गीत तुम्हारे सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को मनोज वर्मा और मेरे साथ
1: रिमझिम बलूनी की तरफ से
0: प्यार भरा
1: नमस्कार।
0: तो स्वीकार करिएगा इस नमस्कार को हमारी दोनों की जानिब से। और भाई सिलसिला तो वही रहेगा। क्या रहेगा सिलसिला रिमझिम, जरा बताओ श्रोताओं को।
1: सिलसिला रहेगा हमारे श्रोताओं की फरमाइश पर जी,
0: जो गीत है ना उनको सुनवाने का।
1: बिल्कुल।
0: और वो नंबर क्या है व्हाट्सएप, जरा वो बता दो आप
1: जी। इसके लिए नंबर है 9457078288।
0: और अगर इसे हिंदी में बोलें हम तो 9457078288 ये हमारा एक नंबर है व्हाट्सएप के लिए
1: जी।
0: और बिल्कुल चालू है। और मैसेज कर दीजिएगा, कोशिश करिएगा कि मैसेज करें। और ये भी कोशिश आप करने की कोशिश ना करें कि भाई दोबारा भेज दें अगर कोई भी हम दोनों में से
1: जी,
0: पढ़ गए आपके मैसेज को। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है भाई, हमें भी ये नहीं है कि भाई किसके हमने मैसेज लगा दिए किसको, उसको भी हम रिटर्न हमारे पास नहीं रहता है। फिलहाल हर बार कहते हैं हम और आप समझते हैं इस बात को लेकिन चलिएगा। खैर फिलहाल शुरुआत करेंगे पहले गीत से। और पहले गीत की फरमाइश करने वाले जो हमारे श्रोता है ना वो हैं टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा और इनका पूरा परिवार। इसके अलावा चकला बाजार समाना शहर पंजाब से आप हैं पप्पू राजा खुशदिल, संगीता रानी पप्पू मह खुशदिल, सुनीता रानी आरजू पप्पू खुशदिल, हसमुख लाल जिंदल, बुलबुल शक्ति, संजीव बंटी जिंदल और पूरा ही खुशदिल परिवार भी इनके साथ जुड़ा हुआ है। इसके अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद भाई हमारे ये श्रोता भी हैं पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु तासु अरणव आनंद और सत्यम आनंद, बोहड़ा गाछी पश्चिम बंगाल के आप हैं हमारे श्रोता मुन्ना भगत और गुड्डी भगत। इसके अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद भाई हमारे आप श्रोता हैं परीमहल काजगंज से आबाद खान, नबील खान, आरफा खान, इल्मा खान, एम असलम सैफी, मास्टर जाहिद अली, मीरा सराय बदायूं से आफरीन खां, जमीर खां और इनका पूरा परिवार। इसके अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद भाई आप भी हैं दाऊद सराय सहारनपुर से अनवर साबरी, शन्नो साबरी, मुदस्सिर साबरी, मुजक्किर साबरी और जरीफ अंसारी। रिमझिम आगे के मैसेज
1: जी। इसी गीत को सुनना चाहते हैं अनारकली बाजार जगराओं से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक, विनोदपुरी, जयपाल यादव और इनका पूरा परिवार। इस गीत की फरमाइश भेजी है जिला खरगोन सनावल मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, राजकुमार बोड़ाना और इनके पूरे परिवार ने सुदामा नगर खांडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित ऋतु और मुकेश जगत ने। इसी गीत को सुनना चाहा है मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना पंजाब से विनोदपुरी, वीपी रंजू, अशोकपुरी, सुशीलपुरी, बीकेपुरी, कैलाशपुरी, नीलम, रामापुरी और पालीपुरी, सुनील पाठक, वीकेपुरी और विनोदपुरी ने। ये गीत की फरमाइश हम तक भेजी आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, सायना शर्मा और निवान शर्मा ने। इसी गीत को सुनना चाहते हैं रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब और लड्डू।
0: इसके अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद भाई हमारे आप भी श्रोता हैं जिला मुरादाबाद ग्राम दूल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून। इसके साथ ही हमारे श्रोता जुड़े हैं हमें ये व्हाइटफील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंदु भूषण, संस्कृति और पौरुष। के अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद भाई हमारे नियमित श्रोता मोहल्ला हलवाइयां शेरकोट जरा बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौर सरबीन के साथ जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद भाई दीवाना रेडियो लिसनर्स क्लब जमानिया जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला, दीपक और स्वाति जायसवाल के अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद भाई देखिए आप भी हैं और ये नाम हम लेना चाह रहे थे मगर क्या करें कि वो तुरंत दोबारा मैसेज आ गया। चलिए खैर कोई बात नहीं, हम इसको फिल्टर कर देंगे। हमारे जो नियमित श्रोता हैं लाल माता सुदामा नगर रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से हर्षिता, रामेश्वर, परमेश्वर, मीनाक्षी, श्रीमती मनोहर बाई बागरी और प्रभुलाल बागरी। इसके अलावा बागरी मोहल्ला रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से मनभावन, शोभा, कपिल, नैना, सत्यनारायण, फुंदी भाई और इनका पूरा परिवार। लीजिए सुनिएगा अपनी पसंद का ये गीत।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे? सो इजी।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: कार्यक्रम गीत तुम्हारे आप आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से सुन रहे हैं, और अगर आप भी अपनी पसंद का कोई गीत सुनना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 94-570-78-288, यानी 9457077828 हमारा नंबर है, इस पर आप हमें SMS कर सकते हैं। और अगले गीत की फरमाइश मैं लेना चाह रहा हूँ, जसपुर उत्तराखंड से हमारे नियमित श्रोता हैं ये रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन, परवीन, माहिरा, नूर के अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद भाई आप भी हैं। देखिए, कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश रॉय, श्रीमती उषा रॉय, अमित कुमार रॉय, हैप्पी रॉय, दुबीहा नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक रॉय, श्रीमती रोशनी रॉय और प्रांजल रॉय के अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद भाई आप भी हैं। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा, सिटी दीवाना पंखा रोड जनकपुरी से पिंटू दीवाना, राजेंद्र सिंह ओबेराय और इनका पूरा परिवार हमारे नियमित श्रोता जुड़े हैं बिल्कुल अभी। अब्दुल खालिक जलालाबाद, पत्थर वाली मस्जिद है ये, है ना, और थोड़ा सा

0: अटका रही थी हमें पढ़ते हुए, थोड़ा सा इन्होंने वैसे लिख रखा है, तो कई बार हो जाता है। तो कोशिश करें हिंदी में आप लिख के भेज दें इसको। और ये हमारे श्रोता हैं साहब, कहाँ के हैं ये? सहारनपुर से सैयद मसरूर, शेख अल्लाह बख्श, अरविंद कुमार, संदीप मक्कड़ और एस के नारंग के साथ में आशा भी जुड़े हुए हैं इनके साथ। और ये मैसेज जो मुझे मिल रहा है, ग्राम पीपर लोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम, ज्योति और शिवांश वर्मा का। आपके हाथ में खत देख रहा हूँ रिमझिम में,
1: जी, बहुत सुंदर सुंदर से खत हैं, बहुत कलरफुल खत हैं
0: पढ़ो।
1: जी। ये जो खत मिला है हमें पटियाली रोड गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से, इसी गीत की फरमाइश भेजी है पप्पू बिजली वाले, अफसाना बेगम, महजवी शेख, एम फारूक शेख, फिरासत हुसैन, मुनव्वर लल्ला शेख, शमा परवीन, अलकमर बेगम और मिज निसरीन बेगम ने। इसी गीत को सुनना चाहा है सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, आसमा सालिया, शोएब खान और मुस्तफा खान, रऊफ भाई, शाहिद भाई और गांधी बाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर। इसी गीत को सुनना चाहा है करूला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया और शोएब खान ने। और ये खत हमें मिला है शाबाजपुर कलां कस्बा पागबड़ा से। इसी गीत को सुनना चाहते हैं मज़ाहिर हुसैन अंसारी, बेगम रईसा नाज, बेटा मुजक्किर बाबू, मजहर आसिम और सुमैया महक। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदीप मीका, बलविंदर बिरक, जयतेग बिरक और मीका बिरक इसी गीत को सुनना चाहते हैं। और इसी गीत की फरमाइश हमें भेजी है ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेन नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका उत्कर्ष नेताम और प्रोबामिका ने।
0: और इसके अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद भाई SMS के जरिए हमारे पास लगातार लोग जुड़ रहे हैं, मतलब हमारे जो प्यारे प्यारे श्रोता हैं। खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, पापाजी नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी चौक, शिवाजी कॉलोनी, रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू भाविका और इनका पूरा परिवार। ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मुनाजिर अंसारी, अबरार हुसैन अंसारी, मुन्ना भाई, निशा परवीन, तमन्ना और आशिक हुसैन अंसारी के अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद भाई हमारे आप भी श्रोता हैं। डोंगर गांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये के अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद आप भी हैं। गांव जाखोद राजस्थान से शंभू दयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत, सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार और कुमारी पूजा खटक। साथ में नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से PS नवाड़कर, निर्मला और विशाल के अलावा मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान और आशीष मुरहेकर के अलावा भाई ये हमारे श्रोता हैं। दतरंगी भाटापारा के हीरामणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा। सुनिएगा अपनी पसंद का ये गीत।

इस गीत में जो आवाज़ें आप सुन रहे थे ना, कुमार सानू के साथ साधना सरगम की थी। फिल्म का नाम था एक लड़का एक लड़की, और ये संदेश है। उसके बाद आपसे फिर जुड़ते हैं।

0: गीत तुम्हारे कार्यक्रम आप आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से सुन रहे हैं। एक अंतिम गीत हमारे पास और है और रिमझिम बलूनी एकदम पढ़ने के लिए तैयार हैं, तो रिमझिम जरा पढ़िएगा
1: जी। इस गीत को सुनना चाहते हैं जिला मुरादाबाद ग्राम दूलापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, सुनील कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी ऋतिक और बलवीर सिंह। मैसेज के थ्रू ये इसी गीत को सुनना चाहते हैं चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार इसी गीत को पसंद कर रहे हैं। ये फरमाइश भेजी है हमें दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल मेहरा ने। इसी गीत को सुनना चाहते हैं
0: बोल्ड लिसनर्स ग्रुप मगनपुर झारखंड से
1: जी अब्बास आलम, अमजद अली, लाडली बेबी निशा और उनके परिवार के सभी सदस्य। इसी गीत को सुनना चाहते हैं मुंदीचक भागलपुर से दिलीप कुमार सोनी, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित अहूजा।
0: इसके अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे आप श्रोता भी हैं मोहल्ला अफगानान शेरकोट बिजनौर से नदीम बाकी, कलीम बाकी, अलीम बाकी, अजीम बाकी, अदीम बाकी, अब्दुल गनी, अलमीर जन्नत और इनका पूरा परिवार, साथ में गणेशपुर गंज डुंडवारा एटा उत्तर प्रदेश से एम फारूक शेख, शेख शमा परवीन, साइमा, सरफराज शेख, गुलफराज शेख, बेबी मुस्कान और इनका पूरा परिवार। इसके अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद भाई हमारे आप भी श्रोता हैं मालियान सरदना मेरठ से अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन और मुस्कान जैन के साथ में मास्टर जिव्यम जैन भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे आप भी श्रोता हैं अस्तुपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी, बहादुरगंज गाजीपुर से आज़ाद अली अनवर, रिजवान परवीन और रिजवाना परवीन है और इसके अलावा अब्दुल्ला आजाद है। और थोड़े से मैसेज और लो आप
1: जी। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से सुनना चाहते हैं इसी गीत को अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक। इसी गीत की फरमाइश हम तक भेजी है आर्य नगर कोला भिलाई से उत्तम सिंह जंगेल, मोरस जंगेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंगेल और नंदिनी जंगेल ने धमदा ग्राम सुखरी कला से। इसी गीत को सुनना चाहते हैं अमित जंगेल, शकुन, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंगेल और अंजलि जंगेल। भटिंडा रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, लक्की, तानिया और इनके पूरे परिवार ने इसी गीत को सुनना चाहा है।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत तुम्हारे। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 11 बज रहे हैं। लीजिए पेश है फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम चित्रपट संगीत। चित्रपट संगीत सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार और आप सभी का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत।

जी हाँ श्रोताओं, हम भी यही चाहते हैं कि जो हमारे सुनने वाले हैं उनके जीवन की बगिया हमेशा महकती रहे, चहकती रहे, है ना, और उनके जीवन में जो भी दुख हैं वो दूर हो जाएं और उनके जीवन में खुशियों की बारिश हो। और जो आप कार्यक्रम का पहला गीत सुन रहे थे, हमने लिया था फिल्म तेरे मेरे सपने से, आवाजें थी किशोर कुमार और लता मंगेशकर की, संगीत दिया था इस गीत को SD बर्मन ने और गीत लिखा था नीरज ने। और अब कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, फिल्म का नाम है कन्यादान, संगीत है शंकर जयकिशन का और गीत लिखा है नीरज ने।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है, हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
0: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
2: अभी हमारे श्रोता सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से।

श्रोताओं, अभी आपने सुना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की युगल आवाजों में ये गीत जो था फिल्म सिलसिला से। संगीत शिवहरि का और गीत के बोल लिखे थे जावेद अख्तर ने। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और गीत है आनंद बख्शी का। फिल्म का नाम है कर्ज़।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, ये गीत फिल्म थी कर्ज। और अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत आकाशवाणी के नजीबाबाद के।

से और श्रोताओं, कार्यक्रम का अंतिम गीत आपको सुनवा रहे हैं अमित कुमार और लता मंगेशकर की युगल आवाजों में। फिल्म का नाम है लव स्टोरी। इसे संगीतबद्ध किया है आरडी बर्मन ने और शब्द रचना है आनंद बख्शी की। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अंतिम गीत।

श्रोताओं, लता मंगेशकर और अमित कुमार के गाए फिल्म लव स्टोरी के इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रपट संगीत अब यहीं पर संपन्न होता है।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। कांडला बंदरगाह कच्छ से जगदीश जौहरी जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: जो बदला जा सके उसे बदलिए, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकार कर लीजिए, और जो स्वीकार न किया जा सके उससे दूर हो जाइए, लेकिन हर हाल में खुद को खुश रखिए, क्योंकि खुश रहना आपकी जिम्मेदारी है।
0: बहुत ही सुंदर विचार, आपको धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कलां दुर्ग से संजय कुमार साहू जी का।
2: ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
0: और पगबंधी जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से कन्हैया लहरे और सेवती लहरे।
2: भदोही उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार विद्यार्थी।
0: ग्राम व पोस्ट बिरखेरा जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से मनीराम पाल, मलखान सिंह पाल, सुधांशु पाल और हिमांशु पाल। बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओ, आज एक बार फिर से हम रोचक जानकारी लेकर आए हैं दुनिया के एक और बेहद प्रसिद्ध फूल की। तो विमलेश जी, कल हमने बात की थी चेरी के फूलों की।
2: जी, तो अब ये बताइए हमारे श्रोताओं को, आज हम किस फूल की बात करेंगे?
0: विमलेश जी, आज हम बात करेंगे ट्यूलिप फूल की। ये भी दुनिया के प्रसिद्ध फूलों में से एक है।
2: वाह जी जी, भला ट्यूलिप फूलों की सुंदरता को कौन नहीं जानता।
0: बिल्कुल।
2: तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पहला प्रश्न श्रोताओं की ओर से मेरा ये है, ट्यूलिप फूल मूल रूप से किस देश का है, यानी इसकी उत्पत्ति का स्थान कहाँ माना जाता है?
0: विमलेश जी, वैसे दुनिया भर में ये माना जाता है कि ट्यूलिप फूल मूल रूप से नेदरलैंड्स या हॉलैंड का है, लेकिन यह सच्चाई नहीं है।
2: जी,
0: तो जरा आप ही बताइए श्रोताओं को कि सच्चाई क्या है।
2: जी, श्रोताओं को बताना चाहती हूँ कि दरअसल ट्यूलिप फूल मूल रूप से मध्य एशिया के कजाकिस्तान देश का माना जाता है। यहाँ से ट्यूलिप तुर्की पहुँचा और फिर सारे यूरोप में फैल गया। तो अजीत जी, अब बात करते हैं ट्यूलिप नाम कैसे पड़ा, अब आपकी बारी।
0: जी, अब मेरी बारी। तो बता दूं कि ट्यूलिप शब्द आया है तुर्की और फारसी शब्द दुलबंद से, जिसका अर्थ होता है लंबी पगड़ी। यदि इस फूल की खुली पंखुड़ियों के मोड़ को देखें तो ये सच में मोड़दार लंबी पतली तुर्की पगड़ी जैसा ही दिखता है। 16वीं शताब्दी में जब ये फूल तुर्किस्तान के ओटोमन साम्राज्य में पहुंचा तो राजनयिक और सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित लोगों ने इसके समान दिखने वाली टोपियां बनवाई, जिसे तुलिपा कहा जाता था। बाद में ये शब्द फ्रेंच, डच और अंग्रेजी भाषा में मिलकर ट्यूलिप बन गया।
2: जी, रंग, आकार और पंखुड़ियों के आधार पर इस फूल की 3000 से भी अधिक प्रजातियां दुनिया में पाई जाती हैं। श्रोताओं, आपको बता दें कि ट्यूलिप फूल कई रंगों के होते हैं, जैसे लाल, सफेद, गुलाबी, बैंगनी और नारंगी। लेकिन सबसे प्रसिद्ध और महंगा है काले रंग का ट्यूलिप।
0: जी,
2: ये रात में ही खिलता है, इसलिए इसे क्वीन ऑफ द नाइट कहा जाता है। हर रंग का अर्थ है।
0: जैसे
2: लाल रंग ट्यूलिप प्रेम

0: खिलते हैं।
1: जी श्रोताओ, इन फूलों की दुनिया भर में भारी मांग है। ये व्यावसायिक या कमर्शियल फूल माने जाते हैं और इनका व्यापार करोड़ों डॉलर का है।
0: अजीत जी, जब आपने कमर्शियल फूल की बात की तो मुझे एक बहुत ही रोचक घटना याद आ गई।
1: हाँ, वो क्या?
0: 17वीं सदी में नेदरलैंड्स में एक अनोखी आर्थिक घटना हुई जिसे ट्यूलिप मेनिया कहा जाता है।
1: ये घटना क्या थी?
0: उन दिनों यूरोप में ट्यूलिप फूलों की भारी मांग थी। मांग इतनी अधिक थी कि कहते हैं कि ट्यूलिप फूल के मात्र एक कंद की कीमत लगभग एक घर की कीमत के बराबर हो गई थी।
1: ये तो बड़ी रोचक जानकारी विमलेश जी। श्रोताओं, नेदरलैंड्स के रंग बिरंगे फूलों के खेत दुनिया भर में बहुत प्रसिद्ध हैं। मीलों तक लहराते हुए ट्यूलिप फूलों के खेतों को देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक आते हैं। जहां तक भारत की बात है, भारत का सबसे प्रसिद्ध ट्यूलिप गार्डन है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन।
0: तो अजीत जी, समाप्त करने से पहले एक और बड़ी रोचक बात श्रोताओं से साझा कर लेते हैं। ट्यूलिप के फूल आमतौर पर गंधहीन होते हैं। कुछ प्रजातियां ही हैं जिनमें बहुत हल्की सुगंध आती है। तापमान और रोशनी के अनुसार अपनी पंखुड़ियां खोल या बंद कर सकते हैं। ये अक्सर रात को लगभग बंद हो जाते हैं
1: और सुबह होते ही अपनी पंखुड़ियां खोलकर सूर्य का स्वागत करते हैं, मानो कह रहे हो गुड मॉर्निंग सन।
0: तो श्रोताओं, ये थी आज की जानकारी ट्यूलिप के सुंदर फूलों की। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
1: तो हमारा प्रश्न है श्रोताओं कि मूल रूप से ट्यूलिप फूल किस देश का है और इसका नाम ट्यूलिप क्यों पड़ा? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: मूल रूप से ट्यूलिप फूल किस देश का है और इसका नाम ट्यूलिप क्यों पड़ा?
1: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर भी अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
1: और अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है समझदारी।
0: उर्दू की कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में संदेश दिया गया है कि आपस में प्रेम और सहयोग की भावना के साथ रहने में ही समझदारी और सबकी भलाई है।
1: जी।
2: वकार पढ़ने में बहुत होशियार था। एक दिन उसने अपने वालिद से 50 रुपए मांगे। उसके वालिद ने पूछा,
3: बेटा तुम 50 रुपयों का क्या करोगे?
4: अब्बा, मुझे इन रुपयों की जरूरत है। मुझे एक पेंसिल, एक रबर और एक पेंसिल तराश खरीदना है।
3: अच्छा ठीक है, मैं कल तुम्हें ये सब चीजें खरीद कर दे दूंगा।
4: अब्बा, मुझे इन चीजों की अभी जरूरत है। मुझे स्कूल का काम करना है।
3: लेकिन बेटा, क्या तुम ये सब चीजें खुद खरीद लोगे? क्या तुम्हें रुपयों को जोड़ना और घटाना आता है?
4: जी हाँ, मुझे रुपयों को जोड़ना और घटाना अच्छी तरह से आता है।
3: अच्छा, जरा ये तो बताओ कि इन रुपयों से तुम ये चीजें किस किस तरह खरीदोगे?
4: इन 50 रुपयों से मैं 20 रुपए की एक कॉपी, 5 रुपए की पेंसिल, 5 रुपए की रबर और 5 रुपए की पेंसिल तराश खरीदूंगा।
3: बेटा, अब जोड़ कर बताओ कि कुल कितने रुपए हुए?
4: 20 रुपए की कॉपी, 5 रुपए की पेंसिल, ये हुए 25 रुपए। अब इन 25 रुपयों में 5 रुपए रबर के जोड़ दिए तो हो गए 30 रुपए। इन 30 रुपयों में 5 रुपए पेंसिल तराश के जोड़े तो कुल हुए 35 रुपए।
3: शाबाश बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक हिसाब लगाया है। अच्छा तो ये बताओ कि 50 रुपए में से तुमने 35 रुपए का सामान खरीद लिया, अब तुम्हारे पास कितने रुपए बाकी बचे?
4: 50 रुपयों में से 35 रुपए घटाए तो बचे 15 रुपए।
3: तुम्हें तो जोड़ना और घटाना खूब आता है। ये लो 50 रुपए और ये सभी चीजें खरीद कर ले आओ।
1: प्रिय मित्र, अब कुछ हमारे सोचने और करने के लिए। जब हम छोटे बच्चों के हाथ में कुछ पैसे देते हैं तो क्या बाद में उस पैसे का हिसाब उनसे पूछते हैं? यदि हमारा जवाब हाँ है तो भाई

0: ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा करने से बच्चे में समझदारी, जिम्मेदारी और ईमानदारी का जज्बा बढ़ता है। और हाँ बच्चों, जब घर के बड़े आपको पैसे देते हैं तो क्या आप उन्हें खुद जाकर पैसे का हिसाब देते हैं? यदि हाँ तो फिर भाई इसके लिए तो आपको शाबाशी देनी चाहिए। बड़े पूछें या ना पूछें, आप हिसाब जरूर दीजिए। आई ना बात समझ में?
1: मश्क।
2: होशियार,
1: समझदार।
2: पेंसिल तराश,
1: पेंसिल को छीलने वाला शार्पनर। सोचिए और बताइए, वकार ने अपने वालिद से 50 रुपए क्यों मांगे?
2: वकार को क्या क्या चीजें खरीदनी थी?
1: सब चीजें खरीदने के बाद वकार के पास कितने रुपए बाकी बचे?
2: बेटे से सही हिसाब सुनकर वालिद ने क्या कहा?
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम समझदारी। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय डॉक्टर रिजवानुल हक, तकनीकी निर्देशन बटी लैंग लिंगडो, वाचन स्वर शिमाइला परवेज और परवेज गौहर, ध्वनियांकन मयंक कुमार, निर्देशन विमलेश चौधरी, निर्माण जगबंधु जाना तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत। अभी आपने सुना कार्यक्रम समझदारी, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है कैप्टन विक्रम बत्रा।
3: इस कार्यक्रम में कारगिल युद्ध के दौरान अपार वीरता का प्रदर्शन करने वाले परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा के शौर्य का उल्लेख किया गया है कि किस प्रकार रणनीतिक और भौगोलिक रूप से कमजोर स्थिति में भी उन्होंने सियाचिन के टाइगर हिल पर तिरंगा फहराया और अपने प्राणों की आहुति दे दी।
4: साथियों, सन 1999 में हुआ कारगिल युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसमें सेना के युवा अधिकारी अग्रणी रहे। इन रणबांकुरों के साहस और शौर्य भरे कारनामों को जन जन ने पहचाना, और इन रणबांकुरों की भारत की जनता से पहचान करवाई मीडिया ने। सन 1999 में मीडिया ने पूरे देश को सेना के साथ एक आत्मीय बंधन में बांध दिया। लोगों ने घर बैठे सैनिकों को मोर्चे पर लड़ते देखा।
5: साथियों, मैं हूं मेघना उपाध्याय और इस समय कारगिल की युद्ध भूमि से मैं आपसे मुखातिब हूं। जैसा कि आप इस समय देख रहे हैं, चारों ओर हमारी सेना का भारी जमावड़ा है। तो आइए बात करते हैं हमारे एक सैनिक से। तो आपने बताया कि आप छुट्टी पर जा रहे थे?
6: जी, पर हमारे लिए देश और पलटन पहले हैं, घर बाद में।
5: आप तो काफी समय से घर से दूर हैं, क्या घर की याद नहीं आती?
6: हाँ, याद तो आती है, परंतु देश की रक्षा हमारे लिए सब कुछ है। समाचारों से पता चल रहा है कि पूरा देश हमारे साथ है। जिस माँ के हम बेटे हैं उससे भी बड़ी माँ है हमारी भारत माँ। उसकी सुरक्षा को छोड़कर घर चले जाए हो नहीं सकता।
5: तो देखा साथियों, ऐसे हैं हमारे सैनिक, हमें इन पर नाज है।
7: वाह, अरे वाह, क्या बात कही है।
6: क्या बात है,
7: सुनकर ही जोश आ गया।
6: हाँ
7: भाई विक्रम, तुम तो अभी अभी छुट्टी पर आए हो, और अब ये लड़ाई, शायद तुम्हें भी युद्ध में जाना पड़े। समझ कर रहना भाई।
6: युद्ध में तो जाना ही है दोस्त, तुम चिंता बिल्कुल मत करो। मैं या तो विजय तिरंगे को ऊंचा फहरा कराऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट कराऊंगा।
4: ये शब्द थे कैप्टन विक्रम बत्रा के, जो कारगिल युद्ध के दौरान शेरशाह के नाम से भी मशहूर हुए। युद्ध के समय उनकी बहादुरी के किस्से सुन सुनकर लोग दंग रह गए। वे एक के बाद एक खतरनाक मिशन पर जाते रहे, और देश एकजुट होकर उनकी सलामती की दुआ करता रहा। ऐसे थे 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल के कैप्टन विक्रम बत्रा। विक्रम बत्रा का जन्म 9 सितंबर 1974 को हिमाचल प्रदेश के छोटे से नगर पालमपुर में हुआ। हिमाचल एक ऐसा राज्य जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और खूबसूरती के लिए जाना जाता है। इतना ही नहीं, ये मनोरम राज्य जांबाजी के लिए भी प्रसिद्ध है। यहां के रणबांकुरों ने संकट की घड़ी में कुर्बानियां देकर इतिहास रचा है, दुश्मनों के छक्के छुड़ाए हैं। कारगिल युद्ध में इस राज्य के लगभग 30 जांबाजों ने शहादत देकर कुर्बानियों की परंपरा को आगे बढ़ाया है। और इसी पावन भूमि पर जन्म लिया हमारे इस परमवीर विक्रम बत्रा ने। विक्रम बचपन से ही निडर और साहसी थे। सन 1994 में विक्रम ने एनसीसी के सदस्य के रूप में गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लिया और जब वहां से लौट कर आए तो वे अपना लक्ष्य निर्धारित कर चुके थे और वो था भारतीय सेना में भर्ती। जुलाई 1996 में विक्रम ने भारतीय सेना अकादमी देहरादून में प्रवेश लिया। आईएमए में ट्रेनिंग के दौरान बहुत सी चीजों ने उन्हें प्रभावित किया, जैसे वहां का अनुशासन, सैनिक प्रशिक्षण और उन पंक्तियों ने जो अकादमी की बरसों से चली आ रही परंपरा है। अपने देश की सुरक्षा, सम्मान और कल्याण हमेशा और हर बार सर्वप्रथम है। फिर है आपके सैनिकों का सम्मान, कल्याण और सुविधा। आपकी अपनी सुविधा, आराम और सुरक्षा हमेशा और हर बार आखिर में आते हैं। ये पंक्तियां विक्रम की भावनाओं, विचारों और कार्यों में रच बस गई थीं। 6 दिसंबर 1997 को उन्हें 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल्स टुकड़ी में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त किया गया। युद्ध आरंभ हो गया था। एक जून 1999 को उनकी टुकड़ी कारगिल चली गई। कारगिल युद्ध के दौरान कैप्टन विक्रम बत्रा ने कई सैनिक अभियानों में अपनी टुकड़ी का नेतृत्व किया और हर मिशन में सफलता ने उनके कदम चूमे। कारगिल युद्ध के समय उन्होंने कई मिशन में भाग लिया। कई पर्वत चोटियों यानी पॉइंट्स पर अपूर्व शौर्य दिखाते हुए उन पर कब्जा किया। मिशन 1, दिन 12 जून 1999। कारगिल में तोलोलिंग नामक स्थान पर भीषण युद्ध चल रहा था। 25,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये चोटी सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण थी। इस चोटी से दुश्मन श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग को लगातार निशाना बना रहा था। कैप्टन विक्रम बत्रा की यूनिट को वहां लड़ रहे सैन्य दल की सहायता के लिए भेजा गया। 2 रात भयानक युद्ध चला और हमारी सेना ने कैप्टन विक्रम बत्रा के नेतृत्व में हम्प पर कब्जा कर लिया। वहीं से विक्रम ने अपने भाई विशाल को, जिसे वे प्यार से कुशु कहते थे, एक पत्र लिखा।
8: प्यारे कुशु, तुम रोज सुन रहे होगे कि यहां घमासान युद्ध चल रहा है। मैं 15,500 फीट की ऊंचाई पर दुश्मनों से लड़ रहा हूं। जान को पूरा खतरा है, कुछ भी हो सकता है। आज हम जीत तो गए हैं, लेकिन आज का दिन हमारी बटालियन के लिए दुख से भरा है, क्योंकि आज हमने एक अफसर को लड़ाई में खो दिया है। प्यारे कुशु, मां पिताजी को संभालना, क्योंकि यहां कुछ भी हो सकता है। तुम्हारा भाई विक्रम।
4: ऐसा था इस युवा सैनिक अधिकारी का हृदय। विजय के उल्लास में भी अपने साथियों को खोने की कसक उनके मन में थी। मिशन 2, दिन 19 जून 1999, स्थान 5140। 15,000 फीट ऊंची ये वो चोटी थी जहां से दुश्मन हमारे दो हेलीकॉप्टर गिरा चुका था। इसे जीतना बेहद जरूरी था, क्योंकि ऊंचाई पर होने के कारण इस पॉइंट से दुश्मन हमारी सेना को भारी नुकसान पहुंचा रहा था। हमारी सेना के लिए केवल एक रात का समय था। विक्रम ने अपने सैनिकों को उस पर्वत की खड़ी ढलान पर चढ़ने का आदेश दिया। सैनिक चुपचाप पहाड़ी पर चढ़ते रहे। सुबह के 3:15 का समय था। हमारे सैनिक शत्रुओं के बंकरों के समीप थे। तभी दुश्मन की ओर से रेडियो सिग्नल आया।
9: एक घंटे में ही तुम्हें मालूम चल जाएगा कि ऊपर कौन रहेगा।
10: अरे देख लेंगे।
4: कैप्टन विक्रम बत्रा का दुश्मनों के बीच भी इतना नाम था कि वे इन्हें उनके कूट नाम से भी जानते थे। दुश्मन को ये तो खबर थी कि भारतीय सैनिक उनकी तरफ बढ़े चले आ रहे हैं, पर शायद इस बात से वो बेखबर था कि हमारे सैनिक उनके इतने करीब हैं। विक्रम ने अपनी घड़ी की ओर देखा। 3:24 हो गए थे। 4:30 सूर्योदय हो जाएगा। उनके पास केवल 1 घंटे का समय था। बस फिर क्या था, उन्होंने दुश्मनों के बंकर पर धावा बोल दिया। और कुछ ही देर में विक्रम और उनके साथियों ने दुश्मन को वहां से खदेड़ दिया। पॉइंट 5140 पर अब हमारा कब्जा था। इस विजय के बाद एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा,
11: कैप्टन विक्रम, पॉइंट 5140 की विजय के बाद कैसा एहसास हो रहा है?
8: मैं और अधिक चोटियों पर कब्जा करना चाहता हूँ। ये दिल मांगे मोर।
12: क्या बात कही है?
11: ये दिल मांगे मोर। How nice. विक्रम जी, आप पर सारे देश को नाज है, और हमारी कामना है कि इसी तरह आपका विजय अभियान चलता रहे और चलता रहे।
8: धन्यवाद।
4: इस प्रसारण को पूरा देश देख रहा था। लाखों दर्शकों ने उनका उत्साह भरा उत्तर सुना। ऐसे समय में जब लोगों की आंखें आंसुओं से नम थी और दिल डर से सहमे हुए थे, विक्रम बत्रा के इस एक जवाब ने सबके चेहरों पर एक मुस्कान छोड़ दी। देश का बच्चा बच्चा अब उन्हें जानने लगा था।

0: और अब आई बारी उस मिशन की जिसने विक्रम बत्रा को अमर बना दिया। मिशन 3 टाइगर हिल्स पिंपल पोस्ट 6 जुलाई 1999 की शाम। 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल्स की कमान एक बार फिर कैप्टन विक्रम बत्रा के हाथों में थी।
1: हमें जो सूचना मिली है उसके अनुसार एक बात पक्की है कि हमें दुश्मन पर पीछे से हमला करना होगा।
2: जी
3: चलो संभल कर
1: अब मंजिल पर पहुंच गए हैं। इशारा मिलते ही टूट पड़ना।
3: जी सर।
1: देखो तुम यहीं पोजीशन संभालो।
3: जी सर।
1: और तुम दाहिनी तरफ जाओ।
3: जी सर।
4: हमला करो दुर्गा माता की जय। भारत माता की जय। चलो
0: दुश्मन उनके खूंखार हमले से घबराकर पीछे हटने लगा था। तभी विक्रम ने देखा कि उनका एक सहयोगी अफसर दुश्मनों से घिरा हुआ है। जब वो उन्हें बचाने के लिए बंकर से बाहर दौड़े उनके एक सूबेदार ने उन्हें रोकना चाहा।
5: साहब जी आप मत जाइए, मैं जाता हूँ।
1: नहीं तू भी बचवा रहा है, पीछे हट।
5: नहीं लेकिन साहब जी,
1: मैंने कहा ना पीछे हट जा, मैं जा रहा हूँ।
5: साहब जी
0: अभी विक्रम लेफ्टिनेंट नवीन को घसीटते हुए बंकर की ओर ले ही जा रहे थे कि दुश्मन की एक गोली उनकी छाती में आ लगी।
1: क्या हुआ तुम्हें? नहीं।
0: और तभी उन्होंने वीर गति पाई। उस दिन भारत ने पिंपल पोस्ट पर तो विजय पा ली, परंतु भारत मां का एक शेर सपूत शहीद हो गया। उनका पार्थिव शरीर पूरे सैनिक सम्मान के साथ जब उनके जन्म स्थान पालमपुर में लाया गया तो इस अमर शहीद के दर्शनों के लिए हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी।

0: आज उस शिखर का नाम कैप्टन विक्रम बत्रा शिखर है। उनके असाधारण शौर्य के लिए कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च वीरता पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया। याद आती है एक बार फिर वही बात जो कैप्टन विक्रम बत्रा ने युद्ध में जाने से पहले अपने मित्र को कही थी।
1: मैं या तो विजयी तिरंगे को ऊंचा फहरा कराऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट कराऊंगा।
0: कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपने दोनों वचन निभाए। उन्होंने दुश्मन को पराजित कर भारत के झंडे को 0.5140 पर फहराया और 0.4875 नंबर शिखर पर युद्ध में प्राण देकर बड़ी शान से तिरंगे में लिपट कर घर आए।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कैप्टन विक्रम बत्रा, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ

मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 956 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 12 बज रहे हैं। लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी।

आज रात्रि 9:30 पर श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम चर्चा का विषय है। इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कानून की बात प्रसारित किया जाएगा लखनऊ केंद्र से शाम 7:30 पर। मुझे याद है जरा जरा के अंतर्गत आप सुनेंगे आकाशवाणी के वरिष्ठ उद्घोषक श्री प्रेम कुमार साडाना की आकाशवाणी से जुड़ी यादें। समय रहेगा रात्रि 10:30 पर।

हमारे श्रोता रात्रि 10 बजे सुनेंगे व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्मी गीतों का कंपीयर्ड कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। समय याद रखिएगा श्रोताओं, आज रात्रि 10 बजे सुगम संगीत के अंतर्गत आनंद लीजिएगा सुरिंदर कौर के गाए शब्द का शाम 7:45 पर।

श्रोता सुनेंगे विविधा के अंतर्गत शाम 6:45 पर आशीष भारती की पूर्व प्रसारित वार्ता मानव जीवन को समृद्ध करता पर्यटन। कृषि जगत कार्यक्रम का समय रहेगा शाम 6:05 पर। चर्चा का विषय रहेगा जैविक खेती आज की आवश्यकता। युवाणी कार्यक्रम हमारे युवा साथी सुनेंगे शाम 5:15 पर। क्रम रहेगा बूझो तो जाने, कुछ खास है आज, यूथ कनेक्ट, लव स्टोरी परिणीता का एपिसोड नंबर 3, रहस्य सीरीज सीजन 2, खामोश घाटी, आलेख व प्रस्तुति सहयोग मोहम्मद आदिल सैफी का, और साथ ही आप आनंद लेंगे फिल्म संगीत का।

आकाशवाणी के 90 वर्षों के उपलक्ष्य में आकाशवाणी नजीबाबाद से जुड़े श्रोताओं के अनुभव पर आधारित कार्यक्रम रिश्ता ये खास है, आप सुनेंगे शाम 5 बजे। दोपहर 2:30 पर श्रोता सुनेंगे व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम संदेश.com।

ये थी जानकारी कार्यक्रमों के संबंध में। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 956 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 12:05

हुए हैं। श्रोताओं, अब आपको सुनवा रहे हैं शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत शिशिर कानाधर चौधरी का वायोलिन पर बजाया राग मूलतानी। विलंबित व द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है और तबले पर संगत कर रहे हैं संतराम।

अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत शिशिर कानाधर चौधरी का वायोलिन पर बजाया राग मूलताने, विलंबित वैद्रुत गत तीन ताल में निबद्ध थी। तबले पर संगत कर रहे थे संतराम। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। दिन के 12:30 हो रहे हैं। श्रोताओं, पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम मिड डे मेलोडी। सभी सुनने वालों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम मिड डे मेलोडी। हमारी ओर से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। और श्रोताओं, कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं इस खूबसूरत से गीत के साथ, जिसे आवाज दी है लता मंगेशकर ने और इसे संगीतबद्ध किया है कल्याण जी आनंद जी ने और गीत के बोल लिखे हैं अनजान ने। और इस फिल्म का नाम है मुकद्दर का सिकंदर। तो श्रोताओं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का पहला गीत। माना कि दिल के पास कोई अक्ल नहीं होती, माना कि दिल के पास कोई अक्ल नहीं होती, पर ये नासमझ चीज भी हर किसी पर नहीं।

0: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: आप सभी का फिर से स्वागत कार्यक्रम मिड डे मेलोडी में। और अब कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं कुमार सानू और साधना सरगम की युगल आवाजों में। फिल्म का नाम है जुर्म, संगीत है राजेश रोशन का और गीत लिखा है इंदिवर ने। श्रोताओं, हमारे जीवन में कुछ भी स्थिर नहीं है। कभी हमारे जीवन में अच्छे लम्हे आते हैं तो कभी बुरे, कभी सुख तो कभी दुख का सामना हम सभी को करना पड़ता है। अच्छे समय में तो श्रोताओं हमारे साथ बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं, बहुत सारे जुड़ जाते हैं खुशियां मनाने के लिए। लेकिन जब हमारे ऊपर बुरा समय आता है, परेशानी आता है, परेशानी आती है, तो उस समय में जो हमारे साथ है वही हमारा अपना है, वही हमारा सच्चा साथी है।

हमारे श्रोता अभी सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम मिड डे मेलोडी आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। और श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में। फिल्म का नाम है आप तो ऐसे ना थे। संगीत है उषा खन्ना का और गीत लिखा है निदा फाजली ने। श्रोताओं, हमारी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमारे लिए बहुत खास होते हैं। उनका होना हमारे लिए किसी दवा से कम नहीं होता। उन्हें देखते ही हमारा सारा दर्द छूमंतर हो जाता है। अगर वो साथ हैं तो खुशियां ही खुशियां, और अगर वो दूर हैं तो उदासी। उनकी मौजूदगी ही काफी होती है हमारे लिए, और उनको देखकर दिल से एक ही आवाज आती है। तो क्या है वो आवाज, सुनते हैं इस प्यारे से गीत के माध्यम से।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी को फिल्म आप तो ऐसे ना थे में। और अब कार्यक्रम का अंतिम गीत आपको सुनवा रहे हैं अलका याग्निक की आवाज़ में। इस गीत को संगीत दिया है नदीम शवर ने और गीत के बोल लिखे हैं समीर ने। फिल्म का नाम है राजा हिंदुस्तानी। तेरी धड़कन से जिंदगी का रिश्ता है मेरा, तेरी धड़कन से जिंदगी का रिश्ता है मेरा, तू जिंदगी का अहम हिस्सा है मेरा। ये मोहब्बत सिर्फ लफ्ज़ों की नहीं है, ये मोहब्बत सिर्फ लफ्ज़ों की नहीं है, तेरी रूह से रूह तक का रिश्ता है मेरा।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम मिड डे मेलोडी। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 956 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1 बजने को हैं, अब आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों

0: द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा सुनाए गए फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल इसलिए अमान्य नहीं किया जा सकता कि यह नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। यह नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि ट्रांसजेंडर के अधिकारों के संरक्षण संशोधन अधिनियम 2026 के खिलाफ उच्च न्यायालयों में उसकी कई याचिकाएं लंबित हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख करते हुए अनुरोध किया कि स्थानांतरित की जाने वाली याचिकाओं को शुक्रवार को सूचीबद्ध किया जाए। राजस्थान उच्च न्यायालय ने आसाराम बापू को आज आंशिक राहत देते हुए पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत सामूहिक दुष्कर्म, सामूहिक यौन उत्पीड़न और आपराधिक साजिश से संबंधित आरोपों से बरी कर दिया। हालांकि न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत नाबालिग से दुष्कर्म मामले में उसकी सजा को बरकरार रखा है। इस मामले में आसाराम की आजीवन कारावास की सजा जारी रहेगी। उच्च न्यायालय ने आसाराम को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। वो फिलहाल अस्थायी जमानत पर है, जिसे सप्ताह की शुरुआत में 7 दिन के लिए बढ़ा दिया गया था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहल्यानगर से कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सरकार ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस के संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अफ्रीका के कुछ हिस्सों में इबोला के मामलों के मद्देनजर स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सूत्रों के अनुसार युगांडा से हाल ही में लौटे एक व्यक्ति को बंगलुरु के सरकारी महामारी रोग अस्पताल में जांच और चिकित्सा के लिए अलग रखा गया। जांच में उसकी रिपोर्ट नकारात्मक आई है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे घबराएं नहीं, गलत सूचना न फैलाएं और जानकारी के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा के अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यनीतिक क्षेत्रों में निवेश तथा तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। इस यात्रा के दौरान श्री गोयल ने कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान के बीच लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने सभी से आग्रह किया कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों, बालकनी, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने लोगों से कहा कि इन मुश्किल दिनों में वे पूरी संवेदनशीलता और करुणा के साथ एक दूसरे का ख्याल रखें। आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि योग भारत के प्राचीन ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है और निवारक स्वास्थ्य देखभाल तथा संतुलित जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। श्री जाधव ने आज खजुराहो में आयोजित योग महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 25 दिन पहले आयोजित बैठक में भाग लेते हुए ये बात कही। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स आज दोपहर के कारोबार में 41 अंक बढ़कर 76,051 जबकि निफ्टी 21 अंक के वृद्धि के साथ 23,935 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। The Supreme Court today upheld the legality of the Special Intensive Revision SIR of the electoral rolls done by the Election Commission of India and observed that electoral SIR advances the constitutional imperative of free and fair elections. The court held that the Election Commission has the power to conduct SIR under Article 324 of Representation of the People Act 1950 and the rules made thereunder. The judgment pronounced by CJI Suryakant held that when the statute itself authorizes a special revision at any time for reasons to be recorded and in such a manner as the Election Commission may deem fit, the impugned exercise

0: cannot be invalidated merely because it does not conform in every respect to the ordinary modalities contemplated for routine revision. Therefore, it cannot be said that the Commission has acted in excess of its statutory powers. The Central Bureau of Investigation, CBI, has arrested two more accused in NEET UG 2026 examination paper leak case. The agency has arrested 13 accused so far in this case from Delhi, Jaipur, Gurugram, Nashik, Pune, Latur and Ahilyanagar. An accused, namely Dr. Manoj Shirure, a Latur-based doctor, has been arrested in the NEET UG 2026 questions leak case. According to CBI, he played a key role in facilitating three students, including the son of an accused coaching center owner, in getting the chemistry questions from the accused P.V. Kulkarni. Another arrested accused is Tejas Harshad Kumar Shah, who is a physics faculty at Dr. Abhang Prabhu Medical Academy, a Pune-based coaching center. He got the leaked physics questions of NEET UG 2026 exam from the arrested accused Manisha Havaldar. Amid rising temperatures in different parts of the country, Prime Minister Narendra Modi has urged citizens to take as many precautions as possible. In a social media post, Mr. Modi advised all to keep themselves hydrated and carry water when stepping out of homes, stressing about increasing difficulties caused by the heat in daily life. Mr. Modi said that in such a weather, sensitivity becomes a great source of support. He further directed placing a small vessel filled with water outside their homes, balconies, rooftops, shops or offices, keeping in mind the animals and birds. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal held a series of high-level meetings with senior Canadian business leaders and institutional investors in Toronto during the second day of his visit to Canada. The Commerce and Industry Minister said the meeting was aimed at deepening bilateral cooperation and promoting investments and technology partnerships across strategic sectors. During the visit, Mr. Goyal met Canada's International Trade Minister Maninder Sidhu and discussed growing complementarities between India and Canada and underscored the need for a more robust and predictable business ecosystem driven by stronger government-industry collaborations. The ministry said that both sides also reaffirmed their shared objective of expanding bilateral trade to $50 billion by 2030 and concluding the CEPA negotiations by the end of the year. This was followed by Canada-India Investment Roundtable, co-chaired by both the ministers. United States Senator Lindsey Graham has questioned Pakistan's role as a possible mediator between the U.S. and Iran, saying it cannot be seen as neutral because of its long-standing opposition to Israel. In a social media post, Graham claimed that Iranian military aircraft were being kept at Pakistani air bases and said comments by Pakistani leaders about Israel were disturbing. Graham also urged Pakistan to clearly respond to U.S. President Donald Trump's call to join the Abraham Accords. The remarks came after Pakistan's defense minister, Khwaja Mohammad Asif, rejected the idea of Pakistan joining the Abraham Accords in an interview with a TV channel. At least 31 people were killed and 40 others injured in Israeli air raids across southern Lebanon. According to Lebanon's Ministry of Public Health, the strikes targeted yesterday in several towns and villages amid escalating cross-border tensions between Israel and Hezbollah. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि सबसे बड़े निशानों को भी मुसलसल कोशिश, तहम्मुल और मजबूत कुव्वत-ए-इरादी से हासिल किया जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर संस्कृत सुभाषितम को साझा करते हुए कहा कि मुल्क की अवाम इसी जज्बे से मुतासर होकर हिंदुस्तान को नई बुलंदियों पर ले जा रही है। सुभाषितम कहता है कि एक ख्वाहिशमंद शख्स निशाना हासिल करने की सिमत में अगर मुसलसल बाकायदगी से कोशिश करता है तो वह उसे यकीनी तौर पर हासिल कर लेता है। ऐसा करते हुए उस शख्स को बीच रास्ते में ही हार मानकर अपने रास्ते से पीछे नहीं हटना चाहिए। मरकजी हुकूमत ने दरअंदाजी और दीगर वजूहात से होने वाली डेमोग्राफिक तब्दीलियों के चैलेंजेस से निपटने के लिए एक आला सतही कमेटी तश्कील दी है। इस कमेटी की सदारत सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज प्रभाकर नावलेकर करेंगे। सेंसस कमिश्नर के साथ साथ साबिक आईएएस अफसर दुर्गा शंकर मिश्रा, साबिक आईपीएस अफसर बालाजी श्रीवास्तव और इकोनॉमिस्ट डॉक्टर शमिका रवि को इस कमेटी का रुक्न मुकर्रर किया गया है। वजारत दाखिला में ज्वाइंट सेक्रेटरी इस कमेटी में रुक्न सेक्रेटरी के तौर पर काम करेंगे। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि यह कमेटी गैर कानूनी नकल मकानी और दीगर गैर फितरी वजूहात से पूरे मुल्क में हो रही डेमोग्राफिक तब्दीलियों की जामे तशखीस करेगी। एक रिपोर्ट।
2: ये उच्च स्तरीय समिति अवैध अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की थी।
3: आज देश के सामने एक चिंता एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये कुछ पेठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
2: समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वहीं आवश्यकता पड़ने पर समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में सेहत और महकमा तिब्बी तालीम के कामों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अहकाम दिए कि सरकारी अस्पतालों में इलाज, जांच, दवाओं और इमरजेंसी खिदमात की क्वालिटी मुसलसल बेहतर होनी चाहिए। एक रिपोर्ट।
4: मुख्यमंत्री ने कहा कि चिकित्सा शिक्षा का उद्देश्य केवल संस्थान बढ़ाना नहीं बल्कि प्रदेश को प्रशिक्षित चिकित्सक, विशेषज्ञ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य कर्मी उपलब्ध कराना है। उन्होंने मेडिकल संस्थानों में आधुनिक उपकरणों, विशेषज्ञ फैकल्टी और रिसर्च गतिविधियों को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना में आयुष पद्धतियों को भी शामिल करने के निर्देश दिए। उन्होंने मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में और कमी लाने के लिए संस्थागत और सुरक्षित प्रसव व्यवस्था को मजबूत बनाने पर जोर दिया। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
1: मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने CBSE के पेमेंट गेटवे निजाम में इसलाह के लिए अवामी शोबे के 4 खसूसी बैंकों के सीनियर अफसरान के साथ मीटिंग कर तवील बातचीत की। इस दौरान जनाब प्रधान ने तलबा को दिक्कतों से बचाने के लिए बगैर रखना और महफूज अदायगी निजाम की जरूरत पर जोर दिया। इस दौरान CBSE ने वाजे किया है कि आंसर शीट की तशखीस के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग निजाम में कोई हिफाजत खिलाफ वर्जी नहीं हुई है। CBSE ने कहा है कि असली तशखीस कामों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे पोर्टल पर कोई हिफाजती खिलाफ वर्जी रोशनी में नहीं आई। डालीगंज नकहा जंगल नई सवारी गाड़ी की बाकायदा आमदोरफ्त शुरू हो गई है। गाड़ी नंबर 55062 डालीगंज से आज 5:45 पर चलकर कल सुबह 4:45 पर नकहा जंगल पहुंचेगी। दरियस्ता वापसी में गाड़ी नंबर 55061 नकहा जंगल गोंडा डालीगंज सवारी गाड़ी नकहा जंगल स्टेशन से रात 11:10 पर चलकर अगले दिन सुबह 9:25 पर डालीगंज पहुंचेगी। गंगा एक्सप्रेसवे पर कल देर रात पेश आए एक सड़क हादसे में एक लड़की और 2 खवातीन समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए जबकि 5 लोग शदीद तौर से जख्मी हो गए। यह हादसा रायबरेली जिले के सलोन थाना हलके के रसूलपुर गांव के नजदीक पेश आया जब दिल्ली से जौनपुर लौट रहे कुनबे की तेज रफ्तार कार गंगा एक्सप्रेसवे पर खड़े ट्रैक्टर से जा टकराई। रियासत में कल भी दिन भर तेज धूप, शदीद गर्मी और लू का कहर जारी रहा मगर शदीद गर्मी से झुलस रहे लोगों के लिए महकमा मौसमियात की जानिब से राहत भरी खबर है। महकमे के मुताबिक मगरबी खलल के चलते कल से आंधी तूफान के साथ बारिश के भी इम्कान है। इससे दर्ज हरारत में गिरावट के साथ साथ तपिश से भी राहत मिलेगी। कल दारुल हुकूमत लखनऊ में ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 42.9 और कम से कम दर्ज हरारत 28.3 डिग्री दर्ज किया गया। बांदा एक मरतबा फिर से पूरे मुल्क में सबसे गर्म रहा जहां ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 47.4 डिग्री दर्ज किया गया। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।
5: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1:15 हो रहे हैं। अब हमारी ग्रामीण बहनें सुनेंगी अपना मनपसंद कार्यक्रम घर संसार।

घर संसार कार्यक्रम सुनने वाली सभी प्यारी बहनों को थारी बहना कुमुद की प्यार भरी राम राम। थारे अपने कार्यक्रम में थारा सभी का प्यार भरा स्वागत। कार्यक्रम में आगे बढ़े उससे पहले थारे हाल चाल तो बूझ लें। बहनों कैसी हो? थारे परिवार के सब जने, थारे ढोर डंगर सब चोखे? इस टाइम तो हम जाने तो मैं बड़ा सारा काम होगा। बिना गेहूं की फसल तैयार हो गई और बतेरी बहनों के यहाँ तो कट के घरों भी आली होगी। अब उसे सींगवाओ, भूसे को उठा के धरो, सच्ची बड़ा ही काम फैल है। पर हमें पता है इतने सारे काम के बीच में भी तब हमारा कार्यक्रम सुनना ना ही भूलती। यो ही तो थारा प्यार हैगा जो बेर बेर हमें भी थारे धोरे कुलियावे। आज के कार्यक्रम में थारे काम की बातें हैंगी बतेरी सारी, तो ध्यान से सुनती रहियो कार्यक्रम आखिरी तक। अभी पहले सुन लें थोड़े से जरूरी संदेश।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: कार्यक्रम घर संसार में अपनी सभी बहनों का एक बार फिर स्वागत करें हैं हम। और आज का कार्यक्रम लेकर हाजिर है थारी बहना कुमुद। बहनों, मई का महीना तो खत्म हो गया समझो, और देखो गर्मी भी अति की पड़ रही, 12-45-46 डिग्री से कम ना हो रहा। ऐसे में इंसान तो परेशान है ही बहना, जानवरों पर भी गर्मी का असर कम ना हो रहा। अब थारे घरों में जब खेती का काम हो वो तो डंगर भी पालती होंगी, तो सावधानी बरतनी पड़ेगी बहना। तो आज हम बात करेंगे गर्मी में पशुओं की देखभाल के बारे में, कहीं ऐसा ना हो थारे पालतू जानवर भी बढ़ती गर्मी का शिकार हो जामे। अब वैसे तो तुम आपको ही बतेरी होशियार हो, फिर भी थारे को बता रहे हैं कुछ सावधानी रखो। जैसे कि देखो, डंगरों को दिन में बाहर को बिल्कुल ना ही छोड़ो। अगर उन्हें बाहर चरने भेजो हो तो सवेरे और सांझ को ही भेजो, बस दोपहर में घर में ही बांधो छाए वाली जगह पर। और अगर बिना घेर वेर में उन्हें बांधो हो तो उनके बांधने की जगह बतेरी हवादार होनी चाहिए, पंखा उंखा भी लगा के रखा करो उनके लिए। और देखो बहना, डंगरों को बांधने की जगह या जहाँ उनका थला बना रखा है तुमने, वहाँ पर टीन शेड अगर डाल रखा तो टीन शेड के ऊपर घास फूस या पत्ती जैसी चीजें जरूर डालें, जिससे सीधी धूप पड़ने से टीन गर्म ना होवे। क्योंकि टीन गर्म होवेगी तो उसके नीचे भी पूरी गर्मी रह, वह डंगर को खूब गर्मी लगे फिर। और बहना कोशिश करो अब डंगरों को 3-4 बार इतनी गर्मी में जरूर नहाओ। और चलो इतनी बार भी ना नहा सकती तो सुबह से सुबह और शाम को 2 टाइम तो नहाई सको हो। और बहना उनके बांधने की जगह पे साफ सफाई भी पूरी धरनी। और सांझ के टाइम क्या हो, देखो कुछ भी कितनी भी सफाई कर लो, थोड़े बहुत मच्छर आवा ही हैं, डंगर को परेशान करें तो उनके पास को उसका पत्ती उत्ती जला के धुआं कर दिया करो, इससे वे जो है मच्छर परेशान ना करें डंगर को। जब ज़्यादा गर्मी की चपेट में आ जाए डंगर तो बिना उसके शरीर का तापमान भी बढ़ने लगे है, ऐसे में डंगर हाँफने लगे है, उसके शरीर में पानी की कमी होने लगे है, तो वो क्या करे, अपने आप को ठंडा रखने के वास्ते चाटना शुरू कर दे अपने आप को, तो उससे उसकी जो लार है वो भी कम होने लगे। तो ऐसे में उसे भरपूर पानी पिलावें, पानी की कमी ना होने दें बिल्कुल भी उसे भी, कम से कम 40-50 लीटर पानी रोज पियाना चाहिए जानवर को भी। और देखो जब गर्मी लगे है डंगर को तो देखो वो भूख भी उसे कम लगन लगे है, कम खान लगे है वो चारा भी, और दुधारू पशु है तो दूध भी कम देने लगे है। तो ऐसे में डंगर को पूरा पौष्टिक आहार दे मैं। और देखो बेना, इस टाइम गेहूँ का सीजन चल रहा तो भूसा तो रह भी है भरा घर में बतेरा सारा, तो भूसे की गैर रसदार चारा जरूर मिला मैं। और बेना वो सबसे ही जरूरी बात, देखो गर्मी में भी बतेरी ऐसी बीमारी हैं जिनके लिए टीके लगवाने की जरूरत पड़ जाए डंगर को, तो पशुपालन विभाग जो टाइम टाइम पे बीमारी से बचान खातर ये टीके लगावा है वो भी जरूर लगवाओ अपने डंगरों को। तो बहन थोड़ी सी इन बातों का ध्यान रखेंगी तो थारे डंगर भी इस गर्मी में स्वस्थ रहेंगे, और जो दूध देने वाले डंगर होंगे वो खूब दूध देंगे, और थारा घर परिवार भी स्वस्थ रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा। तो बहनों, इस जरूरी बातचीत के बाद अब बारी आज के क्रम की। हमें पता है तो मैं बड़ा इंतजार रहे आज के क्रम का, मारा घर आंगन भोर से सांझ तक का। तो देखें आज नीतू बहना से मंजू देवी की क्या क्या बातें हुई उनकी दिनचर्या के बारे में, उसे भी सुनेंगे। पर पहले सुन लें थोड़े से और जरूरी संदेश।
2: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे सो इजी।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
6: मारा घर आंगन भोर से सांझ तक। इस क्रम में बहनों, हम हमेशा अपनी श्रोता बहनों के बीच में से ही किसी बहन को बुलाकर उनकी दैनिक दिनचर्या, उनके घर परिवार के बारे में बात करते हैं। आज फिर से हमारे साथ हैं आप में से ही एक और बहन, तो सबसे पहले हम जानते हैं उनसे उनका नाम। राम राम बहन।
7: राम राम बहन।
6: क्या नाम है आपका?
7: मेरा नाम मंजू है।
6: तो सबसे पहले तो बहन, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
7: धन्यवाद।
6: बहन आप कहाँ से आए हैं?
7: जी हम अकबरपुर चौगाए से आए हैं।
6: हम नजीबाबाद में हैं, तो नजीबाबाद से कितनी दूर पड़ता है?
7: ज्यादा दूर नहीं पड़ता, पास में ही है।
6: अच्छा, तो बहन आपके घर परिवार में कौन कौन है?
7: जी घर परिवार में इकट्ठा परिवार है हमारा, सभी का। तीन जेठानी है और जेठ है और अपने दो बेटे एक बेटी।
6: अच्छा अच्छा, आपका बड़ा संयुक्त परिवार है।
7: जी।
6: और सास ससुर?
7: सास ससुर तो इस टाइम नहीं है।
6: तो सबके साथ जैसे इतना बड़ा आपका परिवार है, कैसे आप सब लोग प्यार से रहते हैं, किस प्रकार आप तालमेल बैठा के रखे हैं बहन?
7: जी देखो, थोड़ा जैसा कि मैं छोटी हूँ सभी से, तीनों जेठानियों से मिलजुल के देखो अपनापन रखना पड़ता है, बनाना पड़ता है परिवार में।
6: सब इकट्ठे रहते हैं तो जैसे कभी कभी नोकझोंक हो जाती है थोड़ी बहुत?
7: हाँ कभी कभी हो जाती है, छोटी मोटी बातों पे
6: जी
7: ऐसा हो जाता है।
6: जी
7: ऐसा कुछ नहीं, परिवार में जब होता है तो थोड़ा बहुत अपना अपनी तरफ से भी पहल करनी पड़ती है, इकट्ठा परिवार रखने की वजह से सबको।
6: तो बहन जैसे आपके बच्चे हैं, आप वो पढ़ते हैं?
7: जी अब तो नहीं पढ़ते, बच्चों ने इंटर करा है, तीनों बच्चों को मैंने इंटर कराया है अपने। अब काम वगैरह करते हैं, थोड़ी जॉब वॉब ऐसी मतलब।
6: तो ये है कि अपना पढ़ाई करके काम पे लग गए?
7: जी।
6: तो आगे क्यों नहीं पढ़ाई करवाई आपने?
7: थोड़ी घर में थोड़ी समस्या भी रही है इस वजह से भी।
6: किस प्रकार की?
7: कॉलेज भी थोड़ा दूर था, थोड़े पैसे की भी, उसके पापा थोड़े से तबीयत खराब हो गई थी तो काफी टाइम तक बीमार रहे, तो बच्चे अपना इधर उधर रहे, नहीं पढ़ पाए।
6: खुद से आप पढ़ी लिखी है?
7: जी पढ़ी लिखी तो हूँ पर ज्यादा नहीं हूँ, अपना थोड़ा बहुत पढ़ लिखती हूँ, नाम वगैरह अपने ऐसे।
6: क्या कारण रहा कि आप नहीं पढ़ पाए, या परिवार की परिस्थितियाँ इस प्रकार की रही?
7: जी हाँ थोड़ा परिवार की परिस्थितियाँ भी ऐसी रही, पांच बहने थे, नहीं जा पाई, पढ़ने का मन तो था उस टाइम पे, फिर शादी हो गई
6: बस। तो विवाह के बाद जो है अपना घर परिवार में आप रम गई। अच्छा तो कितने बजे उठती हैं आप सुबह को?
7: सुबह को 5:30 बजे के करीब उठते हैं हम, औरतें सब उठ जाती हैं, आदमी भी अपना थोड़ा काम पे चले जाते हैं।
6: अच्छा
7: तो जैसे कि थोड़ी खेती उत्ती का भी काम है हमारा।
6: जी आपकी दिनचर्या कैसे शुरू होती है, सबसे पहले उठ के आप क्या करती हैं सुबह को?
7: सुबह को सबसे पहले उठ के थोड़ा साफ सफाई करते हैं।
6: जी
7: उसके बाद अपना नहाना।
6: जी नहाना धोना।
7: हाँ नहाना धोना करते हैं।
6: जी
7: उसके बाद फिर पूजा पाठ करते हैं।
6: जी
7: फिर अपना थोड़ा डंगरों को भी चारा वारा डालते हैं, घर के बाहर बना रखा है।
6: अच्छा अच्छा, तो
7: गेट के बाहर
6: तो उनको चारा वगैरह डालना, आपके यहाँ डंगर हैं तो उनका नहलाना धुलाना भी करते होंगे? अभी तो गर्मी हो रही है तो रोज करते हो?
7: जी गर्मियों में तो रोज करना पड़ता है।
6: तो अगर सर्दी होती है तो उसमें कैसे करते हो, उसमें भी रोज नहलाते हो?
7: नहीं उसमें रोज नहीं नहलाते, साफ सफाई रखते हैं नीचे, जैसे कि घास वगैरह होती है पत्ती उत्ती डालते हैं उनके, साफ सफाई रखते हैं, रोज नहीं नहलाते हैं। फिर भी धूप के टाइम में आप तो जैसे ठंडे पानी में ताजी में नहला दो,
6: जी
7: उस टाइम पर थोड़ा गर्म पानी करके नहला दो, साफ सफाई डंगर के रखनी पड़ती है।
6: बिल्कुल आपने ये बहुत अच्छी बात कही कि डंगरों के नीचे भी उनके आसपास भी साफ सफाई रखनी पड़ती है, और आप पूरा ध्यान रखती हैं। डंगर हैं वो दूध देते हैं?
7: जी दूध देते हैं, भैंस दूध दे रही है।
6: दूध दे रही तो वो सब दूना भी आप कर लेती हैं?
7: हाँ हम पे भी आता है दूना, और बहू वगैरह भी दूध लेती हैं।
6: तो दूध बेचो या घर में लग जाता है?
7: नहीं वैसे जैसे कि अपने से ज्यादा होता हो खर्च से तो बेच दो, अन्य वैसे घर में भी परिवार है तो बहुत सारी चीजें होती हैं दूध की भी, जैसे कि देखो घर की चीज तो घर की होती है, कुछ भी बना लो घर के दूध का।
6: अच्छा तो जैसे आपका परिवार इतना बड़ा है, आपकी जिठानियां हैं सब हैं, आगे बच्चे भी हैं, और तो काम बटे हुए हैं या जिसको जैसे मौका लगता है वो काम कर लेता है?
7: नहीं बटे हुए नहीं है, जैसे कि जिसका मौका लग जाता है वही कर लेता है, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ जिसका जो होगा वही करेगा, चाहे वो अच्छा हो या फिर मतलब थोड़ा किसी का कभी कभी ऐसा हो जाता है कि तबीयत भी खराब हो जाती है, तो ऐसा कुछ नहीं है, जिसके जो होता है कर लेता है।
6: एक अच्छी बात है कि आपके घर परिवार में सब लोग मिलकर रहते हैं।
7: जी, जी।
6: तो आगे और भी बच्चे होंगे परिवार में?
7: हाँ परिवार में बच्चे हैं, जिठाने की बहुएं भी हैं।
6: तो आगे और बच्चे पढ़ रहे हैं?
7: हाँ कुछ बच्चे पढ़ भी रहे हैं, कुछ अपना जैसे कि घर का ट्रैक्टर है।
6: अच्छा
7: हाँ अपना तो उसकी भी खेती में काम वाम करते हैं।
6: अच्छा अच्छा
7: जी,
6: तो खेती बाड़ी में जैसे महिलाएं भी जाती हैं या केवल जो घर के मर्द हैं वो ही देखें?
7: नई महिलाएं भी चली जाती हैं, हम भी जाते हैं और साथ में, जैसे कि किसी को मजदूरी पे मतलब साथ में लेके चले जाओ, जैसे कि काम ज्यादा है इस टाइम करने में, पानी की उगाई चल रही, खुदाई बिधाई वगैरह,
6: अच्छा,
7: तो अपना गर्मी से पहले पहले करके अपना घर पे आ जाते।
6: तो जैसे आपने कहा कि आप सारे काम संभालते हैं, आप घर के भी संभालते हैं, ढोर डंगरों के भी करती हैं, आप घर के बाहर खेत भी देखती हैं, और जो बाजार के भी काम होते हैं, कितने भाई राशन पानी लाने हैं, दुनिया के काम होते हैं, तो वो आप खुद करती हैं, वो घर के जो आदमी होते हैं वो करते हैं?
7: नहीं, वे तो आदमी करते हैं।
6: तो जैसे आप खेतों वगैरह में भी काम करती हैं, तो क्या घर के जो पुरुष हैं आपके, वो थोड़ा बहुत आप डंगरों का दूध दूना है या घर के भी काम में जरा बहुत हाथ बटाते हैं, साफ सफाई में, या वो सब आपका महिलाओं की ही जिम्मेदारी है?
7: नहीं, वो तो महिलाओं की जिम्मेदारी है, वो जो तो अपना काम करते हैं खेती बाड़ी का, जो की मशीनरी चलानी।
6: अच्छा, तो घर में जैसे आपके बेटियां भी होंगी, बेटे हैं, बेटियां भी, आप अपनी बेटियों को भी उतना ही सबको पढ़ाने में लिखाने में हर चीज में उतना ही ध्यान देते हैं, बराबर अपनी बेटियों को भी उसी प्रकार से देते हैं, या आपको ये लगता है कि नहीं, पुरुष को दूध की ज्यादा जरूरत होती है महिलाओं की अपेक्षा?
7: नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बेटियों को भी देते हैं, बेटियों को भी दूध पिलाते हैं,
6: बिल्कुल बराबर, हर चीज बराबर। हाँ। ऐसा नहीं है कि गाँव है तो गाँव में,
7: अब बेटी सास के चली गई, उनके यहाँ भी घी भी पहुंचाते हैं, समय समय पर कभी कभी दूध भी पहुंचा देते हैं, ऐसा कुछ नहीं
6: जी,
7: है।
6: बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी बेटियों का भी उतना ही ध्यान रखना भी चाहिए। अच्छा, जैसे आपने घर में जानवर रखे हुए, कभी उनकी तबीयत भी खराब हो जाती होगी?
7: हो जाता है, ऐसा भी तो देखना पड़ता है, दवाई वगैरह दिलवानी पड़ती है, उन्हें भी उनका ध्यान रखा जाता है।
6: कैसे आपको पता चले कि भाई जानवर इस समय बीमार है?
7: पता चल जाता है कि जैसे कि जानवर गोत नहीं खा रहा, चारा मतलब कम खा रहा
6: जी,
7: और उठने बैठने में भी उसको दिक्कत होती है, तो पता चल जाता है कि इसकी तबीयत खराब है, दिखा देते हैं डॉक्टर को, जो डॉक्टर बताते हैं कि जैसे निवाया पानी पिलाना है,
6: अच्छा।
7: या जैसा ये सूखा भूसनी डालना या दाना वगैरह नहीं डालना, ऐसे ही उनका ध्यान रखते हैं।
6: आपको क्या देख के लगता है कि अभी इसकी तबीयत जो है ये इस तरह की होती रहती है और इसमें आपको ये इलाज करना चाहिए घर पर ही, तो क्या किस प्रकार की तबीयत आप थोड़ा सा बताएं हमें, हमारी बहनों को?
7: जैसे कि हम देखते हैं कि डंगर चारा नहीं खा रहा
6: जी,
7: उसके मुंह में थोड़े ऐसे छाले वगैरह से पड़ जाते हैं, जिस वजह से वो चारा नहीं खा पाता, तो उसमें जो हम जानते हैं अपनी तरफ से उड़द जो होते हैं उन्हें उबाल के उनको मतलब खिला देते हैं,
6: अच्छा।
7: तो वो वाली बीमारी उनकी थोड़ी कम हो जाती है।
6: अच्छा,
7: हाँ।
6: अब फिर भी अगर दिक्कत हो तो फिर डॉक्टर को,
7: फिर डॉक्टर को बुलाना पड़ता है, देखो ज्यादा दिक्कत हो जाती है तो
6: बहुत अच्छी बात है कि थोड़ा बहुत तो घर में भी आप कर लेते हैं। अच्छा, जैसे घर परिवार में इतने काम होते हैं और आपको अपने लिए वक्त मिल जावे?
7: जी, अपने लिए भी मिल जाता है, निकालना पड़ता है टाइम अपने लिए भी।
6: अच्छा, तो क्या करें आप खाली वक्त अगर आपको मिल जाता है तो?
7: जैसे कि अपने घर में थोड़ी मशीन उशीन चलानी,
6: सिलाई मशीन
7: जी।
6: अच्छा, तो आपको सिलाई आती है
7: खाली टाइम में अपना?
6: अच्छा, जैसे हाँ, खाली टाइम हुआ तो आप
7: जैसे
6: सिलाई
7: कि
6: मशीन।
7: अपना हाँ, ब्लाउज वगैरह या छोटे छोटे बच्चों के, जैसे गर्मी चल रही है थोड़े थोड़े कोई अंदर पहनने के कपड़े,
6: अच्छा।
7: थोड़े वैसे सूती वगैरह सिल देते हैं बच्चों के,
6: सूती फ्रॉक
7: हाँ,
6: शर्ट बच्चों के,
7: अच्छा। गर्मी के टाइम में घर में पहनने के लिए,
6: अच्छा, अपने ब्लाउज
7: जी, अपने ब्लाउज सूट। हाँ,
6: तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप खाली समय का भी पूरा सदुपयोग करती हैं, और दर्जी होते हैं वो इतने पैसे लेते हैं, तो आप कहीं ना कहीं इसमें आर्थिक रूप से भी परिवार को सहयोग कर रहे हैं।
7: जी जी।
6: अच्छा, इसके अलावा आपकी क्या दिनचर्या रहती है? आप 5 बजे उठे, आप नहाए धोए, पूजा पाठ करके आपने नाश्ता पानी करा, फिर आगे क्या रहता है? तो उसमें जेंट्स लोग नाश्ता पानी करके चले जाते होंगे अपने अपने खेतों में अपने काम पे
7: जी,
6: उनके बाद महिलाओं ने भी कर लिया घर की
7: जी,
6: फिर क्या करते हैं आप? कितने बजे तक आपका सुबह का काम निमट जावे?
7: सुबह का 11:30 बजे के टाइम तक निमट जाता है।
6: तो फिर दोपहर की तैयारी जब करते होंगे उससे पहले आपको थोड़ा टाइम मिलता होगा अपने लिए
7: जी।
6: तो मंजू बहन, जैसे आपने बताया आपका इतना बड़ा परिवार है, जिठानियां हैं, घर जेठ हैं, बच्चे हैं, बहुएं हैं, सब हैं, तो आगे जो है आप काम का कैसे करते हो कि कोई रसोई का काम कौन संभालता है, साफ सफाई है, कपड़े हैं, ये सब कौन करता है?
7: ये बहुएं करती हैं। जैसे कि सुबह एक बहू ने खाना बनाया, नाश्ते का सामान करा, मतलब उन्हें बना दिया, खाना खिला दिया
6: जी,
7: मर्द लोग जो अपना चले गए जंगल वगैरह
6: जी।
7: दूसरे ने इतना अपना पैसा वाला दोपहर के खाने का हिसाब किताब लगा लिया कि दाल चावल बनने हैं, क्या बनना है,
6: जी
7: ऐसी सब मिल के टाइम अपना किसी ने कुछ करा किसी ने कुछ, 11:30-11 बजे तक हम अपना काम फिक्स कर देते हैं।
6: दोपहर का जो खाना पीना वो कितने बजे आप करते हैं, और घर के जो आपके पुरुष हैं वो आते हैं या खेतों में ही जाता
7: नहीं,
6: है?
7: नहीं आते हैं, दोपहर का खाना के लगभग 2:30 बजे के करीब सब फाइनल हो जाता है, सब दोपहर का खाना पीना करके अपना साफ सफाई करके 2:30-3 बजे तक ओके हो जाता है।
6: अच्छा, तो आपको फ्री हो जाते हैं, तो इस बीच क्या करते हो आप? जैसे आपने बताया आपका 2:30-3 बजे तक काम निमट गया, शाम की तैयारी कितने बजे शुरू करो?
7: शाम की तैयारी तो देखो जैसे गर्मी का टाइम हो रहा है थोड़ी लेट ही करते हैं 6 बजे के टाइम
6: जी,
7: थोड़ा खिट्टा बैठ जाते हैं बाहर को आंगन में।
6: अच्छा।
7: अपना ये सोच लेते हैं कि क्या बनाएंगे, क्या खाएंगे। अच्छा, कैसे अच्छा। करेंगे
6: तो जैसे चिप्स पापड़ वगैरह भी तोड़ो?
7: हाँ बना लेते हैं, कहते अच्छा। हैं कि जैसे मन कर रहा है आप जब बना लो, बहुए से कहते हैं कि तुम ये वाला काम कर दो हम बना देंगे, हम अपने आप देख लेंगे, तुम ये कर लो थोड़ा।
6: अच्छा, तो जैसे सबका व्यवहार अलग होता है, सबकी सोच अलग हो, तो सब कैसे फिर उसमें सामंजस्य बैठाते हैं? बहुए आजकल उनका अलग सोच होती है, वो आजकल के टाइम की हो गई, और आप हैं आपकी जिठानियां वो थोड़ा पहले के हो गए, तो सब लोग प्यार से उसी तरह से रहते हैं, सब बहुए सब लोग जो आपने कहा उस तरह से वे सुनती हैं आपकी बातें, सब कहना मानते हैं आपके यहाँ, सब सम्मान देती हैं आपको?
7: जी कहना भी मानती हैं, जैसे कि अब जब माहौल अलग है ऐसा कुछ नहीं कि उन्हें उस टाइप से भी रहने में कोई दिक्कत नहीं है, हमारी तरफ से पूरी वो है कि भाई आजकल का माहौल और है, रहन सहन का बैठने उठने का ढंग अलग होता है, पहनने ओढ़ने का, ऐसा कुछ नहीं, उन्हें वो भी टाइम मिलता है, हम अपनी तरफ से सब जानते हैं कि पहले क्या समय था अब क्या समय है, ऐसा कुछ नहीं है, परिवार सब सहयोग से रहता है।
6: जी,
7: बहुओं के साथ भी
6: जी थोड़ा सा वो ढलते हैं आपके माहौल में, थोड़ा आप ढलते हैं उनके माहौल
7: में,
6: तब जाके एक परिवार बनता है
7: जी,
6: और परिवार में खुशहाली आती है
7: जी।
6: के अपने मन में कोई ऐसी आपकी ख्वाहिश, कोई इच्छा, कोई सपना जो आपने देखा और वो अधूरा रह गया हो बहन, कुछ था आप कुछ सोचती थी कि मैं ऐसे करती मैं वैसे करती, लगता है या आप अपने घर परिवार में आप खुश हैं? आप
7: देखो ऐसा कुछ नहीं है, घर परिवार में खुश हूँ, बच्चे भी मेरे बहुत बढ़िया हैं, बहुएं भी, परिवार में ऐसा कुछ नहीं जो सोचते थे वे भी कोई दिक्कत नहीं, अपना बढ़िया लगता है सब रहने
6: अच्छा,
7: में
6: ऐसा कोई ऐसा आपके मन में नहीं
7: ऐसा
6: था?
7: कोई मन में ऐसा वो नहीं रहा।
6: तो जैसे गांव का माहौल उस तरह का होता है कि लोग बहुत अंधविश्वास को भी मानते हैं, तो आप भी इस तरह का जो है यकीन रखती हैं, विश्वास करती हैं इस सब में?
7: हम लोग नहीं मानते, जो मानते हो वो मानते हो, हम नहीं मानते
6: जी। अच्छा अब एक चीज और, अपने जैसे अब गर्मी चल रही है, परिवार बड़ा है, सब लोग अपने स्वास्थ्य का कैसे ख्याल रखते हैं? आप सुबह को व्यायाम वगैरह करते हैं थोड़ा सा, या घर में ही बहुत काम हो जाता है?
7: करते हैं थोड़ा, वैसे काम भी ज्यादा होता है, फिर टहल लेते हैं, दूध वगैरह भी होता है, जैसे कि किसी को अपना अपना जैसे पसंद हो ऐसे अपना ध्यान रखते
6: अच्छा,
7: हैं।
6: बिल्कुल। अच्छा चलते चलते हमारी बहनों को आप क्या संदेश देना चाहेंगी?
7: मैं अपनी बहनों से कहना चाहूंगी कि जैसे कि अब जब गर्मी का टाइम चल गया है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और अपने बच्चों का परिवार का भी, अपने पशु वगैरह का भी, सबका ध्यान रखें, अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाए और अच्छे से रखें।
6: बहुत अच्छी बात है मंजू बहन, आप हमारे स्टूडियो में आई और अपनी दैनिक दिनचर्या की जानकारी हमारी श्रोता बहनों के साथ, हमारे साथ आपने साझा की। राम राम बहन।
7: राम राम।
1: बहनों अभी तुम सब ने आज के खास क्रम हमारा घर आंगन भोर से सांझ तक में नीतू की मंजू देवी से बातचीत सुनी, और जाना कि एक परिवार तभी जुड़ा रह सके है और खुशहाल रह सके है जब उसके सारे सदस्य प्यार से मिलजुल के रहे में, और अपनी जिम्मेदारी को समझें और छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करें, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें ही कभी कभी हमें फालतू की टेंशन दे जाएं। हाँ बहनों हमारी अगली बातचीत का विषय भी तो यही हैगा, यानी सकारात्मक सोच और स्वास्थ्य। बहनों आज के दौर में जिंदगी जीना आसान ना रहा, हमारे घर के बड़े कह करे थे कि उनके टाइम में इतनी आपा धप्पी ना आई थी, काम तो जब भी हो बता पर इतनी चिंता ना आई थी, सुकून की जिंदगी थी, पर आज देखो हर इंसान जल्दबाजी में है, जने क्या हासिल करने की होड़ लगी पड़ी सब में, और इस होड़ में सब ने अपनी नींद चैन सुकून वो तो खोया ही खोया, सेहत का भी सत्यानाश कर लिया, इंसान का तन और मन दोनों ही बीमार हो गए। और भिन्ना इसमें सबसे बड़ा हाथ है हमारी सोच का। मान लो हम कुछ काम करना चाह रहे या कुछ हासिल करना चाह रहे और हमारी पूरी कोशिश करने के बाद भी हम उस काम को करने में सफल ना हुए या वो चीज़ हासिल करने में नाकामयाब हुए तो हम अपना आप को नकारा समझने लगें, जो बिल्कुल भी ठीक ना है। वो कह मैं ना बहनों, जैसा सोचेंगे वैसा ही बनेंगे। इसलिए बहना अच्छी यानी सकारात्मक सोच बड़ी जरूरी हैगी। सकारात्मक सोच का यो ही मतलब है अक हम उम्मीद ना छोड़ दें, चाहे हालात कैसे ही हों, जीवन में हर मुश्किल का सामना पूरी हिम्मत से करें। जब भी हमारे सामने कोई समस्या आवे तो हमें यह जरूर सोचना चाहिए कि यो मेरे लिए चुनौती है और मैं इसका हल जरूर निकाल लूँगी। इस तरह सोचने से हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और हम उस काम को करने में सफल भी होंगे, देखियो तुम। इसलिए बहनों, हमें हर दिन अपनी सोच को सकारात्मक बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे हम अपना जीवन तो अच्छा बना ही सकें, अपने आसपास वालों को भी एक मुस्कुराता हुआ जीवन दे सकें। तो बहना, अच्छी अच्छी बातें तो कर ली हमने बतेरी सारी, अब थोड़ा सा मनोरंजन भी हो जा बहना, इसके बिना तो कार्यक्रम का आनंद ही अधूरा हैगा। क्यों संतोष जी, जी ठीक कह रही ना मैं? तो लो नेकी और पूछ बूझ, आओ सुनाइयो प्यारा से लोकगीत।

लो जी, इन्होंने तो गीत में ननद को जाने क्या क्या कह दिया, पर भेना सच में यू रिश्ता हो वह ननद भाभी का बड़ा ही प्यारा। और बालगो की उनकी तो बुझो ही ना, वे तो बड़ा ही प्यार करें अपनी बुआ से, और बुआ भी पूरी जान लुटावे भेना अपने भतीजे भतीजियों पर। ओहो भेना, मारा तो यो जी करे थारे से बात करो ही जा करो ही जा, पर भेना इस टाइम की भी तो पाबंदी। तो आज का कार्यक्रम थारे को कैसा लगा, इस बारे में हमें अपनी राय चिट्ठी में लिख के जरूर भेजियो। हमारा पता है कार्यक्रम घर संसार, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन 2467-63। तो बहनों थारे से फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में, तब तक अपना और अपने परिवार की सेहत का चौकी तरह ध्यान रखियो, और अपनी बहन को मुद को दो अब कार्यक्रम समापन करने की अनुमति। बहनों राम राम।

अभी हमारी ग्रामीण बहनें सुन रही थी कार्यक्रम घर संसार। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। अब हम अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं लोकधारा के अंतर्गत रतियानंद पवार के गाए जौनसारी लोकगीत।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे हैं लोकधारा में रत्यानंद के गाए जौनसारी लोकगीत आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से।

0: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे लोक संगीत के कार्यक्रम लोकधारा में रतियानंद के गाए चौंसारी लोकगीत। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 2 बजने को हैं, अब आप समाचार सुनेंगे।
1: खत्म हुआ।
2: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अनुजा कुमार विद द विंटर न्यूज। द हेडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड्स इलेक्शन कमीशन्स पावर टू कंडक्ट SIR ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, सेज इट इज इन कॉन्सोनेंस विद रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950। Prime Minister Narendra Modi urges citizens to take precautions amid rising temperatures. IMD predicts severe heat wave conditions over Haryana, Madhya Pradesh, Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh and Vidarbha. India-Canada reaffirms shared objective of expanding bilateral trade to $50 billion by 2030. CBI arrests 2 more accused in NEET UG 2026.

0: says it is in consonance with the Representation of the People Act 1950. Prime Minister Narendra Modi urges citizens to take precautions amid rising temperatures. IMD predicts severe heat wave conditions over Haryana, Madhya Pradesh, Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh and Vidarbha. India-Canada reaffirms shared objective of expanding bilateral trade to $50 billion by 2030. CBI arrests two more accused in NEET UG 2026 examination paper leak case. U.S. Senator Lindsey Graham questions credibility of Pakistan's role as possible mediator in U.S.-Iran talks, cites Islamabad's long-standing opposition to Israel. And in IPL cricket, Sunrisers Hyderabad to face Rajasthan Royals in eliminator match in Chandigarh this evening. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के चुनाव आयोग के फैसले को बरकरार रखा न्यायालय ने कहा यह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुरूप है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ते तापमान के मद्देनजर नागरिकों से सावधानी बरतने का आग्रह मौसम विभाग ने हरियाणा मध्य प्रदेश पंजाब राजस्थान उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण लू की संभावना व्यक्त की भारत और कनाडा ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब अमरीकी डॉलर तक बढ़ाने के साझा लक्ष्य की पुष्टि की सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमरीका ईरान वार्ता में संभावित मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान की भूमिका की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया उन्होंने इसराइल के प्रति पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे विरोध का हवाला दिया और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम एलिमिनेटर मैच में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला होगा अब समाचार विस्तार से सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के तहत एसआईआर करवाने की शक्ति रखता है एक रिपोर्ट
2: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन रिट याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया का उद्देश्य स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लक्ष्य को हासिल करना है मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा सुनाए गए फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के विपरीत थी न्यायालय ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि इस प्रक्रिया से मतदाता सूचियों में पहले से मौजूद व्यक्तियों की नागरिकता की अनुमानित मान्यता समाप्त हो जाती है समाचार कक्ष से वैष्णवी
1: भारतीय जनता पार्टी ने एसआईआर को पूर्णतः संवैधानिक करार देने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की प्रक्रिया 20 जून से शुरू होगी आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 5 अगस्त को और अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी श्री कुमार ने बताया कि बूथ स्तर के अधिकारी बीएलओ 30 जून से दिल्ली की मतदाता सूचियों के सत्यापन के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे
3: कमीशन की तरफ से दिल्ली में एसआईआर टाइम शेड्यूल लॉन्च हो चुका है जो कि 20 जून से शुरू होगा और 7 अक्टूबर को हमारा फाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिश होगा तो इसमें जो हाउस टू हाउस विजिट है बीएलओज की वो हमारी 30 जून से शुरू होगी और 29 जुलाई तक चलेगी इस हाउस टू हाउस शेड्यूल में बीएलओ हर इलेक्टर के यहाँ जाएंगे जो भी

0: एड्रेस इलेक्टोरल रोल में है और दो फॉर्म लेके जाएंगे इनुमरेशन फॉर्म। एक फॉर्म में इलेक्टर ने अपनी डिटेल भरनी है और अपने पास रखना है, दूसरा फॉर्म भर के बीएलओ को दे देना है और दोनों फॉर्म पे बीएलओ काउंटर साइन करेंगे एक्नोलेजमेंट के लिए।
1: दिल्ली के मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि मतदाताओं को भरे हुए जनगणना प्रपत्र ऑनलाइन जमा करने की सुविधा भी मिलेगी। श्री कुमार ने कहा कि सत्यापन प्रक्रिया के हर चरण में जांच पड़ताल की व्यवस्था है। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: एसआईआर का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से न छूटे और कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न हो। मतदाताओं की भागीदारी को सुगम बनाने के लिए जागरूकता अभियान और विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे ताकि मतदाताओं को जनगणना प्रपत्र जमा करने में सहायता मिल सके। आम जनता की सुविधा के लिए दिल्ली में वर्ष 2002 में हुए अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण की मतदाता सूची आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। इस प्रक्रिया में 1 अक्टूबर तक 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। सत्यापन प्रक्रिया के हर चरण में जांच की व्यवस्था रहेगी और राजनीतिक दलों को बूथ स्तर के एजेंटों के माध्यम से इसमें शामिल किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि ट्रांसजेंडर के अधिकारों के संरक्षण संशोधन अधिनियम 2026 के खिलाफ उच्च न्यायालयों में उसकी कई याचिकाएं लंबित हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख करते हुए अनुरोध किया कि स्थानांतरित की जाने वाली याचिकाओं को शुक्रवार को सूचीबद्ध किया जाए। राजस्थान उच्च न्यायालय ने आसाराम बापू को आज आंशिक राहत देते हुए पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत सामूहिक दुष्कर्म, सामूहिक यौन उत्पीड़न और आपराधिक साजिश से संबंधित आरोपों से बरी कर दिया। हालांकि न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत नाबालिग से दुष्कर्म मामले में उसकी सजा को बरकरार रखा है। इस मामले में आसाराम की आजीवन कारावास की सजा जारी रहेगी। उच्च न्यायालय ने आसाराम को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। वो फिलहाल अस्थायी जमानत पर है, जिसे सप्ताह की शुरुआत में 7 दिन के लिए बढ़ा दिया गया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने लोगों से कहा कि वे भरपूर पानी पिएं और घर से बाहर निकलते समय अपने साथ पानी जरूर रखें। उन्होंने सुझाव दिया कि जो भी प्यासा हो उसे एक गिलास पानी जरूर पिलाएं। प्रधानमंत्री ने सभी से ये भी कहा कि वे अपने परिवार और प्रियजनों के संपर्क में रहें और उनका हालचाल पूछते रहें। दोपहर की तेज धूप में बाहर निकलने से बचें और जितना हो सके आराम करें। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों, बालकनी, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने लोगों से इन मुश्किल दिनों में पूरी संवेदनशीलता और करुणा के साथ एक दूसरे का ख्याल रखने का अनुरोध किया। मौसम विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में कुछ स्थानों और दिल्ली में भीषण लू की संभावना व्यक्त की है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, कोंकण और गोवा, ओडिशा, सौराष्ट्र, कच्छ, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और कारेकाल में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच आज राज्य के 5 जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है। एक रिपोर्ट।
3: झुलसाने वाली गर्मी से प्रदेश का ज्यादातर हिस्सा प्रभावित है। जयपुर, कोटा, जोधपुर, नागौर, बीकानेर और दौसा सहित कई शहरों में न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मापा गया। करीब 33 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ कोटा की रात सबसे गर्म रही। भीषण गर्मी और लू को देखते हुए प्रशासन की ओर से सड़कों पर पानी का छिड़काव करने, आश्रय स्थल बनाने और पीने के पानी की व्यवस्था लगातार की जा रही है। चिकित्सा संस्थानों में भी लू और तापघात के मरीजों के लिए बेड आरक्षित करने के साथ आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम गंगटोक में होने वाले सिक्किम विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग भी इस समारोह में शामिल होंगे।

0: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नीट प्रश्न लीक मामले में लातूर के रहने वाले डॉक्टर मनोज शिरोडे को भी गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई के अनुसार उन्होंने एक कोचिंग केंद्र के मालिक के बेटे सहित 3 छात्रों को आरोपी पीवी कुलकर्णी से रसायन विज्ञान के प्रश्न दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। गिरफ्तार किया गया दूसरा आरोपी तेजस हर्षद कुमार शाह है, जो पुणे स्थित एक कोचिंग सेंटर डॉक्टर अभंग प्रभु मेडिकल एकेडमी में फिजिक्स का फैकल्टी है। उसे नीट परीक्षा के लीक हुए भौतिक विज्ञान के प्रश्न के आरोपी मनीषा हवलदार से मिले थे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने केरला में पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के आवास सहित कई स्थानों पर जांच शुरू कर दी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज सुबह से तिरुवनंतपुर

0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @XHAIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा की अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यान्वित क्षेत्रों में निवेश तथा तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। इस यात्रा के दौरान श्री गोयल कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू से मुलाकात की। मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक $50 अरब तक बढ़ाने के लक्ष्य की पुष्टि की। प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने भारत कनाडा व्यापार को मजबूत करने में कनाडा में रह रहे भारतीय प्रवासियों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया।
1: भारत और कनाडा के बीच साझेदारी की सबसे बड़ी ताकत उनकी मजबूत लोकतांत्रिक नींव है। दोनों देश इस बात पर विश्वास करते हैं कि जब सशक्त संस्थाएं कानून के शासन को मजबूती से कायम रखती है, तब दुनिया के सामने यह एक उदाहरण बनता है कि अच्छे मित्र और भरोसेमंद साझेदार किस तरह साथ मिलकर काम करते हैं। दोनों देशों की सरकारों, संस्थाओं, व्यवसायों और आम लोगों के बीच जो आपसी विश्वास और सहयोग है, वही इस रिश्ते को और अधिक मजबूत बनाता है।
0: संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है। श्री हरीश ने कहा कि पाकिस्तान को यह स्वीकार करना होगा कि सीमा पार आतंकवाद को प्रायोजित करने के परिणाम उसे भुगतने होंगे।
2: पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ युद्ध, बिना उकसावे की आक्रामक कार्रवाइयों और लगातार सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देकर संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है। हजार घाव देकर भारत को कमजोर करने की उसकी नीति आतंकवाद, धार्मिक कट्टरता और भारत विरोधी गतिविधियों को लगातार बढ़ावा देने की उसकी सोच को दर्शाती है।
3: Anti-India rhetoric has continued unabated since its creation.
0: पाकिस्तान का अब्राहम समझौते में शामिल होने से इनकार करने की रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने कड़ी आलोचना की है। रिपब्लिकन सेनेटर ग्राहम ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरान से संबंधित किसी भी कूटनीति में पाकिस्तान की भूमिका अनुचित है। आईपीएल क्रिकेट में आज मोहाली के न्यू चंडीगढ़ में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से होगा। विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस से खेलेगी। फाइनल मैच 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के फैसले को बरकरार रखा। न्यायालय ने कहा ये जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ते तापमान के मद्देनजर नागरिकों से सावधानी बरतने का आग्रह। मौसम विभाग ने हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण लू की संभावना व्यक्त की। भारत और कनाडा ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक $50 अरब तक बढ़ाने के साझा लक्ष्य की पुष्टि की। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमरीका ईरान वार्ता में संभावित मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान की भूमिका की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2:30 हो रहे हैं। अब हमारे श्रोता सुनेंगे व्हाट्सएप मैसेजेस पर आधारित कार्यक्रम संदेश.com। संदेश.com सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार और आप सभी का कार्यक्रम में श्रोताओं बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। श्रोताओं, ये कार्यक्रम आपके व्हाट्सएप मैसेजेस पर आधारित है और

साथी, आप इसमें सुनते हैं प्यारे प्यारे से गीत। तो साथियों, दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि हम पूछने वाले हैं अपने श्रोताओं से गीत से जुड़े हुए कुछ सवाल। जी हाँ श्रोताओं, तो आपको करना क्या है, आपको गीत ध्यान से सुनना है, लेकिन उससे पहले आपको सुनना होगा हमारा सवाल। जी हाँ, गीत तो आप ध्यान से सुनेंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको ये सुनना है कि सवाल है क्या, और इस सवाल का जवाब देंगे हमारे श्रोता व्हाट्सएप मैसेजेस के माध्यम से। तो सबसे पहले बता देते हैं अपने सुनने वालों को व्हाट्सएप नंबर। हमारा नंबर है 9457078288। नंबर एक बार फिर से नोट कर लीजिए श्रोताओं, 9457078288। तो श्रोताओं, नंबर आपने नोट कर लिया होगा, तो हमारा जो आज का सवाल है उसे थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। तो आज का सवाल है, जो गीत कार्यक्रम का पहला गीत आपको हम सुनवा रहे हैं, उसके गायक कलाकार कौन है। जी हाँ, सवाल एक बार फिर से हम दोहरा रहे हैं, कार्यक्रम का जो पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं, उस गीत के गायक कलाकार कौन है। तो श्रोताओं, सवाल हमने आपको बता दिया है, लेकिन सवाल का उत्तर आप तभी दे पाएंगे जब आप हमारे इस गीत को सुनेंगे। तो श्रोताओं, पेश है कार्यक्रम का पहला गीत, और हाँ, याद रखिएगा कि आपसे क्या पूछा गया है और आपको देना है इसका जवाब, और साथ में जब आप अपना जवाब लिखकर हम तक भेजेंगे श्रोताओं, तो उसमें अपना नाम और पता लिखना ना भूलें।

0: शास्त्रीय संगीत का अमृत कलश रागम भारतीय शास्त्रीय संगीत को समर्पित आकाशवाणी का बेहतरीन चैनल रागम डीटीएच पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए इंटरनेट और आपके मोबाइल ऐप पर भी रागम आनंद की अटूट रसधार।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम जो कि व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित है, संदेश.com। और हमारे श्रोताओं के संदेश हम तक पहुंच गए हैं। श्रोताओं, हमने आपसे सवाल पूछा था कि जो गीत आपको सुनवाया गया है उसके गायक कलाकार कौन है। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने सही जवाब दिया है। तो सबसे पहला जो सही जवाब हमारे पास आया है वो है गांव फरासी, जिला हिसार से, और सही जवाब दिया है राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी ने। जी हाँ, आपको बहुत बहुत बधाई। पहला जो सही उत्तर है वो आपने दिया है। और अगला जो मैसेज हमें मिला है चकला बाजार पंजाब से, ये मैसेज मिला है पप्पू राजा खुशदिल, संगीता रानी जिंदल, पप्पू इस्माइल खुशदिल और इनका पूरा परिवार। इन्होंने भी सही जवाब हम तक भेजा है। अगला जो ये मैसेज मिला है ये शाही मार्केट सिहारा ज़िला बिजनौर से, आसिफ चौधरी, रिहाना और अराफात अदीब और कादिर चौधरी, इनका भी बिल्कुल

सही जवाब हमें मिला है, और ये मैसेज हमें मिला है, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां, आजाद नगर, लक्सर, हरिद्वार से इन्होंने ये मैसेज भेजा है, और इनका भी बिल्कुल सही जवाब हम तक पहुंचा है। श्रोताओं, अगला मैसेज हमें मिला है कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से, भेजने वाले हैं ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, और दुबीहा नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय ने। अगला मैसेज हमें मिला है मुंबई से, इन्होंने भी सही जवाब हम तक भेजा है, ये भेज रहे हैं अनु बड़जात्या, शमशूल खान और अनुराज बेनारा जी, इनका भी सही जवाब है। तो हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब हम तक भेजा है। तो आपको बता दें कि जो गीत हमने आपको सुनवाया था उसके गायक कलाकार थे लता मंगेशकर और उदित नारायण। जी हाँ श्रोताओं, ये गीत हमने लिया था दुश्मन फिल्म से, और संगीत दिया था इस गीत को उत्तम सिंह ने, और गीत लिखा था आनंद बख्शी ने। तो जिन श्रोताओं ने हम तक सही जवाब दिए हैं उन्हें बहुत बहुत बधाई। और कार्यक्रम का अगला सवाल श्रोताओं क्या है आपको सुनना है, और फिर इसका उत्तर भेज देना है हमारे व्हाट्सएप मैसेज पर। तो इसके लिए आपको श्रोताओं एक बार फिर से नंबर बताए देते हैं, नंबर है 9457078288, नंबर एक बार फिर से 9457078288। तो श्रोताओं कार्यक्रम का अगला सवाल है, जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उस गीत के गीतकार कौन है? सवाल एक बार फिर से हम बता देते हैं अपने श्रोताओं को कि कार्यक्रम का अगला गीत जो आपको सुनवाने जा रहे हैं उस गीत के गीतकार कौन है? जी हाँ, वो गीत किसने लिखा है ये आपको हम तक लिखकर भेजना है। इसके लिए हमने आपको नंबर्स बता दिए हैं श्रोताओं, अपने नाम और पते के साथ भेज दीजिए अपना सही जवाब, आपके जवाब का हमें इंतजार है। तो श्रोताओं तब तक एंजॉय कीजिए ये गीत।

हमारे श्रोताओं के मैसेजेस हम तक पहुंच गए हैं और जो नए श्रोता हमारे सुन रहे हैं कार्यक्रम, उनको बता दें कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम संदेश.com आकाशवाणी की नजीबाबाद केंद्र से। और जो सवाल हमने पूछा था कि जो गीत अभी आपको सुनवाया गया था उसके गीतकार कौन हैं, तो हमारे श्रोताओं ने सही जवाब हम तक भेजे हैं। ये सही जवाब हमें मिला है महाराणा प्रताप कॉलोनी उदयपुर से, रमेश नाचानी, भारती, विनीत नाचानी, मिथिल और प्रगति नाचानी जी का। और ये मैसेज हम तक पहुंचा है कांट से मोहम्मद फुरकान सिद्दीकी। और अगला मैसेज हमें मिला है धनोरी तेली वाला, निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और अयान बाबू का। तो बहुत सारे मैसेजेस हम तक पहुंचे हैं, लेकिन कुछ मैसेजेस ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपना नाम हम तक लिखकर भेजा है। तो श्रोताओं से हम यही अनुरोध बार बार करेंगे कि जो भी कार्यक्रम आपको सुनवाया जा रहा है उससे जुड़े हुए जो उत्तर हैं या उससे जुड़ा हुआ कोई भी मैसेज आप हम तक भेजें, उसके अलावा आप सिर्फ और सिर्फ अपना नाम लिखकर ना भेजें। तो जो हमने आपसे सवाल पूछा था तो उससे जुड़े हुए आप हम तक मैसेज भेज सकते हैं श्रोताओं। उसके लिए हमने आपको नंबर भी बता दिया था, नंबर एक बार फिर से बता देते हैं 9457078288। और इसका सही जवाब भेजा है अनु बड़जात्या, शमशूल खान और अनुराज बेनारा। जी हाँ, इन्होंने पहले भी जो सवाल पूछा था उसका सही जवाब हमें लिखकर भेजा था। बहुत सारे हमारे श्रोता हैं गांव फरासी जिला हिसार से, राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, इन्होंने भी पहला जवाब हमें सही दिया था। और दूसरे गीत से जुड़ा हुआ हमने आपसे सवाल पूछा था उसका भी इन्होंने सही जवाब हम तक भेजा है। और भी मैसेज आए हैं, शिल्पी प्रजापति का मैसेज हम तक बिल्कुल सही पहुंचा है। जी हाँ, ये नजीबाबाद से इन्होंने मैसेज किया है, लक्सर से भेज रहे हैं दीपक, प्रियंका और राहुल, इनका भी बिल्कुल सही जवाब हम तक पहुँचा।

0: है। तो श्रोताओं को बता देते हैं कि जो हमने प्रश्न पूछा था, जो क्वेश्चन हमने आपसे पुटअप किया था, उसका सही उत्तर है वरुण ग्रोवर। जी हाँ, जो गीत आपको सुनवाया था वो कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज़ में गीत था, और फिल्म थी दम लगा के हंसा, जिसके संगीतकार अनु मलिक है और गीतकार हैं वरुण ग्रोवर। तो हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने सही जवाब हम तक भेजा है, और बहुत सारे ऐसे श्रोता हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपना नाम लिखकर भेजा है। श्रोताओं, तो हम अपने कार्यक्रम में उन्हीं मैसेजेस को शामिल करेंगे जो कार्यक्रम से जुड़े हुए होंगे। अपने श्रोताओं को हम एक बार फिर से नंबर बता देते हैं, नंबर है 9457078288। तो श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं ये संदेश।
1: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
2: तो इंतजार किस बात का,
1: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
1: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
2: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 8865845809।
1: और हमारा ईमेल आईडी है
2: akashwaninajibabad@gmail.com।
1: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
2: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
0: श्रोताओं, आप सभी का कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत, और कार्यक्रम है संदेश.com, आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप सुन रहे हैं। तो हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने सही जवाब दिया है, और कार्यक्रम का अगला सवाल क्या है श्रोताओं, आपको ध्यान से सुनना है। तो जो कार्यक्रम में हम आपको गीत सुनवाने जा रहे हैं, आपको ये बताना है कि उस गीत के संगीतकार कौन है। जी हाँ श्रोताओं, कार्यक्रम में जो आपको अगला गीत हम सुनवाने जा रहे हैं, आपको बताना है उस गीत के संगीतकार। तो हम श्रोताओं से बार बार यही अपील करेंगे कि आप हम तक मैसेजेस जो भेज रहे हैं वो कार्यक्रम से जुड़े हुए भेजें, जो आपसे सवाल पूछा जा रहा है उसका उत्तर लिखकर हम तक भेजें, सिर्फ और सिर्फ अपना नाम लिखकर ना भेजें। तो श्रोताओं, जो हमारे नए श्रोता हैं उनके लिए हम नंबर एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, 9457078288। तो आपका सवाल आपने सुन ही लिया होगा कि कार्यक्रम में जो आपको गीत सुनवाने हम जा रहे हैं उस गीत के संगीतकार कौन है। तो श्रोताओं, इस गीत को ध्यान से सुनिए और फिर भेज दीजिए अपने इस सवाल का जवाब हम तक। हमें आपके सही उत्तर का बेसब्री से इंतजार रहेगा।

हमारे श्रोताओं के मैसेजेस हम तक पहुंच गए हैं, सही मैसेजेस जिन्होंने हमें भेजे हैं। ये मैसेज हमें मिला है ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मुनाजिर अंसारी और अब्रार हुसैन अंसारी का। जी हाँ, अगला मैसेज हमें लिख भेजा है, बिल्कुल सही जवाब इन्होंने दिया है, चकला बाजार पंजाब से खुशदिल संगीता रानी जिंदल और इनका पूरा परिवार ये मैसेज लिखकर भेज रहा है। सही मैसेज, सही उत्तर इन्होंने दिया है। अगला मैसेज है पंजाब चंडीगढ़ से भेजने वाले हैं रजविंदर कौर, मनदीप कौर, सुरेंद्र कौर, सही जवाब इन्होंने हम तक भेजा है। और ये मैसेज हमें मिला है ज़िला मुरादाबाद ग्राम दुलापुर से भेजने वाले मोहम्मद फरमान, सलमान इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि जो मैसेजेस आपने भेजे हैं और उसका सही जवाब आपने दिया है, हमने आपके मैसेजेस शामिल किए हैं। तो हम आपको बता देते हैं कि जो गीत आप सुन रहे हैं उदित नारायण की आवाज़ में, उसके संगीतकार हैं नुसरत फ़तेह अली खान और गीतकार हैं जावेद अख्तर। फिल्म का नाम है और प्यार हो गया। तो श्रोताओं, इसी आप सभी ने हमारे लिए मैसेजेस भेजे, बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस भेजे, सही जवाब हम तक भेजा। तो अब समय हमें इजाज़त नहीं देता है कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की, तो इसी गीत के साथ कार्यक्रम संदेश.com अब यहीं पर संपन्न होता है।

0: जन कल्याण जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: अभी आप सुन रहे थे व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित कार्यक्रम संदेश.com। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। अपराहन के 3 बजे हैं। इस सभा के प्रसारण अब यहीं पर संपन्न होते हैं। सायंकालीन प्रसारण सभा में शाम 5 बजे आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

0: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्स पर। शाम के 5 बज रहे हैं। अब हमारी संध्याकालीन सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में लीजिए प्रस्तुत है आकाशवाणी के 90 वर्षों के उपलक्ष में आकाशवाणी नजीबाबाद से जुड़े श्रोताओं के अनुभव पर आधारित विशेष कार्यक्रम रिश्ता ये खास है। श्रोताओं, आगामी 8 जून को आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। आकाशवाणी एक ऐसा केंद्र है जो अपने हर श्रोता को खुद से जोड़े रखता है। नित नए आयामों को छूते छूते आकाशवाणी अपने 90 वर्ष पूर्ण करने वाला है और इसी सेलिब्रेशन को और भी यादगार बनाने के लिए हम कर रहे हैं अपने श्रोताओं से बात, उनके जीवन में आकाशवाणी कितना जरूरी है और क्या मायने रखता है। इसी उपलक्ष में हमने बात की रतिपाल से, जो वर्ष 1970 से आकाशवाणी से जुड़े हैं और निरंतर सुनते आ रहे हैं।
1: नमस्कार, मेरा नाम रतिपाल सिंह है। मैं नारायणपुर रामजी उस तेलीपुरा ग्राम का निवासी हूँ। मैं वर्ष 1970 या उससे पहले से रेडियो सुनता आ रहा हूँ। मुझे आकाशवाणी के सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे दिन की शुरुआत रेडियो से ही होती है और उसी के साथ दिन ढलता है।
0: अच्छा रतिपाल जी, जैसे आपने बताया कि आप वर्ष 1970 से रेडियो सुनते आ रहे हैं, तो कोई ऐसा कार्यक्रम जो आपको आज भी याद हो?
1: हाँ, याद है
0: जी।
1: एक नाटक आया था, नाटक का नाम था तप, आकाशवाणी से। तो वो नाटक मुझे बहुत अच्छा लगा और संदेश उसमें बहुत अच्छा संदेश था
0: जी।
1: तप एक औरत थी, बढ़िया सरल स्वभाव की थी और सत्य के रास्ते पर चलने वाली थी। उसने पूरी जिंदगी संघर्ष किया और आखिर में उसकी विजय हुई। अब वो पूरी कहानी तो लंबी चौड़ी है। वो उस नाटक से मुझे बहुत अच्छा लगा, वो आज तक याद है।
0: तो रतिपाल जी, अगर हम पूछें कि आपको आकाशवाणी के किस तरह के कार्यक्रम पसंद आते हैं, तो क्या कहेंगे आप?
1: अब देखिए, 9:30 बजे मंगल के दिन कार्यक्रम आता है शेरे नशिस्त या कभी गोष्ठी, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है।
0: कभी गोष्ठी आप सुनते हैं?
1: हाँ, कभी गोष्ठी सुनता हूँ मैं।
0: तो उसमें कोई ऐसी

0: क्या बात है। आप जैसे कह रहे हैं कि आपको शेरो शायरी पसंद है और कार्यक्रम शेरी नशीस्त आप काफी सुनते हैं, तो उससे जुड़ी कोई याद आपके पास है?
1: हाँ याद है, पाकिस्तान गए थे एक शायर महेंद्र रस्क नजीबाबादी, नजीबाद के हैं वो। अब सुना तो ऐसा कहीं बाहर से आके बसे हैं, बाकी इस टाइम नजीबाबाद रहते हैं। तो वो पाकिस्तान गए थे, वहां जाकर उन्होंने जो शेर शेर पढ़े थे वो मुझे आज भी याद है।
0: तो सुनाना चाहेंगे हमारे श्रोताओं
1: हाँ
0: को?
1: हाँ कुछ मेरी याद रह गई, आकाशवाणी नजीबाबाद से सुने थे। फूलों का जी मेला करके बैठ गए, खुशबू का भी सौदा करके बैठ गए, दीवारों का दुख भी तो समझा होता, दरवाजे पर साया करके बैठ गए। फूलों
0: वाह।
1: का जी मेला करके बैठ गए, और हम भी सुबह सवेरे घर से निकले थे, हम भी सुबह सवेरे घर से निकले थे, आखिर अपना पीछा करके बैठ गए। फूलों
0: वाह।
1: का जी मेला करके बैठ गए, खुशबू का भी सौदा करके बैठ गए। हम तुम्हारी खातिर सूरज लाए थे, हम तुम्हारी खातिर सूरज लाए थे, तुम तो और अंधेरा करके बैठ गए, तुम तो और अंधेरा करके बैठ गए। फूलों का जी मेला करके बैठ गए, और आईने को चेहरा करने वाले लोग, आईने को चेहरा करने वाले लोग आंखें रेजा रेजा करके बैठ गए। फूलों
0: वाह।
1: का जी मेला करके बैठ गए, और अश्क इन्हें मत कहना कुछ ये रहबर हैं, अश्क इन्हें मत कहना कुछ ये रहबर हैं, जैसा चाहा वैसा करके बैठ गए। फूलों
0: वाह,
1: का जी मेला करके बैठ गए, ये मेरी अब तक भी याद है।
0: क्या बात है। गोपाल जी, आप इसके अलावा भी कुछ और साझा करना चाहेंगे हमारे श्रोताओं के साथ, जो कार्यक्रम आकाशवाणी से आते हैं आपको पसंद है?
1: हाँ देखिए, उसके स्वास्थ्य की बातें आती हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, वो मुझे बहुत पसंद है, और खेती किसानी की बातें भी बताते हैं, वो भी बहुत पसंद है, और उनके द्वारा हमें फायदा ही पहुंचता है। और पुराने फिल्मी गाने, सदाबहार गाने, जैसे गोल्ड हिट्स का कार्यक्रम आता है वो बहुत अच्छा लगता है, छाया गीत आते हैं बहुत अच्छा लगता है,
0: जी,
1: और भी कई कार्यक्रम बहुत बहुत पसंद है।
0: प्रतिपाल जी, अंत में आप क्या कहना चाहेंगे आपकी रेडियो से जुड़ी यादों को लेकर?
1: बस रेडियो एक धार्मिक साधन है, सुनने मनोरंजन तो है ही, एक धार्मिक साधन है,

इसी गीत के साथ कार्यक्रम रिश्ता ये खास है अब संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के 90 वर्षों के उपलक्ष में आकाशवाणी नजीबाबाद से जुड़े श्रोताओं के अनुभव पर आधारित विशेष कार्यक्रम रिश्ता ये खास है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। संध्या के 5:10 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। निजी श्रोता प्रस्तुत है हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष और कल के प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण। पहले आपको आज के कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। आज रात 9:30 पर सुनिएगा चर्चा का विषय है। ये कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। आज शाम 7:30 पर सुनेंगे आप कानून की बात। ये कार्यक्रम हम हमारे लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। आज रात 10:30 पर सुनिएगा मुझे याद है जरा जरा, जिसमें आज आप सुनेंगे आकाशवाणी के वरिष्ठ उद्घोषक प्रेम कुमार सडाना की आकाशवाणी से जुड़ी यादें। प्रस्तुति सहयोग यशोधर डबराल का रहेगा और प्रस्तुतकर्ता होंगे शोभित शर्मा।

आपके व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया, सुनिएगा आज रात 10 बजे। एक ही फिल्म से सुनेंगे आप आज रात 8:30 पर, और गीत संध्या का समय रहेगा आज रात 8 बजे। सुगम संगीत सुनेंगे आप आज शाम 7:45 पर, जिसमें आज आप सुनेंगे सुरिंदर कौर के गाए शब्द।

छाया गीत सुनेंगे आप आज शाम 6:55 पर। हमारे किसान भाई सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत आज शाम 6:55 पर, जिसमें आज आप सुनेंगे डॉक्टर सुनील कुमार की भेंट वार्ता, जिसका विषय रहेगा दलहनी फसलों के समुचित प्रयोग एवं फसल अवशेष प्रबंधन पुनर्चक्रण के माध्यम से यूरिया के अंधाधुंध प्रयोग में कमी लाने के तरीके। और अब से कुछ ही देर में यानी 5:15 पर हमारे युवा साथी सुनेंगे अपना मनपसंद दैनिक कार्यक्रम युववाणी, जिसमें आज के क्रम होंगे बुझो तो जाने, कुछ खास है आज, यूथ कनेक्ट, रहस्य सीरीज खामोश घाटी, और साथ ही आप आनंद लेंगे

फिल्म संगीत का भी। और अब आपको जानकारी दे दे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कल के प्रमुख कार्यक्रमों की। कल रात 9:30 पर सुनिएगा कंट्री वाइड और इनसाइट्स, और संदेश टू सोल्जर्स कल दिन में 4 बजे आप सुनेंगे। ये दोनों ही कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

कल रात 10 बजे सुनिएगा नाटक लक्ष्मण रेखा। इसके लेखक होंगे उपेंद्र नाथ अश्क, प्रतिभागी कलाकार होंगे नंदलाल शर्मा, श्याम अरोड़ा, राम गोपाल, सुनीति कोहली और वीना होरा। प्रस्तुति सहायक होंगे सुदर्शन कुमार और निर्देशक होंगे सत्येंद्र शरत। सुगम संगीत सुनेंगे आप कल संध्या 7:32 पर, जिसमें कल हम आपको सुनवाएंगे शाने आलम और साथियों की गाई कव्वाली। कृषि जगत में कल शाम 6:05 पर सुनेंगे आप चर्चा का विषय है, जिसमें आप सुनेंगे फूलों की खेती से रोजगार। हमारे युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी कल शाम 5:15 पर, जिसमें कल आकर्षण का केंद्र होंगे बूझो तो जाने कुछ खास से आज, नॉन फिल्मी चार्ट, लव स्टोरीज, गुफ्तगु, यूं ही, रहस्य सीरीज, खामोश घाटी और साथ ही आनंद लीजिएगा फिल्म संगीत का भी। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण अब संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 यानी 954 kHz पर। संध्या के 5:15 हुए हैं। लीजिए श्रोताओं, हमारे साथियों की पसंद का कार्यक्रम प्रस्तुत है युववाणी।

0: शाम ढलती है तो दिल मुस्कुराया, ठंडी हवा ने सुकून एक दिलाया।
1: ढलता सूरज ये कहता जाता है, हर अंधेरा सुबह लाता है।
0: नमस्कार दोस्तों, इसी प्यारी सी ढलती हुई शाम में स्वागत है आप सभी लिसनर्स का आपके अपने प्रोग्राम युववाणी में, जहां आज की शाम के पलों को यादगार बनाने आपके साथ हाजिर हूं मैं, आपकी अपनी सखी सहेली और रेडियो पार्टनर वंशिका सोती।
1: और साथ में हूं मैं आपकी होस्ट और दोस्त सना परवीन। तो आगाज करते हैं आज की इस खूबसूरत शाम का आपके और हमारे फर्स्ट सेगमेंट बूझो तो जाने के सवाल के साथ।
0: जी हाँ, वैसे तो कहते हैं दोस्तों कि इतिहास केवल तिथियों पर नहीं बल्कि वीरों की संघर्ष गाथा पर डिपेंड है।
1: जी हाँ, बाबर का बेटा अकबर और अकबर का हुमायूं।
0: हाँ, अरे क्या बात कह रही हो सना, गलत कह गई। बाबर का बेटा हुमायूं और हुमायूं का बेटा अकबर।
1: यही तो वंशिका, हिस्ट्री ऐसी ही तो है, जहां डेट्स याद रखनी तो मुश्किल ही है, उससे ज्यादा उनकी डिटेल्स।
0: हाँ, डेट्स याद रखनी मुश्किल है। अच्छा, तो फिर तो तुम्हें ये भी नहीं पता होगा कि चंदेरी का युद्ध किस वर्ष हुआ था।
1: क्या वंशिका, मेरी नॉलेज नहीं, दोस्तों की नॉलेज टेस्ट करनी है। तो लिसनर्स, यही सवाल अब आपसे।
0: तो सुन लीजिए सवाल फिर एक बार फिर से, जो है कि चंदेरी का युद्ध किस वर्ष हुआ था।
1: और इस सवाल का सही जवाब आपको भेजना है हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी नजीबाबाद के कमेंट सेक्शन में जाकर।
0: और
1: दोस्तों,
0: इतने आप ये काम करके आते हैं, तब तक हम आपको सुनवाते हैं आज की शाम का युववाणी का ये पहला सुरीला गीत।
1: तो आइए हमारे साथ इस गीत का आनंद उठाइए।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे. सो इजी.
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए. RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए.
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी. देश के विकास में सहभागी बने.
4: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे.
5: हो जाओगे आसास कर लोट को,
4: क्योंकि यह है लाफ्टर का सॉलिड डोज.
6: और डोज में क्या है?
5: डोज में है मजा.
4: जी हाँ, मजा आ गया.
7: हेलो.
8: हेलो, कौन बोल रहा है?
7: अरे ये तो इसके बाप ने फोन उठा लिया. वो मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से. और आपकी बेटी की फ्रेंड हॉट सीट पर बैठी है और आपकी बेटी की मदद चाहती है.
8: अरे अरे, अमिताभ बच्चन जी हमारे घर पे.

0: अमिताभ बच्चन जी की कॉल, बेटी जल्दी आ जल्दी, देख तेरी फ्रेंड अमिताभ बच्चन जी के साथ बैठी है हॉट सीट पर, बात कर बात कर। हेलो,
1: हेलो, आपके लिए सवाल ये है, आज शाम को तुम कहाँ मिलोगी? ऑप्शन ए इस्कान मंदिर, ऑप्शन बी विक्रम वाटिका, ऑप्शन सी फ्री चौपाटी, या ऑप्शन डी घर के पीछे।
0: ऑप्शन ए।
1: धन्यवाद, अब आपका समय समाप्त होता है।
2: जी हाँ, मजा आ गया।
1: दोस्तों, कभी नोटिस किया है, दिन भर सब नॉर्मल लगता है, लेकिन जैसे ही रात होती है थॉट्स का ट्रैफिक स्टार्ट हो जाता है।
0: पुरानी बातें, फ्यूचर की टेंशन, रैंडम मेमोरीज, और फिर वही फेमस लाइन, यार नींद क्यों नहीं आ रही।
1: तो आज कुछ खास है, आज में हम बात करेंगे लेट नाइट ओवर थिंकिंग की। आखिर दिमाग रात को ही हैवी क्यों लगता है?
0: एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग दिन में हम बिजी रहते हैं, कॉलेज, काम, फ्रेंड्स, फोन, इसलिए दिमाग डिस्ट्रैक्टेड रहता है।
1: लेकिन रात को सब शांत हो जाता है और तब हमारा ब्रेन उन सब थॉट्स को प्रोसेस करता करना स्टार्ट कर देता है जिन्हें हम दिन भर इग्नोर करते हैं।
0: और फ्रेंड्स, लेट नाइट स्क्रॉलिंग भी एक बड़ा रीजन है। कभी रील्स, कभी सैड सॉन्ग्स, कभी ओल्ड चैट्स, और फिर दिमाग इमोशनल मोड ऑन कर देता है।
1: इसी वजह से एक्सपर्ट सोने से पहले थोड़ा स्क्रीन टाइम कम करने की एडवाइस भी देते हैं।
0: जब नींद प्रॉपर नहीं होती तो मूड और स्ट्रेस दोनों ही अफेक्टेड रहते हैं।
1: तो कभी कभी छोटी सी टेंशन भी रात में बहुत बड़ी लगने लगती है।
0: इसलिए दोस्तों, ट्राई कीजिए लाइट म्यूजिक, डीप ब्रीथिंग, या किसी पॉजिटिव चीजों पर फोकस करना।
1: और सबसे इम्पोर्टेंट, हर थॉट को सीरियसली लेना जरूरी नहीं होता, कभी कभी दिमाग बस एक्स्ट्रा ड्रामेटिक हो जाता है।
0: तो दोस्तों, अगर आप भी लेट नाइट ओवर थिंकिंग का हिस्सा हैं तो यू आर डेफिनेटली नॉट अलोन।
1: खुश रहिए, रिलैक्स रहिए, और याद रखिए रात के थॉट्स सुबह उतने स्कैरी नहीं लगते।
0: और अब प्रोग्राम को स्कैरी ना बनाते हुए थोड़ा सा म्यूजिकल एंटरटेनमेंट कर लेते हैं।

0: नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें हैं आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
2: हो जाओगे हंस हंस कर लोट पोट,
1: क्योंकि यह है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
3: और डोज में क्या है?
2: डोज में है मजा। जी हाँ, मजा आ गया।
4: अलख निरंजन, क्या बात है बालिके, परेशान क्यों दिख रही है?
3: महाराज, आपने एक प्रवचन में कहा था कि अहंकार करना सबसे बड़ा पाप है, पर जब मैं शीशा देखती हूँ तो सोचती हूँ कि मैं कितनी सुंदर हूँ, तो मुझे बहुत अहंकार हो जाता है, मैं क्या करूं?
4: बच्चा, ये अहंकार नहीं, गलतफहमी है, गलतफहमी। और गलतफहमी होना कोई पाप नहीं है, वो तो भोलापन है।
2: जी हाँ, मजा आ गया।
4: जी हाँ दोस्तों, मजा तो आपको आ गया है और आगे भी मजा आता रहेगा, क्योंकि अभी हमारे बहुत सारे सेगमेंट्स बाकी हैं। तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट रहस्य सीरीज की ओर, जिसका आप सीजन 2 सुन रहे हैं। और खामोश घाटी का आज आप सुनेंगे एपिसोड 2, जिसके आलेख और प्रस्तुति है मोहम्मद आदिल सैफी की।
5: हाय, मेरा नाम आदिल है, आदिल सैफी, और आप सभी लिसनर्स का स्वागत है हमारे रहस्य सीरीज के सीजन 2 में। इस कहानी का नाम है खामोश घाटी और यह है रहस्य सीरीज की दूसरी कड़ी, यानी एपिसोड नंबर 2।

अब जान लेते हैं अब तक की कहानी। कहानी की शुरुआत में आपने जाना था कि एडम और उसकी टीम, जो कि प्रोफेशनल माउंटेन क्लाइंबर्स थे, वो प्लान बनाते हैं यूएस के कोलोराडो स्टेट में मौजूद साइलेंट वैली में जाने के लिए। इसके लिए वो यूएस के एक शहर डेनवर के लिए रवाना होते हैं। वहां से सुबह तकरीबन 8 बजे चेक इन करने के बाद वो बीवर क्रीक के लिए टैक्सीज बुक करते हैं और 11:30 बजे तक वहां पर पहुंच जाते हैं। अब लंच करने के बाद वो अपने ट्रैक पर जाने के लिए प्रिपेयर होते हैं। अब दोपहर के तकरीबन 2:10 पर एडम और उसकी टीम अपना सफर शुरू करते हैं। ठंडी हवा चेहरे पर सब महसूस कर पा रहे थे। वो पहाड़ों की चोटियों पर पड़ती धूप से उनकी चमक को साफ देख पा रहे थे, लेकिन जैसे जैसे एडम और बाकी टीममेट्स ऊंचाई की ओर बढ़ रहे थे, ट्रैक मुश्किल होता जा रहा था। अब ट्रैक पर निकले हुए 2 घंटे हो चुके थे। घना जंगल शुरू हो चुका था। पेड़ों की ऊंचाई इतनी थी कि आसमान की रोशनी मुश्किल से ही जमीन तक पहुंच पा रही थी। अचानक मौसम बदला, धुंध छा गई और आगे का रास्ता दिखना बंद हो चुका था। टीम के एक मेंबर क्रिस का पैर फिसल गया। सब लोग घबरा गए, लेकिन एडम में हिम्मत नहीं आ रही। सबको शांत किया और धीरे धीरे लगातार आगे बढ़ने का डिसीजन लिया। कुछ दूरी पर एक तेज बहाव वाली छोटी नदी रास्ते में आ गई। पानी ठंडा और बहाव बहुत तेज था, लेकिन नदी को पार करने के अलावा उनके पास कोई और दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। सबने मिलकर एक दूसरे का हाथ थामा और सावधानी से नदी पार की। वो पल एडम और टीममेट्स के लिए रोमांच से भरा हुआ था और डर से भी, क्योंकि सबको डर भी लग रहा था। इसी तरह चलते चलते सूरज ढलने को पहुंच चुका था। शाम के 7 बज चुके थे। उन्होंने अपनी टॉर्चेस ऑन की और आगे बढ़ते चले गए। थोड़ी ही देर में वो सब अपनी मंजिल पर पहुंच चुके थे। एडम और बाकी टीममेट्स आखिरकार साइलेंट वैली पहुंच चुके थे। उन्होंने वहीं अपना कैंप लगाया और खाना पकाना शुरू किया। अब रात भी काफी हो चुकी थी और सभी थके हुए थे, तो सभी को जल्दी नींद भी आ गई थी। अब अगले दिन यानी 6 अक्टूबर साल 1987 सुबह के तकरीबन 6 बजे जब सभी की आंखें खुली, तो उनके सामने जो नजारा था उसको देखने के बाद वो सभी अपना ट्रैक के दौरान स्ट्रगल भूल चुके थे। नीचे देखने पर बादलों का समंदर फैला हुआ था। दूर दूर तक हरे पहाड़ और सुनहरी रोशनी में नहाई हुई वैली दिख रही थी। हवा इतनी साफ थी कि हर सांस में ताजगी महसूस हो रही थी। उस पल सभी टीममेट्स चुप थे, शायद इसलिए कि उनके पास बोलने के लिए अल्फाज तो थे, पर नेचर की खूबसूरती ने उन्हें शब्दों से परे कर दिया था। एडम वो नज़ारा देखने के बाद स्पीचलेस हो चुका था और एक मुस्कुराहट थी जो सभी टीममेट्स के चेहरे पर छाई हुई थी। अब इसी तरह से समय बीतता है। शाम के 6 बजे सब लोग बहुत खुश थे। टेंट के बाहर आग जलाकर हाथ सेक रहे थे क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी, लेकिन एडम सबसे अलग जाकर खड़ा था क्योंकि एडम को कुछ बहुत अजीब महसूस हो रहा था। उसको घबराहट महसूस होनी शुरू हो चुकी थी, लेकिन एडम ने इस घबराहट का भी जिक्र बाकी टीममेट्स से नहीं किया। रात के तकरीबन 2:13 पर डेनवर सिटी के पुलिस हेडक्वार्टर में एक अजीब सिग्नल शो होता है जो कि बार बार डिस्टॉर्ट हो रहा था। पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो सिग्नल क्या है। अब पुलिस ने डिसीजन लिया कि जिस लोकेशन से वो सिग्नल आ रहा है वहां जाकर वो उस चीज की कल सुबह जांच करेंगे ताकि उन्हें पता लग सके। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर हम एडम की स्टोरी से डेनवर सिटी पुलिस स्टेशन में कैसे पहुंच गए। वो इसलिए क्योंकि इतनी रात को GPS ट्रैकर से सिग्नल भेजने वाला और कोई नहीं बल्कि एडम ही था। आखिर ऐसा क्या हुआ एडम और बाकी टीममेट्स के साथ जो कि रात को 2 बजे उन्हें सिग्नल भेजना पड़ा। इन्हीं सवालों के जवाब हम जानेंगे कल यानी रहस्य सीरीज की इस कहानी के एपिसोड नंबर 3 में। सो हमारे युवाणी प्रोग्राम को सुनना ना भूलें।

0: दोस्तों वक्त हो गया है हमारे सेगमेंट लव स्टोरीज का, जिसमें आज आप सुनेंगे लव स्टोरी परिणीता एपिसोड नंबर 3।
1: नमस्कार, हेलो एंड गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूँ आपकी अपने रेडियो साथी शैली और आज है दिन परिणीता के भाग 3 का। पिछले भाग में आपने सुना कैसे ग्रीन बाबू के आने से शेखर बेचैन रहने लगा। उसे ललिता का किसी और के करीब जाना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था और फिर एक रात मजाक में शेखर ने ललिता के गले में फूलों की माला डाल दी, जो ललिता के लिए सिर्फ मजाक नहीं बल्कि एक रिश्ते का एहसास बन गया। लेकिन शेखर अब भी अपने दिल की बात समझ नहीं पा रहा था। अब धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा था। पहले जहाँ शेखर और ललिता हर छोटी बड़ी बात साथ किया करते थे, अब उनके बीच खामोशी बढ़ने लगी थी। शेखर का स्वभाव पहले से ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया था। वो ललिता से दूर भी रहना चाहता था और उसे किसी और के करीब भी नहीं देख सकता था। दूसरी तरफ ललिता अब पहले जैसे निश्चिंत नहीं रही थी। उसके दिल में शेखर के लिए प्यार था, लेकिन साथ ही एक डर भी था कि कहीं ये रिश्ता सिर्फ उसके दिल तक सीमित न रह जाए। उधर गुरुचरण बाबू की परेशानी बढ़ती जा रही थी। कर्ज इतना बढ़ चुका था कि घर बचाना भी मुश्किल लगने लगा था। समाज के लोग बातें बनाने लगे थे, रिश्तेदार ताने देने लगे थे और इन सबके बीच ललिता चुपचाप सब सह रही थी। इसी दौरान गिरीन बाबू ने एक बार फिर उनकी मदद की। उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के गुरुचरण बाबू का साथ दिया, इस वजह से घर में सभी उनका सम्मान करने लगे। लेकिन बाहर के लोगों ने बातें बनानी शुरू कर दी। लोग कहने लगे कि शायद गिरीन बाबू और ललिता की शादी होने वाली है। जब ये बात शेखर के कानों तक पहुंची तो जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सच तो यही था कि वो अंदर ही अंदर टूट रहा था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि अगर ललिता उसकी जिंदगी से चली गई तो शायद उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन उसका अहंकार अब भी उसके प्यार से बड़ा था। वो चाहता तो था कि ललिता रुक जाए, लेकिन ये बात कह नहीं पा रहा था। एक दिन ललिता ने हिम्मत करके शेखर से पूछा, अगर मैं कहीं दूर चली जाऊं तो क्या तुम्हें फर्क पड़ेगा? शेखर कुछ पल चुप रहा। उसके दिल में हजारों बातें थी, लेकिन होठों पर सिर्फ खामोशी। उसने नजरें फेर ली और बस इतना कहा, तुम्हारी जिंदगी है, जो ठीक लगे करो। ये बात सुनकर ललिता की आंखें भर आईं। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद शेखर कभी उसे नहीं समझ पाएगा। उस रात दोनों अपने अपने कमरों में जागते रहे। एक तरफ प्यार था, दूसरी तरफ अहंकार, और इन दोनों के बीच गलतफहमियों की एक ऊंची दीवार खड़ी हो चुकी थी। क्या ये गलतफहमियां शेखर और ललिता को हमेशा के लिए अलग कर देंगी? क्या शेखर कभी अपने दिल की बात कह पाएगा, या फिर बहुत देर हो चुकी है? जानने के लिए सुनिए परिणीता का भाग 4।
2: हेलो हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं यूथ कनेक्ट, जहां हर सेगमेंट में है फन, मस्ती और फुल एंटरटेनमेंट का तड़का।
3: बिल्कुल, और आज हम स्टूडियो से बाहर निकल चुके हैं सना, तो देखते हैं कि हमारे जो दोस्त हैं कौन कौन हमें मिलने वाला है और कैसे वो हमारे सवालों के जवाब देने वाले हैं अलग अलग हमारे सब सेगमेंट्स में।
2: बिल्कुल अंशिका, तो चलिए साथियों, इसी के साथ हमें मिल चुके हैं हमारे कुछ युवा साथी, तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं उनसे उनका नाम। आपका नाम?
4: मेरा नाम रिया है।
2: तो रिया, हमारे एक सेगमेंट होता है यूथ कनेक्ट, जिसके सब सेगमेंट है अरे दीवानो मुझे पहचानो, गलत है तो सही है, समय की सैर, हूबहू। इस सेगमेंट में हम हमारे यूथ से पूछते हैं कुछ ऐसे सवाल जिनके आंसर्स कभी फनी होते हैं तो कभी शॉकिंग। तो अगर आप कहें तो हम शुरू करें अपना सेगमेंट।
4: जी
3: ठीक है, तो हम बढ़ते हैं हमारे पहले सब सेगमेंट की ओर, जो है समय की सैर। ऐसा आप अपनी लाइफ के बारे में बताइए जो मतलब कभी आपको लगता है कि वो शायद उस टाइम पे गलत हुआ है, या आप उसको कुछ चेंज करना चाहती हैं। अगर आपको अभी हम मौका दें कि आप उसको चेंज कर सकती हैं प्रेजेंट में, तो क्या ऐसी चीज होगी जो आपके माइंड में अभी आ रही है, तो बताइए।
4: मेरे एग्जाम चल रहे थे और मैंने गलत पेपर देखा और मैं उसका पढ़ के चली गई, और मुझे बाद में पता चला कि मेरा मैथ का पेपर था, और इस वजह से मेरा ये रैंक बहुत कम आई। लेकिन अब मैं चाहती हूँ अगर मैं इस पेपर को दोबारा दे सकूँ तो इस अच्छी रैंक ला सकती हूँ।
3: तो आप मतलब कोशिश करेंगी अच्छे से अच्छी रैंक लाने की अगर आपको प्रेजेंट में ऐसा कुछ मौका मिलता है तो?
4: जी हाँ।
3: ठीक है, बहुत अच्छा लगा। देखिए एग्जाम्स का वैसे भी सना टाइम चल रहा है तो चारों तरफ ही, और इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई, तो हम यूथ से यही कहेंगे कि एग्जाम में जाने से पहले अपनी डेट शीट जरूर चेक कर लें
2: और अच्छे से प्रिपरेशन करके जाएं।
3: एग्जैक्टली, है ना। तो रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके, धन्यवाद।
4: थैंक यू।
3: तो सना, अब इसी के साथ हमें एक और साथी नजर आ रही है, उनकी ओर चलते हैं और हमारे अगले सब सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं हम उनसे उनका नाम। आपका नाम?
5: मनीषा।
3: मनीषा, तो मनीषा हमारा यूथ कनेक्ट में अगला सब सेगमेंट है अरे दीवानो मुझे पहचानो। तो आप खुद को कितना पहचानती हैं, हम ये जानना चाहते हैं, क्योंकि इसमें आपको बताना है कि आपकी एक बेस्ट क्वालिटी जो आपको लगता है कि हाँ मुझमें अच्छाई है, और एक आपकी जो बुरी क्वालिटी। तो सबसे पहले आपकी जो अच्छाई आपको खुद में नजर आती है वो हमारे लिसनर्स के साथ शेयर कीजिए।
5: मेरी अच्छाई ये है कि मैं हर किसी के साथ फ्रेंडली हो जाती हूँ, और मेरी बुराई ये है कि मेरी छोटी छोटी बातों पर रोना आ जाता है।
3: ये तो ऑलमोस्ट सभी लड़कियों के साथ होता है सना, है ना, कि छोटी छोटी बात पे रोना आ जाता है, क्योंकि देखो लड़कियां होती हैं सेंसिटिव। और हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि कभी कभी हर बात को फील करना भी ज़रूरी नहीं होता है, या छोटी छोटी बातों पे रोना ज़रूरी नहीं है, आप चीज़ों को अवॉइड करना सीखें। ठीक है, तो आपको कैसा लगा हमारे साथ जुड़ के?
5: बहुत अच्छा लगा।
3: साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।
5: धन्यवाद।
0: दोस्तों, वक्त के इस सफर में चलते चलते हमें मिल चुकी हैं हमारी एक और साथी, तो आइए जान लेते हैं उनसे उनका नाम।
6: हेलो, आई एम मंतशा।
0: तो मंतशा, हमारा एक सेगमेंट है यूथ कनेक्ट, जिसके सब सेगमेंट्स होते हैं, तो उसमें एक सेगमेंट है हूबहू, जिसमें हमारा आपसे क्वेश्चन ये रहेगा कि आपको अपनी लाइफ में आगे चलकर किसकी तरह बनना है एग्जैक्ट, मतलब आपके इंस्पिरेशन या आपके लाइफ में कोई ऐसा रोल मॉडल है जिसकी तरह आप बनना चाहती हैं?
6: Yes, of course, my mother.
0: Your mother, very nice. और वो क्यों?
6: Because वो जिस तरीके से सब चीज़ों को मैनेज करके चलती हैं, जिस तरीके से लाइफ में स्ट्रगल कर रही हैं, दैट्स वाई मैं उनकी तरीके से बनना चाहती हूँ। हर सिचुएशन को वो किस तरीके से हैंडल करके लेके चल रही हैं, किस सिचुएशन में कहाँ क्या काम करना चाहिए, यू नो वेरी वेल।
3: वैसे सना, मुझे लगता है हर लड़की अपनी माँ जैसा तो ज़रूर बनना चाहे। तो अभी हम आपसे ये जानना चाहेंगे मंतशा, आप क्या कर रही हैं पढ़ाई में या क्या चल रहा?
6: पढ़ाई में मेरा MSc कंप्लीट हो चुका है, अब करेंटली मेरा GNM चल रहा है और मैं टीचिंग भी करती हूँ।
3: बहुत ही अच्छी बात है, इसी तरह आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ती रहिए। और ये जो आपने कहा कि आप अपनी मदर के जैसा बनना चाहती हैं, तो आप उसके लिए वर्क भी कर रही हैं, ऑब्वियसली बात है, आप उनको ऑब्जर्व करती होंगी।
6: यस यस, ऑफ कोर्स।
3: ओके, तो कीप गोइंग ऐसे ही मंतशा।
2: तो चलिए दोस्तों, अब ले चलते हैं इस कहानी को, इस सेगमेंट को थोड़ा सा और आगे, और ले चलते हैं अपने दूसरे युवा साथी की तरफ, जिसमें सबसे पहले जान लेते हैं उनसे उनका नाम। तो आपका नाम?
7: मेरा नाम साइमा है।
2: साइमा, तो जैसे कि आपको हम बता दें कि हम आकाशवाणी से हैं और हमारा एक सेगमेंट होता है यूथ कनेक्ट, उसका एक सब सेगमेंट है गलत है तो सही है, जिसमें आपको बस इतना करना है कि जो सवाल हम आपसे पूछेंगे आपको उनके गलत जवाब देने हैं, सही जवाब नहीं देने। अगर सही जवाब दे दिया तो आप आउट हो सकते हैं। तो
7: Yes.
2: Okay. तो सबसे पहले हमारा आपसे सवाल है, ताजमहल किसने बनाया?
7: मेरे पड़ोसी ने।
2: ओह, वेरी नाइस। दूसरा सवाल है आपके लिए, एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं?
7: 12।
2: मोबाइल किस काम आता है?
7: रोटी सेकने के।
2: वाह, बहुत अच्छे जवाब आप दे रही हैं। तो आगे बताइए, चांद कहाँ रहता है?
7: जमीन पर।
2: क्रिकेट में बैट किस लिए होता है?
7: कैच करने के लिए।
2: तो सायमा, आप हमारा ये राउंड जीत चुकी हैं और हमें आपको अपने इस प्रोग्राम में शामिल करके बहुत अच्छा लगा। क्या आपको हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़कर अच्छा लगा?
7: जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर।

0: बहुत अच्छा लगा और ये आपके प्रोग्राम में जुड़कर भी बहुत अच्छा लगा।
1: ओके, थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू, योर वेलकम।
2: तो हमारे यूथ से बात करके हमारे सेगमेंट यूथ कनेक्ट के बाद अब चलते हैं हमारे पहले सेगमेंट की ओर, वापस से लौट चलते हैं उसकी ओर, जो है बूझो तो जाने। और हमारा आज का आपसे सवाल था कि चंदेरी का युद्ध किस वर्ष हुआ था, जिसका सही जवाब है सन 1528 में।
3: दोस्तों इसी के साथ जान लेते हैं सही जवाब देने वाले लिसनर्स के नाम। मुकेश कश्यप, सदाशिव, लाल मोहम्मद, आर के चौहान, निसार सलमानी, सुरेश गगनेजा, विजय सुलरकल, महेंद्र मोदी, धीरज भाई, एमडी यासीन अंजान, प्रवीण चौहान, अभिजीत, संजय डिग्निया, मिसबा शमसी, तानी नौटियाल, मोहम्मद रफीक पवार, मसरूर हसन, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, जगदीश धाकड़, फागुराम यादव, विट्ठल सुरेशे, रामकुमार रेवाड़, बबलेश पवार, हीरामणि वर्मा, महाराज कीर्तनपुरी, बी आई धाकड़, आसिफ चौधरी, गंगा सिंह रावत, राजेश वर्मा, राष्ट्रपाल गजभे, अनिल विनोचा, सुदर्शन शाह, जॉन डिकैस्ट्रो, पंजली नवाकर, नंद कुमार ठाकुर। दोस्तों इसी के साथ अब आइए आपको सुनवाते हैं एक और खूबसूरत सा गीत।

0: दोस्तों, ये तो था हमारा आज का युववाणी कार्यक्रम। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आपको हमारे कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं हमें जरूर बताइएगा अपने खत के जरिए। खत के लिए हमारा पता है कार्यक्रम युववाणी अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद पिन कोड 2467-63।
1: हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9457078288। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। अपडेटेड रहने के लिए हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल, इनकी आईडी का नेम है आकाशवाणी नजीबाबाद। दोस्तों, आप हमारे पुराने प्ले, कहानियां, आने वाले प्रोग्राम्स हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी नजीबाबाद पर सुन सकते हैं। आप सभी लाइक, शेयर, कमेंट, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और इसी के साथ अपनी साथी सना
0: और मुझे वंशिका सोती को दीजिएगा कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति।
1: नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना राज्य एजेंसियों को अंतर्राज्यीय खाद्यान्न परिवहन में सहायता प्रदान करेगी, उचित मूल्य की दुकानों को मदद करेगी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
1: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जो सरकारों के एजेंसीज राज्य में तो एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिमुनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सार्थक पीडीएस योजना के दूसरे चरण की मंजूरी को स्वागत किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि सरकार गरीबी उन्मूलन योजनाओं को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए उनमें प्रौद्योगिकी का समावेश कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। न्यायालय ने कहा है कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। संघ लोक सेवा आयोग ने पहली बार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। आयोग ने कहा कि परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार 31 मई शाम 6 बजे तक upsconline.nic.in पर उपलब्ध प्रश्न पत्र आपत्ति पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए कम से कम दो भारतीय भाषाओं सहित तीन भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने संबंधी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करेगा। शीर्ष न्यायालय ने केंद्र सरकार, बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में आज और 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक

0: और तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को वर्ष 2030 तक $50 अरब तक बढ़ाने के लक्ष्य की पुष्टि की। कई प्रमुख मानवाधिकार संगठनों और छात्र संस्थाओं ने पाकिस्तान में बलूच नागरिकों के जबरन गायब किए जाने की बढ़ती घटनाओं की कड़ी निंदा की है। आरोप है कि इन घटनाओं को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा अंजाम दिया जा रहा है। इन संगठनों ने कहा कि कई प्रभावित परिवारों के लिए ईद का त्यौहार शोक, अनिश्चितता और अपनों से बिछड़ने का दर्द में बदल गया है। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट के पहले एलिमिनेटर मुकाबले में आज शाम 7:30 बजे न्यू चंडीगढ़ में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। इस मैच की विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस से मुकाबला करेगी, वहीं हारने वाली टीम प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर। संध्या के 6:05 हुए हैं। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है हमारे किसान भाइयों का मनपसंद दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को आपके भैया जितेंद्र कुमार की राम राम। और भाई सब राज्य खुशी? देखो भाई सब ठीक ठाक होंगे और हमारे भाइयों की खेती किसानी भी ठीक ठाक चल रही होगी। भैया देखो खेती किसानी तो ठीक ठाक चल ही रही है, लेकिन भैया गर्मी बहुत पड़ रही देखो, और लू चल रही। तो भाई हम तो हमारे किसान भाइयों से यो ही बात कहेंगे कि भाई आप लू से अपना बचाव करें, साथ ही साथ अपने बचाव के साथ साथ भैया अपने पशुओं की भी देखभाल रखें, क्योंकि भाई जब हमें गर्मी लगा है या भैया और कोई अन्य परेशानी हो है तो भैया हम कह दें हैं कि भाई गर्मी लग रही है पंखा चला दो या पंखे में बैठ जा हाँ, और भाई देखो ठंड में को बैठ जा हाँ, लेकिन भाई जो हमारे पशु हैं वो हमसे नहीं कह पाते हैं। तो भाई उनका ध्यान हम रखना है कि भाई हमारे पशु को गर्मी ना लग रही हो। तो भाई हमें अपनी पशुशाला जो हमारे पशुओं की पशुशाला है उसे भैया हवादार रखना है, साथ ही साथ भैया उसमें पंखे लगा दें। मैं जिन भाइयों के यहाँ अपने पशुओं की पशुशाला में पंखे ना हो या हवादार कम हो तो भाई वो जो है भैया दरवाजे अपने रात में या दिन में भैया खोल कर रखें, और दोपहर की जहाँ तक बात है तो भाई आप अपने पशुओं को समय से भैया लगभग 9:30 या 10 बजे के करीब भैया पानी पिलाकर ऐसी छायादार स्थान पर बांधना जहाँ हमारे पशु को हवा लगे और लू बिल्कुल भी ना लगे, क्योंकि भाई लू लगने से हमारा पशु असहज महसूस करता है, साथ ही साथ असहज के साथ साथ भैया दूध देना हमें कम कर देगा। हमारे किसान भाई सोचे हैं कि भाई हमारा पशु दूध पर घटता जा रहा, भाई हम दाना मिश्रण भी खिला रहे हैं, हरा चारा भी खिला रहे हैं पशु को अपने, लेकिन भैया पशु हमारा जो है दूध पर घट रहा है, तो कारण क्या? भाई कारण है लू का, गर्मी का। तो भाई हम अपने पशुओं का विशेष ध्यान रखना है, लू से बचा कर रखना है, साथ ही साथ दिन में भैया अपने पशुओं को 3-4 बार भैया ताजा साफ सुथरा पानी पिलाना है, ना कि भैया टैंक का, क्योंकि आजकल तो देखो सभी के पास टैंक रखें, तो भाई जो टैंक का पानी हो है भैया वो भरा रहा है तो भैया वो गर्म हो जा है, तो भाई उस पानी को हम अपने पशु को नहीं पिलाना है, क्योंकि जब हम पशु के आगे उस पानी को रखेंगे तो भाई हमारा पशु उसे नहीं पीने का, हम सोचेंगे पशु हमारा प्यासा नहीं है, लेकिन भैया पशु हमारा प्यासा होता है, उसे ताज़ा साफ सुथरा पानी पिलाऊँ और समय से भैया उसकी चारे की दाने की विशेष ख्याल रखें, विशेष ध्यान रखें, ताकि भैया हमारा पशु जो है कमजोर ना हो, उसे लू ना लगे, साथ ही साथ भैया हमारे किसान भाइयों को अच्छा दुग्ध उत्पादन हमारा पशु देता रहे। तो भाई ये तो कुछ बातचीत हो गई देखो लू की, साथ ही साथ भाई हम पशु रखते हैं और भैया खेती किसानी कर रहे हैं, क्योंकि भाई खेती किसानी का जो हिस्सा है वो बड़ा अहम है पशुपालन। तो भाई पशुओं से हमारे खेतों के लिए गोबर की सड़ी खाद मिला है, जिससे भाई हमारे खेत उपजाऊ बने हैं। और भाई आज हम देखते भी हैं कि भाई जहाँ तहाँ अस्पतालों में भैया भीड़ लग रही, कहीं भी बैठने की जगह नहीं मिलती, और भाई खड़े खड़े हमारे किसान भाई हों या भैया जो हमारी माताएं बहनें हैं या हमारी बहनें हैं या बालक हैं, भैया वो दवाई लावा हैं तो भैया पूरा दिन खड़े

0: ले निकल जा, भीड़ इतनी अस्पतालों में है। तो भाई कहीं ना कहीं इसके लिए हम भी जिम्मेदार हैं कि भाई आज हम अपने खेतों में इतना रासायनिक उर्वरकों का, रासायनिक कीटनाशकों का, रासायनिक दवाओं का यानी कि खरपतवार नाशियों का इतना प्रयोग कर रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं जो भी हम अपने खेत में डाल रहे हैं वो हम चाहे भैया आधा मिले या उसका चौथाई मिले, वो भैया हमारे पास लौट कर जरूर आता है। तो भाई इसी तरह से जो भी हम अपने खेत में रासायनिक उर्वरक या रासायनिक कीटनाशी डाल रहे हैं तो भैया वो हमारी उपज के साथ हमारे पास लौट कर आ रहा है। तो भाई जब हम उसको खाते हैं या अनाज के रूप में हो, चावल के रूप में हो, या भैया अन्य किसी रूप में सब्जी हो, या भाई अन्य तिलहन हो, भाई जिस रूप में भी हम उसको खाते हैं पीते हैं, भाई वो जो है हमारे शरीर में जाता है। और जब हमारे शरीर में जाता है यानी कि जब हमारे शरीर में जहर जाएगा तो भाई हमारा शरीर जो है कहीं ना कहीं उसका प्रभाव तो झेल नहीं पाता, तो कहीं ना कहीं हम बीमार होते हैं और भैया दवाइयों के बोझ के तले दब जाते हैं। तो भैया आज जो है जैविक खेती की आवश्यकता है, हमारे किसान भाई यदि जैविक खेती करते हैं तो भाई वो जो है अपने खेतों को लंबे समय तक उपजाऊ बना सकते हैं। और साथ ही साथ भैया जो हमारी भविष्य की पीढ़ी है, भाई जो हमारे बच्चे हैं, हमारे बालक हैं, जो भविष्य में खेती करेंगे, भाई उनको हम अपने जो खेत हैं वो लंबे समय तक उपजाऊ देकर जा सकते हैं, ताकि भाई हमारे बालक भी अच्छी तरह से खेती करके और भैया अच्छी उपज प्राप्त करें, अच्छा लाभ कमावें। और भाई जब हम रासायनिक उर्वरक डाल रहे हैं, रासायनिक कीटनाशी डाल रहे हैं, रासायनिक खरपतवार नाशी डाल रहे हैं, तो भाई हमारे जो खेत हैं वो कम उपजाऊ हो रहे हैं, यानी कि उपज हमें नहीं मिल रही है। दूसरे भाई हमारा जो पर्यावरण है वो कहीं ना कहीं भाई प्रदूषित हो रहा, उसमें जो है ऐसी गैसों की जो है अधिकता हो रही है जो भैया मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, उनकी बढ़ोतरी होती चली जा रही है। जो ऑक्सीजन हमारी जीवनदायिनी गैस है भैया वो थोड़ी कम होती चली जा रही, तो भाई जो पर्यावरण है वो प्रदूषित होता जा रहा। साथ ही साथ जो हम मिट्टी में भैया डालना है अपने उर्वरक या भैया रासायनिक दवाएं, भैया वो जो है हमारे खेत की मिट्टी भी प्रदूषित हो रही, भैया वो समय से पहले वो अम्लीय होती चली जा रही है, उपज कम होती चली जा रही। तो भाई हमारे किसान भाइयों को ये कहीं ना कहीं सीधे प्रभावित करते हैं। तो भाई हमें काम वो करना है जिससे भैया हमारे किसान भाइयों की लागत तो हो वो कम और भाई उपज हो वो बढ़िया। अब उपज कम, भैया उपज कम हो रही, लागत बढ़ रही, तो भाई हम जो है जैविक खेती अपनानी है, हमारे खेतों में गोबर की सड़ी खाद डालनी है। साथ ही साथ भाई जो जैविक कीटनाशी हैं जैसे कि भैया गोमूत्र है या भैया नीम का तेल है, ऐसे ऐसे कीटनाशियों का प्रयोग करना है जिससे भैया हमारे खेतों में रासायनिक दवाई नहीं जाने की, तो भाई हम जो है एक शुद्ध उपज मिलेगी जिससे भाई हम जो है एक लंबे समय तक अपना जीवन यापन कर सकते हैं, सुखी रह सकते हैं। और भाई जो उपज हमें मिलती है अगर हम उसे बाजार में ले जाव जैविक उपज को, तो भाई एक प्रमाण पत्र हमें मिलता है, यदि वो प्रमाण पत्र जैविक उपज का है तो भैया उससे तो जो है हम भैया हमारी फसल का दाम जो है वो भी ज्यादा मिलता है। बाजार में आज भैया हम देखते भी हैं कि भाई कहीं ना कहीं जौ की, जो मोटे अनाज मक्का है भैया उनकी डिमांड है। भाई उनकी डिमांड इसलिए है क्योंकि भैया उनमें मोटे अनाजों में चाहे जौ हो, मक्का हो या अन्य जो है रागी है, कोदो है, साबा है, भाई इनमें जो है रासायनिक उर्वरकों का, रासायनिक कीटनाशकों का हमारे किसान भाई प्रयोग नहीं करते। और भाई ये ऐसी फसलें हैं जो कि कम लागत में अच्छा उत्पादन हमारे किसान भाइयों को देती हैं। तो भैया देखो हमें ये ध्यान रखना है क्योंकि आज हम देखते हैं कि भाई काफी ऐसे मरीज हैं जो कि शुगर के या डायबिटिक हैं, तो डायबिटिक होने के बाद भैया काफी परहेज हमारे किसान भाइयों को, हमारे साथियों को करना पड़ता है। तो इस तरह से आप यदि अपने खेतों में रासायनिक उर्वरकों को ना डालना, जैविक खेती की ओर बढ़ें, तो भाई आपको जो हो अपनी खेती किसानी से अच्छा लाभ होगा और हमारे जो खेत की मिट्टी है वो लंबे समय तक उपजाऊ बनी रहेगी। तो भाई देखो ये तो कुछ बातचीत हो गई जैविक खेती आज की आवश्यकता के संबंध में, और लू की हम बात कर ही रहे थे भाई। साथ ही साथ किसान भाइयों का कार्यक्रम में मनोरंजन भी कराएंगे, लेकिन भाई पहले कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा विराम और सुनते हैं कुछ जरूरी संदेश।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

0: AIR at 90.
1: कम लागत समृद्ध किसान, यही आज का है अभियान।
2: पोषक तत्व बचाएं, मिट्टी को स्वस्थ बनाएं।
1: यूरिया और डीएपी का संतुलित उपयोग,
2: खुशहाली का नया प्रयोग।
3: किसान भाई अंधाधुंध उर्वरकों के प्रयोग से बचें और खेती की लागत कम करके प्राकृतिक संसाधनों को बचाएं। भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मोतीपुरम मेरठ और आकाशवाणी नजीबाबाद द्वारा जनहित में जारी।
4: तो संदेश के बाद एक बार फिर स्वागत है हमारे सभी किसान बहन भाइयों का कार्यक्रम में। और भैया देखो, हम बात जैविक खेती के संबंध में कर रहे थे, तो भाई हमारे खेतों में इस समय भैया जो हमारी नकदी फसलों में आता है गन्ने की फसल, तो भाई गन्ने की फसल मुख्य रूप से हमारे किसान भाई उगाते हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भैया गन्ने को मुख्य फसल भी मानते हैं भाई हम, क्योंकि भाई गन्ने का जो पैसा है वो हमारे किसान भाइयों को एक साथ मिल जा है। और भैया जब एक साथ पैसा मिल जा है हम, तो भाई हम किसी बेटी की शादी करनी है भैया, उसमें खर्चा हो है भाई, अन्य कोई काम करना है, बालकों की पढ़ाई है और भाई दुख बीमारी का खर्चा है, तो भाई उसमें हमारे किसान भाई थोड़ा सा इकट्ठा करके रख ले हैं, तो भैया उसमें जो है जो हमारा साल भर का खर्च होता है वो भैया उसमें हमारे किसान भाई करते रहते हैं। तो भाई गन्ना जो है हमारी फसल, उसमें भैया हम रासायनिक उर्वरकों का कम प्रयोग करें, रासायनिक कीटनाशकों का कम प्रयोग करें, तो भाई ऐसी ही एक जानकारी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भाई। जानकारी का विषय है गन्ने में समेकित पोषण द्वारा नासी जीवों के नियंत्रण एवं लागत में कमी लाने के नायाब तरीके, क्योंकि भाई आजकल हमारे किसान भाई रासायनिक उर्वरक इतने डाल रहे हैं कि भैया हमारे किसान भाइयों की लागत बढ़ रही है, तो भाई ऐसे नायाब तरीके कौन कौन से हैं, इस संबंध में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर चंद्र भानु जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं भैया कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मोदीपुरम मेरठ में, और उनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे भैया नरेश पाल सिंह। तो आइए सुनते हैं ये बातचीत।
5: किसान भाइयों, आज हमारे कार्यक्रम के बीच हैं डॉक्टर चंद्र भानु जी जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मोदीपुरम मेरठ में, और डॉक्टर साहब जो है पादप रोग विज्ञान विभाग से आते हैं, और आज आपसे बातचीत का विषय है गन्ने की फसल में समेकित पोषण प्रबंधन द्वारा नाशी जीवों के नियंत्रण एवं लागत में कमी लाने के नायाब तरीके। तो सबसे पहले मैं आपका स्टूडियो में स्वागत करता हूं।
6: नमस्कार, मैं डॉक्टर चंद्र भानु सभी किसान भाइयों को आदर नमस्कार करता हूं।
5: तो डॉक्टर साहब, सबसे पहला मेरा आपसे यही सवाल रहेगा, जैसे कि हमारा ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश है और यहाँ पर हमारे किसान भाई अधिकतर नकदी फसल के रूप में गन्ने की फसल उगाते हैं, और गन्ने की फसल में गत कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं कीड़ों और बीमारियों का इतना प्रकोप है कि किसान भाई बहुत परेशान हैं। आपने सुना भी होगा कि गन्ने की जो प्रजाति है 0238 वो एक कैंसर नामक रूपी रोग से ग्रसित है, जिसको गन्ने का कैंसर कहते हैं, गन्ने का लाल सड़न,
6: रेड रॉट बीमारी, जी जी लाल सड़न रोग,
5: और हमारे किसान भाई जो है इससे बहुत परेशान हैं। कुछ किसान भाई बहुत ज्यादा आर्थिक हानि उठाए बैठे हैं इस गन्ने की फसल में इस रोग के द्वारा।
6: जैसा कि और हम जानते हैं
5: जी
6: कि हमारे खान पान से हमारा स्वास्थ्य निर्धारित होता है
5: जी हाँ।
6: जिस प्रकार से मनुष्यों पशुओं और जीव जंतुओं के लिए उनका खान पान महत्वपूर्ण होता है उनके स्वास्थ्य को निर्धारित करने के लिए, उसी प्रकार से जो समुचित पोषण प्रबंधन हमारे फसलों के स्वास्थ्य को भी निर्धारित करता है
5: जी।
6: अगर आप देखिए तो कुल 17 तरह के पोषक तत्व तो हमारी फसलों को चाहिए होते हैं, और हमारा किसान भाई सामान्यतया यूरिया खाद के रूप में, खाद उर्वरक के रूप में, पहले तो पशुपालन स्ट्रांग था तो गोबर की खाद और अन्य जैविक खादों का प्रयोग ज्यादा होता था, लेकिन आज की डेट में कमर्शियल एग्रीकल्चर बहुत तेजी से बढ़ा है और पशुपालन कंपोनेंट थोड़ा कमजोर सा हो रहा है, इसलिए कूड़ी की खाद जिसे यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में बोलते हैं या गोबर की खाद का प्रयोग कम हो रहा है, और ऐसे में हमारे किसान भाई मुख्य रूप से 3-4 खादों पे पूरी तरह से डिपेंड हो गए हैं गन्ने की फसल के लिए
5: जी।
6: तो वो है यूरिया, डाई हो गया, कुछ किसान भाई रामबाण नाम से जो सुपर फास्फेट आती उसका प्रयोग करते हैं, कुछ एक माइक्रो न्यूट्रिएंट डाल देते हैं और बहुत कम मात्रा में पोटाश डालते हैं। तो सही से अगर देखा जाए, समेकित पोषण प्रबंधन के लिए बात करी जाए, तो जो अनुपात होना चाहिए मतलब नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश का, वो 4:2:1 का है।
5: बताया कि 4:2:1 का अनुपात, तो किसान भाई इसे क्या समझेंगे 4:2:1?
6: तो इसका सीधा है कि अगर नाइट्रोजन हम 4 किलो डाल रहे हैं तो फास्फोरस 2 किलो पड़ना चाहिए और 1 किलो पोटाश पड़ना।
5: तो डॉक्टर साहब, अब हम बात करते हैं गन्ने में समेकित पोषण प्रबंधन के लिए किसान भाई किस प्रकार से खाद और उर्वरकों का प्रयोग करें, और मोटे तौर से हम आपसे पूछना चाहेंगे कि समेकित पोषण प्रबंधन है क्या?
6: तो बहुत अच्छा प्रश्न आपका। तो समेकित पोषण प्रबंधन का मतलब होता है कि फसल की आवश्यकता के अनुसार मृदा के स्वास्थ्य को बनाए रखते हुए हम पौधों की अधिकतम उत्पादन कैसे लें, उसके लिए कौन कौन सी खादें और उर्वरक का कैसे कैसे और कब कब प्रयोग करें, ये सब संतुलित पोषण प्रबंधन के अंतर्गत आता है। तो मोटे तौर पर अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बात करी जाए तो हमारे किसान भाई यहाँ बीघे की भाषा बड़े अच्छे से समझते हैं। तो अगर हम 1 बीघे की बात करें तो अगर 1 बीघे गन्ने की में किसान अपना संतुलित पोषण प्रबंधन करना चाहता है तो अगर उसके पास उपलब्ध है तो कूड़ी की खाद कम से कम 8 से 10 क्विंटल तो अवश्य प्रयोग करना चाहिए 1 बीघे में भूमि के तैयारी के समय। उसके उससे क्या है, बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट मिल जाते हैं, बहुत सारा नाइट्रोजन और फास्फोरस पोटाश भी मिलता है जिससे हमें केमिकल फर्टिलाइजर पे निर्भरता कम हो जाती है। इसके अलावा जो प्रति बीघे में रिकमेंडेशन है यूरिया डाई पोटाश की, तो यूरिया अधिकतम 23 से लेकर 28 किलो प्रति 30 किलो के आसपास बोर की फसल में यानी कि बोई हुई फसल में और 28 किलो पेड़ी वाली फसल में, लेकिन किसान भाई 50 किलो तक डालते हैं जो कि सरासर अपनी फसलों के साथ अन्याय है। तो किसान भाइयों से निवेदन करूंगा शुरू से लेकर आखिर तक यूरिया अधिकतम 25 से लेकर 28 किलो पड़नी चाहिए। इसके अलावा जो एक बीघे में क्योंकि यहाँ के किसान भाई बीघे की भाषा अच्छे समझते हैं तो मैं इसलिए बीघे में बता रहा हूँ। डाई खाद जो DAP है इसकी मात्रा 10 किलो प्रति बीघे है अधिकतम। पोटाश जो कि पोटेशियम क्लोराइड म्यूरेट ऑफ पोटाश है वो 8 किलो। सल्फर आज की डेट में देखा जाए तो सल्फर नामक पोषक तत्व की डिफिशियंसी भी बहुत एरिया में बढ़ती जा रही है। अच्छा। इसकी रिकमेंडेड मात्रा है 2 किलो प्रति बीघा। इसके अलावा हमारे किसान भाई अनुभव करते हैं कि उनकी फसल पेड़ी की फसल जो है अक्सर पीली पड़ जाती है तो ये सबसे बड़ी है। तो उसमें आयरन जो लौह तत्व इसकी कमी हो जाती है तो केवल 0.5 किलो फेरस सल्फेट अगर हम प्रति बीघे की दर से प्रयोग कर देते हैं तो वह कमी दूर हो जाती है। तो इसके अलावा कई एरिया में बोरान या कैल्शियम की कमी होती है लेकिन अगर हम गोबर की खाद या हरी खाद का प्रयोग संतुलित पोषण प्रबंधन के लिए करते हैं तो इन पोषक तत्वों की उतनी कमी नहीं होती है।
5: सब जिंक की बात करें,
6: हाँ, जिंक 1.5 किलो प्रति बीघे के हिसाब से जिंक आज की डेट में बात करी जाए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तो गन्ने धान गेहूं सभी फसलों में इसकी कमी के लक्षण दिखते हैं। तो 1.5 किलो प्रति बीघा के हिसाब से अगर हम जिंक डाल दें, अब बात आती इन खादों को हम डालें कैसे कैसे, हाँ कब कब प्रयोग करें। तो किसान भाइयों चूंकि शुरुआती अवस्था में गन्ने की जड़ उतना विकास नहीं होती है तो शुरू शुरू में बोते समय अगर हम यूरिया की बात करें तो केवल 5 किलो यूरिया प्रति बीघे की दर से सफिशियंट रहती है। फिर 60 दिन बाद जब एक्टिव टिलरिंग फेज में कल्ले निकलने की अवस्था में होता उस समय यूरिया की मैक्सिमम नाइट्रोजन की मैक्सिमम डिमांड होती है तो 10 किलो यूरिया प्रति बीघे की दर से किसान भाई डाल सकते हैं। अच्छा। और यूरिया की बची हुई मात्रा जो 10 किलो है 25 किलो में से वो पड़ेगी जून के अंतिम सप्ताह में यदि किसान भाइयों ने फरवरी या मार्च में गन्ना बोया है। यदि गन्ना आपका सामान्यतया गन्ना पेड़ी गेहूं सिस्टम में हमारे किसान भाई लेट बोते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो उनकी यूरिया की आखिर डोज जुलाई तक डाल सकते हैं 15 जुलाई तक। उसके बाद यूरिया का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कई हमारे किसान भाई खड़े गन्ने में और बाद की अवस्था में कल्ले निकलने के लिए डाल देते हैं जो कि सरासर गलत प्रैक्टिस है। उससे सिर्फ गन्ने का नुकसान ही होता, फायदा नहीं होता है। इसके अलावा डाई की जगह अगर सुपर फास्फेट डाल रहे हैं, कई किसान भाई डालते हैं, तो DAP ने प्रयोग करके उसका 2.5 गुना यानी कि 10 की जगह 25 किलो सुपर फास्फेट डाल देते हैं। जिंक का प्रयोग थोड़ा बाद में करते हैं। फेरस सल्फेट का सारा जो 0.5 किलो बीघा है और सल्फर 2 किलो बीघे का, इसका भी पूरी मात्रा बुआई के समय खेत में प्रयोग कर दें। अच्छा। इसके बाद जो बचा हुआ जिंक सल्फेट हमारा बच जाता है जो 60 दिन पे हम 10 किलो यूरिया देते हैं उसके साथ प्रयोग करें और जो बची हुई 10 किलो यूरिया है उसका प्रयोग जून के अंतिम सप्ताह में या जुलाई के अंतिम सप्ताह में यदि गन्ना लेट बोया गया है। इसके साथ साथ किसान भाइयों को ध्यान रखना चाहिए, जितनी अधिकतम मात्रा में उपलब्ध हो गाय के गोबर से बनी हुई खादें, जैसे गोबर की खाद, केंचुआ खाद, कंपोस्ट खाद, या गोमूत्र या भैंस का, जिस भी लाइव स्टॉक का, पशु का पेशाब हो, उसका एक भी बूंद बर्बाद न जाए, उसका प्रयोग हमारे खेत में अवश्य होना चाहिए। और जितना तरह का भी फसल अवशेष कूड़ा कचरा है वो जरूर रिसाइकिल होना चाहिए किसी न किसी पार में हमारी फसल के अंदर।
5: अच्छा डॉक्टर साहब, समेकित पोषण प्रबंधन गन्ने में जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्व है, इनका क्या महत्व है और सूक्ष्म पोषक तत्व क्या हम स्प्रे के माध्यम से भी अपनी फसल को दे सकते हैं?
6: बिल्कुल, अच्छा प्रश्न आपका
5: जी।
6: चूंकि किसान भाई मुख्य रूप से देखते हैं कि आप यूरिया, डाई और बहुत कम मात्रा में पोटाश पे डिपेंडेंट रहें, और कई खेतों में एक देखा जाए आज की डेट में तो 10-10 साल तक कोई भी गोबर की खाद या कूड़ा कचरा नहीं पड़ता है।
5: जी, जी।
6: इससे क्या होता है, जो मेजर न्यूट्रिएंट सबसे ज्यादा हमारी फसल अवशोषित करती है, पोटाश, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, तो ये बहुत मात्रा में एग्जास्ट हो जाते हैं। इसके साथ साथ जो माइक्रो न्यूट्रिएंट जैसे आयरन हो गया, जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, और कई तरह के पोषक तत्व हैं, बोरान हो गया, इनकी कमी निरंतर उत्पादन से बढ़ती जाती है। तो जब इनकी कमी बढ़ती जाती है तो फसल में उसके लक्षण आने लगते हैं। तो इसको पूरा करने के लिए या तो हम जैविक खादों की मात्रा हर साल बढ़ाएं या कम से कम एक साल के अंतर पे अवश्य प्रयोग करें, या सप्लीमेंट के रूप में खड़ी फसल में चाहे स्प्रे के माध्यम से चाहे बुआई के समय उनका प्रयोग करें।
5: जैसे माध्यम से,
6: हाँ, तो स्प्रे के माध्यम से है, कई तरह का कस्टमाइज माइक्रोन्यूट्रिएंट का पाउडर आता है, उसको 2 किलो प्रति बीघा के हिसाब से खेत में ऐसे भी डाल सकते हैं, या जैसे फेरस की कमी हो गई, आयरन की कमी हो गई पेड़ी की फसल में, तो हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि लगभग 50 ग्राम फेरस सल्फेट 15 लीटर वाली टंकी में और 100 से 150 ग्राम यूरिया के साथ घोलकर इसका स्प्रे कर देते हैं कम से कम हफ्ते भर के इंटरवल पे 2 बार। अच्छा। तो आयरन की कमी दूर हो जाती है। इसी तरह से कोशिश करें, यदि आपके पास पशुओं का पेशाब है तो किसी भी केमिकल के स्प्रे के साथ गाय का पेशाब 1 से 1.5 लीटर प्रति टंकी 15 लीटर वाली टंकी में मिलाकर स्प्रे कर दें तो पोटाश या बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी जो है उसी से दूर हो जाती है।
5: अच्छा, अच्छा डॉक्टर साहब, यदि हम सूक्ष्म पोषक तत्वों की बात करें जो आप माइक्रोन्यूट्रिएंट बता रहे हैं, तो उनका इस्तेमाल करने का तरीका क्या बुआई के समय है या बाद में है, या कुछ ऐसी बात के उनका किसी दूसरे खाद या उर्वरक के साथ इस्तेमाल ना करें, कहीं ऐसी भी बात है कोई?
6: हाँ, ऐसा है बिल्कुल। जैसे कि बात आती है फास्फोरस और जिंक का, ये दोनों एक तरह से इनकम्पैटिबल न्यूट्रिएंट हैं। अगर हम बुआई के समय फास्फोरस खाद दे रहे हैं तो हमने अभी आप पहले शेड्यूल में बताया कि जिंक को उस समय बिल्कुल न प्रयोग करें। अगर जिंक को फास्फोरस या डाई या जो सुपर फास्फेट है इसके साथ डालते हैं तो जिंक फास्फेट नामक ऐसा एक तत्व बन जाता है जो कि पूरी तरह से इमोबाइल होता है और हमारी फसलों की जड़ों को नहीं मिल पाता है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि उसका शेड्यूलिंग बाद में कर दें। तो शुरुआत में आप जिंक बिल्कुल न प्रयोग करें डाई या सुपर फास्फेट के साथ। जब एक्टिव टिलरिंग फेज में होता है, कल्ले निकलने की अवस्था में, तो यूरिया के साथ जिंक को मिला के हमारे किसान भाई 60 दिन पश्चात, बुआई के 60 दिन पश्चात प्रयोग कर सकते हैं और उस समय इसका प्रयोग उचित रहता है। फिर फास्फोरस की भी उपलब्धता हो जाती है और जिंक की भी उपलब्धता हो जाती है।
5: जी, बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब आपने हमारे किसान भाइयों को बताई, क्योंकि कुछ किसान भाई जो है अज्ञान के कारण बुआई के समय डाई में मिलाकर ही इसका
6: बिल्कुल एक ही साथ प्रयोग करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए।
5: तो गन्ने में अंतः फसलीकरण कुछ किसान भाई करते हैं, तो अंतः फसल में हमारे किसान भाई कौन कौन सी जो है ऐसी फसल उगाएं जिससे हमारा गन्ने का पोषण प्रबंधन भी हो जाए और हमारी जो फसल भी अच्छी रहे?
6: तो चूंकि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ जिलों में हमारे किसान भाई गन्ने को कैश क्रॉप

0: के रूप में लेते हैं, तो देखा गया है गन्ना, पेड़ी और गेहूं ज्यादातर यही सिस्टम लेते हैं
1: जी।
0: तो इसमें एक तरह से देखा जाए तो जमीन कभी खाली नहीं रहती है।
1: जी जी।
0: तो अगर हम हरी खाद की अलग से बात करते हैं तो हमारे किसान भाई को स्कोप नहीं मिलता कि ढैंचा या सनई की ग्रीन मैनोरिंग अलग से कर पाए। तो उन किसान भाइयों के लिए सलाह है कि अगर अगेती गन्ना बोया जैसे फरवरी मार्च में, उस समय उसमें अगर 4-5 फीट पे या 3 फीट पे हम गन्ना लगा रहे हैं तो उसके अनुसार अलग अलग दलहनी फसलों की जैसे उड़द हो गया, मूंग हो गया, लोबिया हो गया, या अगर कुछ नहीं मन है आपका तो आप खाली ढैंचा ही लगा दीजिए उसमें और बाद में किसी जो है इंटरकल्चर जो इंस्ट्रूमेंट है उससे उसकी पलटाई कर दीजिए। तो उससे ये फायदा होगा कि बहुत सारी नाइट्रोजन, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के माध्यम से आपके गन्ने में फिक्स होगी और वो आपके उसको पौधों को उपलब्ध होगी और ओवरऑल जो हम यूरिया और डाई बाहर से लाके डाल रहे हैं उसकी मात्रा को घटाने में काफी लाभकारी होगी। इसके अलावा अगर दलहनी फसलों जैसे उड़द हो गया, मूंग हो गया, लोबिया हो गया, ढैंचा हो गया, इन या आजकल मूंगफली पे हमारा संस्थान बहुत जोर दे रहा है
1: जी, जी।
0: हमारा भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान गुजरात और राजस्थान की अच्छी वैरायटी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत लार्ज स्केल पर बढ़ावा दे रहा है
1: जी।
0: तो ये चूंकि दलहनी कुल की फसलें हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के माध्यम से हवा में उपस्थित नाइट्रोजन को जड़ों में अवशेषित करके हमारे खेत को देती हैं। इनके अलावा दलहनी फसलों के प्रयोग से मृदा की बायोलॉजिकल स्वास्थ्य जो बढ़ता है, बहुत सारे लाभकारी जीव जंतु बहुत तेजी से वृद्धि करते हैं, ओवरऑल हेल्थ हमारे सॉइल का बढ़ता है, हमारा फसल के लिए पोषक तत्व ज्यादा उपलब्ध होते हैं और क्वालिटी का प्रोडक्शन हमें प्राप्त होता है और इसके अलावा कीड़े और रोगों से लड़ने की क्षमता जो है हमारे गन्ने की फसल को बढ़ाता है और केमिकल की आवश्यकता को बिल्कुल घटा देता है
1: जी। तो डॉक्टर साहब अंत में मेरा आपसे ये सवाल रहेगा कि हमारी गन्ने की फसल अच्छी उपज दे और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग हमारे किसान भाई कम करें तो इसके लिए हमारे किसान भाई कौन कौन से काम करें।
0: हाँ तो सबसे पहले मैं किसान भाइयों से कहूँगा कि जितना रिकमेंडेड मात्रा में आपको यूरिया डाई पोटास देना है कृपया उतना ही प्रयोग करें। 20-25 किलो अगर केवल आप यूरिया ही 25 किलो बीघे तक डाल रहे हैं तो हमारा फसलों का जो रोगों से लड़ने की क्षमता है वो बनी रहेगी। अगर बहुत मात्रा में आप यूरिया डालेंगे तो हमारे फसलों की रोगों से लड़ने की क्षमता कमजोर होगी और अंत में आप पेस्टिसाइड भी डालोगे तो हमारे किसान भाई केवल रिकमेंडेड डोज ही डालें। उसके अलावा जितना हो सके जैविक खादों का प्रयोग करें, बायो इनपुट्स का प्रयोग करें तो हम केमिकल को भी कम करेंगे और हमारे फसलों का स्वास्थ्य अच्छा होने से हमें कीट और व्याधियों के लिए जो पेस्टिसाइड डालते हैं इसका भी खर्चा कम होगा और ओवरऑल जो उत्पादन होगा और पर्यावरण दोनों स्वस्थ रहेंगे।
1: तो डॉक्टर चंद्रभानु हमारे स्टूडियो में आए और हमारे किसान भाइयों को गन्ने की फसल के उत्पादन के संबंध में और उर्वरकों की जो प्रयोग है उसके संबंध में बहुत अच्छी आपने जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी हमारे किसान भाइयों ने ये बातचीत सुनी, विषय था गन्ने में समेकित पोषण द्वारा नासी जीवों के नियंत्रण एवं लागत में कमी लाने के नायाब तरीके। भाई जानकारी दे रहे थे डॉक्टर चंद्रभानु। तो देखो भाई कितनी अच्छी जानकारी डॉक्टर साहब ने हमारे किसान भाइयों को दी। डॉक्टर साहब ने बताया कि भाई किस तरह से आप अपने गन्ने की फसल में भैया कीटों का नियंत्रण कर सकते हैं और भाई साथ ही साथ डॉक्टर साहब ने बताया कि सूक्ष्म पोषक तत्व जो होते हैं वो हमारे किसान भाई किस तरह से अपने खेतों में प्रतिपूर्ति कर सकते हैं। भाई डॉक्टर साहब ने देखो गन्ने में भैया गोबर की सड़ी खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट को डालने की सलाह दी, बताया कि भाई इनमें काफ़ी हद तक जो है हमारी जो फसल है उसका भैया सूक्ष्म पोषक तत्वों का जो प्रतिपूर्ति है वो हो जाती है क्योंकि भाई हमारी जो फसल है उसको अपना जीवन पूरा करने के लिए 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और भाई 17 के 17 पोषक तत्व चाहे कम ही मात्रा में हो भाई गोबर की सड़ी खाद में, कंपोस्ट में, वर्मी कंपोस्ट में इनमें भैया मिल जाते हैं। और साथ ही साथ डॉक्टर साहब ने यह भी बताया कि भाई हम अपनी फसलों में रासायनिक उर्वरकों का जैसे कि भैया यूरिया का आज हम देख भी रहे हैं कि भाई बराबर वाले ने या बगल वाले ने एक कट्टा डाला तो भाई हमारे किसान भाई या बराबर वाला भैया 1.5 कट्टा यूरिया डालने की भैया क्षमता रखता है या 1.5 कट्टा यूरिया अपनी फसल में डाल भी रहे हैं। तो भाई ऐसा काम हमें नहीं करना, हम भैया अपने खेतों से कम लागत में अच्छा उत्पादन लेना है और वो उत्पादन हम तभी ले सकेंगे भैया जब हम भैया संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करेंगे। साथ ही साथ डॉक्टर साहब ने बताया कि भाई हमारे किसान भाई जिंक का प्रयोग करते हैं, वो भी भैया डीएपी में मिला देते हैं बुआई के साथ, तो भाई ऐसा हमें नहीं करना है, आप जिंक का प्रयोग अलग करें, साथ ही साथ यूरिया में मिला कर भी ना करें। तो भाई इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं या कुछ पोषक तत्व ऐसे होते हैं जिनको हम किसी के साथ मिलाकर नहीं डाल सकते हैं, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और साथ ही साथ भाई देखो, डॉक्टर साहब ने एक जानकारी विशेष रूप से दी कि भाई जब हम यूरिया का प्रयोग अपनी फसल में करते हैं तो भाई हमारी जो फसल है वो कोमल हो जाती है, यानी कि मुलायम हो जाती है, और जब मुलायम हो जाती है तो उसमें भैया कीटों का, रोगों का प्रकोप बढ़ जाता है, क्योंकि भाई उसकी इम्यूनिटी पावर, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो भैया कम हो जाती है। तो इस तरह से भैया हमारी जो फसल है वो रोगग्रस्त हो जाएगी, कीटग्रस्त हो जाएगी, और उसके लिए हमें भैया कीटनाशियों का प्रयोग करना पड़ेगा, रोग के लिए भैया फफूंदी नाशक का प्रयोग करना पड़ेगा। तो हमें ऐसा काम करना है जिससे भाई हमारे किसान भाइयों का खर्चा कम हो और भैया उत्पादन अच्छा हो। भाई वो काम होगा कि भैया हम जो है जैविक उर्वरकों पर, जैविक कीटनाशकों पर, जैसे कि भैया डॉक्टर साहब ने भी बताया कि भाई नीम का तेल लगाओ, अन्य जो जैविक कीटनाशी हैं भैया उनका प्रयोग करो, साथ ही साथ फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग आप कर सकते हैं अपनी फसलों में। तो भाई इस तरह से आप जो है कीटों का नियंत्रण कर सकते हैं और भाई अच्छा उत्पादन अपनी फसलों से प्राप्त कर सकते हैं। भाई देखो, ये तो जानकारी होगी गन्ने की, और भाई जानकारी के साथ साथ हमारे किसान भाई सोच भी रहे होंगे कि भाई जानकारी भी हो गई, बातचीत भी हो गई, लू की बात हो गई, अब भाई कार्यक्रम में मनोरंजन कब होगा। तो बिल्कुल भाई आपका मनोरंजन भी कराएंगे, तो आपको लिए चलते हैं गीत संगीत की ओर और सुनते हैं राजा मोर ध्वज के किस्से से यो प्यारी सी रागनी।

अभी हमारे किसान भाइयों ने ये रागनी सुनी, मैंने ठीक बताओ राजन क्यों चाहिए तुमने आरा। भाइयों ने कुलदीप सिंह आर्य वो साथियों से यो प्यारी सी रागनी सुनी। भाई उम्मीद करते हैं किसान भाइयों का भरपूर मनोरंजन हुआ होगा और दिन भर की थकान हमारे किसान भाइयों की उतर गई होगी। भाई अब कार्यक्रम आगे बढ़ते हैं। भाई देखो एक चिट्ठी हमें मिली है मौसम की। भाई मौसम की चिट्ठी के अनुसार आने वाली 31 मई तक का इस चिट्ठी में हाल है। भाई ये चिट्ठी हमें मिली है ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मोदीपुरम मेरठ से। भाई इस चिट्ठी के अनुसार बिजनौर और उसके आसपास के क्षेत्रों का हाल है। भाई इसमें ये लिखा हुआ है कि भैया आने वाली 28 तारीख यानी के कल से भाई मौसम में बदलाव होने वाला है और साथ ही साथ भैया देखो 28 से 31 मई तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लगभग अधिकांश जिलों में आंधी गरज के साथ हल्के से मध्यम वर्षा, कहीं कहीं 30 mm तक की संभावना है। उसके बाद तापमान में लगभग 4 से 5 डिग्री की गिरावट के आसार हैं। तो भैया आप जो है मौसम का पूर्वानुमान अपने मोबाइल पे भी देखते रहें, साथ ही साथ पूर्वानुमान को देखते हुए आप अपनी फसलों में इन दिनों में सिंचाई या किसी रसायन का या कीटनाशक का छिड़काव करने की सोच रहे हैं तो भाई उससे थोड़ा सा बचाव रखें और भाई इन दिनों में छिड़काव ना करें। तो भाई अपनी फसलों के साथ साथ अपने पशुओं का भी ध्यान रखना है, अपने पशुओं से अच्छा दूध उत्पादन लेना है तो भाई उनका भी ध्यान हमें रखना है। तो इस तरह से भैया ये सूचना थी मौसम विज्ञान की। अब भाई देखो अब घड़ी भी हमें इस ओर इशारा कर रही है और बातचीत की इजाजत किसान भाइयों से बिल्कुल भी नहीं दे रही है। तो भाई आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है ये लिखने के लिए उठाइए कागज और कलम और लिखिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन कोड है 246763। भाई इस पते पर हमें आपके चिट्ठी पत्रों का इंतजार रहेगा। अब भाई एक हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप नंबर हमारा नोट कर लें 9457082888। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप SMS कर सकते हैं और हमारे कार्यक्रम में क्या जानकारी चाहते हैं आप हमें लिख सकते हैं। भाई नंबर एक बार और नोट करें 9457082888। अब कार्यक्रम संपन्न करने की अपने भैया जितेंद्र कुमार को दीजिए अनुमति। किसान भाइयों राम राम।

0: अभी आप सुन रहे थे कृषि जगत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:45 हुए हैं। लीजिए, प्रस्तुत है विविधा, जिसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं आशीष भारती की वार्ता, जिसका विषय है मानव जीवन को समृद्ध करता पर्यटन।
1: भारत में प्राचीन समय से ही ऋषि मुनियों का विशेष महत्व रहा है। समाज के पथ प्रदर्शक के रूप में ऋषि मुनि अपने ज्ञान और तप के बल पर समाज कल्याण के लिए तीर्थ स्थल, जंगल, पहाड़ व प्रकृति की मनोरम दृश्य की खोज में जब यात्रा पर निकले, तो उन्होंने पर्यटन जैसे महत्वपूर्ण शब्द को जन्म दिया। मानव जीवन बड़ा मूल्यवान होता है, इसे समझना और सहेज कर रखना हमारा परम कर्तव्य है। ईश्वर ने हमें सभी जीवों से श्रेष्ठ बनाया है, बुद्धि और विवेक दिया है। हमें मानव जीवन के मूल्यों की रक्षा करनी चाहिए। समय की शुरुआत से ही यात्रा मानव जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा रही है। आधुनिक दुनिया में यात्रा के विभिन्न पहलुओं को एक संगठित शब्द पर्यटन में समायोजित किया जाता है। आज प्राय यह देखने में आता है कि मनुष्य का जीवन अशांत, तनावपूर्ण है। शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा हो जो सुखद और आनंद का अनुभव करता हो। इसका एक ही कारण है कि हम भौतिकता में इतना जकड़ गए हैं कि कुछ अच्छा सोचने का मौका ही नहीं मिलता। हमें इस तनावपूर्ण जीवन से बचने के लिए समय समय पर अपने संगठन, अपने संघ के निकटतम साथियों, अपने परिजनों के साथ अपनी मनोस्थिति को शांत वातावरण से ऊर्जावान बनाने के लिए यात्राओं पर निकलना चाहिए। पर्यटन मानव जीवन को वैचारिक, साहसिक, मानसिक व सांस्कृतिक बल प्रदान करता है। विभिन्न स्थानों की यात्रा को पर्यटन कहते हैं। पर्यटन धार्मिक, ऐतिहासिक एवं प्राकृतिक दृष्टि से प्रसिद्ध स्थानों का किया जाता है। ये स्थल अपने देश में अथवा विदेश में कहीं भी हो सकते हैं। पर्यटन का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। पर्यटन से व्यक्ति का ज्ञान बढ़ता है। वह जहाँ जाता है उस स्थान के विषय में तरह तरह की जानकारियाँ उसको प्राप्त होती हैं। जो ज्ञान उस स्थल को अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखकर प्राप्त होता है, वह अधिक प्रभावशाली होता है। पर्यटन आनंद वर्धक तथा मनोरंजक होता है। इन स्थानों पर अनेक दर्शनीय चीजें होती हैं जो दर्शक के मन को आनंद से भर देती हैं। ऐतिहासिक स्थलों, इमारतों, संग्रहालयों आदि को देखना इतिहास संबंधी पुस्तकें पढ़ने से अधिक महत्वपूर्ण होता है। वहां जाकर हम उस काल अथवा युग में स्वयं मिल जाते हैं। ताजमहल को देखकर हम उसकी सुंदरता से भी प्रभावित नहीं होते, बल्कि उसको बनाने वाले बादशाह शाहजहां के जीवन तथा घटनाओं से रूबरू होते हैं। इसी प्रकार धार्मिक स्थलों की यात्रा धर्म में हमारे विश्वास को बढ़ाने वाली होती है। मंदिरों की कलात्मक मूर्तियां तथा भवन हमारे मन को प्रसन्नता से भर देते हैं। प्राकृतिक स्थानों यथा पर्वतों, वनों, समुद्र तटों आदि का पर्यटन अधिक आनंददायक होता है। इन स्थानों पर जाकर प्रकृति को निकट से देखने का अवसर मिलता है। पर्वतों की चोटियों पर जमी श्वेत चमकीली हिम, वनों में विविध प्रकार के वृक्ष और लताएं, उनमें रहने वाले जीव जंतु, समुद्र तट का विस्तार, सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश से प्रभावित जल, उसमें उठती लहरें आदि पर्यटक को बार बार बुलाते हैं। पर्यटन से मानव जीवन सार्थक होता है। प्रसिद्ध साहित्यकार व पर्यटक राहुल सांकृत्यान जी ने भी विश्व के अनेक स्थानों का पर्यटन किया था। मशहूर शायर ख्वाजा मीर दर्द की पर्यटन को प्रेरणा देती पंक्तियां, सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहां, जिंदगानी भी मिली तो नौजवानी फिर कहां। प्रत्येक प्रकार की यात्रा के उद्देश्य को परिभाषित करने की सुविधा के लिए विभिन्न प्रकारों में विभाजित करना महत्वपूर्ण

हो जाता है। अवकाश पर्यटन नाम से स्पष्ट है कि अवकाश पर्यटन में ऐसी गतिविधियां और स्थान शामिल है जो किसी को आराम करने, तनाव मुक्त होने और अपनी यात्रा के विभिन्न पहलुओं का आनंद लेने में मदद करेंगे। आमतौर पर अवकाश पर्यटन में प्राकृतिक परिदृश्य में भाग लेना, आरामदायक और मानव निर्मित वास्तुकला की खोज करना शामिल है। अवकाश यात्रा पर जाने वाले पर्यटक अपने ठहरने के लिए होटल में शरण लेते हैं, स्थानीय व्यंजनों को अपने खान पीन में, क्षेत्रीय बाजार में खरीदारी करना और मनोरंजक गतिविधियों में भाग लेना, विश्राम और आनंद पर ध्यान केंद्रित करते हैं। व्यावसायिक पर्यटन प्रोत्साहन सम्मेलन और प्रदर्शनियां विभिन्न संगठनों के कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली यात्राओं के दायरे का पता लगाता है। व्यावसायिक पर्यटन के लिए प्रशासकों और कर्मचारियों दोनों द्वारा सावधानी पूर्वक योजना, बजट, पूर्वानुमान और व्यापक रिपोर्टिंग की आवश्यकता होती है। सम्मेलनों और प्रदर्शनियों में भाग लेने वाले पेशेवरों को सेवाएं प्रदान करता है, आर्थिक विकास और उद्योग वृद्धि में योगदान देता है। व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष सुविधाओं और सेवाओं की आवश्यकता होती है। साहसिक पर्यटन के सबसे रोमांचक प्रकारों में से एक साहसिक पर्यटन प्राकृतिक परिवेश के इर्द गिर्द घूमने वाली रोमांचकारी गतिविधियों में शामिल होने का अवसर प्रदान करता है। इस तरह के पर्यटन में शामिल उत्साह और शारीरिक चुनौतियां इसे शीर्ष पर्यटन प्रकारों में से एक बनाती हैं। गतिविधियों में स्काई ड्राइविंग, पैराग्लाइडिंग, बेस जंपिंग, राफ्टिंग, ड्यून बैशिंग और बहुत कुछ शामिल है। जब गतिविधियों के दौरान दोस्त और परिवार शामिल होते हैं तो रोमांच और बढ़ जाता है, रोमांचक और चुनौतीपूर्ण अनुभवों पर जोर देता है। इसमें ट्रैकिंग, रॉक क्लाइंबिंग और बंजी जंपिंग जैसी गतिविधियां शामिल हैं। रोमांच आने वालों और एड्रेनालाइन रश की चाह रखने वालों के लिए आकर्षक है, व्यक्तिगत विकास और सीमाओं को आगे बढ़ाने के अवसर प्रदान करता है। सांस्कृतिक पर्यटन यात्रियों को किसी गंतव्य की परंपराओं, इतिहास और जीवन शैली में डूबने का मौका देता है। सांस्कृतिक पर्यटन में उच्चतम स्तर की भागीदारी की आवश्यकता होती है। पर्यटक विभिन्न संग्रहालयों, ऐतिहासिक स्थलों, कला दीर्घाओं, पारंपरिक बाजारों और बहुत कुछ देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त स्थानीय समुदाय से मिलने और विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर और भी मजेदार हो जाता है। किसी क्षेत्र के इतिहास, परंपराओं और कलाओं की खोज पर केंद्रित है। स्थानीय लोगों के साथ बातचीत को प्रोत्साहित करना ताकि उनकी जीवन शैली के बारे में सीखा जा सके, सांस्कृतिक समझ और प्रशंसा को बढ़ाता है। इको टूरिज्म यह पर्यटन का वह प्रकार है जो प्राकृतिक क्षेत्रों में जिम्मेदारी से यात्रा करने से संबंधित है। इको टूरिज्म भविष्य की पीढ़ियों के उपयोग के लिए प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को बढ़ावा देता है और स्थिरता को मजबूत करता है। पक्षी देखने, प्रकृति की सैर और वन्य जीव जैसी गतिविधियों के माध्यम से यात्री प्रकृति का प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। इसका लक्ष्य स्थानीय अधिकारियों और समुदायों का समर्थन करते हुए पर्यावरण की सराहना और सुरक्षा करना है। इसमें वन्य जीव अवलोकन, प्रकृति की सैर और पर्यावरण अनुकूल आवास शामिल है, प्रकृति से जुड़ने व जानने का अवसर प्रदान करता है। पाक कला पर्यटन किसी भी गंतव्य के हृदय उसके भोजन का अनुभव करना एक आनंददायक और मनोरंजन तरीका है। यह यात्रियों को किसी विशिष्ट देश या क्षेत्र के शीर्ष प्रामाणिक भोजन को आजमाने के लिए आमंत्रित करने पर केंद्रित करता है। यात्री स्थानीय व्यंजनों के स्वाद, सुगंध और पारंपरिक खाना पकाने की तकनीकों का आनंद लेते हैं। इस यात्रा में कई रेस्तरा में जाना, खाद्य कार्यक्रमों में भाग लेना, मूल स्वाद के लिए अनोखी जगहों पर जाना, दुनिया भर के शेफ से मिलना शामिल है। धार्मिक पर्यटन या तीर्थ यात्रा एक प्रकार का पर्यटन है जिसमें पवित्र स्थलों, पूजा स्थलों पर जाकर और धार्मिक आयोजनों में भाग लेकर यात्रियों का आध्यात्मिक उत्थान होता है। यह यात्रियों को विभिन्न संस्कृतियों की विभिन्न प्रथाओं के बारे में जानने के साथ साथ विभिन्न धर्मों के बारे में अधिक जानने का अवसर प्रदान करता है। कई यात्री और उपासक इसे ईश्वर से जुड़ने और अपने जीवन में शांति पाने का अवसर मानते हैं। कल्याण पर्यटन स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए लोग वेलनेस टूरिज्म की ओर रुख कर सकते हैं। स्व देखभाल के बीज से उत्पन्न वेल टूरिज्म समग्र विकास और कायाकल्प के लिए विभिन्न पत्ते और शाखाएं प्रदान करता है। सामान्य गतिविधियों में योग अभ्यास, पौष्टिक और स्वस्थ भोजन का नमूना लेना, मालिश आदि शामिल हो सकते हैं। लंबी पैदल यात्रा और ट्रैकिंग भी वेलनेस प्लान का हिस्सा हो सकते हैं। पर्यटक शरीर और मन की बेहतरी के लिए विभिन्न वेलनेस सेंटरों पर जा सकते हैं। ग्रामीण पर्यटन रमणीय ग्रामीण इलाकों में एक शांत प्लान प्रस्तुत करता है। यह एक ऐसी यात्रा है जो लोगों को हलचल भरे शहरी परिदृश्य से दूर जाने और ग्रामीण जीवन की साथ

0: और प्रामाणिकता को अपनाने के लिए आमंत्रित करती है। समृद्ध अनुभवों की एक श्रृंखला को शामिल करते हुए ग्रामीण पर्यटन, खेती, जानवरों की देखभाल और सम्मानित ग्रामीण परंपराओं में भाग लेने जैसी व्यवहारिक गतिविधियों में भाग लेने का मौका देता है। ग्रामीण क्षेत्रों और देहातों में विश्राम का अवसर प्रदान करता है। इसमें खेत पर प्रवास, कृषि गतिविधियां और ग्रामीण अनुभव शामिल हैं। पर्यटन एक विशाल उद्योग है जो साल के हर दिन के साथ विस्तार कर रहा है। हालांकि पर्यटन के कई प्रकार हैं, लेकिन किसी उद्देश्य के साथ यात्रा पर निकलना हमेशा से ही एक मुद्दा रहा है। पर्यटन का दूसरा लाभ है देश विदेश की जानकारी। इससे हमारा ज्ञान समृद्ध होता है। पुस्तकीय ज्ञान उतना प्रभावी नहीं होता जितना कि प्रत्यक्ष ज्ञान। पर्यटन से हमें देश विदेश के खान पान, रहन सहन तथा सभ्यता संस्कृति की जानकारी मिलती है। इसमें हमारे मन में बैठे हुए कुछ अंधविश्वास टूटते हैं। हमें यह विश्वास होता है विश्व भर का मानव मूल रूप से एक है। हमारी आपसी दूरियां कम होती हैं, मन उदार बनता है, पूरा देश और विश्व अपना सा प्रतीत होता है। राष्ट्रीय एकता बढ़ाने में पर्यटन का बहुत बड़ा योगदान है।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विविधा, जिसमें आज आपने सुनी आशीष भारती की वार्ता, जिसका विषय था मानव जीवन को समृद्ध करता पर्यटन। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर। संध्या के 6:55 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है छाया गीत। छाया गीत सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को आपकी दोस्त अलका सिंह का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है कभी रुलाती है, लेकिन जिंदगी जो जिंदगी की भीड़ में भी खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। जी हाँ श्रोताओं, क्योंकि जिंदगी भी तो हमें उन परिस्थितियों में डालती रहती है। कभी हम दुख में होते हैं, कभी सुख में होते हैं, लेकिन अगर उनको हम जीना सीख जाते हैं और खुश रहना सीख जाते हैं तो ज़िंदगी भी हमारे लिए आसान हो जाती है और लगता है मानो सब अच्छा है ना। एक गीत की तरह हमें ज़िंदगी लगने लगती है। तो चलिए सुनवा देते हैं आपको ये प्यारा सा गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म सौतन से। इसी प्यारी सी आवाज़ दी है लता मंगेशकर ने, गीत लिखा है सावन कुमार ने और संगीत है उषा खन्ना का।

श्रोताओं, भी आपने सुना फिल्म सौतन का ये गीत, जिसे आवाज दी थी लता मंगेशकर ने। तुम्हारी आंखें हैं या समंदर, जब भी देखते हैं डूब जाते हैं। जी हाँ श्रोताओं, कुछ लोगों की आंखें ना इतनी खूबसूरत होती हैं तो लगता है कि सागर उनमें समाया है। थोड़ी सी आहट, शरारत और चुलबुली सी आंखें किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर ही लेती है, और सामने वाला सोचता है कि इतनी प्यारी आंखें वाली लड़की का आखिर नाम क्या होगा, है ना। तो नाम तो नहीं पता है, लेकिन गीत हम आपको जरूर सुनाएंगे, जिसे हमने लिया है फिल्म सागर से। इसे आवाज दी है किशोर कुमार ने, गीत लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीत है आर डी बर्मन का।

दुआओं में रहने वाला शख्स शायद मेरे नसीब में ही नहीं। और ये हमें कभी पता ही नहीं होता कि लिखने वाले ने क्या लिखा है, तो छोड़ देते हैं ना उसके ऊपर, और जो जिंदगी में है उससे खुश रहते हैं, है ना? क्योंकि जिंदगी बहुत हसीन है। तो चलिए सुनवा देते हैं आपको कार्यक्रम का ये अंतिम गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म नसीब से। संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, और आवाज़ दी है लता मंगेशकर ने।

अभी आप सुन रहे थे छाया गीत। हम आकाशवाणी के नजीब आबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर।

ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। श्रोताओं, पहले आपको जानकारी दे दें हमारे आज के शेष कार्यक्रमों की और फिर आपको जानकारी देंगे कल के प्रमुख कार्यक्रमों की। आज रात 9:30 पर सुनिएगा चर्चा का विषय है। ये कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। आज शाम 7:30 पर सुनिएगा कानून की बात। ये कार्यक्रम हम हमारे लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। आज रात 10:30 पर सुनिएगा मुझे याद है जरा जरा, जिसमें आज आप सुनेंगे आकाशवाणी के वरिष्ठ उद्घोषक प्रेम कुमार सडाना की आकाशवाणी से जुड़ी यादें। प्रस्तुति सहयोग यशोधर डबराल का रहेगा और प्रस्तुतकर्ता होंगे शोभित शर्मा। दिल ने फिर याद किया, आपके व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित कार्यक्रम सुनेंगे आप आज रात 10:00। एक ही फिल्म से सुनिएगा आज रात 8:30 पर, जिसमें आज की हमारी फिल्म है चेन्नई एक्सप्रेस। ये संध्या का समय रहेगा आज रात 8:00। सुगम संगीत सुनेंगे आप आज शाम 7:45 पर, जिसमें आज आप सुनेंगे सुरिंदर कौर के गाए शब्द। तो ये थी जानकारी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रमों की। अब आपको जानकारी दे दें हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कल के प्रमुख कार्यक्रमों की। कल रात 9:30 पर सुनिएगा कंट्री वाइड और इनसाइट्स, और दिन में 4:00 सुनेंगे आप संदेश टू सोल्जर्स। ये दोनों ही कार्यक्रम हम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कल रात 10:00 सुनिएगा नाटक लक्ष्मण रेखा, इसके लेखक होंगे उपेंद्र नाथ अश्क, प्रतिभागी कलाकार रहेंगे नंदलाल शर्मा, श्याम अरोड़ा, राम गोपाल, सुनीति कोहली और वीना होरा। प्रस्तुति सहयोग होंगे सुदर्शन कुमार का और निर्देशक रहेंगे सत्येंद्र शरत। सुगम संगीत सुनेंगे आप कल संध्या 7:32 पर, जिसमें कल हम आपको सुनवाएंगे शाने आलम और साथियों की गाई कव्वाली। रेडियो प्रसारण के गौरवशाली 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष में विशेष भेंटवार्ता आप सुनेंगे कार्यक्रम 90 साल बेमिसाल के अंतर्गत, जिसमें कल हम आपको सुनवाएंगे अलका से आर्यन सैनी की बातचीत। हमारे युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी कल शाम 5:15 पर, जिसमें कल आकर्षण का केंद्र होंगे बुझो तो जाने कुछ खास से आज, नॉन फिल्मी चार्ट, लव स्टोरी, गुफ्तगु यूं ही, रहस्य सीरीज खामोश घाटी, और साथ ही आप आनंद लेंगे फिल्म संगीत का भी। कल शाम 5:00 सुनिएगा आकाशवाणी के 90 वर्षों के उपलक्ष में आकाशवाणी नजीबाबाद से जुड़े श्रोताओं के अनुभव पर आधारित कार्यक्रम रिश्ता ये खास है। एक ही संगीतकार सुनेंगे आप कल दिन में 2:30 पर, जिसमें कल के हमारे संगीतकार होंगे अनिल विश्वास। लोक संगीत का कार्यक्रम लोकधारा सुनेंगे आप कल दिन में 1:45 पर, जिसमें कल हम आपको सुनवाएंगे विविध कलाकारों के गाए राजस्थानी लोकगीत। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण अब संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 7:18 हुए हैं। कुछ ही पलों में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ते तापमान के मद्देनजर नागरिकों से सावधानी बरतने का आग्रह। प्रदेश में भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित, कई जगहों पर 42 से 45 डिग्री के बीच रहा पारा। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के SIR के निर्वाचन आयोग के फैसले को रखा बरकरार, कहा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुरूप है प्रक्रिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की चौथी बैठक की अध्यक्षता, कहा जेवर एयरपोर्ट पर प्रस्तावित उड़ान संचालन से पहले मजबूत करें सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था। और प्रदेश भर में कल मनेगी ईद उल अजहा, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च के दिए आदेश। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने लोगों से कहा कि वे भरपूर पानी पिएं और घर से बाहर निकलते समय अपने साथ पानी जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने सभी से ये भी कहा कि दोपहर की तेज धूप में बाहर निकलने से बचें और जितना हो सके आराम करें। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू से जनजीवन प्रभावित है। प्रदेश में कई जगहों पर तापमान 42 से 45 डिग्री के बीच रहा। वहीं बांदा में अधिकतम तापमान 47.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने कल राज्य के कई हिस्सों में लू चलने की चेतावनी जारी की है। विभाग ने 29 मई से लू से राहत की संभावना जताई है। प्रदेश के कई हिस्सों में कल से अगले 3 दिनों तक गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग ने 29 मई को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी तूफान के साथ भारी बारिश, ओलावृष्टि, बिजली गिरने का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं पूर्वी यूपी में आंधी तूफान, बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। कुछ जगहों पर ओलावृष्टि की आशंका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक PDS को जारी रखने की मंजूरी दे दी। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना राज्य एजेंसियों को अंतर्राज्यीय खाद्यान्न परिवहन में सहायता प्रदान करेगी, उचित मूल्य की दुकानों का समर्थन करेगी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में मदद करेगी।
4: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जो राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में, एक जो FCI का बड़ा गोडाउन होता है वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, वो कॉस्ट बियर करने में दिक्कत आ रही थी राज्य सरकारों की। भारत सरकार ने फैसला लिया है कि उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे इस प्रोग्राम के तहत। दूसरा, जो फेयर प्राइस शॉप्स है, उन फेयर प्राइस शॉप्स में जो डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, एक लंबे टाइम से वो स्टैटिक था, तो वो भी इसमें आज फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला लिया गया, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: सार्थक PDS योजना का उद्देश्य AI, मशीन लर्निंग, स्वाभाविक भाषा प्रसंस्करण और ब्लॉकचेन जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों के माध्यम से PDS संचालन को आधुनिक बनाना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैसले के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने कहा कि आयोग जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत SIR करवाने की शक्ति रखता है। फैसले को लेकर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने लखनऊ में कहा कि चुनाव आयोग स्वतंत्र है और उसके पास SIR कराने का अधिकार है।
5: देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत है, क्योंकि संविधान में चुनाव आयोग स्वतंत्र है, उसके पास अधिकार है SIR कराने का, उस पर मुहर सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी है। विपक्ष के लोग अनर्गल बयानबाजी करते हैं, संविधान के दायरे में अगर कोई काम हो रहा है तो उसका भी विरोध करते हैं।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक आवागमन के लिए प्राथमिक चरण में 110 इलेक्ट्रिक बसों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आज लखनऊ में स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की चौथी बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और हीडा क्षेत्र में 500 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि 15 जून से प्रस्तावित उड़ान संचालन से पहले सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को पूरी तरह सुदृढ़ किया जाए। बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के तेजी से विस्तार पर भी जोर दिया। नोएडा में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए नोएडा प्राधिकरण ने जून महीने से शहर में ई बसें संचालित करने की तैयारी की है। जून के पहले हफ्ते से ट्रायल के तौर पर बसें चलनी शुरू हो जाएंगी। एक रिपोर्ट।
6: 15 जून से जेयर एयरपोर्ट से फ्लाइटों के उड़ान भरने के साथ ही कुछ रूटों पर ई बसों का चलना शुरू हो जाएगा। इन बसों का न्यूनतम किराया 10 रुपये और अधिकतम 30 रुपये होगा। नोएडा विकास प्राधिकरण के महाप्रबंधक SP सिंह ने बताया कि इसी सप्ताह UP रोडवेज निगम से MOU की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने बताया कि पहले 100 ई बसें चलाने की तैयारी है। इन बसों में टिकट बुक करने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा। विशाल धर दुबे, आकाशवाणी समाचार, गौतम बुद्ध नगर।
0: कल मनाए जाने वाले ईद उल अजहा पर्व को लेकर प्रदेश में पुलिस और प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने त्योहार को सकुशल संपन्न कराने और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च का आदेश दिया है। त्योहार में हुड़दंग करने वालों से पुलिस सख्ती से निपटेगी। कई जगहों पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की 2023 की धारा 163 लागू की गई है। पुलिस की तरफ से लोगों को ये भी हिदायत दी जा रही है कि खुले में जानवरों की कुर्बानी न दी जाए। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी क्षेत्रों में गश्त करके शासन के आदेशों का पालन कराने के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं। श्रावस्ती में संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी बढ़ा दी गई है। अमरोहा के पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव ने बताया कि सुरक्षा के मद्देनजर पूरे जिले को 4 सुपर जोन, 12 जोन और 71 सेक्टर में बांट दिया गया है। अयोध्या में बकरीद को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। अयोध्या रेंज के DIG सोमेन वर्मा ने बताया कि पर्व को लेकर संबंधित लोगों और समितियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं।
7: हमारी जो भी संबंधित जनपद हैं, वहाँ पर हर जगह पीस कमेटी मीटिंग हो चुकी है, सेंट्रल पीस कमेटी मीटिंग हो चुकी है, जहाँ पे DM और SP स्वयं रहे हैं। इसके बाद भी हर स्थान पे जहाँ पे कुर्बानी होती है, नमाज अदा होगी, वहाँ पे भी जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट, उसको संवाद के माध्यम से, नोटिस के माध्यम से सबको बता दिया गया है।
0: वहीं मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी लोगों से अपील की है कि शासन और जिला प्रशासन के आदेशों को का पालन करें। लखनऊ स्थित ऐशबाग ईदगाह के शाही इमाम खालिद रशीद फिरंगी महले ने प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न करने की अपील की है।
8: हर साल की तरह इस साल भी इस बात का ख्याल रखें कि सिर्फ उन्हीं जानवरों की कुर्बानी जाहिर सी बात है की जाए जिन पर कोई कानूनी बंदिश नहीं है, और कुर्बानी करते वक्त ना कोई फोटो खींची जाए, ना कोई वीडियो लिया जाए, ना उसको सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाए, और कुर्बानी सिर्फ उन्हीं मकामात पे की जाए जो कि जहां पर की पहले से इजाजत है।
0: राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्रदेशवासियों को ईद उल अजहा की शुभकामनाएं दी हैं। संघ लोक सेवा आयोग ने पहली बार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की अंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। आयोग ने एक वक्तव्य में कहा कि परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार 31 मई शाम 6 बजे तक upscionline.nic.in पर उपलब्ध ऑनलाइन प्रश्न पत्र आपत्ति पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ते तापमान के मद्देनजर नागरिकों से सावधानी बरतने का आग्रह। प्रदेश में भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित, कई जगहों पर 42 से 45 डिग्री के बीच रहा पारा। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के SIR के निर्वाचन आयोग के फैसले को रखा बरकरार, कहा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुरूप है प्रक्रिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की चौथी बैठक की अध्यक्षता, कहा जेवर एयरपोर्ट पर प्रस्तावित उड़ान संचालन से पहले मजबूत करें सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था। और प्रदेश भर में कल मनेगी ईद उल अजहा, सुरक्षा के कड़े इंतजाम, पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च के दिए आदेश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।

गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का विचार है, समुद्र को किनारे खड़े रहकर उसे देखते रहने भर से तुम समुद्र के पार नहीं जा सकते।

0: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं।
1: कानून की बात के इस अंक में आपका स्वागत है, मैं हूं अतिश श्रीवास्तव। श्रोताओं, आपने देखा होगा कि इंटरनेट का युग है और जो संस्था या जो व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा डाटा कलेक्ट करता है वो किंग है। इसके दुरुपयोग को देखते हुए भारत सरकार द्वारा एक एक्ट बनाया गया 2023 में, जिसे हम DPDP एक्ट कहते हैं, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट। तो इसी विषय में ज्यादा जानकारी के लिए हमने अपने स्टूडियो में बुला रखा है स्पंदन श्रीवास्तव को। स्पंदन श्रीवास्तव जो कि हाईकोर्ट लखनऊ में एक अधिवक्ता हैं। तो स्पंदन जी, आपका स्वागत है स्टूडियो में।
2: धन्यवाद।
1: तो आप हमारे श्रोताओं को क्या बताना चाहेंगे कि ये एक्ट क्या है, क्यों बनाया गया, क्या जरूरत पड़ी?
2: आधार एक्ट आने के बाद से काफी प्रचलन में ये बात थी कि जो व्यक्तिगत जानकारी है, जो निजता का अधिकार, वो एक मौलिक अधिकार है या नहीं। रिटायर्ड जस्टिस KS पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ के केस में उच्चतम न्यायालय ने ये निर्णय दिया कि निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। हर व्यक्ति के एक साधारण जीवन जीने के लिए आवश्यक है उसकी निजता बनी रहे। पहले के समय में किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी होती थी, उसका नाम, वो किस पते पर रहता है, या ज़्यादा से ज़्यादा उसका फ़ोन नंबर। पर आज के समय में इंटरनेट की एज में हमारी पर्सनल जानकारी, डिटेल्स इंटरनेट पर आसानी से उपलब्ध हैं। लोग कभी खुद कुछ पोस्ट करते हैं, हम कोई अकाउंट बनाते हैं, सोशल मीडिया वेबसाइट्स, ई कॉमर्स वेबसाइट से कुछ हम सामान खरीदते हैं, तो हम क्या खरीद रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, ये सारी जानकारी इन कंपनियों द्वारा इकट्ठा की जाती है।
1: या इवन हम इंटरनेट पर कुछ भी चीज़ सर्च करते हैं, खोजते हैं,
2: हाँ,
1: तो वो भी जानकारी उनके पास
2: वो भी जानकारी उनके पास होती है। और ये जानकारी आज के समय में इसको नया क्रूड ऑयल कहा गया है
1: जी।
2: वैश्विक स्तर पर जिस तरह पहले क्रूड ऑयल सबसे इम्पॉर्टेंट सामान माना जाता था क्योंकि ऊर्जा के लिए क्रूड ऑयल बहुत ज़रूरी था, उसी प्रकार आज के समय में डेटा उतना वैल्यूबल है। ये कंपनियां डेटा इकट्ठा करती हैं, उसे बेचती हैं और उस बेचने से सर्विसेज इम्प्रूव करने की कोशिश की जाती है, एडवर्टाइजिंग। कंपनियां, कोई व्यक्ति क्या सामान खरीदना चाहता है, क्या देखता है, इसके हिसाब से उसे किस तरह के एडवर्टाइजमेंट दिखते हैं उसको बनाया जा सकता है। इसका दुरुपयोग इस रूप में हो सकता है, पर्सनल डेटा चोरी हो जाता है तो उसका दुरुपयोग हो सकता है आपके बैंक अकाउंट को एक्सेस करने के लिए, या आपके नाम कोई व्यक्ति लोन ले सकता है।
1: तो सस्पेंडन जी, इसके इस एक्ट की सुरक्षा ना हो तो बहुत से खतरे हैं आम आदमी के
2: जी।
1: तो एक्ट क्या कहता है?
2: DPDP डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट इसी व्यक्तिगत जानकारी को जो हम किसी कंपनी को या बल्कि सरकार को भी जो हम अपनी जानकारी दे रहे हैं, इस जानकारी को सुरक्षित रखने का दायित्व डालता है।
1: अच्छा।
2: ये एक्ट ये कहता है कोई भी कंपनी जिसे कि डेटा फिड्यूशरी का नाम दिया है एक्ट ने,
1: अच्छा,
2: ये वो कंपनियां या सरकार जो कंज्यूमर से या पब्लिक से डेटा कलेक्ट कर रही हैं, इनके ऊपर ये कर्तव्य लगाता है कि जब ये डेटा कलेक्ट कर रही हैं तो इनका दायित्व बनता है कि इस डेटा को सुरक्षित रखेंगे और बिना अनुमति के इस डेटा को किसी को बेचेंगे नहीं,
1: ये शेयर नहीं करेंगे,
2: शेयर नहीं करेंगे
1: जिससे कि उसका दुरुपयोग हो सकता है,
2: उसको सुरक्षित रखेंगे ताकि कोई व्यक्ति, कोई इंस्टीट्यूशन, कोई ऑर्गेनाइजेशन उसका दुरुपयोग ना कर सके। फिड्यूशरी वो कंपनियां हैं जो कि डेटा को कलेक्ट करती हैं, जिनसे डेटा कलेक्ट किया जाता है यानी साधारण व्यक्ति जो कंज्यूमर्स हैं, उन्हें डेटा प्रिंसिपल का नाम दिया है। जैसे मैं व्यक्ति हूं जो ई कॉमर्स वेबसाइट का प्रयोग कर रहा हूं, तो मैंने अपना अकाउंट बनाया,
1: अच्छा,
2: उस पर मैंने अपना नाम, पता, जिस जगह पर सामान डिलीवर होना है वो पता दिया, अपना फोन नंबर दिया, फिर मैं कौन सा सामान खरीद रहा हूँ, किस समय पर, वो सारी चीजें डेटा है,
1: अच्छा,
2: जो उस कंपनी के पास पहुंच
1: गई
2: जी। अब कंपनी के लिए ये जरूरी भी है कुछ स्तर पर, क्योंकि उसके बिना वो अपनी सर्विसेज दे नहीं सकती।
1: तो स्पंदन जी, इसमें डाटा प्रिंसिपल जो आपने कहा, जो कंज्यूमर है
2: जी,
1: उसके कुछ अधिकार होंगे।
2: जी, डेटा प्रिंसिपल को अधिकार दिए गए हैं कि सबसे पहली चीज कि मुझे जानने का अधिकार है कि मेरा कौन सा डेटा लिया गया है।
1: जी,
2: मैंने अपने फोन में कोई ऐप इंस्टॉल करी और उसने मुझसे कंसेंट मांगी कि मैं टर्म्स एंड कंडीशंस जो कहा जाता है उससे अग्री करता हूं कि नहीं करता हूं। अब अच्छा। लोग साधारणतः उसको पढ़ते नहीं हैं और उस पे सिर्फ ओके कर देते हैं। उस कंसेंट में कंपनियां ये कंसेंट लेती हैं कि वो हमारा डेटा कलेक्ट कर सकती हैं, उसे प्रोसेस करेंगी और प्रोसेस करके वो उसे बेच भी सकती हैं।
1: अच्छा।
2: दूसरी कंपनियों को, जिससे कि हमें क्या एडवर्टाइजमेंट दिखना है या सोशल मीडिया वेबसाइट पर हमें क्या दिख रहा है, वो चीजें बनाई जाती हैं।
1: अच्छा, तो इसमें कंज्यूमर को, डाटा प्रिंसिपल को क्या अधिकार दिए गए?
2: पहला अधिकार ये है, हमें जानने का अधिकार है कि हम जब कंसेंट दे रहे हैं तो किस चीज के लिए हम ओके कर रहे हैं, हमारी कौन सी जानकारी इस कंपनी द्वारा या सरकार द्वारा इकट्ठा की जाएगी।
1: अच्छा, हो सकता है कि जरूरत नहीं हो, उससे ज्यादा जानकारी ले ले कंपनी।
2: जी, तो अक्सर देखा जाता है कि कुछ एप्स ऐसी होती हैं जो माइक्रोफोन का या कैमरे का एक्सेस मांगती हैं जिसकी जरूरत नहीं होती, तो वो जरूरत से ज्यादा डेटा लेने की कोशिश कर रही हैं, उस चीज को ये अधिनियम रोकता है।
1: और अधिकार क्या है?
2: डेटा प्रिंसिपल यानी कंज्यूमर को ये अधिकार है कि वो किसी भी संस्था से, किसी ऑर्गेनाइजेशन से पूछ सकता है कि हमारा कौन सा डेटा लिया गया है और उस संस्था को, उस कंपनी को ये जानकारी देनी पड़ेगी। दूसरा अधिकार ये है कि हम अपनी जानकारी, जो भी हमारी कलेक्ट की गई है, हमारा डेटा कलेक्ट किया गया है, उसे सुधारने या मिटाने का अधिकार है। हमारी कोई जानकारी गलत है तो हम उसे सुधारने के लिए कह सकते हैं, या हम कोई जानकारी नहीं देना चाहते तो उसे मिटाने की भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं।
1: अधिकार है कि रिक्वेस्ट कर सकते हैं?
2: हमारा अधिकार है कि हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं।
1: अच्छा।
2: ये रिक्वेस्ट का अधिकार की क्यों बात है कि कभी कभी ऐसा होता है कि सरकार एक कंडीशन लगाती है, जैसे कि बैंक के ट्रांजैक्शंस हैं, तो वो कुछ समय तक बैंक को अपने पास रखने ही होते हैं।
1: अच्छा।
2: या कुछ अधिनियम ऐसे हैं जो कंपनियों पर ये कंडीशन लगाते हैं कि उन्हें उस डेटा को कुछ समय तक रखना होगा अपने पास। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं, अगर वो कंपनी किसी और अधिनियम से भी बाध्य है तो वो डेटा हटा नहीं सकती जब तक सरकार उसकी अनुमति नहीं देती।
1: जैसे किसी कंज्यूमर का या डाटा प्रिंसिपल का जो पैन नंबर है वो किसी बैंकिंग के लिए जरूरत होगी
2: जी,
1: तो उसको आपको नहीं हटा सकते।
2: जी, इसी तरह
1: जी। तो इसमें और कुछ अधिकार है?
2: तीसरा अधिकार है ग्रीवेंस रिड्रेसल का, यानी कि किसी व्यक्ति को कोई शिकायत है तो कोई भी कंपनी अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक शिकायत निवारण का सिस्टम बनाएगी। अच्छा। जिसमें व्यक्ति सीधे कंपनी को अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है और कंपनी अपने स्तर पर उसको सुलझाने का प्रयास करेगी।
1: तो स्पंदन जी, आपने ये तो बता दिया कि डाटा प्रिंसिपल के क्या अधिकार हैं, तो इस एक्ट के हिसाब से जो कंपनीज हैं उनके भी कुछ ड्यूटीज होंगी, उनके कुछ कर्तव्य हैं?
2: जी, उनके ऊपर भी कर्तव्य, कुछ दायित्व लगाए गए हैं। जैसे कि सबसे पहला कि सुरक्षा उपाय का, कि जब भी वो कोई भी डेटा कलेक्ट करेंगी किसी भी साधारण व्यक्ति का, जनता का, तो उनका प्रथम कर्तव्य है कि वो उस डेटा को सुरक्षित रखें, क्योंकि जैसे मैंने बात की, हैकर्स होते हैं जो कि इस डेटा को लेने की कोशिश करते हैं दुरुपयोग करने के लिए।
1: अच्छा।
2: तो वो हैक ना कर पाए सिस्टम में, जहां भी डेटा को स्टोर करके डिजिटल फॉर्म में रखा गया है वो जगह सुरक्षित रहें, और कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दुरुपयोग करने के मंशा से
1: उनका मिसयूज ना कर सके।
2: जी।
1: और कर्तव्य कोई
2: दूसरा है कि अगर कोई ऐसा डेटा है जिसका उल्लंघन होता है, हैक हो जाता है, जिसमें कि व्यक्तिगत जानकारी लोगों की लीक हो जाती है, तो सबसे पहले उन व्यक्तियों को अवगत कराना होगा कंपनियों को कि आपका डेटा लीक हुआ है, ताकि वो अपने स्तर पर अपने डेटा को, अपने अपने आप को सुरक्षित कर पाए। दूसरी चीज है कि उन्हें एक डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड बनाया जाएगा इस अधिनियम में ही।
1: अच्छा।
2: उस डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड को भी ये जानकारी देनी होगी ऐसा कोई उल्लंघन हुआ है। ग्रीवेंस सेल बनाने का दायित्व कंपनियों पर ही है,
1: नहीं तो उसमें किसी को नौकरी देंगे या
2: जी
1: अपॉइंट करेंगे?
2: जी जी जी, वहाँ पर ट्रेंड पर्संस होंगे जो कि लोगों की शिकायत सुनेंगे और उस शिकायत का निवारण करने की कोशिश करेंगे। अगर लोग उस निवारण से नाखुश हैं तो वो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के पास अपील कर सकते हैं। जी,
1: तो इसका कुछ समय है? मान लीजिए किसी को ग्रीवेंस है तो वो कंपनियों को कितना समय दिया गया है उसका निदान करने?
2: कंपनियों को जो अभी नियम आए हैं डेटा प्रोटेक्शन के लिए उसमें कंपनियों के ऊपर, कंपनियों को 24 से 72 घंटों के बीच में उस शिकायत को दर्ज करना होता है। उस शिकायत के लिए टिकट नंबर बना करके डेटा प्रिंसिपल यानी जो कंज्यूमर है उसे देना होता है। ऐसी परिस्थिति है जिसमें निवारण नहीं हो पा रहा है तो कुछ समय बढ़ाया जा सकता है, वो शिकायत पर निर्भर करता है कि वो कितना समय बढ़ाया जाएगा।
1: अच्छा, किसी कंज्यूमर को कई 15 दिन 20 दिन महीना बीतने के बाद भी उस ग्रीवेंस का कोई निदान नहीं मिलता है तो वो क्या कर सकता है?
2: जी, वो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के पास जाकर के अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है।
1: तो इसमें कुछ दंड का प्रावधान भी किया गया है?
2: जी, अगर कंपनी उचित सुरक्षा उपाय नहीं लेती है तो उस पर अधिकतम 250 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर सूचना बोर्ड ने कोई आदेश दिया है और डेटा प्रिंसिपल के किसी डेटा प्रिंसिपल के यानी उपभोक्ता के किसी डेटा का उल्लंघन हुआ है तो 200 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
1: अच्छा,
2: बच्चों के डेटा को खासकर संवेदनशील माना जाता है।
1: अच्छा,
2: कि बच्चों के डेटा के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई बच्चों के डेटा का दुरुपयोग होता है या उल्लंघन होता है तो उसके उस मामले में 200 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
1: तो भी आपने बच्चों की बात बताई तो क्या महिलाओं के लिए भी कुछ अलग से है?
2: महिलाओं और पुरुषों के डेटा को इस अधिनियम में बराबर रखा गया है। खासकर अगर कोई महिलाओं के विरुद्ध कोई क्राइम होता है तो उसको भारतीय न्याय संहिता या आईटी एक्ट जो कि डिजिटल क्रिमिनल एक्टिविटीज से डील करता है उसके अंतर्गत देखा जाता है।
1: तो मुझे जहां तक समझ में आता है कि महिलाओं की मर्यादा से संबंधित कोई अगर बात होती है तो बीएनएस का कानून लागू होगा।
2: जी, उस केस में भारतीय न्याय संहिता सन 2000 का आईटी एक्ट लागू होता है।
1: तो स्पंदन जी, क्या विश्व में क्या है?
2: डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट बनाने की बात तो काफी समय से चल रही थी। यूरोपियन यूनियन का GDPR जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन काफी समय से लागू है और काफी सख्त भी माना जाता है। वैश्विक स्तर पर देशों के कानून बनाने के लिए उसे आधार बना करके डोमेस्टिक कानून या देश के देशिक कानून बनाए। डेटा प्रोटेक्शन आने वाले भविष्य में बहुत ही जरूरी है। अब हम एक नए युग में जा रहे हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, जहां पर इस डेटा को कलेक्ट करना, प्रोसेस करना और भी ज्यादा आसान हो जाता है। हमारे पास अब नए सुपर कंप्यूटर्स आ रहे हैं जो कि डेटा को बहुत ही आसानी से बहुत कम समय में प्रोसेस कर सकते हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इस डेटा से बहुत कुछ सीखता है। तो डेटा कलेक्ट करना कंपनियों के लिए जरूरी भी हो जाता है क्योंकि इससे ये बेहतर सर्विसेज दे पाते हैं, बेहतर काम कर पाते हैं। सरकार के लिए भी डेटा कलेक्ट करना जरूरी है, तभी ये बेहतर नियम बना पाते हैं, बेहतर गवर्नेंस सरकार कर सकती है। डेटा कोई भी पॉलिसी बनाने के लिए बहुत जरूरी होता है, पर साथ ही साथ ये इसका दुरुपयोग भी हो सकता है क्योंकि ऐसे लोग हैं, ऐसी संस्थाएं हैं इस दुनिया में इस डेटा का दुरुपयोग करके लोगों को नुकसान भी पहुंचाना चाहती हैं। इस अधिनियम का इसी जगह पर दायित्व और बढ़ जाता है। भविष्य में हमें इस अधिनियम को बेहतर बनाना होगा ताकि लोगों का भरोसा बना रहे।
1: स्पंदन जी, स्टूडियो में आप आए और हमारे श्रोताओं को इतनी नवीनतम और महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कानून की बात, जिसमें आपने सुना DPDP एक्ट के विषय में जानकारी दे रहे थे स्पंदन श्रीवास्तव और भेंट करता थे अतिश कुमार श्रीवास्तव।
0: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत, जिसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं सुरिंदर गौर के गाए शब्द।

श्रोताओ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से, और आज हम आपको सुनवा रहे हैं सुरिंदर कौर के गाए शब्द। तो लीजिए, पेश है कार्यक्रम का ये अंतिम शब्द।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत, जिसमें आज आपने सुने सुरेंद्र कौर के गाए शब्द। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। रात्रि के 8 बज रहे हैं। लीजिए पेश है गीत संध्या। गीत संध्या सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को आपकी दोस्त अलका सिंह का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और इस गर्मी के मौसम का पंखा कूलर एसी चलाकर आनंद ले रहे होंगे और साथ में सुन रहे होंगे आकाशवाणी नजीबाबाद। जादू आता है तुम्हें या किसी और इल्जाम में माहिर हो, हमारे दिल पे कब्जा किसी आम शख्स का काम नहीं। जी हाँ श्रोताओं, ये जो कभी कभी किसी के प्यार का जादू होता है ना, उसमें हम कहीं खो जाते हैं, गुम हो जाते हैं और गुनगुनाने लगते हैं उन्हीं के तरानों को। तो चलिए सुनवा देते हैं आपको कार्यक्रम का ये पहला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म कुदरत से। इसे आवाज दी है लता मंगेशकर ने, गीत मजरू सुल्तानपुरी का है और संगीत से सजाया है आर डी बर्मन ने।

श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म कुदरत का ये गीत, जिसे आवाज दी थी लता मंगेशकर ने। इश्क तुझसे मेरे यार रहने दे, दिल में तड़प बेशुमार रहने दे, इस पल बस चाहत की बात कर, कल के लिए ये तकरार रहने दे। जी हाँ श्रोताओं, जब हमारे अपने हमसे रूठ जाते हैं तो हम यही चाहते हैं कि वो जो रूठना है वो बाद में करें और हमसे अच्छे से बात करें, खुश रहें, और कभी हम उन्हें मनाएं और कभी वो हमें मनाएं, है ना। तो ये प्यार और तकरार तो चलता रहता है, और ज़िंदगी में ये खटास और मिठास का काम करता है, क्योंकि ज़्यादा मीठा भी ज़िंदगी को थोड़ा सा डायबिटिक कर देता है और खट्टी चीज़ें भी मुँह ख़राब कर देती हैं, इसलिए बैलेंस बनना बहुत ज़रूरी है ना। तो चलिए इसी बैलेंस को बना के रखिए और सुनते रहिए ये अगला गीत, जिसे आवाज दी है किशोर कुमार, उषा खन्ना और साथियों ने। संगीत है कल्याण जी आनंद जी का और गीत लिखा है इंदिवर ने।

अभी आपने सुना फिल्म जॉनी मेरे नाम, जॉनी मेरा नाम का ये गीत जिसे आवाजें दी थी किशोर कुमार, उषा खन्ना और साथियों ने। श्रोताओं, खुशी उन्हें नहीं मिलती जो जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीते हैं, बल्कि खुशी उन्हें मिलती है जो दूसरों की खुशी के लिए अपनी जिंदगी की शर्तें बदल देते हैं। जी हाँ श्रोताओं, जब हम किसी अपने के लिए या किसी गैरों के लिए भी अपनी ज़िंदगी को बदल देते हैं और उनकी खुशी में अपनी खुशियाँ ढूंढने लगते हैं, तो हमारी ज़िंदगी और खूबसूरत हो जाती है उनके खिलखिलाते हुए चेहरे देखकर, है ना। तो ज़िंदगी मिली है तो ना सिर्फ खुद खुश रहिए, बल्कि हमारे आसपास जो लोग हैं उन्हें भी खुश रखिए, ताकि माहौल हमेशा खुशनुमा बना रहे, क्योंकि ज़िंदगी आपको और उन्हें एक ही बार मिली है। तो चलिए सुनवा देते हैं आपको ये अगला गीत, जिसे आवाज दी है लता मंगेशकर ने। फिल्म है आंखें, गीत है साहिल लुधियानवी का और संगीत दिया है रवि ने।

अभी आपने सुना फिल्म आँखें गाएगी, जिसे आवाज़ दी थी लता मंगेशकर ने। इलाज कराते फिर रहे हैं ना जाने किस किस से, मोहब्बत करके देखा तो पता चला मोहब्बत क्यों नहीं करते। जी हाँ श्रोताओं, ये जो प्यार है ये ऐसा रोग है कि जिसको लग जाए वो भी पछताए और जिसे ना लगे वो भी पछताए। और जब लग जाता है और उसमें दर्द हमें होने लगता है तो हम बस यही कहते फिरते हैं कि जाने क्यों लोग मोहब्बत करते हैं। तो चलिए सुनवा देते हैं आपको ये अगला गीत, जिसे आवाज दी है लता मंगेशकर ने, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और गीत लिखा है आनंद बख्शी ने।

0: अभी आपने सुना फिल्म महबूब की मेहंदी का ये गीत, जिसे आवाज़ दी थी लता मंगेशकर ने, और अब आपको सुनवाते हैं ये जरूरी संदेश।
1: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
2: तो इंतजार किस बात का,
1: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
1: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
2: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
1: और हमारा ईमेल आईडी है
2: akashwaninajibabad@gmail.com।
1: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
0: श्रोताओं, सच्चा रिश्ता वही है जहां दो लोग एक दूसरे को बदलने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उनके साथ उनके व्यवहार में ढल जाते हैं और उसमें ही खुश हो जाते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप रहेंगे अपने लोगों के साथ बहुत खुश और ऐसे ही करते रहेंगे ज़िंदगी में उनके साथ, अपने खुशियों को बरकरार रखेंगे और साथ बनाए रखेंगे। तो चलिए सुनवा देते हैं आपको कार्यक्रम का ये अंतिम गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म परवरिश से। इसे आवाज दी है आशा भोसले, आरती मुखर्जी, शैलेंद्र सिंह ने। गीत है मजरू सुल्तानपुरी का और संगीत में पिरोया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

केंद्र है मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। रात्रि के 8:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है एक ही फिल्म से। नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम एक ही फिल्म से में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज मैं आपके साथ आपकी दोस्त अलका सिंह और लेकर आई हूँ फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस। श्रोताओं, फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस 9 अगस्त 2013 को रिलीज हुई थी। ये एक बेहद लोकप्रिय बॉलीवुड एक्शन कॉमेडी फिल्म है। श्रोताओं, इस फिल्म का निर्देशन किया है मशहूर निर्देशक रोहित शेट्टी ने। तो चलिए देर नहीं करते हैं और जल्दी से सुनवा देते हैं आपको फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस का ये पहला गीत, जिसे आवाजें दी है चिन्मयी श्रीपदा और गोपी सुंदर ने।

एक बार फिर से स्वागत है हमारे सभी श्रोताओं का कार्यक्रम एक ही फिल्म से में। और आज की हमारी फिल्म है चेन्नई एक्सप्रेस। श्रोताओं, फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस का निर्माण गौरी खान ने किया है और उस फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में नजर आते हैं शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण। इस फिल्म के निर्माण के जरिए शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण एक बार फिर से श्रोताओं के दिलों में अपनी जगह बनाते दिखाई देते हैं और फिल्म मुंबई से रामेश्वरम तक की एक रोमांटिक यात्रा, कॉमेडी और प्यार की कहानी पर केंद्रित है। तो चलिए सुनवा देते हैं आपको ये अगला गीत, जिसे आवाज़ें दी हैं सुनिधि चौहान और अरिजीत सिंह ने।

सूचना, ज्ञान एवं मनोरंजन से भरपूर प्रसारण के 90 वर्षों से हम हैं आपके साथ, क्योंकि हम हैं आकाशवाणी।

श्रोताओं, फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस का संगीत विशाल शेखर द्वारा तैयार किया गया है, जबकि इसके गीत अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखे हैं। अगर बात करें फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस में गायक कलाकारों की, तो इसमें आवाजें दी हैं विशाल डडलानी, हंसिका अय्यर, चिन्मय श्रीपदा, गोपी सुंदर, अनुषा मणि, नीति मोहन और यो यो हनी सिंह आदि ने। तो चलिए सुनवा देते हैं ये अंतिम गीत जिसे आवाजें दी हैं अमिताभ भट्टाचार्य और अनुषा मणि ने।

0: अभी आप सुन रहे थे एक ही फिल्म से। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8:45 होने को है। कुछ ही पलों में आप समाचार
1: हाय,
0: सुनेंगे।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। केंद्र ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए सार्थक पीडीएस योजना के विस्तार को मंजूरी दी। योजना पर 25,500 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2-3 दिन तक भीषण लू की चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ते तापमान के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का ध्यान रखने का आह्वान किया। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के निर्णय को बरकरार रखा। कहा, यह प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को बढ़ावा देती है। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित। यूसीसी लागू करने वाला तीसरा राज्य बना। भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने आईएसएसएफ विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता। और भारत 2027 एशियाई रिले और 2028 एशियाई इंडोर चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। अब समाचार विस्तार से। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
2: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में तो एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिमुनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से देश के प्रत्येक जरूरतमंद लोगों को समय पर अनाज पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में इस प्रणाली को और अधिक आधुनिक तथा प्रभावी बनाने का निर्णय लिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सार्थक पीडीएस योजना के विस्तार की मंजूरी का स्वागत किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि सरकार गरीबी उन्मूलन योजनाओं को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए उनमें प्रौद्योगिकी का समावेश कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के अंतर्गत एसआईआर करवाने की शक्ति रखता है। एक रिपोर्ट।
3: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: भारतीय जनता पार्टी ने एसआईआर को पूर्णतः संवैधानिक करार देने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। दिल्ली में एसआईआर की प्रक्रिया 20 जून से शुरू होगी। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 5 अगस्त को और अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। श्री कुमार ने बताया कि बूथ स्तर के अधिकारी 30 जून से दिल्ली की मतदाता सूचियों के सत्यापन के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे। असम विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया है। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस विधेयक को विधानसभा के पहले सत्र में सोमवार को पेश किया गया था।
4: असम में समान नागरिक संहिता विधेयक का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक कानूनी व्यवस्था स्थापित करना है। संवैधानिक संरक्षण और पारंपरिक रीति रिवाजों को सुरक्षित रखने के लिए अनुसूचित जनजातियों

0: को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा गया है। वहीं विभिन्न धर्मों पर आधारित व्यक्तिगत कानूनों के स्थान पर समानता और लैंगिक न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक समान कानूनी ढांचा लागू करने का प्रावधान किया गया है। विवाह संबंधी प्रावधानों के तहत विधेयक में एक विवाह की व्यवस्था अनिवार्य की गई है तथा वर की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और वधु की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता पारित होने पर असम की जनता को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि समान नागरिक संहिता भाजपा का स्थापना दिवस से ही संकल्प रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों तक मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में लू की स्थिति बनी रहेगी। विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू का रेड अलर्ट जारी किया। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी कल लू का प्रकोप बना रहेगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई भागों में भीषण गर्मी के और लू के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। एक रिपोर्ट।
3: आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों के साथ मौजूदा लू की स्थिति पर चर्चा की। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि उन विशेष कदमों पर चर्चा हुई जिन्हें प्रत्येक मंत्रालय और विभाग अपने अपने कार्य क्षेत्र में उठा सकते हैं।
4: प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में मौसम की जो हीट वेव की परिस्थिति है उसका भी सभी मंत्रियों के साथ चर्चा की और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो राष्ट्र के प्रति आह्वान है उसी आह्वान के तहत सभी से अपने अपने मंत्रालय में सुविधा पहुंचाने की किस तरह की सुविधाएं की जा सकती है उसके ऊपर भी चर्चा हुई।
3: आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर नवल किशोर विक्रम ने लोगों को लू से बचने के लिए खुद को हाइड्रेटेड रखना और ORS जैसे इलेक्ट्रोलाइट युक्त तरल पदार्थों का सेवन करना और दिन के समय तपती धूप में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: उधर राजस्थान में भी राज्य के 5 जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: दिन और रात के बढ़ते तापमान से प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में जनजीवन पर असर पड़ा है। दिन के समय गांवों और शहरों में सड़कों और बाजारों में लोगों की आवाजाही सीमित हो गई है। विभिन्न जिलों में प्रशासन की ओर से गर्मी से निपटने के लिए कई स्तरों पर इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही विभिन्न संस्थाएं भी ठंडे पेय का वितरण कर लोगों को राहत पहुंचाने के जतन में जुटी है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रदेशवासियों से प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना करने की भी अपील की है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने भी आज सभी न्यायाधीशों से अपील की कि वे भीषण गर्मी को देखते हुए मामलों की सुनवाई ऑनलाइन करें। न्यायालय ने कहा कि वह इस संबंध में न्यायिक निर्देश जारी नहीं कर सकता। न्यायालय दिल्ली में बढ़ती हुई गर्मी को देखते हुए सभी अदालतों में ऑनलाइन कार्यवाही करने के निर्देश देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था। सर्वोच्च न्यायालय ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर सरकार द्वारा पूर्व प्रभावी 28% GST को बरकरार रखते हुए इसे वैध बताया है। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म केवल मध्यस्थ नहीं है बल्कि उन्हें आपूर्तिकर्ता माना जाना चाहिए और उन पर वस्तु तथा सेवा कर GST लागू होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए कम से कम 2 भारतीय भाषाओं सहित 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने संबंधी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करेगा। शीर्ष न्यायालय ने केंद्र सरकार, बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट UG पेपर लीक मामले में आज 3 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। संघ लोक सेवा आयोग ने पहली बार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। आयोग ने कहा कि परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार 31 मई शाम 6 बजे तक upssconline.nic.in पर उपलब्ध प्रश्न पत्र आपत्ति पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल www.awards.gov.in के माध्यम से 5 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि देश की उन्नति के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास बेहद आवश्यक है। आज गांगटोक में सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने शिक्षा को सशक्तिकरण का मार्ग बताया और विद्यार्थियों से कहा कि वे अपने विचारों, नवाचारों और आपसी विश्वास के जरिए राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं। और खेलों में म्यूनिख में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में 43 हिट लगाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने जूनियर और सीनियर दोनों वर्ग में विश्व रिकॉर्ड कायम किया। फाइनल में ईशा ने पूर्व विश्व चैंपियन मिरोस्लावा मिंचेवा और कोरिया की शीर्ष खिलाड़ी जीन यांग को हराकर पहला स्थान हासिल किया। डेरिन वेनेकैंप दूसरे और मिरोस्लावा मिंचेवा तीसरे स्थान पर रही। उधर न्यू चंडीगढ़ में आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान रॉयल्स ने 16वें ओवर में 4 विकेट पर 211 रन बना लिए हैं। वैभव सूर्यवंशी ने 97 रन की पारी खेली। भारत ने एशियन इंडोर चैंपियनशिप 2027 और एशियन रिले 2028 की मेजबानी के अधिकार हासिल कर लिए हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स के उपाध्यक्ष आदिल सुमरेवाला ने आज इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि एशियन इंडोर चैंपियनशिप 2027 का आयोजन भुवनेश्वर में जबकि चंडीगढ़ एशियन रिले 2028 की मेजबानी करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए सार्थक PDS योजना के विस्तार को मंजूरी दी। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2-3 दिन तक भीषण लू की चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ते तापमान के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का ध्यान रखने का आह्वान किया। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के निर्णय को बरकरार रखा। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित, UCC लागू करने वाला तीसरा राज्य बना। और भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने ISSF विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद न्यूज एट 9।

0: सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव कमीशन की SIR मुहिम की कानूनी हैसियत को बरकरार रखा है। उसने कहा है कि ये मशक आजाद और शफाफ इंतखाबात की राह हमवार करेगी। आसाम असेंबली ने यकसा सिविल कोड बिल को मंजूर कर दिया है और इस कानून को पास करने वाली मुल्क में तीसरी रियासत बन गई है। भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने ख्वातीन के 25 मीटर पिस्टल मुकाबले में आलमी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उन्होंने म्यूनिक के ISSF आलमी कप में तलाई तमगा हासिल किया है। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने मरकजी काबीना की जानिब से सार्थक PDS के दूसरे मरहले के लिए 25,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की मंजूरी दिए जाने को सराहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब शाह ने कहा कि सरकार गरीबी दूर करने की स्कीमों को टेक्नोलॉजी से लैस कर रही है ताकि उन्हें और ज्यादा शफाफ और आसान बनाया जा सके। वजीर दाखला ने मजीद कहा कि AI की मदद से मुस्तफीद होने वाले अफराद का अंदराज GPS के जरिए ट्रैकिंग और QR कोड जैसे आला टेक्नोलॉजी निजाम के जरिए गरीबों को स्कीमों के 100% फायदे मुहैया किए जा सकेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि रियासतों की बढ़ती हुई लॉजिस्टिक लागत के लिए इक्तिसादी मदद की भी गुंजाइश रखी गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि हुकूमत इस बात को यकीनी बनाने के लिए अहदबंद है कि मुल्क में अवामी निजामे तकसीम PDS के जरिए हर जरूरतमंद फर्द को वक्त पर अनाज फराहम हो। जनाब मोदी ने मजीद कहा कि इस समत में PDS को ज्यादा जदीद और मुअस्सर बनाने के लिए फैसला किया जा रहा है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में वजीर आजम ने कहा कि ये अकदाम PDS के तहत फराहमी लॉजिस्टिक और नकलो हमल के इंतजाम को मजीद शफाफ और मुअस्सर बनाएगा, जिसके साथ साथ ये शिकायतों को हल करने में तेजी भी लाएगा। इक्तिसादी उमूर से मुतालिक काबीना कमेटी CCEA ने आज PDS में खुदकारी के साथ राशन ट्रांसपोर्ट और हैंडलिंग इनकम में इमदाद के लिए स्कीम सार्थक PDS को एक जामे स्कीम के तौर पर जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इस स्कीम को 16वें मालियाती कमीशन अवार्ड मुद्दत में मंजूरी दी गई है, जिसमें मरकज के हिस्से के तौर पर 25,530 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। नई दिल्ली में मीडिया को तफसीलात बताते हुए इतलात नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये स्कीम अनाज के एक रियासत से दूसरी रियासत में नकलो हमल के लिए रियासती एजेंसियों, राशन की दुकानों और अवामी निजाम में तकसीम की जदीदकारी में मदद फराहम करेगी।
1: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जो सरकारों के एजेंसीज राज्य में FCI का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: जनाब वैष्णव ने कहा कि इस स्कीम में तीन बड़े AI पर मबनी मॉड्यूल होंगे, जिनके नाम हैं निर्मल, आशा और सक्षम। उन्होंने कहा कि निर्मल एक AI की क्यादत वाली रियल टाइम PDS मुस्तफिदीन का निजाम है। आशा एक कसीर लेसानी मस्नूई जहानत का शिकायतों के इजाले और शहरियों को मुंसलिक करने का प्लेटफॉर्म है, जबकि सक्षम AI पर मबनी सप्लाई चेन प्लेटफॉर्म है जिसमें गाड़ियों की ट्रैकिंग भी होगी। वजीर मौसूफ ने कहा कि यह स्कीम खुराक के तहफ्फुज़ के कौमी कानून के तहत अहाता किए गए 81,35,00,000 अफराद के लिए हुकूमत के अहद को पूरा करने की जानिब काम करेगी। उन्होंने कहा कि यह स्कीम मौजूदा PDS स्कीम की जगह नहीं लेगी।
1: ये सुधार है PDS के सिस्टम में, पूरे डिलीवरी सिस्टम में, लॉजिस्टिक्स में, ट्रांसपोर्टेशन में, मटेरियल हैंडलिंग में और PDS के बेनिफिशरीज की ग्रीवेंस के रिड्रेसल के लिए बहुत बड़ा ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है। और PDS एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें केंद्र और राज्य मिलकर ही सारा काम करते हैं। दूर दराज के क्षेत्र हो, महिलाएं हो, वंचित हो, सबको कवर किया जाता है।
0: मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बढ़ते हुए दर्जे हरारत के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने शहरियों पर जोर दिया है कि वो जितना मुमकिन हो ज्यादा से ज्यादा एहतियात बरतें। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में जनाब मोदी ने सबको मशवरा दिया कि वो अपने जिस्म में पानी की कमी ना होने दें और जब कभी घर से बाहर जाएं तो पानी के बोतल के साथ जाएं। गर्मी के बाद रोजमर्रा की जिंदगी में बढ़ती हुई परेशानियों के बारे में जोर देते हुए जनाब मोदी ने कहा कि इस तरह के मौसम में हसासियत मदद का एक बड़ा जरिया बन जाती है। उन्होंने सलाह दी कि अगर कोई प्यासा हो तो उसे पानी का एक गिलास पेश करें। उन्होंने हर किसी पर यह जोर भी दिया कि वो अपने कुनबा के अफराद और अजीजो अकरबा के राबते में रहें और उनकी सेहत के बारे में मालूम करते रहें। उन्होंने ज्यादा मिकदार में पानी पीने की याद दहानी कराएं, उन्हें तीसरे पहर सख्त धूप में बाहर निकलने से गुरेज करने और ज्यादा से ज्यादा आराम करने के लिए कहें। उन्होंने मजीद कहा कि जानवरों और परिंदों को जहन में रखते हुए घरों के बाहर बालकनियों में, छतों पर, दुकानों पर या दफातर में छोटे बर्तन में पानी भरकर रखें। वजीर आजम ने हर किसी पर जोर दिया कि वो इन मुश्किल अय्याम में मुकम्मल हसासियत और जज्बे के साथ एक दूसरे का ख्याल रखें। पेश है एक रिपोर्ट।
2: आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों के साथ मौजूदा लू की स्थिति पर चर्चा की। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि उन विशेष कदमों पर चर्चा हुई जिन्हें प्रत्येक मंत्रालय और विभाग अपने अपने कार्य क्षेत्र में उठा सकते हैं।
1: प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में मौसम की जो हीट वेव की परिस्थिति है उसका भी सभी मंत्रियों के साथ चर्चा की और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो राष्ट्र के प्रति आह्वान है उसी आह्वान के तहत सभी से अपने अपने मंत्रालय में सुविधा पहुंचाने की किस तरह की सुविधाएं की जा सकती है उसके ऊपर भी चर्चा हुई।
2: आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर नवल किशोर विक्रम ने लोगों को लू से बचने के लिए खुद को हाइड्रेटेड रखना और ORS जैसे इलेक्ट्रोलाइट युक्त तरल पदार्थों का सेवन करना और दिन के समय तपती धूप में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम के शहर गैंगटॉक में पिंक सिटी रनर अमा दीदी बाहिनी नामी ख्वातीन मरकूज सरकारी ट्रांसपोर्ट सर्विस को आज झंडी दिखाकर रवाना किया। सिर्फ ख्वातीन के लिए यह बस सर्विस पूरे तौर पर ख्वातीन अमले के जरिए ऑपरेट की जाएगी जिसका मकसद ख्वातीन मुसाफिरों को महफूज, आरामदेह और सस्ता ट्रांसपोर्ट फराहम करना है। बाद में दिन में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने गैंगटॉक में सिक्किम यूनिवर्सिटी की 7वीं तकसीम असनाद की तकरीब से खिताब किया। उन्होंने कहा कि मुल्क की मजमुई तरक्की के लिए शुमाल मशरक की तरक्की इंतहाई अहम है।
3: नॉर्थ ईस्ट का विकास देश की समग्र विकास के लिए अनिवार्य है। पूर्वोत्तर क्षेत्रों का विकास और राष्ट्रीय विकास के लक्ष्य आपस में जुड़े हुए हैं। यहाँ के युवाओं में असीम प्रतिभा है। सिक्किम सहित अन्य राज्यों से आए हुए विद्यार्थियों से मैं आग्रह करना चाहूंगी कि आप सब एक दूसरे के संपर्क में रहे और मिलजुल कर राष्ट्रीय विकास में योगदान देने का भावना में आगे बढ़े।
0: सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव फहरिस्तों पर खुसूसी जामे नजरसानी की इंतखाबी कमीशन की कार्रवाई को कानूनी एतबार से जायज करार दिया है और यह भी कहा है कि आजादाना और मुनसिफाना इंतखाबात कराने के लिए आईन में इस तरह की नजरसानी के लिए कहा गया है। अदालत आलिया ने कहा कि चुनाव कमीशन को आवामी नुमाइंदगी से मुतालिक कानून मजरिया 1950 की दफा 324 और इसके तहत बनाए गए जाब्तों के मुताबिक चुनाव फहरिस्तों पर खुसूसी नजरसानी करने का अख्तियार हासिल है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोयमाला बागची पर मुश्तमिल बेंच ने रिट दरखास्तों पर फैसला सुनाते हुए ये बात कही। इन दरखास्तों में गुज़श्ता साल जून में बिहार में वोटर फहरिस्तों पर खुसूसी जामे नजरसानी करने के इंतखाबी कमीशन के नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया था। अदालत ने कहा कि SIR का अमल आजाद और शफाफ इंतखाब करने के मकसद को हासिल करना रहा है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की तरफ से सुनाए गए इस फैसले में यह भी कहा गया है कि जब खुद कानून में इंतखाबी कमीशन को किसी भी वक्त खुसूसी नजरसानी कराने को कहा गया है तो इस सूरत में कमीशन के नजरसानी के अमल को महज इस बुनियाद पर नाजायज करार नहीं दिया जा सकता कि मौजूद तरीक़ाकार माजी में कराई गई नजरसानी से मुताबिकत नहीं रखता। लिहाजा ये नहीं कहा जा सकता कि इंतखाबी कमीशन ने अपने कानूनी इख्तियारात से तजावुज किया है। अदालत ने मजीद कहा कि चुनाव कमीशन ने जो वजूहात रिकॉर्ड की हैं उनका वाज़े मकसद इसकी बुनियादी सियासत को बरकरार रखना है। इनमें 4 दहाइयों से ज्यादा मुद्दत पहले खुसूसी नजरसानी कराना, पिछले बरसों में बड़े पैमाने पर राय दहिंदगान का इजाफा होना और हजफ करना नीज तेजी के साथ बढ़ते हुए शहरी इलाके और नकल मकानी

ये मामलात शामिल हैं जिनकी वजह से चुनाव फहरिस्तों में मुसन्ना साजी और अदम दुरुस्तगी का इम्कान हो सकता है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। असम कानून साज असेंबली ने आज यकसा सिविल कोड बिल को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद असम इस तरह के बिल को मंजूरी देने वाली शुमाल मशरक में पहली और मुल्क में तीसरी रियासत बन गई है। यकसा सिविल कोड असम बिल 2026 को पीर के रोज 16वीं असम लेजिस्लेटिव असेंबली के पहले इजलास के दौरान पेश किया गया था, जिसे ऐवान ने आज इजलास के आखिरी दिन मंजूरी दे दी है। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने रियासती असेंबली में यकसा सिविल कोड मंजूर किए जाने पर असम के लोगों को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब शाह ने कहा कि यकसा सिविल कोड उस वक्त से बीजेपी का अज़्म रहा है जब से इसका कयाम अमल में आया है। अकलियती उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने आज तमाम हाजियों को मुबारकबाद दी है और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में जनाब रिजिजू ने कहा कि हुकूमत ने इस साल हज के दौरान भारतीय आजमीन हज को सहूलत फराहम करने की हर मुमकिन कोशिश की है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी ने पहली बार सिविल सर्विस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2026 के लिए आरजी आंसर की जारी की है। एक बयान में कमीशन ने कहा है कि जो उम्मीदवार इम्तिहान में शामिल हुए हैं वो 31 मई शाम 6 बजे तक upscionline.nic.in पर दस्तयाब ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन पोर्टल पर अपना रिप्रेजेंटेशन भेज सकते हैं। एक बड़ी छापेमारी में गुजरात के इंसदादे दहशतगर्दी के स्क्वाड और भारतीय साहिली मुहाफिजों ने आज गुजरात में कुछ जिले के साहिल के पास 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत की मुश्तबा मनशियात के 115 पैकेट जब्त किए। ये मनशियात एक कश्ती से बरामद की गई जो कच्छ मुंद्रा बंदरगाह की जानिब जा रही थी। म्यूनिख में मुनक्किदा ISSF वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत की निशानेबाज ईशा ने 25 मीटर पिस्टल शूटिंग मुकाबले में शानदार कारकिर्दगी का मुजाहिरा किया है। उन्होंने मुमकिना 50 पॉइंट में 43 पॉइंट्स हासिल करके एक नया आलमी रिकॉर्ड कायम किया है। इससे कबल ये रिकॉर्ड 42 पॉइंट्स के साथ जुनूबी कोरिया की किम येजी के नाम था। भारत के शहर चंडीगढ़ और भुवनेश्वर को आइंदा बरस मुनक्किदा होने वाले एशियाई रिले और साल 2028 की एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी के हुकूक दिए गए हैं। इस बात का ऐलान हांगकांग में मुनक्किद होने वाली एग्जीक्यूटिव मीटिंग के दौरान बर आजम एथलेटिक्स की गवर्निंग बॉडी ने किया। एशियन एथलेटिक्स काउंसिल की मीटिंग एशियाई U20 चैंपियनशिप से कबल मुनक्किद हुई, जो 28 से 31 मई तक जारी रहेगी। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। मरकज ने अवामी निजामे तकसीम को जदीद बनाने के मकसद से सार्थक पीडीएस स्कीम की तौसी को मंजूरी दे दी है। इसके लिए 25,500 करोड़ रुपए से ज्यादा मुख्तस किए गए हैं। वस्ती और शुमाल मगरबी भारत में आइंदा 2 से 3 दिन के दौरान शदीद गर्मी की लहर जारी रहेगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बढ़ते हुए दर्जे हरारत के दौरान कमजोर अफराद का ध्यान रखने के लिए शहरियों पर जोर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव कमीशन की SIR मुहिम की कानूनी हैसियत को बरकरार रखा है। उसने कहा है कि ये मशक आजाद शफाफ इंतखाबात की राह हमवार करेगी। भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने ख्वातीन के 25 मीटर पिस्टल मुकाबले में आलमी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उन्होंने म्यूनिख के ISSF आलमी कप में तलाई तमगा हासिल किया है। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।

0: अक्षर चा का विषय है।
1: सीमाएं सिर्फ नक्शों पर खींची गई रेखाएं नहीं होती, ये किसी देश की पहचान होती हैं, उसकी सुरक्षा, उसकी संस्कृति और उसके भविष्य की सबसे मजबूत दीवार होती हैं। लेकिन जब इन्हीं सीमाओं को पार कर अवैध घुसपैठ देश के भीतर प्रवेश करती है तो सवाल सिर्फ सुरक्षा का नहीं रह जाता, सवाल उठता है जनसंख्या संतुलन का, सामाजिक ढांचे का, रोजगार, संसाधनों और राष्ट्रीय पहचान का। क्या बदलती जनसंख्या तस्वीर भारत के सामाजिक और आर्थिक

0: बानी को प्रभावित कर रही है? क्या सीमाओं से शुरू होने वाली ये चुनौती अब शहरों और गांवों तक पहुंच चुकी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आने वाले वर्षों में ये भारत की आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक स्थिरता के लिए गंभीर संकट भी बन सकती है? इन्हीं महत्वपूर्ण सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे हमारे विशेष कार्यक्रम चर्चा का विषय है मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। हमारा आज का विषय है जनसंख्या परिवर्तन का सामाजिक आर्थिक ढांचे पर प्रभाव। आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रफुल्ल केतकर और सीमा सुरक्षा की चुनौतियों को बेहद करीब से देखने वाले पूर्व बीएसएफ प्रमुख और असम के पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी नमस्कार।
2: नमस्कार
0: प्रकाश जी। आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो सबसे बड़ी चुनौती इस समय भारत के सामने है वो दूसरे देशों से आए लोग हैं। दो तरह के लोग हैं, एक शरणार्थी हैं और दूसरे घुसपैठिए हैं। इसको लेकर जो हमारे बॉर्डर स्टेट हैं वहां पर कई तरह की समस्याएं देखने को मिल रही है। क्या लगता है, चूंकि आप खुद बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के प्रमुख रह चुके हैं, असम एक ऐसे राज्य के आप डीजीपी थे जहां पर इस तरह की बहुत बड़ी समस्या है, कैसे देखते हैं आप इसे भारत के नजरिए से?
2: देखिए, भारत के नजरिए से तो बहुत साफ है और अलग अलग समय पे बड़े बड़े हस्तियों ने इस विषय पे रोशनी डाली है कि ये देश की सामाजिक ढांचे के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए और देश की सुरक्षा के लिए, तीनों ही दृष्टिकोण से ये बहुत बड़ी चुनौती है और बहुत बड़ा खतरा है। घुसपैठिए जो है आज से नहीं, ये स्वतंत्रता के बाद से, इंडिपेंडेंस के बाद से ही शुरू हो गया था। पर यह है कि इसकी प्रक्रिया अगर हम 1971 के बाद देखें, 1971 में बांग्लादेश बन गया तो उसके पहले जो कुछ उत्पीड़न हुआ था पाकिस्तान आर्मी द्वारा, उस समय आप जानते हैं लाखों की तादाद में बांग्लादेशी आए थे और यहाँ पे उन्होंने शरण ली थी। बाद में बहुतों को वापस भेजा गया, कुछ गए, शायद कुछ नहीं भी गए होंगे। परंतु 1971 के बाद भी ये समस्या ऐसा नहीं है कि इसका समाधान हो गया। हम लोग ये समझते थे कि अब बांग्लादेश इंडिपेंडेंट हो गया और भारत के सहयोग से हुआ है तो अब हिंदू वहां पे सुरक्षित अपने आप को महसूस करेंगे, मुस्लिम तो वहां पे रहेंगे। परंतु बहुत सारे कारण ऐसे हुए जिसकी वजह से ये घुसपैठ की समस्या बराबर बनी रही। सबसे बड़ा कारण जो था आर्थिक था। वो बांग्लादेश तो बन गया पर उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो इतनी बड़ी जनसंख्या को सबको एम्प्लॉयमेंट दे सके, सबको रोजी रोटी की व्यवस्था हो सके। नतीजा ये हुआ कि आर्थिक कारणों से बहुत भारी संख्या में 1971 में बांग्लादेश के बनने के बाद भी यहाँ पलायन होता रहा, लोग आते रहे सीमा पार से और जितने बॉर्डरिंग स्टेट से वहां पे बढ़ते गए। इस समस्या से सारी सरकारें अवगत थी। आपको याद होगा कारगिल युद्ध के बाद 4 टास्क फोर्सेस बनी थी बॉर्डर की समस्या देखने के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी की, डिफेंस की, इंटेलिजेंस की, और चारों टास्क फोर्स बड़े हाई पावर्ड बॉडीज थी। इसमें एक बॉर्डर मैनेजमेंट वाली जो बॉडी थी वो माधव गोड बोले उसका नेतृत्व कर रहे थे, जो भारत सरकार के गृह सचिव थे और बड़े योग्य आईएएस अधिकारी थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो अगस्त 2000 में प्रस्तुत की और उस रिपोर्ट में ये लिखा कि हर वर्ष करीब 3 लाख बांग्लादेशी भारत में घुसपैठ कर रहे हैं और इस समय वर्तमान में 2000 में उनकी संख्या 1,50,00,000 है। ये 2000 की बात है, उसके बाद भी बढ़ता ही रहा होगा। आज की तारीख में 3 करोड़ हो गया हो, 3.5 करोड़ हो गया, कुछ कहा नहीं जा सकता। अलग अलग समय पे भारत सरकार ने इसका अलग अलग एस्टिमेट दिया है। 2001 में एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना था। ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने चारों टास्क फोर्सेज के रिपोर्ट को इवेल्युएट किया था, उसमें आकलन किया था और इन्होंने भी बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा था कि इतनी बड़ी संख्या में घुसपैठियों को होना देश की सुरक्षा, सामाजिक सौहार्द और अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा खतरा है। फिर बाद में आ जाइए 2005 में सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला गया, सोनोवाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस था एक 2005 में, उसमें उन्होंने कहा था कि दिस इज ए डेमोग्राफिक एग्रेशन और एक्सटर्नल एग्रेशन में इसको उन्होंने क्लासिफाई किया था कि एक्सटर्नल एग्रेशन है ऑन इंडिया और कहा था इसके लिए भारत की संप्रभुता, अखंडता और आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो ये समस्या आज से नहीं, बहुत पहले से चली आ रही है। और अगर आप और पहले जाना चाहें तो 1998 में जब जनरल सिन्हा आसाम के राज्यपाल थे, उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को 8 नवंबर 1998 में एक रिपोर्ट भेजी थी जिसमें लिखा था कि असम में जो घुसपैठ हो रही उससे जनसंख्या में जो परिवर्तन हो रहे हैं, हो सकता है कि कालांतर में, मतलब बहुत कुछ वर्षों बाद, बांग्लादेश ये मांग करे कि असम के जो सीमावर्ती मुस्लिम बाहुल्य प्रदेश हैं इन्हें बांग्लादेश में मिला दिया जाए क्योंकि ये मुस्लिम मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं। तो ये तो स्थिति है, ये आज से नहीं, कम से कम 1998 से बराबर चेतावनी हमको मिल रही है। अब 26-27 साल हो गए हैं, वर्तमान सरकार को इस बात का श्रेय तो हम देंगे कि इन्होंने इस समस्या की नोटिस ली है और मोदी जी ने अपने इंडिपेंडेंस डे के स्पीच में कहा है कि एक डेमोग्राफिक कमीशन बनाएंगे तो इस समस्या को गंभीरता से उसको स्टडी करके अपने रिकमेंडेशन देगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई अवसरों पर कहा है कि घुसपैठिए राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है।
3: जब डेमोग्राफी परिवर्तन होता है, सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में परिवर्तन होता है, तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है, देश की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए ये संकट पैदा।

0: राजनीतिक तनाव के बीज बो देता है और कोई देश अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता है, दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता है। तो हम भारत को कैसे कर सकते हैं? हमारे पूर्वजों ने त्याग और बलिदान से आजादी पाई है, हमें स्वतंत्र भारत दिया है। उन महापुरुषों के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम हमारे देश में ऐसी हरकतों को स्वीकार न करें। उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और इसलिए मैं आज लाल किले की प्राचीर से कहना चाहता हूं, हमने एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। इस मिशन के द्वारा ये जो भीषण संकट नजर आ रहा है, भारत पे मंडरा रहा है जो संकट है, उसको निपटाने के लिए तय समय में सुविचारित सुनिश्चित रूप से अपने कार्य को करेगा, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं।
1: जी हाँ, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को उच्च स्तरीय जनसांख्यिकी मिशन की घोषणा की थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 सितंबर 2025 को इस प्रस्ताव को मंजूरी दी और अब न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नवेलकर सेवानिवृत्त समिति के अध्यक्ष होंगे। जनगणना आयुक्त के अतिरिक्त 3 विशिष्ट विशेषज्ञ श्री दुर्गा शंकर मिश्रा सेवानिवृत्त IAS, श्री बालाजी श्रीवास्तव सेवानिवृत्त IPS और डॉक्टर शमिका रवि समिति के सदस्य होंगे और गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव भी समिति के सदस्य सचिव होंगे। ये समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। आवश्यकता पड़ने पर गृह मंत्रालय समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ा सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 15 अगस्त 2025 को घोषणा की थी उच्च स्तरीय कमेटी की, अब उसका गठन हो गया है और घुसपैठियों के बुरे दिन की शुरुआत भी इसी के साथ हो गई है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: भारत सरकार ने यह तय किया है कि हम न केवल घुसपैठ को रोकेंगे, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर निकालेंगे और हमारी जनसांख्यिकी में अकृत्रिम बदलाव नहीं होने देंगे। ये जो जनसांख्यिकी का बदलाव करने का षड्यंत्र है, इसको सीमा सुरक्षा बल ने रोकना है। और आज मैं बड़ी शांति से निश्चिंत मन से आपको कह रहा हूं कि अब त्रिपुरा, आसाम और पश्चिम बंगाल तीनों जगह ऐसी सरकारें हैं जो नीतिगत रूप से मानती है कि देश में घुसपैठ नहीं होनी चाहिए।
1: प्रफुल्ल जी, आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि सीमावर्ती जिलों और देश के कुछ चुनिंदा महानगरों में अचानक आई इस जनसांख्यिकी बदलाव के संकेत जो मिल रहे हैं, क्या आपको लगता है कि सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने को ये प्रभावित कर रहा है?
3: जी निश्चित, वैसे तो ये अचानक नहीं आया है, लेकिन समस्या के रूप में अचानक उसको अभी देखा जा रहा है। जैसे हमने हाल ही में देखा, नोएडा में अचानक से एक इरप्शन हुआ मूवमेंट के रूप में, और बहुत सारे सोसाइटीज में, क्रिमिनल एक्टिविटीज में जब भी नाम आता था तो शुरू में इसके बारे में चर्चा जरूर होती थी, लेकिन कोई एक्शन नहीं होता था। हमको ये ध्यान में रखना चाहिए, अभी IMDT एक्ट 1983 में बना, उस एक्ट का नाम ही था इलीगल माइग्रेंट्स डिटर्मिनेशन बाय ट्रिब्यूनल। इसका मतलब पहली बार तो समस्या उस समय से शुरू कम से कम मानी गई कि इलीगल माइग्रेंट्स है। अब इसमें दो तरीके के अलग अलग थे, एक जो 1971 से पहले या 1971 के बाद, फिर 1990 के दशक में भी, 92 के बाद खास करके अयोध्या के आंदोलन के रिएक्शन में वहां पे जो मंदिर गिरा गया, और केवल हिंदू ही नहीं, हिंदू बुद्धिस्ट वहां की सो कॉल्ड जिनको हम माइनॉरिटीज बांग्लादेश के संदर्भ में कह सकते हैं, ऐसे लोग भारत में उनको शरण लेनी पड़ी, जिनके लिए ये जैसा प्रावधान करना पड़ा। लेकिन दूसरा एक बहुत बड़ा वर्ग था जिसने इलीगल इमिग्रेंट्स की या इलीगल माइग्रेशन की एक बहुत बड़ी इकोनॉमी इसके आधार पर खड़ी कर दी। प्रकाश सिंह जी ने जैसे बताया, कुछ कारण तो पर्यावरणीय, कुछ कारण आर्थिक भी रहे होंगे, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं, आप यदि इंटरनेशनल इंडेक्स निकाल लो तो बहुत सारे पैरामीटर्स में असम के सीमावर्ती जिले या बंगाल के सीमावर्ती जिले उनकी तुलना में बांग्लादेश की इकोनॉमी उस समय बहुत अच्छा कर रही थी। तो ऐसे में उनको क्या माइग्रेट होने की जरूरत पड़ी? मुझे लगता है कि इसके पीछे आर्थिक और पर्यावरणीय एनवायरमेंटल कारणों की वजह से, क्योंकि कुछ हिस्से ऐसे है बांग्लादेश के जहां पे बाढ़ की स्थिति आती है और वहां से माइग्रेशन होता है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके पीछे एक सोची समझी राजनीति थी, एक सोची समझी रणनीति भी थी। काउंटरफिट करेंसी का एक बहुत बड़ा नेटवर्क, जब कालियाचक की पुलिस चौकी को जलाया गया था बंगाल में, तो उस समय उजागर हुआ था। ये साफ साफ दिखाता है, या इलीगल जो आर्म्स का ट्रेडिंग है उसका एक इम्पोर्टेंट रूट रहा है, ड्रग ट्रैफिकिंग का ये एक इम्पोर्टेंट रूट रहा है। यही रास्ता है जहां म्यांमार से बांग्लादेश में गए

0: हुए रोहिंग्या रेफ्यूजीज भी सीधे आकर उसी रूट से कोई जम्मू कश्मीर तक, कोई हैदराबाद तक पहुंच गया, वो यदि रेफ्यूजी थे तो वो वहीं पे शरण ले सकते थे, उनको जम्मू कश्मीर तक जाने की क्या जरूरत थी, किसने पहुंचने के लिए उनको मदद की, उनके कार्ड्स भी बन जाते थे, वहां बॉर्डर क्रॉस करने से पहले उनको सारे आधार कार्ड और डॉक्यूमेंट्स बनाने की प्रक्रिया एक चलाने का प्रयास शुरू हुआ और उसके बहुत सारे नेटवर्क भी भारत के अन्य शहरों से एक्सपोज हुए। क्या हुआ दुर्भाग्य से 1980 के बाद, मुझे याद है उस समय ममता बनर्जी का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट पार्लियामेंट में था 2005 में शायद, और उस समय वो लेफ्ट गवर्नमेंट को और बुद्धदेव भट्टाचार्य को घेर रही थी और उस समय वो पूछ रही थी कि कब तक इन इलीगल माइग्रेंट्स को वोट बैंक बनाकर अपने लिए पोसोगे। दुर्भाग्य से वही ममता बनर्जी बाद में वही नीति आगे बढ़ाने लगी, तो सामाजिक ताना बाना बिगड़ता है, वहां की सांस्कृतिक स्थिति खराब होती है, वहां के रिसोर्सेस पर अतिरिक्त भार पैदा होता है और ये इलीगल एक्टिविटीज को बढ़ावा भी मिलता है। तो एक समग्र दृष्टि से आंकड़े अलग अलग होंगे, क्वेश्चन ये है कि पहली बात किस कारण से इसको बढ़ावा मिला, दूसरा उसको रोकने की, तीसरा जो भारत में आ गए हैं उनको आइडेंटिफाई करने की। तो डिटेक्शन इज द फर्स्ट स्टेज, एक्सेप्टेंस एंड डिटेंशन जब तक डिटेक्ट नहीं होंगे उसके बाद तो बाकी सारी प्रोसेस आएंगी कि उनको वोटर्स लिस्ट से डिलीट करना है या डिपोर्ट करना है, ये तो बाद की स्टेज है। उनको वर्क परमिट्स भी दिए जा सकते हैं लेकिन कम से कम आइडेंटिफाइड हो कि विदेशी मूल का नागरिक है, बिना पासपोर्ट के आया है और हमारे पास उसका एक ठोस डेटा है। और पूरे विश्व भर में ये होता है, उसमें भारत को अलग से कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। हमने यदि बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये दो अलग अलग बॉर्डर पार्टीशन के बाद एक्सेप्ट किए हैं, तो वैश्विक नियमों के अनुसार उनको भारत में आना है तो वीजा लेकर ही आना चाहिए, लीगल तरीके से ही आना चाहिए, इलीगल इन्फिल्ट्रेशन उसका रास्ता नहीं हो सकता। तो इसके नेटवर्क को डिसमेंटल करना ये राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक सांस्कृतिक आधार पर भी एक महत्वपूर्ण विषय है और मुझे लगता है आने वाले समय में ये जो समिति बनी है वो उस दिशा में एक साल के अंदर समग्र रिपोर्ट भी देंगे और इसके आधार पर नीति भी बनेगी।
1: जी हाँ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा है कि शरणार्थी और घुसपैठियों को अलग अलग तरह से देखना चाहिए क्योंकि दोनों के साथ अलग तरह की चुनौतियां हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: शरणार्थी और घुसपैठिया दोनों को एक पेज पर रखकर नहीं सोचना चाहिए। जो हमारे संविधान को जानते हैं, जो हमारे इतिहास को जानते हैं, हमारे देश की राजनीतिक इतिहास को जानते हैं, उन्होंने कम से कम ये गलती नहीं करनी चाहिए। हमारा संविधान बहुत स्पष्ट है, घुसपैठ कर आते हो, अलग अलग उद्देश्यों से आते हो तो आपको जरूर घुसपैठ का लेबल लगेगा और वो लगाना चाहिए शासन में। फिर कुछ लोग दलील करते हैं कि अगर वो भारत में ही रहना चाहते हैं तो हम क्यों सीमित करते हैं, कुछ सीमित नहीं करते हैं। इसके लिए भी कानून है, किसी भी धर्म का व्यक्ति एप्लीकेशन करे और एप्लीकेशन करके वैध तरीके से पासपोर्ट लेकर वीजा लेकर आए, हम उनके क्रेडेंशियल देखकर उनको नागरिकता देंगे, ये रास्ता खुला ही है। मगर आप अवैध तरीके से घुसपैठ करोगे तो सीमाएं पोरस नहीं हो सकती, सीमाओं से घुसपैठ नहीं होनी चाहिए और उनको संभालना भी चाहिए।
1: प्रकाश जी, चूंकि इन चुनौतियों को आपने काफी करीब से देखा है और अक्सर देखा जाता है कि सीमा पार करने के बाद जो घुसपैठिए हैं वो स्थानीय आबादी में घुल मिल जाते हैं, सुरक्षा बलों और स्थानीय राज्य पुलिस या खुफिया एजेंसियों के बीच जो तालमेल है उसको आप कैसे देखते हैं इस समस्या के निराकरण में?
3: देखिए, तालमेल तो बहुत जरूरी है, पर मेरा अपना अनुभव यह है कि जो सिक्योरिटी एजेंसी है अगर वो डिटरमिंड है तो इसका बहुत तरह से उपाय है। मैंने एज आईजी बीएसएफ पंजाब कुछ ऐसा काम किया है, इसको 25 साल तक तो उसको गोपनीय रखा मैंने, उसके बाद उसकी किताब में मैंने खोल के रख लिया। बहुत सारे भारी बांग्लादेशी जो थे, भारी मुसलमान बांग्लादेश से चलते थे और वो पंजाब में आ जाते थे और पंजाब में गुरुद्वारों में लंगर खाते थे, फिर जब उनको मौका मिला तो बॉर्डर पार करते थे। अब मेरे जाने के पहले बीएसएफ क्या करती थी, उसको बॉर्डर पे रोकती थी, उनको पंजाब पुलिस को हैंडओवर करती थी, पंजाब पुलिस दो चार दिन रखते थे, उसके बाद कहते थे हम आतंकवाद से लड़ें कि इनको कलकत्ते पहुंचाएं, ये छोड़ दो इनको, फिर थोड़े दिन बाद फिर वो वापस जा रहे हैं। तो मैंने अपने जिम्मेदारी पे बिना किसी होम मिनिस्ट्री के सैंक्शन के चिदम्बरम साहब से जब मैंने पूछा तो उनका यू बी डूइंग दिस एट योर ओन रिस्क, आई कैन नॉट परमिट दैट ऑफिशियली। मैंने अपने कहा जितने लोग हैं इनको अपने बीएसएफ के कैंप्स में रात भर रखो और जब अंधेरी रात हो तो इनको सीमा के पास से इनको पाकिस्तान भेज दो। मैंने कम से कम 25-30 हजार आदमी तो भेज दिए। इसका उपाय हर आदमी अपने लेवल पे काम कर सकता है। मैंने पर इसका ढिंडोरा नहीं पीटा, कोई इनाम नहीं मांगा, इसका ढोल नहीं बजाया, चुपचाप ये काम हो गया। फिर 25 साल बाद मैंने कहा कि मैंने इस तरह का काम मैंने किया था। पर यह है कि अभी भी समस्या का देखिए

0: कुछ निदान हमें ढूंढना पड़ेगा, कुछ सुझाव तो गोडबोले साहब ने अपनी कमेटी के रिपोर्ट में दे रखा है। मैं कहूंगा कि उस रिपोर्ट को फिर से अध्ययन किया जाए सरकार द्वारा, और जिन समस्याओं के लिए डेमोग्राफी कमीशन बन रहा है उन समस्याओं पे गोडबोले साहब ने बहुत गहन चिंतन किया है। इसके अलावा देखिए, अभी जैसे प्रफुल जी ने कहा, उनको हमें डिटेक्ट करना है, आइडेंटिफाई करके उसके बाद उनको डिपोर्ट करना है। अब डिपोर्टेशन में दिक्कत आ सकती है, बांग्लादेश उसको नहीं मानेगा तो उसका क्या करना होगा ये हमें बाद में देखेंगे। पर अगर मान लीजिए एक संख्या कोई आपने रखी है जो होल्डिंग सेंटर्स बनाए हैं, उनको कहिए कि भाई अगर तुम हिंदुस्तान में रहना है तो हम तुम्हें रहने देंगे, पर तुम्हें अपना सिटीजनशिप कार्ड या आधार कार्ड तो सरेंडर करना पड़ेगा और तुम्हें एक बांग्लादेश का एक कार्ड दिया जाएगा कि तुम बांग्लादेश के नागरिक हो, इस देश में तुम्हें 2 साल रहने की और काम करने की इजाजत दी जाती है, 2 साल बाद फिर हम इसको रिव्यू करेंगे कि तुम्हारा क्या किया जाए। और पर इन आदमियों को जिनको ये बांग्लादेश का कार्ड दिया जाता है, ये हमारे आई कार्ड से रंग में फर्क होना चाहिए, केवल कार्ड को देख ही मालूम हो जाए कि ये बांग्लादेश का ये आदमी। और इस आदमी को 2 कंडीशन होनी चाहिए कि तुम हिंदुस्तान में रह सकते हो और अपनी जीविका उपार्जन कर सकते हो, परंतु तुम वोट नहीं दे सकते और कोई अचल संपत्ति नहीं खरीद सकते। ये 2 कंडीशन उस पर इम्पोज की जाए और उसको सख्ती से लागू किया जाए कि मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं खरीदोगे और तुम्हारा नाम इलेक्टोरल लिस्ट में नहीं होगा। तो इस पे हमें थोड़ा ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशन भी रखना पड़ेगा, और कालांतर में मैं कहता हूं कि इस पे हमें बांग्लादेश से सख्ती से कहना पड़ेगा, देखिए आपके अभी भी हमारे पास 2.5 करोड़ 2 करोड़ जितना भारत सरकार का आकलन हो इतने आदमी है, या तो आप इन्हें वापस लीजिए या इसके बदले में हमें जमीन दीजिए। और वो जमीन हम मांगे ठीक चिकन नेक के अगल बगल रंगपुर डिवीजन में मांगे, हमारा चिकन नेक की समस्या भी हल हो जाएगी और इन आदमियों को हम वहां बसाएं या जहां भी बसाएं, पर हम कहेंगे इतने आदमियों को रहने के लिए इतने वर्ग फुट हमें जमीन चाहिए, इतनी जमीन आपको देना पड़ेगा, तो सख्ती तो करनी पड़ेगी, या तो इनको वापस लो। तो एक स्ट्रिक्ट लाइन ऑफ एक्शन लेना पड़ेगा हमें, और उसकी भी शायद नौबत कालांतर में आएगी। पर यह है कि इस समस्या का हमें निदान ढूंढना है, वरना ये तो हमारे ऊपर बोझ है आज की तारीख में।
1: जी प्रफुल सर, आपसे ये समझना चाहेंगे कि जो अवैध रूप से जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, जब स्थानीय श्रम बाजार यानी लेबर मार्केट में शामिल होते हैं, तो रोजगार, सब्सिडी, राशन और स्वास्थ्य सेवाओं जैसे सीमित सरकारी संसाधनों पर इसका जो असर पड़ रहा है, वो एक राज्य सरकार और केंद्र सरकार के लिए चुनौती है, और वो कितनी गंभीर समस्या बनते जा रही है भारत जैसे देश में जहाँ की आबादी 140 करोड़ से ज्यादा है।
2: देखिए, आज की भाषा में जैसे कहा जाता है कि डेमोग्राफी इज डेस्टिनी, और डेमोग्राफी इज डेस्टिनी ये मोर रिलेवेंट हो जाता है जब आपकी डेमोक्रेसी, क्योंकि उस डेमोक्रेसी में आपको सरकार चुनने का भी अधिकार मिल जाता है और उस सरकार से दिए हुए योजनाओं का लाभ लेने का भी। मैं उस पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले और एक बिंदु मैं श्रोताओं के लिए स्पष्ट कर देना चाहता हूं।
1: जी,
2: 1983 में जो IMDT एक्ट बना, जनरल सिन्हा की रिपोर्ट ने उस पर बहुत डिटेल में ये दिया था, और वेंकैया नायडू उस समय मंत्री थे, मुझे स्मरण है, शायद ठीक बता रहा हूं, तो उन्होंने पार्लियामेंट में उसको लेकर स्टेटमेंट भी दिया था, गोडबोले कमेटी ने भी उसका रेफरेंस लिया था। IMDT एक्ट में एक बहुत बड़ा लूपहोल था। IMDT एक्ट में जो इलीगल व्यक्ति जो आया है वहां से, उसको अपनी नागरिकता प्रूव करने का कोई भी बंधन नहीं था। जो कंप्लेंट उसके विरोध में करेगा कि ये बाहर से आया हुआ है और ये भारत का नागरिक नहीं है, उस पर ओनस था कि वो ये प्रूव करे कि ये भारत का नहीं है। और ऐसे में भारत में स्वाभाविक रूप से मानसिकता होती है, और इसने भारत में एक कॉम्पिटिटिव वोट बैंक पॉलिटिक्स को जन्म दिया। शायद मुझे पता नहीं है जानबूझकर रखा गया था उस समय का, उसका क्या लॉजिक था, क्या कारण थे, लेकिन इसने इस समस्या को बढ़ाया। अब आपने जो पूछा कि सरकार की योजनाएं हो, चाहे वो खाद्यान्न से जुड़ी हुई हो या अन्य योजनाओं का लाभ हो, इन सबके लिए अल्टीमेटली बेनिफिशियरी कौन होता है, जिसका हक ये मारते हैं? भारत का जो गरीब तबका है, उसके अधिकारों का, उनके रिसोर्सेस का एक तरीके से ये इलीगल माइग्रेंट जो है, जो रोजगार के नाम पर या अन्य किसी नाम पर आते हैं, मैं नहीं मानता रोजगार पर, भारत के लोग नहीं जाते क्या रोजगार के लिए बाहर? लेकिन क्या वो इलीगल बाउंड्री क्रॉस करके जाते हैं? बाउंड्री क्रॉस करके जाते हैं तो भी भारत उनको स्वीकार करता है। ऐसी कुछ घटनाएं बाहर के देशों में हुई तो हमने कहा कि भाई हम उनको कोई भारत बढ़ावा नहीं देता है। तो हमको वही नीति हमारे पड़ोसी देशों के बारे में, या भारत और नेपाल के बीच में बहुत सारे लोग आते जाते हैं, लेकिन उसके लिए भी एक प्रावधान बना हुआ है, कायकाज दिखाकर वो आते हैं, वर्क परमिट के नाते यहाँ पे रहते भी है। तो मुझे लगता है इसका जो परिणाम होता है वो स्थानिक संसाधनों पर होता है, सरकारी योजनाओं के लाभ लेने के कारण होता है, राष्ट्रीय सुरक्षा पर होता है, और खास करके असम में जो समस्या आई, स्थानिक संस्कृति, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे जंगलों के, और अभी पूर्वोत्तर के बहुत राज्यों में या

0: जहाँ पे भारत के सामान्य व्यक्ति को भी जाने के लिए एक परमिट लेना पड़ता है, इनर लाइन परमिट जिसको कहते हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए वहां पर आकर बैठ गए हैं, वहां के जंगल संसाधनों का नुकसान कर रहे हैं। तो ये हमारा मल्टीपल रिसोर्सेस का एक तरीके से एक्सप्लॉयटेशन भी है, उन पर स्ट्रेन भी है। तो मुझे लगता है कि ये भी डायमेंशन हमको, जब हम रिलीजियस इम्बैलेंस तो है ही, वो इम्बैलेंस क्रिएट होता है जिसके कारण समाज में एक तनाव पैदा होता है, लेकिन सांस्कृतिक और आर्थिक साधनों के आधार पर भी ये घुसपैठ बहुत बड़ी समस्या सीमावर्ती क्षेत्र में बनी हुई है, जिसके कारण इस समिति का गठन करना पड़ा है।
1: असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी कहा है कि बाहर से आए हुए लोग देश की समस्या के साथ साथ असम के लिए भी एक बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: आई थिंक चैलेंज हैज बिकम मोर ग्रेव, दैट डेमोग्राफिक पैटर्न इज चेंजिंग फास्ट। टुडे ऑलमोस्ट 40% ऑफ आवर टोटल पॉपुलेशन विल बी फ्रॉम दोज हु हैज कम फ्रॉम बांग्लादेश एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। Legalities apart, today Assamese is marginalized in our own land, our culture is marginalized in our own land, economy is fast shifting to those people who were never associated with our culture and with our history. So the silence continue, but one good thing is that there is a collective spirit today to face the challenge, and I am sure that our new generation will fight, will keep on fighting, and God will bless us, will survive.
1: प्रफुल्ल जी, आप बहुत समय से भारत के अलग अलग विषयों पर पैनी नजर रखते हैं। ये जो समिति बनी है और प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2025 को लाल किले के प्राचीर से इसकी घोषणा की थी, क्या लगता है कि इस समिति के बनने से क्या कुछ बदलने वाला है निकट भविष्य में?
0: देखिए, मुझे इसमें सबसे बड़ा जो बदलाव लग रहा है बंगाल की चुनाव के बाद, मुझे लगता है एजेंसी के बीच में कोऑर्डिनेशन से भी ज्यादा इसमें अलग अलग स्टेट्स की कोऑर्डिनेशन की बड़ी समस्या रहती थी। बांग्लादेश से एंटर कर रहे हैं असम में जा रहे हैं, असम से एंटर कर रहे हैं बिहार तक पहुंच रहे हैं या झारखंड तक पहुंच रहे हैं, और ऐसे में फिर एक राज्य दूसरे राज्य पर ये चीज धकेल देता था कि ये तो हमारी समस्या नहीं है, ये तो आपको रोकना है, और फिर ये वहां का राज्य केंद्र पर कि ये तो आपको बीएसएफ के लेवल पर हैंडल करना चाहिए, लेकिन बॉर्डर की जो लैंड है वो पोरस रखेंगे, उसको ट्रांसफर नहीं करेंगे बीएसएफ को। तो ये सारा कॉम्प्लेक्स सिनारियो था। आज अभी राजनीतिक स्तर पर मुझे लगता है प्रधानमंत्री ये निर्णय ले पाए, उसमें एक महत्वपूर्ण कारण आज ये है कि इस सीमावर्ती क्षेत्र में झारखंड छोड़कर लगभग सारे हिस्सों में सत्ताधारी दल एक ही है, और या वो एनडीए का हिस्सा है या भाजपा से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में ये समन्वय, ऐसे ही हुआ था नक्सलवादी समस्या के बारे में, तुरंत बॉर्डर क्रॉस करके चले जाते थे, और फिर छत्तीसगढ़ का ये कहता था नहीं मध्य प्रदेश की समस्या है, मध्य प्रदेश वाला कहता था तो उसने क्राइम तो हमारे यहाँ पे नहीं किया है, वो तो महाराष्ट्र भाग गया है। तो ऐसे में पहली मीटिंग जब की थी गृहमंत्री, मुझे याद है चारों राज्यों के गृहमंत्री और डीजीपी को लेकर मीटिंग की थी। अब ये समन्वय संभव हो पाएगा केंद्र सरकार ने जब ये समिति बनाई है, तो मुझे लगता है समिति एक तो इसका समग्रता से अध्ययन करेगी, पिछले रिपोर्ट्स के आधार पर इसका एक, जिसको हम कह सकते हैं, क्लियर पिक्चर इसके कारण सामने आएगा। दूसरा, मुझे लगता है कि इसके समस्या के निराकरण के लिए भी नीतिगत सीधा सीधा एक, मुझे लगता है कि क्लियर कट पिक्चर सरकार के सामने भी आएगा कि नीतिगत विषय में इसको आगे कैसे बढ़ाना है, और समन्वय के नाते कौन कौन सी एजेंसी की क्या क्या भूमिका रहेगी, ये भी स्पष्टता इस समिति के गठन के कारण आने की संभावना है। तो आने वाले जैसे शब्द तीन चले, डिटेक्ट डिलीट एंड डिपोर्ट, लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम डिटेक्शन और आने वाले कालखंड में इसको फिर से और आगे ना बढ़े, ये इलीगल माइग्रेशन ना बढ़े, जो है उनको डिटेक्ट करके क्या करना है वो तो है ही, लेकिन वो ना बढ़े इसके लिए क्या हो, इसके लिए निश्चित रूप से हमको एक नीतिगत दिशा मिलने की संभावना इस समिति से बनेगी, यह मेरा विश्वास है।
1: जी हाँ, बिल्कुल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल अगर होगा तो इस चुनौती से पार पाया जा सकता है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
3: सिर्फ सीमाओं की सुरक्षा कर हम देश की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते, हमने क्षेत्रीय सुरक्षा का राज्य सरकारों के साथ रहकर चिंता भी करना पड़ेगा और वो जिम्मेदारी का निर्वहन भी करना पड़ेगा। हमारी जिम्मेदारी है कि सीमा से नजदीक 50 किलोमीटर के किसी भी गांव में कोई अवैध निर्माण होता है तो हम सिविल प्रशासन को सूचित कर, कलेक्टर को सूचित करें, एसपी को सूचित करें। हमारी जिम्मेदारी है कि 50 किलोमीटर की बॉर्डर तक के सभी गांवों में जनसांख्यिकी का परिवर्तन हो रहा है, कृत्रिम परिवर्तन हो रहा है, तो उसके प्रति सजग रहकर राज्य सरकार को आगाह करें।
1: प्रकाश जी, एक और सवाल आपसे समझना चाहेंगे कि 2014 के बाद इस समस्या को लेकर वर्तमान केंद्र सरकार ने बहुत सारी कोशिशें की हैं और उसी दिशा में इस समिति का गठन भी है, कैसे देखते हैं पिछले 12 वर्षों के मौजूदा सरकार के प्रयासों को घुसपैठियों और ये जो डेमोग्राफिकल चेंज है इससे पार पाने की दिशा में?
4: देखिए, समस्या की गंभीरता को समझा गया है, उसको स्वीकारा गया है और उसके निदान के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं, ये तो यहाँ तक तो सार्थक है। अब हमें अपनी लॉ एनफोर्समेंट मशीनरी से ये काम लेना पड़ेगा और ये काम मतलब वर्तमान सरकार लेने में सक्षम है। उन्होंने नक्सलियों को कहा कि हम मार्च 2026 तक खत्म कर दें, उन्होंने खत्म कर दिया, ठीक है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इस समस्या के लिए भी उनको कुछ टारगेट रखना पड़ेगा और इसकी मंथली ईयरली या क्वार्टरली कुछ चीज की मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। हम पहले ये एस्टिमेट बनाए कि हर स्टेट में कितने कितने बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, उसके बाद हर स्टेट पे कहें कि इस महीने में आपने इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की, इनको कितने को डिटेक्ट किया, कितने होल्डिंग सेंटर में है, किनको डिपोर्ट करने के लिए क्या कार्रवाई की, इसका रेगुलर मॉनिटरिंग होनी पड़ेगी। इसमें सख्ती बहुत जरूरी है। मैं समझता हूँ कि वर्तमान सरकार करने में सक्षम है, इन्होंने नक्सल समस्या पे विजय पा ली है, तो इस समस्या का भी ये समाधान प्रभावी ढंग से ढूंढ सकते हैं। इसके लिए सख्ती करनी पड़ेगी और मैं समझता हूँ कि सरकार ये सख्ती कर सकती है।
1: प्रफुल्ल जी, कार्यक्रम के अंत में एक और सवाल बहुत संक्षेप में आपसे समझना चाहेंगे कि आज के दौर में जब सोशल मीडिया का जमाना है तो सोशल मीडिया और फेक डॉक्यूमेंट नेटवर्क, आपको क्या लगता है ये घुसपैठ को बढ़ाने में कितनी भूमिका निभा रहे हैं?
0: देखिए, मैंने जैसे पहले कहा कि इसकी जुड़ी हुई एक इकोनॉमी है, ये केवल फेक डॉक्यूमेंट नेटवर्क नहीं है, ये फेक करेंसी नेटवर्क है, ये ड्रग ट्रैफिकिंग का नेटवर्क है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का नेटवर्क है, इसमें आर्म्स के ट्रैफिकिंग का नेटवर्क है और एक क्रिमिनल सिंडिकेट के रूप में ये काम करता है। तो मुझे लगता है कि ये निश्चित रूप से जिम्मेदार है और आज के जमाने में सोशल मीडिया इसको एम्पलीफाई करता है ह्यूमैनिटेरियन के नाम पर। जैसे ही ऐसी कुछ केसेस होती है, डिपोर्टेशन के लिए कुछ बात बढ़ती है, तो सोशल मीडिया में एक्टिविज्म चलता है, राजनीतिक कारणों से भी चलता है, कुछ धार्मिक कारणों से भी चलता है, कुछ इंटरनेशनल कॉन्स्पिरसीज के द्वारा भी चलता है। तो ऐसे में एक बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी भी देश के लिए किसी भी इलीगल माइग्रेंट्स के विरोध में सख्त कदम लेना। और आज जब टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग एक अच्छा उपयोग हो सकता है गवर्नेंस में आइडेंटिफाई करने के लिए, चाहे सीसीटीवी कैमरेज के रूप में, चाहे सेंसर्स के रूप में, हम बहुत सारी चीजों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ये सिंडिकेट्स डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग करना, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो मुझे लगता है कि जब अननेचुरल डेमोग्राफिक चेंज के बारे में सोचा जाएगा तो इसके टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, मीडिया एक्टिविज्म के एस्पेक्ट्स और अन्य जो इससे जुड़े हुए सिंडिकेट और क्रिमिनल एस्पेक्ट्स है, इस पर भी मुझे लगता है ये समिति सोचेगी भी और उस पर कुछ उपाय योजना भी सरकार को बताएगी।
1: सीमाओं की सुरक्षा सिर्फ जवानों की जिम्मेदारी नहीं होती, ये पूरे राष्ट्र की सामूहिक चेतना का विषय है। जनसंख्या परिवर्तन और अवैध घुसपैठ जैसे मुद्दे केवल आंकड़ों की बहस नहीं है, इनका सीधा संबंध देश की सामाजिक स्थिरता, आर्थिक संसाधनों और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से है। आज की चर्चा ने यह साफ कर दिया है कि चुनौती केवल सीमा पार से आने वालों की नहीं बल्कि उस सोच की भी है जो राष्ट्रीय हित से ऊपर व्यक्तिगत और राजनीतिक लाभ को रख देती है। जरूरत है सजग नीति की, मजबूत सीमा प्रबंधन की और सबसे बढ़कर जागरूक समाज की। प्रफुल्ल केतकर जी आपका, प्रकाश सिंह जी आपका, आकाशवाणी के इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
4: धन्यवाद, नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
5: चर्चा का विषय है।
6: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। रात्रि के 10 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है आपके व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। नमस्कार श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया में। श्रोताओं, आज हम आपको लिए चलते हैं नानी के घर, वह घर जहां आपको आपके पापा के नाम से नहीं बल्कि आपकी माँ के नाम से जाना जाता है। वह जगह जहाँ जाकर आपकी हर टेंशन खत्म हो जाती है और लगता है मानो सारी

0: पक्षियाँ नानी के घर आकर ठहर गई हैं। ऐसा होता है नानी का घर। तो आपको कर देना है मैसेज हमारे नंबर 9457078288 पर, और लिखकर भेजना है नानी के घर की वो याद जो आपको आज भी याद है। और तब तक सुनवा देते हैं आपको ये गीत जिसे हमने लिया है फिल्म आशीर्वाद से। इसे आवाज दी है अशोक कुमार ने, संगीत है वसंत देसाई का और गीत लिखा है हरिचंद नाथ चट्टोपाध्याय ने।
1: नाव चली, नानी की नाव चली, नीना की नानी की नाव चली, लंबे सफर पे आओ चली, भागो चली, जागो चली, आओ आओ आओ आओ, ये कैसे चले, लाओ पैसे चले, आहा, खड़े हो जाओ, तीन तीन की लाइन में खड़े हो जाओ, लाइन में खड़े हो जाओ, सब खड़े, ला ला ला ला ला, लाइन में, लाइन में, लाइन में, लाइन में, लाइन में, लाइन में, तुम भी खड़ी हो जाओ, जा जा जा जा जा उधर लाइन में, हाँ तुम भी आओ ना,
2: मेरे पास पैसा नहीं है।
1: पैसे नहीं है तो ये लो, लाओ पैसे और लाइन में खड़ी हो जाओ, जाओ पहले वो तीन फिर दूसरे तीन, तुम भी आओ, पहले लाइन में चले आओ। अब शुरू करते हैं, एक दो।
3: नाव चली, नानी की नाव चली, मीना की नानी की नाव चली, लंबे सफर पे सामान घर से निकाले गए, नानी के घर से निकाले गए, इधर से उधर से निकाले गए और नानी की नाव में डाले गए।
4: क्या डाले गए?
3: एक छड़ी, एक घड़ी, एक झाड़ू, एक लाड़ू, एक संदूक, एक बंदूक, एक तलवार, एक तलवार, एक घोड़े की जीन, एक ढोलक, एक दीन, एक घोड़े की नाल, एक धीवर का जाल, एक लहसुन, एक आलू, एक तोता, एक भालू, एक डोरा, एक दी, एक बोरा, एक बोरी, एक डंडा, एक झंडा, एक हंडा, एक अंडा, एक केला, एक आम, एक पक्का, एक कच्चा, और टोकरी में एक बिल्ली का बच्चा। फिर एक मगर ने पीछा किया, नानी की नाव का पीछा किया, नीना की नानी की नाव का पीछा किया। चुपके से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से, एक एक सामान खींच लिया, एक बिल्ली का बच्चा, एक केला, एक आम, एक पक्का, एक कच्चा, एक अंडा, एक हंडा, एक झंडा, एक डंडा, एक बोरी, एक बोरा, एक डोरी, एक डोरा, एक तोता, एक भालू, एक लहसुन, एक आलू, एक धीवर का जाल, एक घोड़े की नाल, एक ढोलक, एक दीन, एक घोड़े की जीन, एक तलवार, एक तलवार, एक बंदूक, एक बंदूक, एक लाडू, एक झाड़ू, एक झड़ी, एक घड़ी।
4: मगर नानी क्या कर रही थी?
3: नानी थी बेचारी बुढ़ी बहरी, नीना की नानी थी बुढ़ी बहरी, नानी की नींद थी इतनी गहरी, इतनी गहरी।
4: कितनी गहरी?
3: नदिया से गहरी, दिन दोपहरी, रात की रानी, ठंडा पानी, गरम मसाला, पेट में ताला, 16.5, 15, 15, दूना 30, 30, 45, 64, 75, 76, 90, 70, 75, 80, 20, नंबर 25, गले में रस्सा।
0: एक बार फिर से स्वागत है आपका। तो श्रोताओं, आज हम हैं दिल ले फिर याद क्या कार्यक्रम में और बात कर रहे हैं नानी के घर की। नानी वो शब्द है जिसे सुनकर हमारी आंखों में चमक आ जाती है और मन में बचपन के यादों में कहीं खो जाते हैं। नानी जी से हर चीज का तजुर्बा दो गुना होता है क्योंकि वो हमारी माँ की भी माँ होती हैं। वो हर बात में कठोर नहीं होती, वो हमारी शैतानियों को अक्सर छुपा जाती हैं, इसलिए वो बचपन से अब तक हमारे लिए सबसे प्यारी होती हैं। ऐसी तो होती हैं नानी, है ना? और वो नानी का घर, गर्मियों की छुट्टियाँ, नानी के घर जाना, खूब धमा चौकड़ी मचाना, वो एक अलग ही एहसास होता है श्रोताओं। जो हम दुनिया में कहीं भी घूम लें, कुछ भी कर लें, वो एक जो यादें होती हैं वो शायद मिल पाना बड़ी मुश्किल हो जाती है। वो छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ लेना, कच्ची कैरियों में नमक मिर्च लगाकर खा लेना, एक

लू सिंह चिंडालिया, लक्ष्मी देवी सुरेंद्र कुमार, बरखा योगेंद्र कुमार, नरेंद्र कुमार प्रोग्राम में ये लिख रहे हैं, नानी हमारी हर छोटी बड़ी इच्छा को पूरी करने की कोशिश करती है। बिल्कुल सही कहा आपने। अगला मैसेज हमें देख लेते हैं जो लिखा है मोहल्ला पंजाब से बब्बल मल्होत्रा और ओम प्रकाश मल्होत्रा ने। ये लिख रहे हैं, नानी हमें जीवन में अनुशासन, सच्चाई और बड़ों का आदर करना सिखाती हैं। जी हाँ श्रोताओं, ऐसी तो होती हैं हमारी नानी ना, प्यार से हमें बहुत सारी चीज़ें भी सिखा जाती हैं। अगला मैसेज जो हमारे पास आया है वो लिखकर भेज रहे हैं मोताला महाराष्ट्र से विजय सुलरकर, रतनमाला सुरलकर और विद्या कुमारी। ये लिख रहे हैं, बचपन में गर्मियों की छुट्टी में नानी के घर जाते थे, उनके खेत में कच्चे आम खड़े थे, इमलियां थी नदी में, दिन भर नहाते थे, पेड़ों पर झूला झूलते थे, सारा दिन मस्ती और मौज करते थे। दिन बीत गए और अब यादें रह गई। बिल्कुल सही कहा विजय जी आपने, दिन बीत गए और यादें रह गई। ऐसा ही होता है जब हम अपनी यादों में कहीं दोबारा मुड़कर जाते हैं तो सिर्फ यादें रह जाती हैं। तो अगला मैसेज जो हमें लिखकर भेज रहे हैं वो हमें भेजा है नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार गायकवाड़ और साई गायकवाड़ ने। ये लिख रहे हैं कोली नांदेड़ महाराष्ट्र से। लिखते हैं, बचपन में नानी के घर जाते थे, फिर नानी हमें चाय बिस्किट खिलाती थी। नानी के घर आम का पेड़ था, हम आम के पेड़ पर चढ़ते थे और आम खाते थे, वो मज़ा कुछ निराला था। बिल्कुल सही कहा आपने नारायण जी, वो मज़ा कुछ निराला था और वो यादें सबसे अलग। तो चलिए सुनवा देते हैं आपको ये अगला गीत जो बचपन की ओर हमें लेकर जाता है, जिसे हमने लिया है फिल्म जंगली से। इसे आवाज़ दी है लता मंगेशकर ने, गीत है शैलेंद्र का और संगीत है शंकर जयकिशन का।

एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे सभी श्रोताओं का उनके अपने कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया में। तो देख लेते हैं अगला मैसेज जो हमें आया है गांव लोहगढ़ ठाकुरा वाला से। लिखने वाले हैं स्वर्ण सिंह गिल, दिलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह। ये लिख रहे हैं नानी हमारे घर की सबसे बड़ी सदस्य होती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और अगला मैसेज जो हमें मिला है वो देख लेते हैं। वो लिख रहे हैं शमसुल कमर राही, शाहीन, फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनु खान, उस्मान अंसारी और कालिम अंसारी, गंज डूड वारा से लिख। और ये लिखते हैं वे हमें अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार करती हैं और नानी हमेशा हमारा ध्यान रखती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, नानी हमारा हमारी माँ से भी ज़्यादा ध्यान रखती है। अगला मैसेज जो हमें मिला है वो मिला है चकला बाजार समाना शहर पंजाब से। लिख रहे हैं पप्पू राजा खुशदिल, संगीता रानी जिंदल, पप्पू महक खुशदिल, सुनीता रानी जिंदल, आरजू पप्पू खुशदिल, हसमुख लाल जिंदल, बुलबुल शक्ति खुशदिल, संजीव बंटी जिंदल और पूरा परिवार। ये लिखते हैं हमारी नानी जीवन में अनुशासन और सच्चाई और बड़ों का आदर करना सिखाती हैं। नानी के पास दुनिया का बहुत अनुभव होता है इसलिए वो हमें सही मार्गदर्शन देती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने पप्पू राजा खुशदिल जी, नानी के पास तजुर्बा तो बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि वो हमारी माँ से की भी माँ है ना। तो चलिए अगला मैसेज हमें कर रहे हैं, ये लिखते हैं जी हाँ बचपन की कहानी। कहानी जब हम छोटे होते थे तो कितना अच्छा लगता था। एक छोटी सी निकर पहन लेते थे, कोई अभियान कभी कोई बनियान होती थी और बारिश आई तो मानते थे नानी के घर जाना है। नानी के घर जाते थे, नई मार्केट लेकर जाती थी, कुछ खिलौने, कोई खाने की चीज़, बड़ी खुशी होती थी। नानी बोलती थी मेरी बेटी का बेटा है, ऐसा बोलकर बड़ा दिल खुश होता था सुन के। और नानी के घर जाते ही कम से कम 2 किलो खून बढ़ जाता था हमारा। तो 2 दिन क्या बचपन तो बचपन होता है। बिल्कुल सही कहा। और ये लिखने वाले हैं रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जीएस नायक, शोभा नायक, समस्त डागला परिवार। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही जगमाल सिंह जी कि खून नानी के घर जाकर 2 गुना हो जाता है। बहुत जो खुशी होती है ना वो चेहरे से हट नहीं पाती है नानी के घर जाकर। देखिए हम तो बात भी कर रहे हैं तो अंदर से इतना एक्साइटमेंट निकल रहा है कि नानी का घर ऐसा होता है। अगला मैसेज देख लेते हैं जो हमें लिखकर भेजा है नगीना से अनिल विनोचा जी ने। ये लिखते हैं साहिबा अलका सिंह जी और ये पुराना मैसेज आएगा। हाँ ये आगे लिखते हैं अलका सिंह जी को नमस्कार। नानी का घर सच टॉपिक बहुत अच्छा है और प्यार मौज मस्ती का स्वर्ग होता है नानी का घर। जून का महीना या नानी के का महीना कई नाम से पुकारा जाए तो अच्छा होगा। बिल्कुल सही कहा अनिल जी आपने कि जून का महीना नानी के घर के नाम से पुकारा जाए तो अच्छा होगा। सच प्यार जो कहीं और हाजिर है, बिना पेमेंट किए सब कुछ हाजिर है। इतनी मस्ती किसी 5 स्टार होते हुए में होटल में भी नहीं मिलती। उधर मामा जी के खर्चे करके कुछ सर के भी बाल उड़ जाते हैं। मामी थोड़ी परेशान होती है मगर खुद भी तो बच्चों के घर जाती हैं। सच में अमेजिंग है नानी का घर। बिल्कुल सही कहा आपने अनिल विनोचा जी कि नानी का घर बहुत प्यारा है। और हाँ सही कहा, मामा के खर्चे तो हम सब लोग ही कराते हैं। बच्चों की डिमांड्स बढ़ जाती हैं कि मामा के घर आए हैं और हमें ये चाहिए। तो चलिए नानी के घर को लेकर ही प्यारा सा गीत सुनवा देते हैं नानी के लिए, जिसे हमने लिया है फिल्म मासूम से। इसे आवाज दी है रेणु मुखर्जी ने, गीत लिखा है शैलेंद्र ने और संगीत है हेमंत कुमार का।

0: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
1: तो इंतजार किस बात का,
0: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
1: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
0: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
1: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
0: और हमारा ईमेल आईडी है
1: akashwaninajibabad@gmail.com।
0: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
1: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: एक बार फिर से स्वागत है हमारे सभी श्रोताओं का उनके अपने कार्यक्रम दिल ने फरियाद किया में। तो जल्दी से पढ़ लेते हैं अगला मैसेज जो हमें लिखकर भेजा है। ग्राम भूरापुर तहसील नगीना से लिखने वाले हैं रोहन कुमार। ये लिखते हैं, हमारी नानी बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती हैं और हमें परियों की कहानी भी सुनाती हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपकी नानी, आपकी नहीं एक सच कहिए तो सबकी नानी कहानियाँ सुनाती हैं। और आजकल के बच्चे जो थोड़ा सा इन चीज़ों से दूर होते जा रहे हैं, उन्हें ट्रिप अच्छी लगने लगी है, टूर अच्छे लगने लगे हैं, वो उन चीज़ों को मिस करते जा रहे हैं। जी हाँ श्रोताओं, वो जो नानी की कहानियाँ होती है ना, वो एक अलग ही आनंद दे जाती हैं। तो चलिए देख लेते हैं अगला मैसेज जो हमें लिखकर भेजा है शास्त्री नगर बीड शहर से लिखने वाले हैं किशन सपकाल। सबकाल, आशा सबकाल, सोनिया सबकाल और विशाल सबकाल, ये लिखते हैं, नानी के घर जाकर हमारी सारी थकान दूर हो जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने, नानी का घर होता ही ऐसा है, जो टेंशन होती है दूसरों के पास चली जाती है और हम एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। तो अगला मैसेज जो हमें लिख रहे हैं वो है बीजना मुरादाबाद से लिखने वाले हैं राजवीर सिंह यादव, कुणाल यादव, हर्ष।

यादव, मनीष यादव, अंशिका यादव, यूनुस खान और सोफिया खान, ये लिखती हैं। छुट्टियों के समय नानी के घर यानी ननिहाल में समय बिताना हम सभी को बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल सही कहा राजवीर जी आपने कि नानी के घर समय बिताना बहुत अच्छा लगता है और हर बच्चे को पसंद होता है। जैसे ही पता चलता है कि छुट्टियां पड़ गई हैं और अब नानी के घर जाना है तो बच्चे अलग ही खुशी में झूमने लगते हैं। देख लेते हैं अगला मैसेज जो हमें लिखकर भेजा है परभणी महाराष्ट्र से। लिखने वाले हैं रुपेश संघई, महेश संघई, प्रजेश संघई, प्रीतेश संघई और इनका पूरा संघई परिवार। ये लिखते हैं, जब भी हम कोई गलती करते हैं तो वो प्यार से हमें समझाती हैं, डांटती नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने कि नानी जो होती है ना वो कभी कभी डांटती तो है ही नहीं, कभी कभी हमें हमारी मम्मी की डांट से भी बचा लेती हैं और उनको ही उल्टा डांट देती हैं। अरे इसको क्यों डांट रही है, तुझे भी तो थोड़ा देखना चाहिए था। तो वो चीज़ भी अच्छी लगती है कि जो मम्मी हमें हमेशा डांटती रहती हैं उनको भी कोई डांटने वाला है ना। तो चलिए, और बच्चे फुल मस्ती में हो जाते हैं कि भाई अब तो हम पर मम्मी का कोई जोर चलने वाला नहीं है, हम तो फुल मस्ती करेंगे, है ना। तो चलिए सुनवा देते हैं आपको ये अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म तारे जमी पर से। आवाजें हैं शान, आमिर खान और अरमान मलिक की।

चलिए श्रोताओं, जल्दी से पढ़ लेते हैं कार्यक्रम का अंतिम मैसेज जो हमें लिखकर भेजा है विलेज एंड पोस्ट राहुल नंगली से। लिखने वाले हैं आचार्य सत्यवीर सिंह, अलका चौहान, अक्षत चौहान, भूमिका चौहान ने लिखते हैं। हमने किताबों में पढ़ा है और सुना है नानी बहुत अच्छी होती है। मैंने अपनी नानी को कभी नहीं देखा, लेकिन मैं अपनी चाची के साथ उनके घर गया था तो मैंने चाची की माँ को देखा और अनुमान लगाया कि नानी ऐसी होती हैं। एक बार मामी नानी को डांट रही थी तो मैंने उन्हें टोक दिया।

कि नानी को कुछ मत कहना। तब नानी ने मुझे गोद में उठाया और सच में बहुत प्यार किया। तब पता चला कि नानी कितनी अच्छी होती हैं। बिल्कुल आचार्य सत्यवीर जी, नानी ऐसी ही होती हैं, बहुत प्यार करती हैं अपने बच्चों से और अपनी बेटी के बच्चों से तो दो गुना करती हैं, है ना। तो ऐसी होती हैं, नानी की यादें आपके साथ साझा की और चलते चलते सुनवा देते हैं आप सभी को कार्यक्रम का ये अंतिम गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म दो कलियां से। इसे आवाज़ दी है लता मंगेशकर ने, गीत लिखा है साहिल लुधियानवी ने और संगीत है रवि का। तो छोड़ जाते हैं नानी की यादों के साथ इस प्यारे गीत को।

एक प्यारा सा मैसेज भी हमारे पास आया है जो लिख रहे हैं दिलशाद हुसैन मुबारक ऊंची तकिया आजम गढ़ उत्तर प्रदेश से लिख रहे हैं। गर्मियों की छुट्टी में हम नानी के घर जाते थे, अब तो नानी खाला का घर मामा मामी का घर हो गया है नानी का घर। जब तक नानी नाना होते हैं तब तक वो अब अपने हैं, अब तो सपना लगता है। बिल्कुल सही कहा आपने दिलशाद जी के, नानी तो नानी ही होती है।

अभी आप सुन रहे थे आपके मैसेज पर आधारित कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर। रात के 10:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है मुझे याद है जरा जरा, जिसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं आकाशवाणी के वरिष्ठ उद्घोषक प्रेम कुमार सडाना की आकाशवाणी से जुड़ी यादें। प्रस्तुति सहयोग यशोदा डबराल का है और प्रस्तुतकर्ता है शोभित शर्मा।

0: मुझे याद है जरा जरा। स्वागत है इस कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का। जो आवाज आज यहाँ पर गूंजने वाली है वो आवाज वैसे तो हमारे श्रोताओं के मानस पटल पर दशकों से गूंज रही है, लेकिन आज मेरे साथ वो शख्सियत इस स्टूडियो में मौजूद है। मैं स्वागत करता हूँ स्टूडियो में प्रेम कुमार सढ़ाना जी का। सढ़ाना जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आकाशवाणी का धन्यवाद, और जो मुझे सुन रहे हैं वो श्रोता जिन्होंने मुझे इतना स्नेह दिया है उन सबका भी मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और आप कहेंगे कि ऐसी बात कर रहा है क्योंकि सुगंध पहुँच नहीं सकती, लेकिन मुझे लगता है वो सारे श्रोताओं की सुगंध मेरे तक पहुँच रही है।
0: क्या बात है, आपके पास

0: श्रोताओं की सुगंध पहुंच रही है और हम ये उम्मीद करते हैं कि श्रोताओं के पास जो आपकी आवाज है, इसकी आवाज के जो पॉजिटिव कंपन है वो उनके पास पहुंच रहे होंगे। बहुत लंबे समय से श्रोता इंतजार कर रहे थे सड़ाना जी आपकी आवाज का। हमारे उन श्रोताओं को जो अभी हाल फिलहाल में ही आकाशवाणी को जिन्होंने सुनना शुरू किया है, तो हम बता देते हैं कि सड़ाना जी बेहद लोकप्रिय उद्घोषक रहे हैं इस केंद्र के। तो ये जो आवाज है, इस आवाज ने पूरे देश के जो श्रोता थे उनके दिलों पर राज किया है। सड़ाना जी, आपकी जर्नी के बारे में हम बात करते हैं
1: जी।
0: सबसे पहले हमारे श्रोताओं को ये बताइए सड़ाना जी कि इस संस्थान से जो आपका जुड़ाव हुआ, यहाँ पर आना, संक्षिप्त रूप से इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए प्लीज।
1: देखिए, जब आकाशवाणी नजीबाबाद शुरू हुआ तो उस समय पर, क्योंकि सक्रियता ज़्यादा रहती है, नया स्टेशन खुला था, नई नई सक्रियता थी, नई नई आकर्षण भी था, उत्सुकता भी थी। तो उस समय जो यहाँ के अधिकारी थे वो लोग गढ़वाल विश्वविद्यालय में आते थे और रिकॉर्डिंग करते थे। सब लड़के लड़कियाँ, सारे स्टूडेंट्स जितने भी हैं वो सब इकट्ठे होते थे। तो सबसे पहले तो वहीं से परिचय हुआ था कि आकाशवाणी नजीबाबाद है, और क्योंकि आकाशवाणी नजीबाबाद बहुत अच्छे ढंग से प्रसारित होता था और उसको वहाँ लोग सुनते भी थे और रेडियो की लिसनिंग बहुत ज़्यादा होती थी, तो एक आकर्षण उस समय जो है आरम्भ हुआ था।
0: आकाशवाणी में आने से पहले जब आप स्टूडेंट थे, एज अ स्टूडेंट, या जब हम छोटे होते हैं तो हम सोचते हैं कि हमें करियर कहाँ बनाना है, हम इस दिशा में जाना चाहते हैं, कभी क्या आपने सोचा था? थोड़ा सा उसके बारे में भी हमें बताइए प्लीज।
1: देखिए, हमारे घर परिवार में व्यापारिक लोग हैं सभी लोग, तो मेरी लेकिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बहुत रुचि रहती थी, तो मैं उसमें भाग लिया करता था। जब हमारे इंटर कॉलेज में पढ़ते थे तो लोकगीत लोक नृत्य भी होते थे, और उसमें समय समय पर जो वाद विवाद प्रतियोगिताएं होती थी या भाषण प्रतियोगिताएं होती थी उनमें भी भाग लिया करते थे। तो जो अंतरविद्यालय प्रतियोगिताएं गढ़देवा वगैरह होते थे उनमें भाग लेते रहते थे। तो एक सांस्कृतिक कार्यक्रमों से जुड़ा हुआ था, और एक व्यापारी का बेटा होते हुए भी लोग आश्चर्य करेंगे कि हमारे भाई दुकानों में बैठते थे, मैं अपनी दुकान में एक दिन भी नहीं बैठा।
0: अच्छा।
1: एक दिन भी, तो अपवाद स्वरूप भी मैं कभी दुकान में नहीं बैठा।
0: आपका जन्म सड़ाना जी कहां पर हुआ?
1: मेरा जन्म हुआ श्रीनगर, गढ़वाल में,
0: श्रीनगर में। उसके बाद जब आप आकाशवाणी में आते हैं, आकाशवाणी में आपका आना हुआ, उसके बारे में जो पहला अनुभव था, तो वो कैसा अनुभव था आपका?
1: आकाशवाणी में मेरी नियुक्ति हुई तो वो गोरखपुर में हुई, तो क्योंकि एक प्रतिष्ठित संस्थान पहले से ही था और वहाँ जो लोग थे, या जब मेरा स्थानांतरण नजीबाबाद में भी हुआ तो यहाँ पर जो अखिल भारतीय कार्यक्रम होते थे उसमें भी लोग जो हैं आकाशवाणी नजीबाबाद के कार्यक्रम के जो बनाते थे वो वहाँ से ब्रॉडकास्ट होते थे, ऐसे ही वहाँ गोरखपुर में भी था। तो वो लोग इस तरह मेहनत से, समर्पित भाव से, सब मतलब एक देखिए कि सुबह से आ गए हैं, 5:53 पे संकेत धुन बजती है, 5:30 बजे तक स्टाफ आ जाता है, अनाउंसर वगैरह, तो वो जो प्रोग्राम बना रहा है व्यक्ति, रूपक, फीचर या नाटक बना रहा है, वो भी उनके साथ आ जाता था। रात को जब क्लोज डाउन 11:10 पे होता था, जब और स्टाफ जाता था, जो व्यक्ति कार्यक्रम बना रहा है वो भी वो उनके साथ जाता था। इतनी समर्पण भावना उस जमाने में आकाशवाणी के प्रति रहती थी। तो वो लोग अपनी इस तरह अपने कार्यक्रमों को करते थे, या एक एक चीज को ध्यान देते थे, लोगों को बताते थे, जो नए लोग होते थे उनको सिखाते थे। तो उसी माहौल में हम लोग बड़े हुए, तो इसलिए हम लोगों को भी वैसा ही सीखने को मिला, और हमने उनसे सीखा कि ये लोग कैसे बना रहे हैं कार्यक्रम, कैसे समर्पित भाव से काम कर रहे हैं। और उसी भावना में हम लोगों ने भी कहा, तो उसी प्रवाह में, उसी रिद्म में, उसी लय में हम भी चलते रहे।
0: गोरखपुर आपकी शुरुआत हुई सड़ाना जी, उसके बाद नजीबाबाद कब आना हुआ?
1: देखिए, मेरे जब गोरखपुर में मेरी नियुक्ति हुई वो एक ऐसा संयोग हुआ कि गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष शंकर काला जो हैं वो भी यहाँ आकाशवाणी नजीबाबाद में कैजुअल के रूप में आते थे, वो ग्राम जगत कार्यक्रम में आते थे, तो मैं भी यहाँ कैजुअल में आया करता था, तो मैं हिंदी वाले में आता था। तो जब रोजगार समाचार में ये निकला कि एक अनाउंसर आकाशवाणी नजीबाबाद को चाहिए, तो फिर शंकर काला ने मुझको प्रेरित किया और उसी ने मेरा फॉर्म भरा, उस वही मेरे साथ गया पोस्ट ऑफिस और उसने पोस्ट किया और सब कुछ हम लोगों ने किया। तो उसमें फिर वहाँ SSC इलाहाबाद में मेरा इंटरव्यू हुआ, तो मेरा सिलेक्शन हो गया उसमें।
0: ये कौन से वर्ष की बात है सड़ाना?
1: ये 1981 की बात है,
0: 1981 की बात है, यानी कि इस केंद्र के लगभग 3 वर्ष बाद। उसके बाद यहाँ पर नजीबाबाद में आपने शुरुआत की,
1: तो क्योंकि आकाशवाणी जो जैसे इस समय उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश अलग अलग है, तो समय यूपी और उसका उत्तराखंड का एक ही आकाशवाणी केंद्र था नजीबाबाद, और मैं श्रीनगर गढ़वाल का रहने वाला, वहीं बड़ा हुआ, तो मुझे ये था कि वहाँ मुझे गोरखपुर बहुत दूर हो जाता था, तो मैंने कोशिश, एक प्रयास भावना थी कि मेरा स्थानांतरण नजीबाबाद हो जाए, तो मैंने इसके लिए

0: ये आवेदन किया और उसमें जो स्टेशन डायरेक्टर गोरखपुर थे श्री काजी अनीसुल हक
1: जी,
0: वो उस समय स्टेशन डायरेक्टर, उनके प्रयास से 15 दिन के अंदर, आवेदन करने के 15 दिन के अंदर मेरा स्थानांतरण नजीबाबाद के लिए हो गया।
1: सोचिए उस दौर में 15 दिन, जबकि चिट्ठी पत्री का दौर होता था, फोन कॉल्स तो बहुत ही रेयर होते थे।
0: मैंने कहा ना कि ऊपर वाला कुछ ईश्वरीय कुछ होती है संकेत।
1: बेशक मैं भी ये कहूंगा, कहा जाता है ना कि जो जहाँ के लिए डेस्टाइंड होती है, तो ये आवाज जो थी ये नजीबाबाद केंद्र से जानी थी।
0: एक बात बताऊं मैं आपको, जब मैंने आवेदन किया, मैं बड़ा खुश हुआ स्थानांतरण हो जाएगा, तो वहाँ एक ड्यूटी ऑफिसर थे, मित्रा बंगाली थे, बुजुर्ग थे, तो उन्होंने कहा अरे, तो मैं उनके सामने तो बच्चा था ना नया, अरे तुम समझ रहे कि तुम्हारा ट्रांसफर हो गया, तुमने आवेदन दिए। तब उन्होंने मुझे ये सारा विवरण बताया और कहा अभी तुम्हारा नहीं होगा, अब लेकिन 15 दिन में हुआ। तो उन्होंने भी मुझे कहा, अरे बड़े आश्चर्य की बात, सब लोगों ने कहा कि ऐसा कहाँ होता है, लेकिन उन्होंने क्योंकि संपर्क करके हक साहब ने, उन्होंने मेरा स्थानांतरण नजीबाबाद करवा दिया
1: जी। फिर आपका नजीबाबाद आना होता है, नजीबाबाद के जो उस समय केंद्र की स्थिति थी उसके बारे में सड़ाना जी हमें थोड़ा सा बताइए।
0: एस एन शर्मा जो हैं वो केंद्र निदेशक थे, उसमें मैं जब यहाँ आया तो उसके बाद फिर हमारे मैठाणी जी स्टेशन डायरेक्टर थे। तो एक चीज और जो महत्वपूर्ण है, देखिए एक तो मेरी रुचि पहले से ही मैंने आपको बताया, मैं जब हमारे यहाँ कहानी प्रतियोगिता होगी, कविता प्रतियोगिता होगी, तो उसमें मैं ही अपने विश्वविद्यालय में प्रथम आता था
1: जी।
0: हाँ जी, मैं ही आता था। यह यहाँ भी जो आकाशवाणी नजीबाबाद में हिंदी दिवस में होता है, तो मुझे मेरे स्टाफ के लोग बोला करते थे कि हमारे भाग लेना तो एक बराबर है, फर्स्ट तो आपको ही आना है।
1: अच्छा,
0: ये बोलते थे। हाँ, तो मैंने जैसे मैं वहाँ विश्वविद्यालय में था तो मैंने बाद में छोड़ दिया था, और ऐसे ही मैं जब यहाँ था तो मैंने बाद में छोड़ दिया था, मैं प्रतियोगिता में भाग नहीं लेता।
1: जी, लता जी ने भी अवार्ड लेने छोड़ दिए थे एक समय के बाद।
0: तो मुझे क्योंकि हो गया, अरे एक उम्र भी हो गई थी, इतनी 30-31 साल की उम्र में तो मेरी नौकरी लगी थी, है ना, बड़ी उम्र में मेरी नौकरी लगी। और मैं आपको मैं एक चीज बताऊं कि मेरे घर में इस समय भी, जबकि मैंने कुछ किताबें इधर उधर कर दी हैं, 2500 पुस्तकें हैं मेरे। 11 तो जो पुराण हैं वो 11 पुराण मेरे घर में हैं, महाभारत, गीता और गरुड़ पुराण, नारद पुराण, स्कंद पुराण, ये सारे मेरे घर में हैं। रामचरितमानस के कई प्रसंग मुझे याद हैं, सुंदरकांड तो मुझे पूरा याद है। तो जब मैं आकाशवाणी में आया तो मेरे लिए कोई नई चीज थी नहीं, तो मैं तो यहाँ खूब साहित्यिक और वो चीजें जितनी भी हैं वो सब मैं करता रहता था। एक नई चीज है गाने वगैरह जो हम सुनाते थे, तो उसमें जो कंपेयरिंग करते थे या जो भी करते थे, एक ये चीज है जो लोगों का उत्साह, जो लोगों का मेरे प्रति विश्वास और जो लोगों की भावनाएं और फिर जो उसकी प्रतिक्रियाएं, वो सारी चीजें जो मिली मुझे, वो पूरा वातावरण बना के दिया गया। तो इस कारण मैं पता नहीं संदर्भ में और इस भेंटवार्ता में वो चीज मुझे बतानी चाहिए कि नहीं बतानी चाहिए, कि एक बार ऐसा हुआ कि मैं जब रिटायरमेंट के करीब था, ये तब की बात है जब अनुभव था, पहले मैंने बहुत कार्य कर चुका था, तो ये अनिल भारती, विनय ध्यानी ये सब आ चुके थे, ये सब की बात है। तो एक अखबार में, ये मुस्सेपुर यहाँ है 8 किलोमीटर जो विकलांग आश्रम है,
1: हाँ,
0: उसमें एक विकलांग लड़की जिसके घुटनों से नीचे पैर थे नहीं, उससे एक ऐसे व्यक्ति ने जो पूरी तरह सक्षम था, उस व्यक्ति ने शादी की। और वो समाचार जब छपा तो मीटिंग में इसकी चर्चा स्टेशन डायरेक्टर ने की और फिर कहा कि इसकी रिपोर्टिंग कर दीजिए। वो जमाना ऐसा था जब मैंने इन कार्यक्रमों को करने की वो सोची नहीं थी, मैं नहीं करता था। तो मुझे मीटिंग में अनिल भारती ने और विनय ध्यानी ने, इन्होंने कहा, ये नए लोग आए थे, तो इन्होंने कहा सडाना जी आपके बारे में हम बहुत कुछ सुनते रहते हैं, तो हम भी देखना चाहते हैं कि आप कैसा प्रोग्राम बनाते हैं, हमें भी प्रेरणा मिलेगी, आप इस प्रोग्राम को कर दीजिए। तब उनके कहने पर, स्टेशन के डायरेक्टर के कहने पर मैंने कहा नहीं करूंगा, लेकिन उनके कहने पर, उनकी भावनाओं को देखकर मुझे भी लगा कि मुझे कर लेना चाहिए। तो मैंने कहा अच्छा चलो इस बार मैं कर दूंगा। मैं गया रिकॉर्ड करके, मैं आ गया। तो सतीश माथुर से उस समय स्टेशन डायरेक्टर जी, तो सतीश माथुर जी ने मीटिंग में फिर मुझसे पूछा कि सडाना जी उस प्रोग्राम को कब ब्रॉडकास्ट करोगे। तो मैंने कहा सर ऐसा है, अगर उसकी रेडियो रिपोर्ट देनी है तो रात को 9:16 पर, समाचारों की बात करते हैं ना, तो मैंने कहा 9:16 पर उसकी रेडियो रिपोर्ट हम दे सकते हैं, पर अगर आप कहें कि मैं अपने मन से करूं उस प्रोग्राम को ढंग से, तो उसके लिए तो समय लगेगा। एक महीने बाद माथुर साहब ने मीटिंग में ये कहा कि सडाना जी आज कास्ट करेंगे।
1: अच्छा।
0: तो मैंने उनको कहा सर ऐसा है कि जो तारीख आप निश्चित कर दीजिए उस तारीख को हम ब्रॉडकास्ट। तो उन्होंने एक हफ्ते बाद का समय दिया कि एक हफ्ते बाद, लेकिन उससे पहले मैं उस जो वो जो वो हुआ था, तो उस कार्य का नाटक बना लिख चुका था।
1: अच्छा।

0: नाटक लिख चुका था और उस नाटक का नाम था उसके हिस्से का आसमान।
1: उसके हिस्से का आसमान,
0: उसके हिस्से का आसमान। आप ये देखिए कि जब हम बातचीत संचालिका से कर रहे थे तो संचालिका ने अपनी बातचीत के बीच में ये पंक्ति कही थी कि वो लड़की बेचारी तो अपने अंदर ही बैठी रहती, कहीं आना नहीं जाना नहीं, वो तो जा नहीं सकती उसके, क्योंकि घुटनों से नीचे पैर है ही नहीं उसके लिए, तो दुनिया उतनी है जो इस खिड़की से आसमान दिखाई दे रहा है। तो वो टाइटल जो है उनके इस बोलने में मुझको टाइटल मिल गया, उसके हिस्से का आसमान। फिर हमने उस लड़के से भी बात की सहारनपुर जाकर, तो हमने इन सबको रिकॉर्ड भी किया और फिर मैंने उसकी स्क्रिप्ट लिखी और वो नाटक जो है उसके हिस्से का आसमान हम लोगों ने ब्रॉडकास्ट किया।
1: क्या बात है, बहुत अच्छा। तो सड़ाना जी, अनाउंसर के रूप में आप आते हैं आकाशवाणी केंद्र को, आपने ज्वाइन किया, जो उस समय के अनुभव थे, उस समय जो कार्यक्रम थे, कुछ उन कार्यक्रमों के बारे में बताइए, अगर आपको कुछ याद आता है, जैसे है ना याद है, जरा जरा भी अगर याद है तो थोड़ा सा हमें बताइए कि कौन से कार्यक्रम थे उस समय जब आपने शुरुआत की, शुरू के एक दो साल में, तीन साल में, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स जिनको आपको करने में सबसे ज्यादा आनंद आता हो।
0: देखिए, मैं जब गोरखपुर में था वहां जब मैंने किया, जैसे इंद्रधनुष होता था रात को 10 से 11 बजे आपकी फरमाइश कार्यक्रम होता था, तो उस जमाने में तो रेडियो का ही प्रभुत्व था, तो वो आपकी फरमाइश कार्यक्रम और लोग भी करते थे, मुझको भी एक दिन मौका मिला और मैंने भी वो कार्यक्रम किया। जब मैं नया नया नियुक्त हुआ था तो ऐसा हुआ कि अभी मैंने आकाशवाणी, मतलब मैंने ब्रॉडकास्ट कोई चीज नहीं की थी, ज्वाइन कर लिया था लेकिन अभी तक मैं एयर पे नहीं गया था। तो युवाणी कार्यक्रम में जो मेरी पसंद कार्यक्रम होता है, तो एक दिन जिस दिन मेरी पसंद कार्यक्रम होना था तो जो मेरी पसंद करने वाला लड़का था वो नहीं आया, तो निश्चित है ड्यूटी ऑफिसर ने कहना सर वो तो आया नहीं, अब मेरी पसंद कौन करेगा। तो उन्होंने कहा वो है तो सही सड़ाना, इतने दिन से ज्वाइन किया हुआ है, तो उन्होंने कहा उसको कहो कि वो करेगा। तो उन्होंने कहा सर उससे करवा दें, ऐसा कहा जाता है मुझे, जो लोगों ने बताया उन्होंने कहा अरे उससे वो तो उन्हें कभी किया ही नहीं, उसने तो कभी, उन्होंने कहा तो आखिर उससे काम तो करवाना ही है ना, जब उसने ज्वाइन किया है तो उसने तो करना है, तो उससे करवा दो। तो मैंने मेरी पसंद कार्यक्रम प्रस्तुत में, इसलिए ईश्वर को याद करता हूँ कि एक सब काम ईश्वरीय व्यक्ति नहीं होता, उसका अहंकार कुछ नहीं है। तो देखिए जब मैंने वो कार्यक्रम समाप्त किया तो जब मैं बाहर निकला तो आप ये देखिए गेट के बाहर बहुत सारे लड़के खड़े थे।
1: अच्छा।
0: उन्होंने कहा हम ये देखना चाहते थे कि ये आज मेरी पसंद किसने प्रस्तुत किया है।
1: जी, वो जो लड़के आप बता रहे हैं वो श्रोता थे, मतलब सुन के आए,
0: सुन के उन्होंने रेडियो सुना और रेडियो सुन के वो वहाँ आए और उन्होंने ये कहा कि
1: लड़का कौन
0: ये है? कौन है जो नया लड़का, तो वहाँ मेरी पसंद देने था, तो मैंने वो कंपेयरिंग तो लिख ही सकता था, तो कंपेयरिंग करके मैंने वो मेरी पसंद कार्यक्रम दिया था, तो वो ब्रॉडकास्ट हुआ, तो वो लोगों को इतना अच्छा लगा।
1: हम अपने इस कार्यक्रम में सड़ाना जी ये भी कोशिश करते हैं कि जो आपके पसंद के गीत होते हैं वो अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं, क्योंकि एक समय था आपने मेरी पसंद में कुछ बातें कुछ गीत में अपने पसंद के गीत सुनवाए श्रोताओं को। एक गीत जो आप इस समय आपका दिल चाह रहा है कि इस समय आप सुनवाएं अपने श्रोताओं को, कौन सा गीत सुनवाएंगे?
0: देखिए जब मैं किशोर उम्र में था तो मेरे हृदय में, मैंने आपको बताया ना बचपन से मैं ऐसा था, तभी तो मुझे रामलीला वाले भी पकड़ के ले जाना चाहते थे, राम बनाना चाहते थे, तो मैं इसी तरह की गतिविधियों में बचपन से था, तो एक भावुकता थी मुझ में, संवेदनशीलता थी। तो आप देखिए कि दूल्हा दुल्हन फिल्म का एक गीत हमने तुमको प्यार किया है
1: जी, मुकेश,
0: वो मुकेश की आवाज में वो गाना मुझको उस समय बहुत अच्छा लगता था और अब भी मुझे वो गाना बहुत अच्छा लगता है। तो वो जो संवेदनशीलता है वो उस जमाने में, उसको मैं भी नहीं जानता था कि मैं क्या हूँ, लेकिन उस समय मैं इस गीत को सुनता था तो मैं बिल्कुल डूबा रहता था इस गीत में उस जमाने।
1: चलिए फिर से डूबते हैं इस गीत में।

0: सड़ाना जी, मेरी पसंद कार्यक्रम से आपने शुरू किया, उसके बाद का कोई और कार्यक्रम जिसे आपको करने में सबसे ज्यादा आनंद आता हो, क्योंकि लोगों को तो आपकी आवाज हर कार्यक्रम में अच्छी लगती थी।
1: कार्यक्रम था कुछ बातें कुछ गीत जी, तो उसमें क्या होता है, अभी भी मैंने कई स्टेशनों में देखा है वो उस तरह उस कार्यक्रम को नहीं करते। जैसे कोई भी समस्या है कुछ है उसको लेके बोलना और फिर उसके बाद गीत सुनाना, ये वहाँ पर 40 मिनट का ये कार्यक्रम होता था, ये गोरखपुर में कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम, वो मैं करता था, वो उस कार्यक्रम को करके मुझे बहुत संतुष्टि मिलती थी। तो ये अलग बात है कि बाद में मैं आपका पत्र मिला भी करता था, फोन इन कार्यक्रम तो उस समय होते नहीं थे
0: जी,
1: तो आपका पत्र मिला भी मैं करता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था और एक हमारे श्रोताओं को भी वो कार्यक्रम उतना ही अच्छा लगता था, उनका भी बहुत स्नेह मिला। और ये जो कुछ बातें कुछ गीत है, ये एक मैं अलग ढंग से इस कार्यक्रम को करता था जो और कहीं से उस तरह का कार्यक्रम नहीं होता।
0: किस प्रकार करते थे?
1: जो भी होता था उस पर एक स्क्रिप्ट तैयार करके फिर गाना सुना देते थे, लेकिन उस स्क्रिप्ट जो तैयार करते थे वो कुछ खास होती होगी या जो उस समय, क्योंकि मुझे लेखन की मुझे पहले से ही अभ्यास था, मैं लिखता रहता था, तो एक कारण वो भी हो सकता है, उसमें एक परिपक्वता थी मुझे। जैसे मैं उसको प्रेजेंट कर रहा हूँ, एक बात बहुत है औरों के साथ पता नहीं ये चीज होती है कि नहीं होती है, लेकिन मुझे ये लगता था जी मेरे सामने मेरे श्रोता बैठे
0: जी,
1: मुझे ये नहीं लगता कि मैं एक कमरे में बैठा हूँ मैं अकेला हूँ, नहीं, मुझे लगता है मेरे श्रोता मेरे सामने बैठे हुए हैं
0: जी। शायद वो आज भी एक बेसिक प्रिंसिपल के रूप में बताते हैं सबको कि आपने श्रोताओं को अपने सामने इमेजिन करिए तो शायद आपका कार्यक्रम और पर्सनल हो सकता
1: जी,
0: है
1: जी
0: जी। अच्छा,
1: एक मैं सबसे बड़ी बात वो बोलता हूँ, मैं जो देहरादून में भी बुलाया गया था, यहाँ भी मैंने कैजुअल अनाउंसरों को जब मैंने भाषण उनको सामने दिया है, तो मैं जीवन का बहुत प्रसारण के लिए मैं इसको मुख्य चीज समझता हूँ कि आदमी को पढ़ना चाहिए
0: जी,
1: उसको अध्ययन करना चाहिए, पढ़ेगा तो तब उसका ज्ञान विकसित होगा। देखिए ये मंत्र के संदर्भ में कहा गया है कि शब्द अपने अर्थ को प्राप्त होता है
0: जी,
1: देखिए मंत्र पढ़ते हैं ना सिद्धि प्राप्त होती है
0: जी,
1: तो शब्द अपने अर्थ को प्राप्त होता है, ये एक जैसे सूरज
0: शाश्वत सत्य है,
1: सत्य है, ऐसे ही ये शाश्वत सत्य है ना, तो शब्द अपने अर्थ को प्राप्त होता है
0: जी,
1: और जो रचनाकार है उसके लिए है शब्द अपने अर्थ को प्राप्त करता है।
0: अच्छा,
1: तो रचनाकार अगर इस तरह से चलेगा शब्द अपने अर्थ को प्राप्त करता है तो वो जो उसका लेखन है वो जो जब सुनने वाले पर भी उसी तरह प्रभाव डाले
0: जी, बिल्कुल सही बात है। हाँ, वो क्रिएटिव
1: वो जो अपने अंदर उसके अंदर वो शब्द और उसकी लय और उसका अर्थ वक्ता के पास है, उद्घोषक के पास है, तो वो जो श्रोता तक जाएगा वो उसी तरह का प्रभाव पैदा
0: जी जी। इसके बाद सड़ाना जी हम आगे चलते हैं, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कैसे जो वो जो तकनीकी इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं आपके सामने, अगर हम आपके सामने की बात करें जिस समय आप आए और उसके बाद में फिर धीरे धीरे आपने अपनी

0: जो सर्विस थी उसको कंटिन्यू रखा, तो कौन कौन से ऐसे इम्प्रूवमेंट्स थे या कौन कौन से ऐसे एडवांसमेंट्स थे जो आपके सामने ही हो गए, तो ऐसी कौन सी चीज़ें थी?
1: सारा प्रसारण जो है वो कंप्यूटर में होने लगा। अच्छा, पहले हमारे ज़माने में टेप वगैरह ले करके हम लोग कहीं जाते थे, पहाड़ों में चढ़ रहे हैं, रास्ता नहीं है, पगडंडी भी नहीं है, चट्टानों में होके, मैं एक ऐसी जगह भी गया जहाँ केवल चट्टानें थी, रास्ता था ही नहीं उस गांव में जाने का, तो वहाँ भी गए। अब आजकल जो है रिकॉर्डिंग करने के लिए बहुत सरल तकनीक इतनी विकसित हो गई है, या जो प्रसारण होता है जो चीज़ है उसका प्रसारण भी इस तरह मशीनों में और कंप्यूटर में होने लगा, तो वो तो बहुत ही क्रांति हुई है। बिल्कुल, इसमें क्या बात
0: जी। अच्छा सड़ाना जी, एक और बात हम आपसे करना चाहेंगे कि आपके कुलीग्स के बारे में हम जानना चाहेंगे, जिन लोगों के साथ आपने काम किया। बहुत खट्टी मीठी यादें होती हैं हमारी सबके साथ में, हम मीठी यादों की अगर बात करें तो कोई मीठी सी याद है इस समय?
1: देखिए सबसे मीठी, देखिए मैंने जैसे आपको कहा कि मैं तो एक नया लड़का था और इन सब चीज़ों का मुझे ऐसा था भी नहीं, और ना मुझे नौकरी का ही इतना था। मैं आप, हाँ एक बात बताना तो मैं भूल ही गया, जो टेप में कट निकालते थे, तो जैसे रामचरितमानस है तो उसमें 3 कट होते थे, तो मैं 3 कट नहीं निकाल सकता था, वो कट निकालना मुझे नहीं आता। अच्छा। था हाँ, मैं कहता था कि एवरेज की चोटी में चढ़ जाऊंगा लेकिन कट नहीं निकाल पाऊंगा। देखिए एक चीज है, तो उसमें मुझे सहयोग जैसे और स्टाफ नहीं किया, तो धीरे धीरे मैं सीख गया। अच्छा एक दिन की बात है, इस नजीब आबाद में मैं आ चुका था, तो डीओ की ड्यूटी उस दिन मैं कर रहा था, तो अनाउंसर का नहीं था, एज कैजुअल में था, तो वो कैजुअल जो है वो उस बेचारे से वो निकल नहीं आ रहा था कट, तो उसने मुझे बुलाया, मुझे कह रहे कि सराना जी वो कट नहीं निकल रहा है उससे, तो मुझे मुझे इतनी हंसी आई अपने ऊपर, मैंने कहा एक जमाना था जो इन कट को निकालने के लिए मैं सोचता था, आज मैं जा रहा हूँ, तो मैंने उसको घुमा के एकदम कट कट करके 1 सेकंड में निकाल दिया, तो आ गया। तो ऐसे ही आप देखिए प्लेलिस्ट बनाना, जो व्यक्ति इतना नाड़ी है वो प्लेलिस्ट उसमें क्या बनाएगा, तो मैं कुछ अपने अंदाज से कर देता था काम।
0: अच्छा, अपने अंदाज से?
1: हाँ, मैं कुछ कर देता है, क्योंकि विनय ध्यानी का मैं प्रमाण देता हूँ आपको बिल्कुल। एक दिन विनय ध्यानी अपने प्रोग्राम को फीड करने के लिए स्टूडियो में आए, तो लाइव चल रहा था, तो लाइव चल रहा है तो इतनी देर तो वो व्यक्ति खड़ा ही रहेगा ना, तो इतनी देर खड़ा रहा और मैं वो प्रोग्राम मैं दे रहा था लाइव, और गाने वो फीड हो रखे थे सो उनको मैं ब्रॉडकास्ट कर, तो जब वो मैंने प्रोग्राम कर दिया तो वो फेडर ऑफ हो गया, तो उसके बाद विनय ध्यानी नहीं पकड़, कह रहा है मेरे तो मुंडारा हो गया, मेरा तो सिर में दर्द हो गया, ये तुम कर क्या रहे थे, कहीं का कुछ, कहीं का कुछ, तुमने सबको कर दिया और सीधा और कर भी दिया पूरी तरह सही सही। तो ये है, तो ये अनुभव के कारण होता है एक, और एक लोगों की भावना के कारण। मुझको अगर कहा जाता कि तुमने ये गलती की, ये फॉल्ट किया, ऐसा कैसे कर रहे हो, तो मैं अपना कार्य उस तरह ना कर पाता, लेकिन मैं कर रहा था, और अगर मुझसे कुछ हो भी रहा है तो लोगों का सहयोग भी मुझे मिल रहा है। जब मैं रिटायर होने वाला था मुझको टाइफाइड हो गया।
0: अच्छा,
1: मेरे मिसेज और बच्चे जो थे उस समय कोटा में थे, पढ़ाई में वहाँ थी, मिसेज उनके साथ थी, मैं यहाँ अकेला था, रिटायर होने वाला था, 3 महीने रह गए थे, तो क्या हुआ कि मेरी आवाज़ ही बंद हो गई।
0: अच्छा,
1: अनाउंसर की आवाज़ बंद हो जाए तो क्या होगा, ऐसे मेरे होंठ चलते थे, मुंह चलता था, आवाज़ निकलती नहीं थी, लेकिन मैं प्रसारण करता था, गाने चलाता था, किसी और को कोई बैठाएगा उसके ऊपर, लेकिन मुझको मैं आधे घंटे तक केवल गाने चलाता था, बोलता नहीं था।
0: अच्छा, आप खाली नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक चलाते
1: हैं? हाँ, कई लोगों ने कहा कि भाई वो आजकल जो सडाना जी हैं वो बोलते नहीं है, केवल गाने चलाते हैं, कह रहे पता नहीं क्या बात है, सडाना जी बोलते ही नहीं है, गाने चला रहे हैं, लेकिन मुझे कुछ ही नहीं, कुछ बोला ही नहीं कि तुम ऐसा कैसे कर रहे हो ना प्रसारण के बीच में अनाउंसमेंट दो, तो आधे घंटे तक मैं बोलता रहता, मैं गाने चला था क्योंकि मेरी आवाज बंद हो गई थी, टाइफाइड हो गया था।
0: जी जी।
1: खैर भगवान की दया से सो सब ठीक हो गया।
0: जी जी। सड़ाना जी, आपका बड़ा एक सिग्नेचर डायलॉग है जिसे आज भी कोट करते हैं, अभी हमने पिछले वर्ष एक स्पेशल प्रोग्राम किया था, तो उस प्रोग्राम में भी जब श्रोताओं की प्रतिक्रिया आई तो उन्होंने आपके उस डायलॉग को कोट किया, उन्होंने कहा कि सड़ाना जी वो डायलॉग बोलते थे कुछ हाई
1: गजब।
0: हाँ जी,
1: ओए गजब, लेकिन उसको श्रोता, मैं कहता था ओए गजब, लेकिन वो उसको हाई
0: गजब के पीछे की क्या मतलब कहानी है?
1: जब वो हुई, वो अवचेतन में वो होता था, बातचीत करते समय अपने आप मेरी जबान से ऐसा निकल गया, तो मैंने उसको जो है सुना, मैंने कहा आखिर ओए गजब, जब बहुत श्रोताओं ने इसके बारे में चर्चा करते थे, या मैं अभी भी आज भी मुझे अगर कोई श्रोता फोन करता है ना तो वो मुझे बोलता है कि आपने ओए गजब नहीं बोला, एक बार बोल दो।
0: अच्छा।
1: तो मैं बोलता हूँ फिर उनको ओए गजब है, तो मैं मुझे नहीं मालूम कि ये क्या हो रहा है ना, वो अपने आप से मुंह से मेरे निकलता था, तो मैंने उसको टेप को चला के देखा, मैंने कहा आखिर ये ओए गजब ऐसी क्या खास बात है इसमें जो लोग इसके पीछे इतने पागल है, तो ये भी कोई ईश्वरीय होता होगा, तो

0: मेरे मुंह से ओए गजब ऐसी निकल जाता था। वो श्रोता जो हैं, जब बातें करते थे, जब मैं बहुत गदगद हो जाता था उनकी बात सुनकर, देखिए बात तो उनकी थी ना,
1: जी, सही।
0: वो मेरी अंदर की आत्मा से निकलता था ओए गजब। तो मैंने उसको, तो मेरे बच्चे जब पढ़ रहे थे देहरादून में, तो मैंने उनको भी कहा, मैंने कहा जब तुम इसको सुनो, ये ओए गजब जो है, ये इसमें तुम्हें कुछ लग रहा है? तो मेरे बच्चों ने एक दूसरे का मुंह देखा और मुस्कराते रहे। उन्होंने अच्छा। कुछ नहीं बोला, उन्होंने, हाँ, उनको कुछ लगा नहीं, तो उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, हंसते रहे वो बस, दोनों, मेरे लड़की भी और लड़का भी, दोनों हंसते रहे। तो लेकिन मैं कह रहा, ये आखिर इसमें ऐसा क्या है? लेकिन हाँ, ये चीज जरूर है कि उस ओए गजब ने बिल्कुल एक तहलका
1: गजब
0: सब गजब ढा दिया था। बहुत लोगों को स्नेह था उससे, हाँ, वो मेरे स्नेह का ही कहना चाहिए कि एक फूल था जिसकी महक उनको बहुत उद्वेलित करती थी, भावुक करती थी, बांधती थी। तो जो भी होगा,
1: ढेर सारी यादें हैं सड़ाना जी आपकी, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे श्रोता हैं, क्योंकि आपका जब नाम कार्यक्रम की फेरिस्त में आया तो उसी समय से बहुत श्रोताओं की उम्मीदें बहुत सारी रही होंगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि उनकी उम्मीदें पूरी भी हुई होंगी कहीं ना कहीं। ये सिलसिला तो मेरे हिसाब से अनवरत चलेगा, और हम ये उम्मीद भी करेंगे कि आप फिर से हमारे साथ आएंगे। इसके अलावा कोई संदेश देना चाहें या ब्रॉडकास्टिंग को लेकर कुछ कहना चाहें, आज आकाशवाणी जिस स्थिति में है या कैसा फ्यूचर आप देखते हैं, कोई ऐसा संदेश हमारे श्रोताओं को, और मैं तो ये भी कहूंगा कि ऐसे पुराने साथी जो आज आपको सुन रहे होंगे, उनके लिए कोई संदेश आप देना चाहें।
0: देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं जो एक बात आपको कहूं कि आज अगर इस समय अगर चलकर आप मेरे घर आएंगे तो जहां मेरा बिस्तर है, मेरे बिस्तर के सिराने में रेडियो रखा हुआ है।
1: वाह।
0: तो मैं आज भी रेडियो ही सुनता हूँ। तो जो समर्पण की भावना है, उसमें ये वाला भावना ही होनी चाहिए कि हम श्रोता से जुड़े रहें और श्रोता के प्रति अपने दायित्व को महसूस करें और अपना अध्ययन रखें। अध्ययन से हमारे पास जो शब्द आते रहेंगे, हमारे जिभ्या पर, हमारे दिमाग पर जो शब्द आएंगे, वो शब्द अपने अर्थ के साथ और अपनी लय के साथ जब हम उसको व्यक्त करेंगे तो वो व्यक्त होते रहेंगे। तो वो उस तरह व्यक्त होते रहें तो जो प्रसारण करता है वो परिपक्व होगा, उसको श्रोता अपने पन के साथ ग्रहण करेगा, और उसी तरह उनका तो कहना ही क्या, जो श्रोता हमको सुनते हैं वो तो मुग्ध हैं, वो मुग्धता में रहते हैं, तो उनके उस मुग्धता को तो बार बार हम प्रणाम ही कर सकते हैं।
1: सलाना जी, आप हमारे साथ आए, आपने उन यादों को जिया, बल्कि हम ये कहेंगे जरा जरा नहीं, बहुत अच्छे तरीके से आपने यादों को जिया। आपका बहुत बहुत आभार।
0: आपका भी धन्यवाद जो मुझे याद रखा, और श्रोताओं का भी जो मुझे याद करते हैं, और उस पूरे प्रसारण मंडल के प्रति मैं आभार।

0: अभी आप सुन रहे थे मुझे याद है जरा जरा, जिसमें आज आपने सुनी आकाशवाणी के वरिष्ठ उद्घोषक प्रेम कुमार सडाना की आकाशवाणी से जुड़ी यादें। प्रस्तुति सहयोग था यशोधर डबराल का और प्रस्तुतकर्ता थे शोभित शर्मा। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में आज 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने राज्यों से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं जैसे कचरा प्रसंस्करण और गोवर्धन संयंत्रों को तेजी से पूरा करने को कहा। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपये लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण

0: एफआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एफआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के अंतर्गत एफआईआर कराने का अधिकार रखता है। एक रिपोर्ट।
1: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में इस निर्णय को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को पूर्णतः संविधान सम्मत स्वीकार कर दिया है। राजनीतिक पराजय के बाद अब यह विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी की संवैधानिक धरातल पर भी यह पराजय हुई है।
0: असम विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। इस विधेयक को विधानसभा के पहले सत्र में सोमवार को पेश किया गया था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में आज तीन और लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का तीसरा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिया जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है। राष्ट्रपति ने ईद उल जुहा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि यह पर्व समर्पण, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 2 से 3 दिनों तक मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में लू की स्थिति बनी रहेगी। विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल लू का रेड अलर्ट जारी किया। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी कल लू का प्रकोप बना रहेगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई भागों में भीषण गर्मी और लू के मद्देनजर जरूरतमंद वरिष्ठजन और बच्चों का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने नामांकन आमंत्रित किए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।